0: में बल्लेबाजी का कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा ही नहीं जो वैभव के नाम ना हो।
1: क्रिकेट के क्षितिज पर उदित हो चुका है एक ऐसा चमचमाता वैभवशाली सूर्य जिसकी चौंधिया देने वाली चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम से हो गए हैं। इस वैभवशाली सूर्य ने आईपीएल की महज एक पारी में इतने कीर्तिमान बना दिए हैं कि रिकॉर्ड बुक के हर सफहे पर एक ही नाम चमक रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को हुए एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए।
2: वो बच्चा 15 साल का है, इतनी धमाल मचा रखी है। बुमराह को उसने पहली बॉल पे छक्का मारा, हेजलवुड को, हर एक बॉलर को उन्हें पहली बॉल पे छक्का मारा। ऐसा बल्लेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा। वरिंदर सहवाग भी ऐसी पारी नहीं कभी खेल सका जो वैभव सूर्यवंशी खेलता।
1: वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर का रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई है। वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी में 12 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। वैभव के इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक रिकॉर्ड छिपा हुआ है। गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों पर 65 छक्के अपने नाम कर लिए हैं। 280 गेंदों पर 65 छक्कों का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है।
3: Young man is something else. You know, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope, and he just makes it look so ridiculously easy.
1: महज 15 साल के वैभव जिस तरह कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एचआरएस के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों पर ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। आईपीएल 2026 के दौरान 27 मई को खेली गई ऐतिहासिक पारी समेत कुल 15 पारियों में वैभव 243 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। टी20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2022 में टी20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 के स्ट्राइक रेट से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प तो ये है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इस वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इसी सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। आपको बता दें कि 27 मई वाली पारी को लेकर वैभव आईपीएल 2026 सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान 490 रन बना चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में पावर प्ले के दौरान 467 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरोन पोलार्ड और शुमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड्स की कब्रगाह बना चुका है, तो आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी।
4: बैट्समैन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर वो अपनी फिटनेस अच्छी मेंटेन करता है तो फिर आने वाला वो फ्यूचर स्टार है इंडिया का।
5: वैभव सूर्यवंशी, उसकी भी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेलता है, बहुत नेक्स्ट लेवल बैटिंग है। हम उसकी बैटिंग को नहीं कह सकते, उसकी अब अपनी अलग क्लास है।
6: करदा उड़ा दिया वैभव सूर्यवंशी ने, लटकाड़ दिया।
1: ऐसा नहीं है कि वैभव का बल्ला सिर्फ आईपीएल में ही चला है। इससे पहले भी बिहार के समस्तीपुर का ये लाल ऐसी ऐसी अद्भुत पारियां खेल चुका है कि क्रिकेट के इतिहास में उसकी कोई सानी देखने को नहीं मिलती। इसी साल 6 फरवरी को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव ने जो पारी खेली थी, उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप के 38 साल के इतिहास की सबसे महान पारी कहा जा रहा है। सबसे महान पारी क्यों कहा जा रहा है, स्टैट देखने से इसका जवाब मिल जाएगा। वैभव ने महज 80 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए। वैभव ने इस पारी में 15 छक्के और 15 चौके लगाए, यानी 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए अपने खाते में जोड़ लिए। 55 गेंदों पर शतक पूरा किया, बाद के 75 रन सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दिए। महज 71 गेंदों पर 150 रन पूरे कर लिए, जो यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज 150 है। इतना ही नहीं, वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुल 30 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम था, जिन्होंने 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के लगाए थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव 439 रन के साथ सेकेंड टॉप स्कोरर भी रहे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के साथ वैभव ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंडर 19 एशिया कप में 12 दिसंबर 2025 को यूएई के खिलाफ वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन कूटकर विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। इस आतिशी पारी में वैभव ने 9 चौके और 14 छक्के लगाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि सबसे तेज और सबसे कम उम्र से जुड़े रिकॉर्ड्स के सरताज बन चुके हैं वैभव। 24 दिसंबर 2025 को रांची के जेएससीए ओवल ग्राउंड में वैभव ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कई विश्व कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों पर 15 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 190 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। इस मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 150 रन पूरे कर वैभव ने लिस्ट ए मैच में फास्टेस्ट 150 का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 64 बॉल पर 150 रन बनाए थे। तूफान थोड़ी देर के लिए हो तो राहत, नहीं तो कहर बन जाता है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान के टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर हैं। इसीलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं बल्कि महाकहर बन रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव 13 साल की उम्र में एक मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में वैभव ने 332 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अभी तो ये यूथ इंडिया की रहनुमाई कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि साल 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा।
0: 15 साल के वैभव की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी हैरान करने लगी है। आईपीएल में अपने से दोगुने ढाई गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो न सिर्फ सहजता से खेल रहे हैं बल्कि कायदे से धुलाई भी कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, जो कभी वैभव के पिता ने देखा था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।
1: सर पर कामयाबी के ताज के साथ मन में विनम्रता का संस्कार हिंदुस्तान की संस्कृति का सनातन हिस्सा है। मैच 15 की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी का बेनजीर परचम लहरा चुके वैभव सूर्यवंशी सनातन संस्कार के युगीन संवाहक हैं। जिस मैच में वैभव ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, उसके प्री मैच शो के दौरान जब उन्होंने सुनील गावस्कर और संजय बांगर को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और पूरी विनम्रता के साथ उनके पैर छू लिए। वैभव के संस्कार की निश्चल सादगी देखिए कि गावस्कर और बांगर के साथ मौजूद प्रेजेंटर जतिन सप्रू के भी पैर छूने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जतिन पीछे हट गए।
3: हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, बस मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे और मुझसे थोड़ा सा रुक कर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं, शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला, मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे।
1: उम्र के लिहाज से वैभव की बेनजीर कामयाबी इस बात की मुनादी कर रही है कि आने वाले वक्त में कीर्तिमान की किताब के हर सफहे पर बिहार के इस लाल का नाम दर्ज मिलेगा। पर वैभव नाम के इस प्रदीप्त दिए की रोशनी से सराबोर होने वाले लोगों को उस तेल और बाती के बारे में भी जानना चाहिए जो खुद गुमनाम रहकर अपने दिए को जगमग कर रहा है। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
7: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक लोगों में, क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
1: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा, पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में जहां क्रिकेट का कोई नामलेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। पांच साल से सात साल यानी दो साल तक गांव में ही वैभव को दिन रात प्रैक्टिस कराने के बाद एक दिन संजीव सूर्यवंशी को इल्हाम हो गया कि अब अगले लेवल की प्रैक्टिस का वक्त आ गया है, लिहाजा बेटे को लेकर निकल गए ताजपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित पटेल मैदान में, जहां ब्रजेश झा क्रिकेट एकेडमी चलाते थे। क्रिकेटर बनाने का जुनून ऐसा था कि संजीव सूर्यवंशी को जब लगा कि रोजी रोटी के लिए चलने वाला बिजनेस व्यवधान बन रहा है तो बगैर देरी के उसे बंद कर दिया।
8: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस, गार्जियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
1: इसमें कोई संदेह नहीं कि 7-8 साल की छोटी उम्र में ही वैभव अपने पिता की उम्मीदों की कसौटी पर लगातार खरे उतर रहे थे। जब तक सूर्य की रोशनी धरा पर मौजूद रहती, वैभव बल्ले को दामन से दूर नहीं होने देते। पिता और माँ को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों को वैभव की आदत कई बार नागवार गुजरती थी। दादी ने तो कई मौकों पर ऊब कर वैभव की पिटाई भी कर दी थी, पर बचपन में वैभव की पिटाई के वो वाकये आज दादी के लिए सुनहरी यादें बन चुकी हैं।
9: डांटते तो थे,
10: अच्छा,
9: कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है, हम खेलेंगे। हम कहे ठीक है बाबू तब खेलो। जब धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा, तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले।
1: बचपन में वैभव की बैटिंग की खटखट से ऊब जाने वाली दादी का हृदय आज इस बात को जानकर गदगद है कि उनका पौत्र क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया। एकेडमी की फीस और उसके बाद समस्तीपुर से हर रोज पटना आना जाना कॉस्टली अफेयर था, इसीलिए संजीव सूर्यवंशी बेटे वैभव को लेकर हर अल्टरनेट डे पर पटना जाने लगे। जेनेक्स एकेडमी चलाने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा भी वैभव के पिता के त्याग और तपस्या को याद कर भावुक हो जाते हैं।
10: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो, और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
1: पिता ने अपनी हैसियत की हदों को पार कर वैभव के लिए जमीन तैयार की और वैभव ने भी पिता के इस त्याग की कीमत को शिद्दत से महसूस करते हुए मैदान पर पसीना बहाने में कोई कोताही नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
11: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
1: बेटे को क्रिकेटर बनाने का ये जुनून अपने आप में अनूठा है, इसका नतीजा सबके सामने है। आज वैभव के बल्ले से बनने वाले विश्व रिकॉर्ड्स संजीव सूर्यवंशी की दुनिया को रंगीन सपनों से भी ज्यादा सुहावन बना रहे हैं। वैभव की विराट बुलंदी का आलम यह है कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर संजीव सूर्यवंशी और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। देश का गौरव बन चुके तेजस्वी पुत्र का पिता होने के लिए बधाई देते हैं। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसके 14 साल के बेटे को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को वैभव को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
0: तो बंदे मेहदम में आज आपने वैभव सूर्यवंशी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a tank. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

पार्वती जी बोली, महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा, बोले दो लोगों की। कौन कौन की? एक, बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारा देह, तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा, राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए, आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा, बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हो। नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज, कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया, बोले बाबा, बोले देवी जी, वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा भैया, वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई,

कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या। कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों, बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या, एक काम करो इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ सबसे ज्यादा बुरा ना मानना, इंदौर के पागलो तन से पूजा कर रहे, आज के डेट में लोग तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार और कैसे रीझे सांभरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग आजकल तन से पूजा कर रहे, मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है बढ़िया खा रहा है, अबे कहते गुरुजी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है भाई, तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी। बोलो जय बजरंगबली की। उपाय क्या है, मन से पूजा कर...

अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दस रथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, दस रथ हैं और दस रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी दसों इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया

0: अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतनाएं आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दई। हो जय हो, ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंग बली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो। मैं घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में तीन घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है? बोले घर में रहो सो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरु जी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। बोलो सीताराम
1: सीताराम।
0: तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में

पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काव देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी, जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आहा हा, जब भोले बाबा ने धरी ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी, इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेद व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई और जैसे ही जमुहाई आई, वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेद व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेद व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेद व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेद व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है, वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा। तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, अब तो भैया हम जे चले, भोले बाबा चले गए। 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेद व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पढ़वा दोगे, हमें प्रपंच में पढ़ना नहीं। वेद व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंग बली। अब 12 वर्ष बाद जब वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के कोख से वह प्रकट भय, तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब भैया जैसे ही प्रकट भय तो वेद व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, आश्वासन प्रभु से पाए, तो महीना व्यापे माया कब हूं सुन के बाहर आई। आपको जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेद व्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए। Yeah.

पीछे बा बहुत दूर तक भागे, पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन में आकर बैठ गए। पर भैया जो बालक घर छोड़कर चला गया था वही बालक भागवत भगवान की कृपा से पुनः घर आया। कैसे? जब 18,000 श्लोकों की संगता भागवत लिख दी तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए, यहां वहां जाकर श्लोक गाओ, सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक गाने लगे। जहां सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे तो एक शिष्य ने, वेद व्यास जी के शिष्य ने श्लोक गाया, भगवान की सुंदरी रूप के बारे में गाया।

श्री सुखदेव जी के सन्मुख वेद व्यास जी के शिष्य ने गाया। क्या कहा? बोले बरहा पीडम नट बर बपु। कोई इतना सुंदर है, कितना सुंदर? बोले कोई सांवरा है, बड़ा प्यारा सलोना है, नंद नंदन है। भैया उनका उनके स्वरूप का क्या कहना, पीला पीतांबर पहन रखा है, सुनहरी कोर है जिस पीतांबर की बिजली सी चमक रही है, धारण किए हुए पीतांबर है, गले में काली कामरिया बांधे हुए हैं, सिर पर मयूर पंख लगाए हुए हैं, कानों में मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, बांसुरी की मधुर मधुर

0: की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah,

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनी RCB अहमदाबाद में हुए ग्रैंड फिनाले।

0: में गुजरात को 5 विकेटों से हराया, विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत। वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। 5 अवार्ड, 35 लाख की इनाम और टाटा सियेरा कार भी इनाम। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य में आज से लागू होगी अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000। मौसम साफ होती फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई, बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलुरु ने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हराया। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बेंगलुरु ने की पहले गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी से गुजरात को 155 रन पर किया ढेर। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु ने, 2 ओवर बाकी रहते जीत लिया मैच। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा नाबाद 75 रन बनाए। चेज मास्टर विराट कोहली ने 42 गेंदों में बनाए 75 रन, छक्का मारकर अपनी टीम को लगातार दूसरी बार बनाया आईपीएल चैंपियन। लगातार दो बार आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई आरसीबी, इससे पहले मुंबई ने साल 2019-20 और चेन्नई ने 2010-11 में जीता था खिताब। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल सीजन में 16 पारियों में 48.50 की औसत से 237 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं 776 रन। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए वैभव को मिला 10 लाख का इनाम। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी अपने नाम किया, इसी के साथ वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी जीता अवार्ड। वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए मिला ऑरेंज कैप, वैभव सूर्यवंशी को कुल 35 लाख रुपए टाटा सियेरा कार भी मिली। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य में आज से लागू होगी अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सौगात, राज्य में आज से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। पश्चिम बंगाल आज शुभेंदु अधिकारी सरकार का होगा विस्तार, सुबह 11 बजे 35 नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन पोर्टल आज से शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 223 मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे सम्मानित, क्लास 10वीं और 12वीं के टॉप पोजीशन लाने वाले स्टूडेंट्स को करेंगे सम्मानित। भगवान श्री राम के करोड़ों श्रद्धालुओं से गुड न्यूज जुड़ी हुई है, राम मंदिर में रोजाना बनने वाले भोग प्रसाद को मिली आधिकारिक मान्यता। खाद्य और औषधि विभाग ने राम मंदिर स्थित सीता रसोई को 5 साल के लिए जारी किया लाइसेंस, रसोई के निरीक्षण और इंतजामों की समीक्षा के बाद जारी किया जाएगा लाइसेंस। सीता रसोई में बनता है खाना, रामलला मंदिर श्री राम दरबार के 6 देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के मंदिरों में अर्पित होने वाला भोग। राम मंदिर में रोजाना मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक 6 बार अर्पित किया जाता है भोग। खाद्य और औषधि विभाग ने सीता रसोई की रसोइयों को शुद्धता और गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिया। तेईस अप्रैल को कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, अब तक 7,51,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। मई महीने में रोजाना 25,000 से 30,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे, यात्रा में देखने को मिल रहा है भारी उत्साह। बद्रीनाथ धाम में धूप बारिश और चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी, खराब मौसम के बावजूद लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रा मार्गों पर कई जगहों पर जाम की बन रही स्थिति, इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में नहीं है कोई कमी। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर यात्रा मार्गों को सुगम बनाया जा रहा है। एसडीआरएफ, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन की टीमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी। बद्रीनाथ धाम में बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सत्यनारायण कथा का हुआ समापन। 21 दिनों की एकांत साधना और 5 दिनों की कथा के बाद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम से रवाना। समापन के बाद बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान। कथा के अंतिम दिन बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु बाबा के अंतिम दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को तीर्थों की महिमा बनाए रखने की संदेश दिए। तीर्थ को बताया हमारी संस्कृति धरोहर और पूर्वजों की अमूल्य विरासत। बद्रीनाथ धाम से बाबा ने संस्कृति संरक्षण का आह्वान किया। लोगों से तीर्थ स्थलों को संजोकर रखने की अपील। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के सिर्फ 42 दिनों में 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में गर्मी से मिल रही है राहत, वहीं पर गंगोत्री यमुनोत्री में तापमान गिरने से फिर बढ़ गई ठंड। बारिश और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों की ओर पहुंच रहे हैं, चादर रेनकोट लेकर पहुंचे। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम, प्रशासन लगातार तैनात। गंगोत्री यमुनोत्री में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, खराब मौसम के बावजूद रोक नहीं पा रहे श्रद्धालु के कदम। उत्तराखंड में चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता और एक्शन से उफंती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं को किया गया रेस्क्यू, टला बड़ा हादसा। चंपावत के श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में प्रसिद्ध जोड़ मेले में जा रहे थे श्रद्धालु, बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ने से फंस गए थे लोग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश के दौरान धाम की ओर जाने वाले यात्रियों को अस्थायी तौर पर आगे बढ़ने से रोका गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रद्धालुओं को होल्डिंग क्षेत्रों और सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक के खास इंतजाम, रास्ते जाम ना हो इसके लिए खास ध्यान रखा जा रहा है। आसमान में दिखा बहुत खास और दुर्लभ खगोलीय नजारा, दो पूर्णिमा पड़ने के कारण रात को दिखाई दी ब्लू मून। अयोध्या के राम की पैड़ी से ब्लू मून की शानदार तस्वीरें निकल कर आए। ज्योति और लोक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का दिन ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन तिथि पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए उमड़े श्रद्धालु, अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान करने के लिए लंबी कतारें। प्रयागराज में भी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु, मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से होता है विशेष पुण्य। अनंतनाग के मट्टन स्थित मारतंड सूर्य मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए, मंदिर परिसर पूरे दिन धार्मिक गतिविधियों और पूजा अर्चना से गुलजार रहा। कश्मीरी पंडितों सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मारतंड सूर्य मंदिर में पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए। पुरुषोत्तम मास महोत्सव के दौरान रविवार को मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दर्शन कर। श्रद्धालुओं ने भीड़ के बावजूद सुचारू व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन और मारतंड तीर्थ ट्रस्ट का आभार जताया, सुरक्षा पेयजल और अन्य सुविधाओं को लेकर संतोष जताया। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर मारतंड सूर्य मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहा, हजारों भक्तों ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। दिल्ली के भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को चढ़ाया 15 लाख का हीरों का चढ़ा ब्रोच। मन्नत पूरी होने पर भक्त ने मोरपंख आकार का सोने का ब्रोच शिरडी साईं बाबा मंदिर को भेंट किया। दिल्ली के श्रद्धालुओं ने 15 लाख के ब्रोच के साथ 9 लाख रुपए का नकद चढ़ावा भी अर्पित किया। हीरों से चढ़ा ये नक्काशीदार ब्रोच साईं बाबा की मूर्ति पर ओढ़ाए जाने वाले दुपट्टे पर लगाया जाता है। शिरडी में बढ़ रहा है सोने चांदी का चढ़ावा, मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा सोना चांदी और कीमती रत्नों के दान में लगातार इजाफा। दिल्ली के ब्रोच दान से पहले लखनऊ के गोपाल गोयल ने साईं बाबा को 1 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया था। तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मासूमियत पर फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर, एक्स पर लिखा, वैभव अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर ना होते तो फिल्म मासूम में कास्ट कर लेता। इन दोनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम कर रहे निर्देशक शेखर कपूर, साल 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करप्पू ने सिर्फ 15 दिनों में दुनिया भर में कमाए 300 करोड़। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर ने राम की भूमिका निभाने पर बोले टेलीविजन के राम अरुण गोविल, मेरा निभाए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, इसलिए राम के रूप में दूसरे चेहरे जल्द स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणबीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है करके। महाराष्ट्र के अकोला में मनाई गई अहिल्या देवी होलकर की 101वीं जयंती, शहर में निकाली गई भव्य रैली। अहिल्या देवी की प्रतिमा की स्थापना और पूजन के साथ शुरू हुई रैली, ढोल ताशों के साथ जय मल्हार की जय घोष। पारंपरिक लेजियम की प्रस्तुतियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, भजन कीर्तन मंडलियों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी रैली, जगह जगह लोगों ने अहिल्या देवी होलकर को किया याद। दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली गुड न्यूज, साल 2020 को छोड़कर जनवरी से मई के बीच पिछले 8 सालों में सबसे कम रहा औसत AQI। छत्तीसगढ़ को मिली पहले IT और LOT की सौगात, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले IT और IoT पार्क का शुभारंभ। IT भलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से शुरू किया गया IT और IoT पार्क, युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगी प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश की 250 से ज्यादा किस्मों की प्रस्तुति। आम महोत्सव में लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो, केसर समेत तमाम वेराइटीज। मेघालय में उमरोई सैन्य स्टेशन में सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सेनाओं की भागीदारी बढ़ाना मकसद। प्रगति का मतलब है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और बदलाव के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। मात्र घंटे लंबे इस वैलिडेशन एक्सरसाइज में भारत समेत 13 देशों के 400 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। अर्धपहाड़ी घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद रोधी कार्रवाई की तैयारियों का अभ्यास। सैनिकों को स्टिंथरिंग, जंगल लेन शूटिंग, कमरे और बस में घुसकर कार्रवाई करने और IED का पता लगाने में ट्रेनिंग दी गई। चमोली की सीमांत नीति घाटी में रविवार से नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का हुआ शुभारंभ, देश के 28 राज्यों से 933 से ज्यादा धावक इस हाई ऑल्टीट्यूड रेस में ले रहे हैं हिस्सा। भारत चीन सीमा से सटी नीति घाटी में 75 और 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया, सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और फिटनेस को बढ़ावा देना मकसद। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत नीति घाटी में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और अल्ट्रा रन के चलते घाटी में देश भर से पर्यटकों और खिलाड़ियों की हुई आमद। भलारी गांव में सांस्कृतिक संध्या के साथ नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन की शुरुआत हुई, लोक गायक किशन महिपाल की प्रस्तुति ने प्रतिभागियों और स्थानीय लोगों को बढ़ाया हौसला। गुजरात के नवसारी में बदल गया मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से राहत। सुबह से ही यहां कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट। गुजरात के अंबाजी और आसपास के इलाकों में गरज और चमक के साथ कड़कड़ाते हुए नजर आई बिजली, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। अंबाजी और आसपास में कई जगह पर गिरे होर्डिंग, वहीं पर अंबाजी मंदिर के चाचर चौक में लगा मंडप भी खुल गया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: सूर्य की राशि की विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, चंद्रमा की राशि की कमजोरी क्या है और इसे कैसे सुधारा जाए, क्या है सूर्य और चंद्रमा की राशियों की विशेषता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: To right field, and it will
4: from the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
8: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य से मुख्यतः कौन से शुभ योग बनते हैं और इन शुभ योगों का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम सूर्य के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। सूर्य का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं? देखिए, कुंडली में जिस खाने में सूर्य बैठा है, जिस घर में सूर्य बैठे हैं, उसके अगले घर में किसी ग्रह के स्थित होने पर वेशी योग बनता है। सूर्य जहां बैठे हैं उसके बाद वाले खाने में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा राहु या केतु नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी ग्रह हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कोई भी ग्रह बैठेगा तो वेशी योग बनेगा। अगर सूर्य कमजोर ना हो, पाप ग्रहों से युक्त ना हो, तो ये योग और भी सुंदर बनेगा, वेशी योग का ज्यादा लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग होता है, इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है और धनवान होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है, लेकिन आगे चल करके ये लोग बहुत धन संपत्ति और यश अर्जित करते हैं। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग हो, ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि के प्रयोग से बचना चाहिए। सूर्य के दूसरे राजयोग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं सूर्य का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं। कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठे हैं, उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है, लेकिन ये ग्रह चंद्रमा राहु या केतु नहीं होना चाहिए। और सूर्य अगर पापक्रांत नहीं होगा, सूर्य पर अगर पाप प्रभाव नहीं होगा, तो वाशी योग बहुत अच्छा होगा और ये ज्यादा शुभ फल आपको दे पाएगा। अगर किसी कुंडली में वाशी योग है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान ज्ञानी और धनवान बनाता है, और वाशी योग होने पर व्यक्ति
व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत कंफर्ट में, बहुत लग्जीरियस लाइफ में रहता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या बहुत सारी यात्राएं करता है। और जिनकी कुंडली में वाशी योग होता है, ऐसे लोग घर से दूर जा कर के जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इस योग के होने पर अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य के तीसरे राजयोग की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो हमने आपको सूर्य के दो बड़े शुभ योगों के बारे में बताया, वेशी वाशी। अब तीसरा शुभ योग कौन सा है? सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पहले खाने में भी ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो तो योग बनता है उभयचारी। लेकिन सूर्य के पहले या बाद वाले खाने में चंद्रमा राहु या केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर सूर्य के पहले खाने में और बाद के खाने में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह बैठा होगा तो उभयचारी योग बनेगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और जिनकी कुंडलियों में उभयचारी योग होता है, ऐसे लोग अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति हर समस्या से बाहर निकल आता है, हर समस्या उसकी दूर हो जाती है। किस्मत का साथ और भगवान की कृपा दोनों मिल जाती है। उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़ा पद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में उभयचारी योग है और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उभयचारी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में प्राप्त होगा। देखिए, सूर्य के वैसे बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन ये तीन प्रमुख राजयोग हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। इसके अलावा सूर्य के दो कामन शुभ योग भी हैं। एक ये है कि अगर कुंडली में सूर्य आपके दशम स्थान में बैठ जाए तो सूर्य दिग्बली हो जाता है, जीवन में शक्ति, साहस और मान सम्मान प्रदान करता है। दूसरा एक और शुभ योग है कि अगर कुंडली में सूर्य बुध के साथ बैठा हो तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है और बुधादित्य नामक राजयोग से व्यक्ति करियर में सफल होता है, जीवन में मान सम्मान पाता है, अपने परिवार के लिए बड़ा परिश्रम करता है और परिवार के लोगों को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। तो आज हमने सूर्य के शुभ योगों की बात करी। अब हम जान लेते हैं
आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी सूर्य देव की अशुभ दशा चल रही हो तो हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ या आटे का दान करें या गेहूं की रोटी बनाएं, उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा निरंतर करेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी आरसीबी। अहमदाबाद में हुए ग्रैंड फिनाले में गुजरात को 5 विकेटों से हराया। विराट कोहली ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत। वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट। सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। 5 अवार्ड 35 लाख का इनाम और टाटा सियेरा कार भी इनाम। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज। राज्य में आज से लागू होगी अन्नपूर्णा भंडार योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000। मौसम साफ होते हुए फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है। बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्थापना पार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की राशियों के बारे में। सूर्य और चंद्रमा की कौन सी राशियां हैं, इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, और साथ ही हम जानेंगे सूर्य और चंद्रमा की विशेषताओं के बारे में। तो पंडित जी से विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जीवन में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो हर रविवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। रविवार को सुबह के समय या शाम के समय स्नान करके पवित्र मन से, पवित्र भाव से अगर आप सुंदर कांड का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 1 जून 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 4:37 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, शाम के 7:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं कि सूर्य की राशि की विशेषता क्या क्या है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और चंद्रमा की राशियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य की राशि की विशेषता क्या है। देखिए, सूर्य पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से अग्नि तत्व का ग्रह है, और सूर्य के पास केवल एक ही राशि है, एक ही राशि से इनका संबंध है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि पूरी तरीके से अग्नि की राशि है और इसके स्वामी हैं सूर्य। सिंह राशि मंगल को काफी प्रिय मानी जाती है। मंगल सिंह राशि में जाने पर बहुत बेहतर और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि का प्रभाव है, सिंह राशि मजबूत स्थिति में है, तो ये आपके जीवन में सूर्य की शक्तियां बढ़ा देता है। आपकी राशि सिंह हो या आपका लग्न सिंह हो, यानी सिंह राशि का अगर प्रभाव जीवन में होगा तो आपके अंदर सूर्य के समान गुण अवश्य ही आ जाएंगे।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव आपके साथ हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है

0: नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं कि सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, इसका क्या प्रभाव है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इन्हें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
0: अब ये जानते हैं कि सिंह राशि कितनी महत्वपूर्ण है और सिंह राशि की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, सिंह राशि को अग्नि तत्व की, फायर एलिमेंट की प्रमुख राशि माना जाता है और इस राशि के स्वामी हैं सूर्य। सिंह राशि को नेतृत्व, साहस, संघर्ष और राजनीति की राशि माना जाता है। सिंह राशि से जो लोग प्रभावित होते हैं वो अक्सर समाज को दिशा दिखाते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। शरीर की हड्डियों के मामले में, हृदय के मामले में और विद्या के मामले में ये राशि महत्वपूर्ण होती है। आपके शरीर में एनर्जी कितनी होगी, आपका हृदय कितना स्वस्थ होगा, आप जीवन में कितने मजबूत होंगे, वो सिंह राशि से निर्धारित होता है। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अति विश्वास। ये अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेशन इनके अंदर ज्यादा होता है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो सलाह लेकर एक मूंगा आपको धारण करना चाहिए। मूंगा धारण करना आपके लिए उत्तम होगा। और सिंह राशि वालों को नियमित रूप से प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और सुबह के समय कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: सिंह राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने वाले जवाबों का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न गौरव अरोरा ने हमें लिखा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अप्रैल 1978। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे। जन्म का स्थान है देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है और मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे कर्ज से मुक्ति मिले और मेरा भविष्य बेहतर हो सके। गौरव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में आप सहारनपुर से निकलकर कहीं और जाएं। इस तरह की संभावना साल 2026 के अंत में दिखाई दे रही है। कर्ज से मुक्ति पाने में लगभग साल भर का समय लगेगा। जून 2027 के बाद तक आते आते आप कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे और जून 27 के बाद आपका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न देवकी जी ने हमें लिखा है और देवकी जी हमें मेल बिहार पटना से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 16 मई 1994। जन्म का समय सुबह के 7:20। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए देवकी जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और प्रबल संभावना है कि साल 2026 के अंत तक इनका विवाह हो जाना चाहिए और वैवाहिक जीवन भी इनका कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत चिंता करने की या बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। एक इनको ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जानते हैं कि चंद्रमा की राशि की विशेषता क्या है और इन राशि वालों को खास तौर पर किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए।
0: अब जानते हैं कि चंद्रमा की राशि कौन सी है और चंद्रमा की राशि की विशेषता क्या है। देखिए, चंद्रमा मुख्य रूप से जल तत्व का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी हैं, एक ही राशि से इनका पूरा संबंध है और वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि शत प्रतिशत 100% जल की राशि है। ये जो कर्क राशि है ये बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। इस राशि का मजबूत प्रभाव अगर कुंडली में है, कर्क राशि अगर प्रबल है, तो ये चंद्रमा और बृहस्पति को मजबूत कर देता है। कर्क राशि का मतलब आपका हृदय है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी सोच है और आपकी कल्पना है। कर्क राशि आपकी सोच को, आपकी भावना को सीधे तौर से प्रभावित कर सकती है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं चंद्रमा की राशि जो है वो कर्क है, तो इन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें ऐसी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, पंडित जी से जानेंगे।
0: अब ये जानते हैं कि कर्क राशि की विशेषताएं क्या हैं, किन बातों का इनको ध्यान बनाए रखना चाहिए। देखिए कर्क राशि जो है ये बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल राशि है। इस राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, यानी चंद्रमा का पूरा अधिकार कर्क राशि के ऊपर होता है। कर्क राशि में कल्पना की, सौंदर्य की, दया की और ज्ञान की क्वालिटी होती है। कर्क वाले ग्लैमरस भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, दूसरों के ऊपर दया और करुणा जल्दी करते हैं। कर्क राशि जो है ये आपके हृदय की, आपके सोच समझ की और आपके भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है। यानी आपके सोच समझ को, आपकी भावनाओं को, आपके दुख और आनंद को कंट्रोल करती है। कर्क राशि के लोग ज्यादातर दूसरों को परेशान नहीं करते, लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये दूसरों के चक्कर में खुद बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े भावुक हैं, बड़े इमोशनल हैं। इस राशि वालों का ऐसा देखा गया है कि इनका वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर इमोशनल मामले में, विवाह और प्रेम के मामले में मुश्किलें आती हैं। इनके लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती धारण करना अच्छा होता है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन पर काबू रखने के लिए आप एक ओपल या एक मोती पहन सकते हैं। कर्क वाले जितना भगवान शिव की पूजा करें उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें तो इनके लिए बेहतर रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, कार्य क्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न ऋषभ ने हमें लिखा है और ऋषभ हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 7:45। जन्म स्थान है कोलकाता। ऋषभ कह रहे हैं कि काफी समय से मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूं लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ऋषभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप मैनेजमेंट की या फाइनेंस की पढ़ाई करके उस क्षेत्र में ज्यादा सफलता पा सकते हैं और आपका करियर मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेल्स या मार्केटिंग जैसा दिखाई दे रहा है। साल 2027 के अगस्त के बाद आपके करियर के बेहतर होने की संभावना बन रही है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहने, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के चौथे सवाल पर, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का चौथा और अंतिम सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न वैजयंती जी ने हमें लिखा है और वैजयंती जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर कर्नाटक से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1980। जन्म का समय रात में 10:25। जन्म स्थान है बेल्लारी कर्नाटक। वैजयंती जी कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है और उसमें लगातार दिक्कतें और विवाद होते रहते हैं, मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। वैजयंती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन देखिए एवरेज ही रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीलेंट होने की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा सुधार अवश्य हो जाएगा। दो उपाय करिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः।
1: पंडित जी एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि चंद्रमा की राशि कर्क है, तो क्या कर्क का किसी और राशि से भी कोई संबंध है?
0: जी देखिए, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और जो चंद्रमा के गुण हैं, जो चंद्रमा का नेचर है, वो कर्क वालों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चंद्र ग्रह के अलावा कर्क राशि का दो और ग्रहों से संबंध होता है। एक ग्रह है बृहस्पति। जब बृहस्पति कर्क राशि से संबंध बनाता है तो सामान्यतः वो बहुत ताकतवर होता है और जीवन में बृहस्पति की शुभता बहुत ज्यादा आने लगती है। मंगल कर्क राशि में बेहद कमजोर होता है, तो मंगल जब कर्क राशि से संबंध बनाता है तो मंगल की जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो जीवन में दिखाई देती हैं। हालांकि मंगल का कर्क में बैठना आदमी को बहुत अच्छा डॉक्टर और खास तौर से बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। तो मोटे तौर पे देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जरूर हैं, लेकिन इस राशि का संबंध बृहस्पति और मंगल के साथ भी अवश्य होता है।
1: जिनका जन्मदिन 1 जून को आता है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 1 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में बदलाव भी होगा और सुधार भी होगा। धन की स्थितियां कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेंगी और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि क्या अलग अलग रंग के आसन पर पूजा करने के प्रभाव अलग होते हैं? देखिए, आसन का जो रंग है, जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं, लाल रंग का, काले रंग का, पीले रंग का, आसन का रंग एकाग्रता में बड़ी सहायता करता है और अपनी समस्याओं के हिसाब से आसन का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि साधना करने के लिए या पूजा करने के लिए लाल रंग का आसन सबसे ज्यादा उत्तम होता है।
1: और आइए जान लेते हैं 1 जून 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा।
1: गुडलक में वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करेंगे। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, साथ ही साथ रोज सुबह नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो और भी बेहतर होगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपका कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा हो और हल नहीं हो पा रहा हो तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करें, जितना कर सकें उतना अच्छा होगा। रोज सुबह और शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र सुबह शाम पढ़िएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके, या मंदिर में जहां भी हनुमान जी हों जा करके उनको लाल फूल चढ़ाइएगा। लंबे समय से चला आ रहा मुकदमा समाप्त होगा।
1: पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around the clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के नए सीडीएस का पदभार संभाल लिया है उन्होंने, और वो पाकिस्तान चीन मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। दिसंबर 2019 में ये पद बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान वाले बात ये जिम्मेदारी जो है संभालने वाले जनरल सुब्रमणि तीसरे अधिकारी बन गए हैं। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ ही थिएटर कमांड मॉडल लागू करने की जिम्मेदारी नए सीडीएस के कंधों पर होगी।
11: The
4: जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने तीसरे सीडीएस के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं और यहाँ साउथ ब्लॉक के इस लॉन में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया है। ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं उनके सामने उनका गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है और अब आज आधिकारिक तौर पर 31 मई को वो देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं। 30 मई को जो सीडीएस जनरल चौहान है उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अभी तक जनरल एनएसएस राजा सुब्रमणी एनएससीएस जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद है उस पर मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे और अब यहाँ पर इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद आप देख सकते हैं उनकी जो परिजन है जो सैन्य अधिकारी हैं वरिष्ठ उनसे जो मिल रहे हैं।
11: ये वो पल है जब जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्हें दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस हैं और उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली। पदभार संभालने के बाद नए सीडीएस ने कहा कि सेना के तीनों अंग देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट है।
12: I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach.
11: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन डिफेंस सिस्टम में बेहद अहम पद है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जल थल और वायु तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये 4-स्टार रैंक का ओहदा है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी चेयरमैन होने के साथ ही सीडीएस रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए का भी प्रमुख होता है। भारतीय सेना लगातार खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है। तीनों सेनाओं के समन्वय के लिहाज से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के सामने पहली चुनौती सेना में थिएटर कमांड मॉडल को लागू करने की होगी। ये प्रक्रिया बेहद अहम मोड़ पर है, इसे लेकर अलग अलग स्तर पर आकलन हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 साल में ये व्यवस्था हकीकत का रूप ले लेगी। मौजूदा व्यवस्था में भारत में तीनों सेनाओं की अलग अलग 17 कमांड हैं। किसी सैन्य अभियान के दौरान तीनों सेनाएं यूं तो मिलकर काम करती हैं, लेकिन उनकी कमान अलग अलग रहती है। थिएटर कमांड व्यवस्था के तहत किसी क्षेत्र या मिशन के लिए एक ही कमांडर होगा। इसके तहत सेना की तीनों यूनिट्स एक साथ काम कर सकेंगी। सीडीएस की भारतीय सैन्य तंत्र में बेहद अहम और निर्णायक भूमिका होती है। सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री को अहम जानकारी देने के अलावा सैन्य खरीद, लॉजिस्टिक और दूसरे मामलों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका बेहद अहम होती है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के पदभार संभालने के साथ ही वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है। इससे पहले कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल रहे थे। पदभार संभालने के बाद नई सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में पारा गिरने की वजह से सैलानी खुश हैं, तो वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में मौसम की बाधा के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त है।

खुशनुमा मौसम के बीच चार धाम यात्रा भी चरम पर है। केदार घाटी में भक्तों का जोश हाई है। बद्रीनाथ धाम में भी अब तक करीब 7.5 लाख भक्त दर्शन पूजन कर चुके हैं।

0: लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाला जून का महीना है, ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बद्रीनाथ धाम का रुख कर रही है। ऐसे में बद्री विशाल के दर पर इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। जहां मई के महीने में इस बार 7.5 लाख का आंकड़ा पार हो रहा है, वहीं आने वाला जो जून का महीना है जब सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, जब अमूमन मुख्य सीजन ही जून का माना जाता है, ऐसे में अब जून के महीने में और भी अधिक जो यात्रियों की भीड़ है वो बद्रीनाथ धाम में बढ़ेगी और एक नए रिकॉर्ड इस बार, क्योंकि पिछले वर्षों के जो सारे रिकॉर्ड हैं इस बार जून पे सबसे मुख्य नज़र होगी कि किस तरह से जो यात्रा है वो रिकॉर्ड तोड़ती है, कैसी स्थिति होती है, ये सब देखना होगा। वहीं उत्साह जो है श्रद्धालुओं का वो लगातार बना हुआ है, हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहा है।
1: वहीं बर्फबारी के बीच श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था मौसम की बाधा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान सैलानियों की सहूलियत पर भी ध्यान रखा जा रहा है।

0: तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार बारिश जारी है, जिस बारिश की वजह से तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है। हालांकि जो भारत देश के और साथ में विदेश से जो विभिन्न स्थानों से जो यहां पर तीर्थयात्री रुक किए हुए हैं, चूंकि वो मैदानी इलाकों में है, पारा काफी वहां पर चढ़ा हुआ है, उसके चलते यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ये उन यात्रियों के लिए सुकून भरी बात हो सकती है।
1: जाहिर है चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीतिमाना घाटी समेत तमाम पर्यटन स्थल पर इस समय भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मैदानों पर तपिश से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और तमाम हिल स्टेशन से इन दिनों सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। इस हॉलीडे सीजन खूबसूरत वादियों में टूरिस्ट की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिली।

0: मनाली की इन खूबसूरत वादियों में, इन नजारों में हर नजर मानो गुम हो जाना चाहती है। हर चिंता रंजोगम भूलकर सैलानी इन मनमोहक वादियों की सैर कर रहे हैं। बारिश के बाद यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है और दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं।
1: दिल्ली का अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर। अभी जो हम आए हैं, अभी रूम लिया, चेक इन कर रहे हैं, उसके बाद और एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है।
2: मनाली का वेदर काफी माइंड ब्लोइंग है, इतना मस्त है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जैसा है। रियली बता रहा हूँ, जरूर आना। जिसको भी अगर एक बार घूमना है, अगर स्वर्ग लाइक देखना है, तो मनाली आना जरूरी।
0: अब पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की बाहर देखिए। यहाँ हर तरफ खूबसूरत मौसम का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का नजारा देख ये लोग मैदानों की तपिश भूल गए हैं।
3: अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
4: यहाँ शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए, बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का और काफी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज्यादा वेदर अभी समर का है 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए और हम ट्रैकिंग में जाने वाले है।
0: शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। अकेले मई के महीने में 7,80,000 के करीब वाहन शिमला पहुंचे। बाहर से आ रहे सैलानियों की भारी संख्या को देखते हुए इस बार पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है और शहर को 5 सेक्टर में बांटा है। साथ ही जगह जगह जवान तैनात किए गए हैं। वहीं श्रीनगर की डल झील पर सैलानियों की बहार है। दूर दूर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और शिकारा पर डल झील की सैर का आनंद ले रहे हैं। यहां के खूबसूरत नजारों ने इन सैलानियों का दिल जीत लिया है।
5: इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इधर बर्फ भी मिला हम लोगों को। इधर श्रीनगर में आए तो बहुत अच्छा मौसम था, शिकारा राइड भी किए और हाउस बोट में भी स्टे किए। हाउस बोट जो था वो बहुत मतलब 4 स्टार कैटेगरी में था, बहुत अच्छा था। इधर का वेदर बहुत अच्छा है, सोनमार्ग, गुलमर्ग, जीरो पॉइंट, पहलगाम, ये सब बहुत अच्छे जगह हैं।
0: चाहे होटल व्यवसायी हो या दूसरे स्थानीय कारोबारी, इन हिल स्टेशन पर सैलानियों की बढ़ती तादाद से इनके चेहरे खिल उठे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सैलानियों की बहार बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सूर्य देव का कौन सा शुभ योग अच्छी वाणी देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग घर से दूर ले जाकर सफलता देता है? सूर्य देव का कौन सा शुभ योग राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचा देता है? कौन से हैं सूर्य के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
9: Thank God I get to wake
8: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Good news today.
6: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
14: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1, टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली से।
15: लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी आरसीबी अहमदाबाद में हुए ग्रैंड फिनाले में गुजरात को 5 विकेट से दी मात। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर हुआ जश्न।
14: वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट। सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप, 5 अवार्ड, 35 लाख का इनाम और टाटा सियेरा।
15: पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही अन्नपूर्णा भंडार योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की भी शुरुआत।
14: बाबा महाकाल के दरबार में फरीदाबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 9.5 किलो चांदी का मुकुट और छत्र। देश की खुशहाली के लिए मांगा वरदान।
15: बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक 7.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश आए। बर्फबारी के बीच में श्री हेमकुंड साहिब में भी आस्था भारी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
14: उम्मीदों भरे पहर की खुशखबरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
15: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए गुड न्यूज।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: तो देखिए, शुभ समाचार की शुरुआत आईपीएल चैंपियन के साथ होगी। इस बार खिताब आरसीबी के नाम रहा। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से करारी शिकस्त दे दी। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था, जिससे बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। आरसीबी की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका विराट कोहली की रही, जिन्होंने 75 रनों की शानदार पारी खेली। और क्या कुछ खास रहा मैच में, आगे आपको बताएंगे।
15: तो वही बात कर लेते हैं वैभव सूर्यवंशी की, जिन पर इनाम की बरसात हुई। वैभव को पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन के लिए ऑरेंज कैप मिली है। इसके अलावा भी उन्हें कार समेत कई तोहफे मिले हैं, ये क्या क्या रहे बताएंगे आगे आपको।
14: बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए वहीं पर इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने लंदन में भव्य परेड निकाली। चैंपियंस लीग फाइनल में हार के बावजूद फैंस ने अपनी पुरुष टीम का स्वागत भी किया। इस जश्न में आर्सेनल महिला टीम भी शामिल थी, जिसने सीजन की शुरुआत में अपने इतिहास में पहली बार फीफा महिला चैंपियंस कप जीता था। कैसा रहा ये पूरा जस्ट, आगे आपको दिखाएंगे।
15: उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह भरपूर दिखाई दे रहा है। गंगोत्री से यमुनोत्री तक, बद्रीनाथ से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई। क्या कुछ रंग यहां पर देखने को मिले दिखाएंगे आपको।
14: यहाँ देखिए, इसके अलावा आपको मेघालय भी लिए चलेंगे, जहां पर उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल समेत कई देशों के सैनिक शामिल हुए। तो इसके बारे में भी पूरी आपको तफ्तीश जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
15: आईपीएल के 19वें सीजन के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। आरसीबी ने जीटी की ओर से जीत के लिए मिले 156 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 75 रन की नाबाद पारी खेली।
14: आईपीएल में बेंगलुरु की दूसरी जीत पर कर्नाटक के कई इलाकों में फैंस ने जमकर जश्न मनाया, जहां पर हुबली में बेंगलुरु के फैंस ने सड़क पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की। वहीं पर बेंगलुरु की जीत के बाद कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई।
15: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 27 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई।
14: अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को अर्पित होने वाले भोग प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता को आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। खाद्य सुरक्षा और औषधीय प्रशासन विभाग ने मंदिर परिसर स्थित सीता रसोई का निरीक्षण करने के बाद इसे FSSAI का आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया है।
15: महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर में एक बार फिर से भक्तों की अटूट आस्था का नजारा देखने को मिला। दिल्ली के एक श्रद्धालु ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद साईं बाबा के चरणों में 15 लाख रुपए मूल्य का असली हीरो से जड़ा सोने का ब्रोच और 9 लाख रुपए नगद चढ़ावा अर्पित किया। भक्त ने अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा जताई है।
14: महाराष्ट्र के अकोला में अहिल्या देवी होलकर की

0: महाराष्ट्र के अकोला में अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। अहिल्या देवी की प्रतिमा की स्थापना और पूजा करने के साथ रैली की शुरुआत हुई, जहां पर ढोल ताशों के साथ जय मल्हार के जयघोष से गुंजायमान हुआ। साथ ही पारंपरिक लेजियम की प्रस्तुति के साथ शोभा यात्रा निकाली।
1: धुरंधर की शूटिंग से चर्चा में आई लेकी मस्जिद गली अब धुरंधर गली के नाम से पॉपुलर हो गई है। फिल्म की शूटिंग के बाद से यहां की रौनक काफी बढ़ गई है। ले में धुरंधर गली देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं, यहां के माहौल का मजा लेते हैं। साथ ही धुरंधर गली में टी स्टॉल पर लोग तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं।
0: उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ की सतर्कता और एक्शन से उफंती नदी में फंसे 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। चंपावत के श्री रीठा साहब गुरुद्वारा में प्रसिद्ध जोड़ मेले में श्रद्धालु जा रहे थे। बारिश के बाद अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण वो फंस गए।
1: साउथ सुपरस्टार सूर्या एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन की फिल्म तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करुप्पू इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। रिलीज के पहले दिन से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। 15 मई को सिनेमाघर में रिलीज हुई फिल्म करुप्पू ने दुनिया भर में मात्र 15 दिन में 300 करोड़ की पार की कमाई तय कर ली। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी से इसके स्टारकास्ट मेकर्स काफी ज्यादा खुश हैं।

0: 20 years. Always on Love for a RCB. सचिन को लिखो भगवान है हमारे लिए भगवान. हम बहुत खुश है कि आरसीबी दोबारा जीता. विराट कोहली.
1: तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे विराट जीत की. शगुफ्ता मैच देखा आपने?
2: मैंने मैच देखा. व्हाट एन अमेजिंग मैच. देखिए विराट के साथ साथ मुझे लगता है जिनकी फोटो लगी है ना रजत को भी इक्वल यहाँ पे क्रेडिट जाता है.
1: बिल्कुल जाता है. और देखिए अहमदाबाद में कल किंग कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर ऐलान कर दिया कि वही ट्रॉफी लाया हूँ. चैंपियन आरसीबी की जीत का पूरा एक्शन आपके सामने होगा. टीम और फैंस के सेलिब्रेशन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे. लेकिन पहले जरा टीम बेंगलुरु के अहमदाबाद में विराट धमक देखिए. छोटी सी झलक देखिए किस अंदाज में किंग कोहली ने लगातार दूसरी बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया.
3: He finishes off in style with a six. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. Champions now of 2026.
2: हालांकि देखिए इस जीत के बहुत सारे रीजन रहे हैं लेकिन एक सॉलिड रीजन जो हर किसी ने कहा है कि दिस टीम दिस आरसीबी टीम हैव प्लेड लाइक विनर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन. ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सीजन में है ना. और 2025 और 2026 दो सीजन उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं. अहमदाबाद में ही ये नाम किए हैं. अब विक्ट्री किंग साइज है. कल अहमदाबाद में हुआ फाइनल मुकाबला आपने देखा है. आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल सीजन 19 की ट्रॉफी अपने नाम की. विराट कोहली इस जीत के महानायक रहे. उन्होंने महज 42 गेंदों में 75 रन की नॉट आउट पारी खेली जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए. यूं तो देखिए विराट पूरे सीजन ही छाए रहे. पूरे टूर्नामेंट में विराट के बल्ले से 675 रन निकले लेकिन फिनाले में रन मशीन ने ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई झूमने लगा. फाइनल मुकाबले में विराट ने आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज 50 लगाई और ठीक उसी अंदाज में छक्का लगाकर आरसीबी को चैंपियन बनाया जैसे एमएस धोनी ने 2011 के वन डे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था. देखिए फाइनल में किंग कोहली के जलवे की ये एक झलक.
3: Smashed on the onside. There he goes again.
4: Before that.
3: There he goes again. And that's not it.
4: Investing.
3: Just passed and it will be 50. They'll go there for 4.
1: और देखिए इस महाविजय के बाद किंग कोहली ने कहा कि सभी बिना किसी दबाव के खेले इसी वजह से पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन रहा और खिताबी जीत भी दोहराई गई.
5: How was it different this year compared to last year?
6: Well, I said to a few of the boys that it doesn't feel like the same pressure as last year. We knew what kind of ability we have in the group. We topped the table. There's a reason why we got here first. And we just said one thing. If we stick to our cricket, if we execute our plans, we are the best team in the comp. And there's a reason why we've done well so far in the group stage. We ended up topping the league stage. And just the skill sets we have, the maturity, the composure.

0: The guys just shown through again tonight, and it was a clinical performance.
1: क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो था ही, लेकिन ये टीम जो थी इसमें सारे के सारे विनर्स थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस टीम को जिताने के लिए और सीजन को जिताने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इस महाविजय के बाद जश्न ना हो, सेलिब्रेशन ना हो, विराट डांस ना करे, अनुष्का डांस ना करे। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट डांस का वीडियो शेयर किया, जिसमें किंग कोहली अपनी वाइफ अनुष्का के साथ जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
2: बिल्कुल, और देखिए साथ ही साथ आपको बता दें, डांस फ्लोर पर धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये देखिए।

0: तो देखिए आरसीबी का ट्रॉफी जीतना असली भी बहुत इमोशनल था। बैक टू बैक लगातार दो ट्रॉफी जीतकर टीम बेंगलुरु ने इतिहास रच दिया। इसी के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में अब शामिल हो चुकी है। इन दोनों ने भी बैक टू बैक खिताब जीता था। आपको याद होगा, जाहिर सी बात है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा वैभव। देखिए, जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ी ने देर रात सेलिब्रेशन किया। वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं ट्रॉफी के साथ। कृणाल पांड्या झूमते नाचते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें आपको सामने रखते हैं।

0: अब देखिए डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया। खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन इस टीम ने किया है। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया।
1: बिल्कुल शोभ, तो देखिए गुजरात ने पहले खेलते हुए आपको बता दें 156 रनों का टारगेट दिया था, जिसे बेंगलुरु ने आसानी से चेस कर लिया। आरसीबी की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका रही विराट कोहली की, जिन्होंने टीम को शानदार जीत दिलाई।

0: नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर अहमदाबाद की सड़कों तक आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से रोशन हो रहा था, तो ढोल नगाड़ों की थाप पर क्रिकेट फैंस झूम रहे थे। गुजरात टाइटंस पर आरसीबी की विराट विजय का ये वो जश्न है जो सालों साल फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका देता रहेगा। आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतिहास रच दिया। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया।
1: सबको सुबह से इस बात का यकीन था कि अगर कोई टीम इस मैदान पर टाइटल जीत सकती है वो है आरसीबी। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर लगभग 130,000 के आसपास के फैंस उमड़े थे इस मैच को देखने के लिए, जिसमें से लगभग 100,000 लोग आरसीबी के समर्थक थे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आरसीबी का असली मैदान शायद बेंगलुरु नहीं, अब अहमदाबाद के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जब जब अहमदाबाद के अंदर में फाइनल मैच होता है और वहां पर होती है आरसीबी, सामने चाहे कोई भी टीम हो, विजेता आरसीबी होती है। ये जस्ट इस बात की गवाही है और इस मैदान को हमेशा याद रखा जाएगा कि पहली बार एक ऐसी टीम निकल के आई जिसके पास ट्रॉफी का सूखा था, जीत ही नहीं पा रहे थे, और अब लगातार बैक टू बैक 2 ट्रॉफी इस टीम ने अपने नाम कर ली है।
0: आरसीबी की ये लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीता। चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, मुंबई ने 2019 और 2020 में खिताब पर कब्जा जमाया था, तो आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
2: पटिदा के धुरंधर है, सब बंदे धुरंधर है, विराट कोहली देख लो, फिल शॉट देख लो, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सब देख लो, सब धुरंधर है, एक से एक बढ़कर धुरंधर है। और आरसीबी को जिताने में सबका योगदान है, बड़ा योगदान है। गुजरात वाला सब चकली है, चकली चकली कभी बाज ना बना, आ तो आरसीबी बोला बाला मार दिया।
0: रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने टीम की जीत की पटकथा तो शायद तभी लिख दी थी जब गुजरात टाइटंस ने तीसरे ओवर में शुभमन गिल का विकेट खोया, और फिर विकेटों के पतन का सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और हर विकेट के साथ गुजरात टाइटंस गेम में पिछड़ते चले गए। 100 रन से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट होकर पवेलियन जा चुकी थी। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाकर 45 रन ही बनाए। जीटी की पारी का पहला सिक्स 13वें ओवर की चौथी गेंद पर आया। जीटी ने 5 विकेट महज 99 रन पर ही गंवा दिए। 15 ओवर के बाद जीटी का स्कोर 5 विकेट गंवाकर 105 रन तक ही पहुंचा। वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले 37 गेंद में 50 रन की पारी खेली। इस तरह 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक पहुंचा। इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिक सलामडार ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रसिक सलामडार ने 4 ओवर में महज 27 रन देकर 3 विकेट लिए। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 23 रन खर्च कर एक खिलाड़ी को पवेलियन पहुंचाया। 155 रन का पीछा करने उतरी बेंगलुरु ने धुआंधार शुरुआत की और 5वें ओवर पूरे होने से पहले ही 62 रन ठोक डाले। हालांकि इसके बाद आरसीबी के विकेट भी नियमित अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली ने अकेले मोर्चा संभाल रखा था। विराट कोहली ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रनों की पारी खेली और छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। आरसीबी ने 12 गेंद शेष रहते हुए गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी का जलवा देखने को मिला। लीग राउंड में पॉइंट्स टैली में टॉप पर रहे, सबसे पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, सबसे पहले फाइनल में एंट्री पाई और फाइनल में एक तरफा जीत दर्ज की।
4: बिल्कुल, देखिए विनिंग टीम के यही संकेत होते हैं, लिहाजा टशन दिखाना तो इसके बाद बनता है। देखिए टीम बंगलुरु के वायरल टशन की ये एक झलक।
5: To do it twice. It's time to level up.

0: में मजा तो बहुत आया मैच देख कर, है ना। ऐसा मैच बहुत देर के बाद देखने को मिलता है,
1: काफी इमोशनल था शगुफ्ता, बैक टू बैक जीतना, और जो डाई हार्ट फैन है विराट कोहली के वो तो कल इमोशनल,
0: वो तो इमोशनल भी हो गए। इमोशनल के साथ उन्होंने बाद में क्या किया है वो भी आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई एम श्योर देखी होंगी। अब देखिए आरसीबी की शानदार जीत पर पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी टीम को बधाई दी है, साथ ही उन्होंने ऑरेंज कैप होल्डर वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की और कहा कि वैभव टीम इंडिया में जगह पाने के पूरे हकदार हैं।
2: सर एक मैच है या पूरी लीग में, ये पूछो कि साल कितना मजा आया, तो ये साल ये दोनों टीमों ने खूब मजा दिया, लेकिन एक टीम ही जीत सकती थी। अगर दुख होता है जिस टीम को आपके साथ बैठे थे वो नहीं जीती, लेकिन जो टीम जीती है उसके लिए खुशी होती है, तो इंडिया की टीम है सारी।
3: वैभव सूर्यवंशी नो डाउट आउटस्टैंडिंग रहे, कैसे आप देख रहे हैं सर उन्हें आने वाले टाइम के लिए?
2: भाई इससे अच्छा क्या खेलेगा आदमी, मैं तो चेयरमैन साहब देखे थे, मैं तो कहा चेयरमैन साहब ये अभी टीम में नहीं डालोगे तो कब डालोगे? एक बात बताओ, उम्र हो या ना हो इससे अच्छा क्या खेलेगा।
3: और सर सबसे पहली बात, जीटी कहां इस बार चूक गई आपको लगता है कि
2: अगर इनको पता होता या मुझे पता तो वो चूक थोड़ी होती है।
1: और देखिए वहीं पर पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आरसीबी की एक तरफा तारीफ की, साथ ही साथ क्रिकेट फैंस के उत्साह को भी सराहा।
4: सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को बधाई देता हूँ, आरसीबी को बधाई, बैक टू बैक चैंपियन बने और शायद यही क्रिकेट की लोकप्रियता है कि गुजरात का स्टेडियम हो, गुजरात की टीम हो और स्थानीय टीम के साथ साथ आरसीबी के भी खूब प्रशंसक यहाँ पर थे। मुझे लगता है यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है कि आप जीटी की होम ग्राउंड में खेल रहे हो लेकिन आपको समर्थन पूरा मिल रहा है, तो अच्छी क्रिकेट के प्रशंसक हर जगह पर है और ये क्रिकेट की बड़ी जीत है आरसीबी के साथ साथ।
0: अब देखिए जाहिर सी बात है हर कोई इस टीम की तारीफ कर रहा है। इससे पहले अजय जडेजा ने जो बाइट दी ना उसमें उन्होंने जो चीज कही है वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है कि आप सामने वाली टीम को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। आरसीबी के इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जो पहले भी आपको बता चुके हैं, जिन्होंने 42 गेंदों पर धुआंधार 75 रन जड़कर टीम को जीत दिलाई और अंत तक नॉट आउट रहे। खास बात यह रही कि विराट के सामने दूसरे छोर पर विकेट एक के बाद एक गिरते रहे, लेकिन विराट ना सिर्फ डटे रहे बल्कि पूरी ताकत से प्रहार भी करते रहे।
1: और देखिए आरसीबी की जीत के बाद हम आपको बताते हैं अहमदाबाद की सड़कों पर फैंस का जबरदस्त जश्न देखने को मिला, पहले वो दिखाते हैं आपको।

0: ही नारा है, भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा और हर जुबान पर बस एक ही नाम, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशबाजी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिसमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं इस सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिसने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी विराट कोहली।
5: आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। महज 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन ठोक डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पडिक्कल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कुणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर टटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी सबसे तेज आईपीएल 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा, तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था। लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
6: शानदार विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको जीत मिली है।
7: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
8: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
7: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
9: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है, बहुत मस्त खेला है।
7: लास्ट में जो सिक्स मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
9: बहुत आइकॉनिक, मस्त था।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तब पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ साथ आक्रामकता का जोरदार प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन ठोक कर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेज मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: अब उस प्लेयर की बात कर लें हम जिसके नाम से ये सीजन याद रखा जाएगा। आईपीएल पुरस्कारों में राजस्थान के 15 साल के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दबदबा जबरदस्त देखने को मिला। वैभव पर इनामों की बारिश हुई, उन्हें 5 अवार्ड दिए गए। इस दौरान वैभव को 40 लाख रुपए भी दिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें वैभव को एक कार बतौर पुरस्कार दी गई और वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर अब बनी और साथ ही साथ आपको बता दें वैभव ने ऑरेंज कैप भी हासिल की पूरे टूर्नामेंट में। वैभव ने 16 मैच में 776 रनों की जबरदस्त पारी खेली है। वहीं पर कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 5,00,000 रुपए दिए गए तो गुजरात के कजिसो रबाड़ा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। ऐसे में उन्हें 10,00,000 की प्राइज मनी भी दी गई।
11: चलिए क्रिकेट से थोड़ा सा स्विच करते हैं, फुटबॉल के क्रेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने लंदन में भव्य परेड निकाली। चैंपियंस लीग फाइनल में हार के बावजूद फैंस ने अपनी टीम का स्वागत किया। इस जश्न में आर्सेनल महिला टीम भी शामिल थी, जिसने सीजन की शुरुआत में अपने इतिहास में पहली बार फीफा महिला चैंपियंस कप जीता था।
10: और इसी के साथ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए चारधाम में आस्था पर।
12: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू'ल फाइंड द राइट स्टेशन। Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Hamari zimmedari. Isiliye, khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक वन, टॉप थ्री रैंक होल्डर्स दिल्ली से।
3: लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी आरसीबी अहमदाबाद में हुए ग्रैंड फिनाले में गुजरात को 5 विकेट से दी मात। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, रात भर हुआ जश्न।
2: वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप, 5 अवार्ड्स, डाकों का इनाम, गिफ्ट में टाटा सियेरा।
3: पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की।
2: बाबा महाकाल के दरबार में फरीदाबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 9.5 किलो चांदी का मुकुट और छत्र, देश की खुशहाली के लिए वरदान।

और चलिए उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। सभी धामों में भक्तों की अच्छी खासी रौनक देखी जा सकती है। यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, जबकि वहां से गंगोत्री की तरफ भक्त बढ़ते जाते हैं। इसी तरह केदारनाथ में भक्तों का तांता लगा है। सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ यात्रा को लेकर है। यहाँ अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं। यहाँ भी आस्था भक्ति का नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन पूजन कर चुके हैं।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। बाबा केदार के द्वार हो या बद्री विशाल का धाम, गंगोत्री की पावन घाटी हो या यमुनोत्री की ऊंची चोटियां, हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आस्था के आगे कोई थकान नहीं, कोई दूरी नहीं। भगवान बद्री विशाल के धाम में श्रद्धालुओं की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह दर्शन के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा है, बारिश हो रही है, रास्तों में घंटों जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार अपने पूरे चरम पर चल रही है। जहां सड़कों पर जाम है, वहीं हर तरफ यात्रा मार्गों पर इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 7,50,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।
0: वहीं मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करने की सलाह भी दी जा रही है। केदारनाथ धाम में हुई लगातार बारिश के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा रोक दी गई थी।
2: यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहां पर हैं वहां थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो कि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभाल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
0: बारिश के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ धाम में तैनात अधिकारी कर्मचारियों सहित सुरक्षा जवानों को अलर्ट मोड पर रहने और यात्रियों की हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। प्रतिकूल मौसम के बीच भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों धामों की यात्रा कर रहे हैं। छाता, रेनकोट और गर्म कपड़ों के सहारे श्रद्धालु कठिन मौसम का सामना करते हुए दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। दोनों धामों में अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: 42 दिनों में रिकॉर्ड तीर्थयात्री यानी कि 9,05,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए गए हैं। हालांकि अब गंगा दशहरा के बाद जो यात्रियों की संख्या है उसमें गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है।
0: वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ को हटाकर यहां यात्रा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। एसडीआरएफ गुरुद्वारा प्रबंधन पुलिस की टीम लगातार यात्रियों की मदद में लगी हुई है। चाहे यात्रियों को पकड़ कर रास्तों को पार करवाना हो या रास्तों से बर्फ हटाने का काम हो, क्योंकि हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण यहां कभी जमकर बर्फबारी तो कभी मौसम एकदम सुहाना हो रहा है। इस बीच यात्रा निरंतर जारी है। बारिश और ठंड के बावजूद चारों धामों में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की ये भीड़ साबित कर रही है कि आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चमोली से कमलनंद सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर बटुक ब्राह्मणों ने अलकनंदा और भागीरथी के पावन संगम तट पर 108 बार सामूहिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से आरती की गई, बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जुटे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसमें किया गया। सामूहिक रूप से अलकनंदा भागीरथी में ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जुटे, 108 बार सामूहिक पाठ किया गया।
4: चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास नीति अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के करीब 1000 एथलीट शामिल हुए, जिसमें 75 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दूरी की हाई ऑल्टीट्यूड रेस में हिस्सा लिया। इस आयोजन से लोकल उत्पादों को काफी बढ़ावा मिला, साथ ही अलग अलग जगह से आए लोगों को लोक संस्कृति के रंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिले।
3: देखिए, सभी जानते हैं कि मैदानों में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इससे बचने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों शिमला मनाली घूमने पहुंच रहे हैं। अकेले मई में 7.5 लाख से ज्यादा सैलानी शिमला पहुंच चुके हैं और आपको बता दें जून में और भी ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा ट्रैफिक जाम से पर्यटकों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए।
0: मैदानी इलाकों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शहरों की भीड़ और शोर से दूर शिमला भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में सैलानी यहां के खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से यहां पहुंच रहे हैं। शिमला का मॉल रोड तो इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भर चुका है। प्री मॉनसून बारिश के बाद शिमला में सुहाने मौसम के चलते पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग पहाड़ों के मौसम को महसूस कर रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। कोई गुजरात से आया है तो कोई पंजाब से, कोई दोस्तों के साथ आया है तो कोई परिवार के साथ। हर किसी का मन यहाँ के हसीन वादी में आकर मानो खिल सा गया है।
5: मैं बोलना चाहूंगा वेदर बहुत प्रीटी है। इट फील्स क्या बोलते हैं, हम अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी देख पा रहे हैं कि वीकेंड है तो क्राउड भी बहुत बढ़ गया है इधर, सो सब फैमिली के साथ आए, हम भी हमारे फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ आए।
6: यहाँ शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए। बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का और काफी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज्यादा वेदर अभी समर का है 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए।
7: द क्लाइमेट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, लाइक इट्स सो कोल्ड एंड आई एम लविंग इट बिकॉज बैक एट होम इट्स वेरी वेरी हॉट एंड दिस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। हम अभी कल ही आए हैं एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम, वी हैड रियली गुड फूड, हिमाचली फूड, वी आर गोइंग टू ट्राई इट टुडे एज वेल एंड या दिस इट्स बीन रियली गुड।
0: आमतौर पर हिमाचल में पर्यटन सीजन जून के पहले हफ्ते में चरम पर पहुंचता है, लेकिन इस साल उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की वजह से सैलानी पहले ही पहुंचने लगे हैं। शिमला में सैलानी किस कदर उमड़ रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई महीने में 7.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की यहाँ एंट्री हो चुकी है।
8: ट्रैफिक ना ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था, जो होना चाहिए था, जो पिकनिक की जगह होता ही है आम वैसा था।
9: सीजन चल रहा है, थोड़ा मोटा तो ट्रैफिक चले गई।
0: सैलानियों की भारी तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी शहर को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए शिमला शहर को 5 अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंटरसेप्टर वाहन भी लगातार सक्रिय है।
10: कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो हमारे क्विक राइडर्स रहते हैं मोटरसाइकिल पे, वो लगा रखे हैं, जो कि 32 के आसपास डिप्लॉयड हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करें यदि कोई भी ट्रैफिक जैम कहीं पे होता है, एंड हमारे एक्सपीरियंस में दे आर वेरी इफेक्टिव।
0: इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रूट भी डायवर्ट किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में भी आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे, जिससे कि सैलानियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो GNT भी आपसे आपकी आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपकी उन वीडियोस को GNT पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हैं। यहां तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने आपके लिए भेजा है।
11: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला कापड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहां तक पहुंचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहां पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी, गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रॉन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों ना इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
3: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, तो कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। भारतीय सेना तेजी से स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुटी हुई है। पाथू मोनो रेल सिस्टम इसकी ताजा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। ये सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में सामान ले जाने में सक्षम है।

ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में, हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है। ये पाथू मोनोरेल सिस्टम है जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहाँ ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है, लिहाजा घोड़े खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन, हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है, लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: चलिए इंस्टा स्टोरी आपको दिखाते हैं। अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा स्टोरीज और रील्स सिखाने वाले हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर आपको हंसाएंगे गुदगुदाएंगे। देखिए कृष्णा अभिषेक की ये फनी वाली इंस्टा स्टोरी।
1: भाई यार कब से वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ कि वेट लॉस हो जाए।
2: आपका दिनचर्या कैसा होता है, मतलब करते क्या हो सारा दिन?
1: भाई देखो सुबह सुबह देखो 9 बजे एक तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, पोहा उपमा कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद 2 बजे लंच करता हूँ, 5 रोटी दाल सब्जी कुछ खा लेता हूँ, शाम को उपमा या पोहा जो बच जाता है वो शाम को खा लेता हूँ, रात को 9 बजे अपना डिनर हो जाता है।
2: बहुत सिंपल है, आपको साइकिल ब्रेक करनी है।
3: चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो।
4: बहुत भूख लगी है।
5: ओ कृष्णा ब्रो।
4: अरे किको भाई आ गए, इसको छुपा दे छुपा दे छुपा दे।
5: क्या बात है, दोनों साथ में आ जाए। ओ पिज़्ज़ा शीज़ा खाया जा रहा है।
6: ये हमारा नहीं है।
4: हाँ ये जब हम आए थे ना शूटिंग पे तो सुबह से यहीं पड़ा हुआ है ये।
1: हाँ। ओ अच्छा हुआ मुझे टाइम पे बता दिया, वरना मैं इसे खाने ही वाला था।
4: और कुछ मंगाए फिर खाने के लिए?
0: और चलिए शुभ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही।
7: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
8: सास बहू और बेटियां में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
9: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
10: Swing and a foul out of play off to the left.
9: Big 12 Radio.
11: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
9: Talk Sport.
12: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
9: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
13: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी

धन संपत्ति और यश अर्जित करते हैं। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग हो ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि के प्रयोग से बचना चाहिए। सूर्य के दूसरे राजयोग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं। कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है, लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। और सूर्य अगर पापक्रांत नहीं होगा, सूर्य पर अगर पाप प्रभाव नहीं होगा तो वाशी योग बहुत अच्छा होगा और ये ज्यादा शुभ फल आपको दे पाएगा। अगर किसी कुंडली में वाशी योग है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और वाशी योग होने पर व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत कंफर्ट में, बहुत लग्जीरियस लाइफ में रहता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या बहुत सारी यात्राएं करता है। और जिनकी कुंडली में वाशी योग होता है ऐसे लोग घर से दूर जा करके जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इस योग के होने पर अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य के तीसरे राजयोग की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र।

के बारे में अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रिश्तों में समस्या आ सकती है, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने आपको सूर्य के दो बड़े शुभ योगों के बारे में बताया, वेशी वाशी। अब तीसरा शुभ योग कौन सा है? सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पहले खाने में भी ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो तो योग बनता है उभयचारी। लेकिन सूर्य के पहले या बाद वाले खाने में चंद्रमा, राहु या केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर सूर्य के पहले खाने में और बाद के खाने में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह बैठा होगा तो उभयचारी योग बनेगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और जिनकी कुंडलियों में उभयचारी योग होता है ऐसे लोग अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति हर समस्या से बाहर निकल आता है, हर समस्या उसकी दूर हो जाती है, किस्मत का साथ और भगवान की कृपा दोनों मिल जाती है। उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़ा पद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में उभयचारी योग है और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उभयचारी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे।

0: अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य के वैसे बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन ये तीन प्रमुख राजयोग हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। इसके अलावा सूर्य के दो कामन शुभ योग भी हैं। एक ये है कि अगर कुंडली में सूर्य आपके दशम स्थान में बैठ जाए तो सूर्य दिग्बली हो जाता है, जीवन में शक्ति, साहस और मान सम्मान प्रदान करता है। दूसरा एक और शुभ योग है कि अगर कुंडली में सूर्य बुध के साथ बैठा हो तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है, और बुधादित्य नामक राजयोग से व्यक्ति करियर में सफल होता है, जीवन में मान सम्मान पाता है, अपने परिवार के लिए बड़ा परिश्रम करता है और परिवार के लोगों को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। तो आज हमने सूर्य के शुभ योगों की बात करी, अब हम जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी सूर्य देव की अशुभ दशा चल रही हो तो हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ या आटे का दान करें या गेहूं की रोटी बनाएं, उसमें गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा निरंतर करेंगे तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जून 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
10: सास बहू और बेटिया में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

अद्भुत हैं हमारे महादेव, इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया महाकालेश्वर हम गए इसलिए ये कथा नहीं बताई। भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या महत्व है? भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सियाराम। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जरा और जोर से बोलो। भैया वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है? आहा हा, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? नारद जी। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसा कर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हम तुम्हें जानते हैं, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमाए। पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, महाराज मैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या? बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो? पार्वती जी बोले, बताओ कहाँ रहती हमारी सौतन। नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो, अपन तो जय चले श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे, और कोई भी भाई धर्म पत्नी कोई भी हो, सौतन की बात आ जाए आग लग जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, चाहे कोई मजाक में भी कह दे आग लग जावे। बोलो जय हनुमान जी की। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम राम राम राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। पार्वती जी बोली, हमारी सौतन से करो सीता राम, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले, क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना वंदन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आज तक। भोले बाबा ने कहा, ये कौन सी खाज फंस गई। भोले बाबा बोले, देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे? पार्वती जी धीरे से हिला के बोली, हाँ आए तो थे। शंकर जी बोले, तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो? पार्वती जी बोली, महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले, सही बात है। पार्वती जी बोली, महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं। शंकर जी बोले, बताएंगे। और कोई प्रश्न? हाँ महाराज, ये जो भस्म है ये किसकी है? अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने, बैठो देवी जी।
आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले, देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, हमारा ये मुंडों की माला किसकी है? बोले बाबा, बोले ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंड हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली, महाराज रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भय। क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा, बोले देवी जी, हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली, महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा, बोले दो लोगों की। कौन कौन की? एक, बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारा देह, तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा, राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा, बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं नहीं नहीं नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज, कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया, बोले बाबा, बोले देवी जी, वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा भैया, वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई,

कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या। कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों,

पाप रहते उन्हें लगने लगता, अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या। एक काम करो, इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ, सबसे ज्यादा बुरा ना मानना, इंदौर के पागलो तन से पूजा कर रहे आज के डेट में लोग,

पूजा कर रहे, मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। अबे कहते गुरुजी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है भाई, तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी। बोलो जय बजरंग बली की। उपाय क्या है? मन से पूजा करने

0: अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दस रथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, दस रथ हैं और दस रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी दसों इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई। अमर कथा में पार्वती जी बीच में सो गईं, तो जो तोते का बच्चा ऊपर बैठा था उसके कानों में अमर कथा गई तो चेतनाएं आ गई, और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गईं तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दई। ओ हो हाँ, जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंग बली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो। मैं घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में तीन घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है? बोले घर में रहो सो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरु जी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। बोलो सीताराम।
1: सीताराम।
0: तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, वह सुख यानी तो तोता बीच बीच में जवाब देने लगा। जब बीच बीच में जवाब देने लगा, ओ हो हो, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे माता पार्वती। पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काव देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी, जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आ हा हा, जब भोले बाबा ने धर ध्यान देखो भोले बाबा, जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया, दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी, इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेदव व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान, उसी समय उनको जमुहाई आई, और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेदव व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेदव व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेदव व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेदव व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेदव व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेदव व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है, वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा। तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, अब तो भैया हम जे चले, भोले बाबा चले गए। 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेद व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पढ़वा दोगे, हमें प्रपंच में पढ़ना नहीं। वेद व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंग बली। अब 12 वर्ष बाद जब वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के कोख से वह प्रकट भय, तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की
1: जय हो।
0: अब भैया जैसे ही प्रकट भय तो वेद व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, आश्वासन प्रभु से पाए, तो महीना व्याप माया कब हूं सुन के बाहर आई। आपको जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेद व्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए। यम प्रवजन

0: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
10: सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
19: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
25: जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शिवम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1, टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली से। पर्यटकों के लिए खुल गई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीकी से करेंगे दीदार, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा। अधिक मास और वीकेंड की छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उड़ा आस्था का सैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में फरीदाबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 9.5 किलो चांदी का मुकुट और छत्र, देश की खुशहाली के लिए मांगा वरदान। पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही है अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की भी शुरुआत। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी आरसीबी, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली, 15 साल के सूर्यवंशी को कई अवार्ड, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप।
21: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

26 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल सीजन की 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237 की स्ट्राइक रेट से बनाए 776 रन, बने इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड। इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए वैभव को मिला 10 लाख रुपए का इनाम। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी अपने नाम किया और इसी के साथ वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता। वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए मिला ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी को कुल 35 लाख रुपए और टाटा सियेरा कार मिली। आईपीएल में बेंगलुरु की जीत पर विराट कोहली ने मचाया धमाल, पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जमकर किया डांस। विराट कोहली के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने डांस कर जीत का मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हुबली में आईपीएल में बेंगलुरु की जीत पर लोगों ने साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, टीम की जीत की बधाई दी। कर्नाटक के हुबली में बेंगलुरु की जीत पर मना जश्न, फैंस ने सड़क पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की। बेंगलुरु की जीत के बाद कई इलाकों की बढ़ाई गई सुरक्षा, जश्न मनाने वाले जगहों पर तैनात दिखे जवान। पश्चिम बंगाल के लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य में आज से लागू होगी अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज की सौगात, तो वहीं राज्य में आज से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा मुफ्त। पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी सरकार का होगा विस्तार, सुबह 11:35 पर नेता लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन पोर्टल आज से शुरू, कंपनियों की रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 223 मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे सम्मानित, क्लास 10वीं और 12वीं में टॉप पोजीशन लाने वाले स्टूडेंट्स का करेंगे सम्मान। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1, दिल्ली में टॉप 3 रैंक होल्डर्स। सिपाही भर्ती परीक्षा में कला व मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्ह पर नहीं रहेगी पाबंदी, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किए निर्देश। यूपी में 8-10 जून में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, 32,659 पदों पर होना है चयन, 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा में स्मार्ट गैजेट्स ले जाने पर सख्त रहेगी, सख्ती होगी यूपी के 75 जिलों के 1100 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, साल 2020 को छोड़कर जनवरी से मई के बीच पिछले 8 साल में सबसे कम रहा औसत AQI, लोगों को मिली बेहतर सांसें। छत्तीसगढ़ को मिली पहले IT और IoT पार्क की सौगात, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले IT और IoT पार्क का शुभारंभ किया, इनोवेशन स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। IIT भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से शुरू किया गया IIT और IoT पार्क, युवाओं उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश की 250 से ज्यादा आम की किस्मों को किया गया शामिल।
आम महोत्सव

से अल्फोंसो केसर समेत विदेशी मियाज़ाकी आम की भी लगी प्रदर्शनी। किसानों उद्यमियों के लिए तकनीकी सत्र का भी किया गया आयोजन। उज्जैन बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया साज श्रृंगार।

0: बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी सुबह से लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और अभिनेता जय भानुशाली, विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा। फरीदाबाद के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को 9.5 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के आभूषण अर्पित किए। भगवान श्री राम की करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी गुड न्यूज आई सामने, राम मंदिर में रोजाना बनने वाले भोग प्रसाद को मिली आधिकारिक मान्यता। खाद्य और औषधि विभाग ने राम मंदिर स्थित सीता रसोई को 5 साल के लिए जारी किया लाइसेंस, रसोई के निरीक्षण और इंतजामों की समीक्षा के बाद जारी किया लाइसेंस। सीता रसोई में बनता है रामलला मंदिर, श्री राम दरबार के 6 देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के मंदिरों में अर्पित होने वाला भोग। राम मंदिर में रोजाना मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक 6 बार अर्पित किया जाता है भोग। खाद्य और औषधि विभाग ने सीता रसोई की रसोइयों को शुद्धता और गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सास बहू और बेटियां में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार किए।

आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, ये है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन

0: बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो, बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: खबरें तो आराम से।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: सास बहू और बेटियां में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: पर्यटकों के लिए खुल गई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीकी से करेंगे दीदार, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा। अधिक मास और वीकेंड की छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उड़ा आस्था का सैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में फरीदाबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 9.5 किलो चांदी का मुकुट और छत्र, देश की खुशहाली के लिए मांगा वरदान।

जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी। दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1। टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली से।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के रोमांच की, जहां इस सीजन में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। वहीं कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। तो वहीं आईपीएल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उनकी आत्मविश्वास भरी पारी ने राजस्थान को कई मैचेस में मजबूत स्थिति में खड़ा किया। तो वहीं रजत पाटीदार की शानदार कप्तानी में आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी इस बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला। तो वहीं क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया। उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है। उनकी क्लासिक बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल ही कर दिया। इसके साथ ही देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्राइक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं, वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और यही नजारा, यही दृश्य कल देखने को मिला, जब आईपीएल में एक बार फिर से आरसीबी ने दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लेकर दूसरी बार इसे अपने नाम कर लिया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था, जिसे बेंगलुरु ने बेहद आसानी से हासिल कर लिया। आरसीबी की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका विराट कोहली की रही, जिन्होंने टीम को शानदार जीत दिलाई।

0: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
2: जब तक सूरज चांद रहेगा विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
3: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी विराट कोहली।
4: आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
1: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डिकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है, इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है, टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
8: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में 6 मारा है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो 6 मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
8: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
1: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेस मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: वहीं आपको ये भी बता दें कि आईपीएल सीजन 2026 में बादलों को चीर कर क्रिकेट के आसमान में उदित हुआ है एक सूर्य, नाम है रजत पाटीदार। अपनी कप्तानी में आरसीबी को लगातार दो बार चैंपियन बनाकर पाटीदार ने टीम इंडिया के चयनकर्ताओं को यह पैगाम दे दिया है कि उनकी दावेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सका, क्योंकि दिग्गजों से भरी हुई आरसीबी की जीत अब टीम 17 सालों में एक बार फिर भी चैंपियन नहीं बन पाई थी, उसे पाटीदार ने अपनी अगुवाई में लगातार दो बार चैंपियन बना दिया है।
10: आईपीएल सीजन 2026 में इंडियन क्रिकेट का एक नया सितारा बनकर उभरे हैं लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में अपनी कप्तानी में टीम को लगातार दो बार चैंपियन बनाने का जो करिश्मा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे धाकड़ खिलाड़ी कर पाए थे, वही करिश्मा रजत पाटीदार ने दोहरा दिया है। उनकी कप्तानी में आरसीबी 2025 के बाद 2026 में भी आईपीएल चैंपियन बनकर उभरी है। आईपीएल में रजत पाटीदार का सफर किसी आसमानी अफसाने जैसा है। आईपीएल सीजन 2021 में इंदौर के इस खिलाड़ी पर पहली बार आरसीबी ने दांव लगाया था, वो भी सिर्फ 20 लाख की बेस प्राइस पर। आईपीएल के अपने पहले सीजन में पाटीदार को सिर्फ 4 मैच खेलने का मौका मिला, जिनमें वो सिर्फ 71 रन ही बना सके। नतीजा ये हुआ कि सीजन 2022 के ऑक्शन में रजत पाटीदार अनसोल्ड रह गए। साल 2022 में 10 टीमों के बोलीदारों की ओर टकटकी लगाए पाटीदार को निराशा हाथ लगी, लेकिन जिसकी किस्मत को संवारने का फैसला खुद विधाता ने अपनी कलम से करने का फैसला कर लिया हो, उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। आईपीएल सीजन 2022 में अनसोल्ड रहे इस खिलाड़ी के लिए वक्त ने ऐसी करवट ली कि निराशा के घनघोर अंधियारे में अचानक उम्मीद का दिया झिलमिला उठा। हुआ ये कि आरसीबी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लोनीज सिसोदिया इंजर्ड हो गए। आरसीबी को अचानक से सिसोदिया के रिप्लेसमेंट की दरकार पड़ी और नजर उस पाटीदार पर जाटी की जिनके लिए बोली तक नहीं लग पाई थी। किस्मत की जो ट्रेन सामने से निकल गई थी, वही ट्रेन रजत के लिए बैक होकर दोबारा से प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई। इस बार रजत ने तय कर लिया कि विधाता ने जिंदगी को निखारने का जो सुनहरा मौका दिया है उसे जाया नहीं जाने देंगे। आईपीएल सीजन 2022 में रजत पाटीदार को 8 मैचों में खेलने का मौका मिला और इन मैचों में उन्होंने 55.50 के औसत और 152.75 के स्ट्राइक रेट से 275 रन ठोक दिए। सबसे बड़ा कमाल तो उन्होंने आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर राउंड में कर दिखाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पाटीदार ने महज 49 गेंदों में शानदार शतक बना दिया। उनके नाबाद 112 रनों की बदौलत टीम ने मैच जीता और इसी के साथ पाटीदार ने फ्रेंचाइजी का भरोसा हमेशा के लिए जीत लिया। आईपीएल के साल 2022 के बाद 2023 और 2024 सीजन में रजत पाटीदार के प्रदर्शन को देखते हुए साल 2025 में आरसीबी ने उन्हें कप्तानी का मौका दिया। पहली बार आरसीबी की अगुवाई करते हुए पाटीदार ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसे पिछले 17 सालों में राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी, शेन वाटसन, फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली जैसे दिग्गज नहीं कर पाए थे। आरसीबी का नेतृत्व करते हुए पाटीदार ने पहली बार में ही अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना दिया और उसी करिश्मे को सीजन 2026 में भी दोहराकर रजत ने साबित कर दिया कि सीजन 2022 में उन पर बोली नहीं लगाने का फ्रेंचाइजी का फैसला सही नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: तो वहीं आरसीबी की शानदार जीत पर पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने टीम को बधाई दी और साथ ही उन्होंने ऑरेंज कैप होल्डर वैभव सूर्यवंशी की भी खूब तारीफ की और उन्होंने कहा कि वैभव टीम इंडिया में जगह पाने के हकदार हैं।
11: सर एक मैच है या पूरी लीग में ये पूछो कि साल कितना मजा आया, तो ये साल ये दोनों टीमों ने खूब मजा दिया, लेकिन एक टीम ही जीत सकती थी। दुख होता है जिस टीम को आपके साथ बैठे थे वो नहीं जीती, लेकिन जो टीम जीती है उसके लिए खुशी होती है, तो इंडिया की टीम में सारी।
12: वैभव सूर्यवंशी नो डाउट आउटस्टैंडिंग रहे, कैसे आप देख रहे हैं सर उन्हें आने वाले टाइम के लिए?
11: भाई इससे अच्छा क्या खेलेगा आदमी, मैं तो चेयरमैन साहब दिखे थे, मैं तो कहा चेयरमैन साहब ये अभी टीम में नहीं डालोगे तो कब डालोगे? एक बात बताओ, उम्र हो या ना हो, इससे अच्छा क्या खेलेगा?
12: और सर सबसे पहले बात, जीटी कहां इस बार चूक गई आपको लगता है कि
11: अगर इनको पता होता या मुझे पता तो वो चूक थोड़ी होती है।
9: तो वहीं पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आरसीबी की तारीफ की और साथ ही क्रिकेट फैंस के उत्साह को भी सराहा।
13: सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को बधाई देता हूँ, आरसीबी को बधाई, बैक टू बैक चैंपियन बने और शायद यही क्रिकेट की लोकप्रियता है कि गुजरात का स्टेडियम हो, गुजरात की टीम हो और स्थानीय टीम के साथ साथ आरसीबी के भी खूब प्रशंसक यहाँ पर थे। मुझे लगता है यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है कि आप जीटी की होम ग्राउंड में खेल रहे हो लेकिन आपको समर्थन पूरा मिल रहा है, तो अच्छी क्रिकेट के प्रशंसक हर जगह पर है और ये क्रिकेट की बड़ी जीत है आरसीबी के साथ साथ।
9: और अब आपको आईपीएल के उन सितारों के बारे में बताते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ने भविष्य के लिए सुनहरे सपने दिखा दिए हैं। खिलाड़ियों की ये वो पौध है जो आगे चलकर जाने वाले समय में टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए और फर्स्ट क्लास मैचेस में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।
14: से शुरू हुए अब तक 18 साल के सफर में आईपीएल ने भारत में क्रिकेट प्रेमियों को न केवल फटाफट अंदाज में इस खेल का भरपूर मजा लेने का मौका दिया बल्कि देश के कोने कोने से क्रिकेट के टैलेंट को भी उभर कर सामने आने का अवसर दिया जिनसे अब भारतीय क्रिकेट का भविष्य आकार ले रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आईपीएल 2026 ने अब कुछ ऐसे सितारों को क्रिकेट जगत में पहचान दिलाई है जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम को धार दे सकते हैं। इनमें पहला सबसे बड़ा नाम है वैभव सूर्यवंशी का जो इस बार आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और शानदार रिकॉर्ड्स के कारण सुर्खियों में है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के 15 साल के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। वैभव ने पिछले सीजन में सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू किया था। इस बार वैभव ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सिर्फ वैभव ही नहीं और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस से भविष्य में काफी उम्मीदें हैं। इनमें से एक खास नाम आयुष महात्रे का है। आयुष महात्रे मुंबई के 18 साल के ओपनर है। आयुष चोट की वजह से इस आईपीएल में सिर्फ 6 ही मैच खेल सके लेकिन इंजरी के चलते बाहर होने से पहले तक वो आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने खास पहचान बनाई। इसी तरह शानदार खिलाड़ियों की फेहरिस्त में एक नाम अंकृष्ट रघुवंशी का भी है जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भविष्य में और भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीदें जगा दी है। अंकृष्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज है। अंकृष्ट ने आईपीएल 2026 में 13 मैचों में 422 रन बनाए और 5 अर्धशतक लगाए। सीजन के दौरान कई बार शुरुआती विकेट गिरने के बाद अंकृष्ट ने पारी को संभालने और अंत तक ले जाने की भूमिका निभाई। 20 मई को चोटिल होने के बाद वो टूर्नामेंट के बाकी मैच से बाहर हो गए लेकिन चोटिल होने से पहले तक वो आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। ऐसे ही एक और बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में उभरे हैं मुकुल चौधरी जिन्होंने अपनी तेज बल्लेबाजी से पहचान बनाई है। लखनऊ सुपर जायंट्स के विकेटकीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने नंबर 6 और 7 पर बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए कई महत्वपूर्ण विस्फोटक पारियां खेली। मुकुल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी गेंद तक चले एक बेहद रोमांचक मुकाबले में नाबाद 8 शतक जड़कर अपनी टीम को करिश्माई जीत दिलाई। वही गेंदबाज प्रिंस यादव की परफॉर्मेंस में भी भारतीय क्रिकेट के सुनहरे भविष्य की झलक मिल रही है। दिल्ली के 24 साल के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने इस सीजन में यॉर्कर्स से अपनी खास पहचान बनाई है। आईपीएल 2026 में प्रिंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से शानदार गेंदबाजी की। प्रिंस के लिए सीजन का सबसे चर्चित पल तब आया जब प्रिंस ने अपनी तेज बॉल पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। आईपीएल 2026 में प्रिंस ने 14 मैचों में 16 विकेट लिए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में प्रिंस यादव को भारतीय टीम में चुना गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 25 साल के तेज गेंदबाज रसिक सलाम ने भी अपनी खास पहचान बनाई है। रसिक का क्रिकेट करियर संघर्ष, विवाद और शानदार वापसी की कहानी रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से रसिक ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 11 मैचों में 16 विकेट लिए और नई गेंद से लेकर डेथ ओवर्स तक प्रभावी गेंदबाजी की। 31 मई 2026 को आईपीएल फाइनल में उन्होंने 3 विकेट चटकाए और आईपीएल फाइनल के इतिहास में 3 विकेट लेने वाले दूसरे अनकैप्ड गेंदबाज बन गए। आईपीएल और क्रिकेट के दूसरे फॉर्मेट्स में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित करने वाले खिलाड़ियों में बिहार के साकिब हुसैन भी है। साकिब हुसैन ने इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी की और बेहद प्रभावी रहे। साकिब ने अपनी लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार और सटीक यॉर्कर से टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया। शुरुआती 11 लगातार मैचों में कम से कम 1 विकेट लेने वाले आईपीएल इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए। इस सीजन में हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली का विकेट लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी। महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले 24 साल के तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे आईपीएल 2026 में सफल परफॉर्मर बनकर उभरे। टी20 में भी उन्होंने अपने खेल से सबको दंग कर दिया। आईपीएल 2026 में प्रफुल ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अपने डेब्यू मैच में ही इतिहास रचते हुए सनसनीखेज प्रदर्शन किया। आईपीएल डेब्यू पर अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट चटकाने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बने। प्रफुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने आईपीएल डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआंड्रे प्रिटोरियस के विकेट लिए। जम्मू कश्मीर के 27 साल के तेज गेंदबाज ब्रजेश शर्मा ने भी आईपीएल 2026 में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया। ब्रजेश का सबसे यादगार प्रदर्शन गुजरात टाइटंस के खिलाफ आया। शुभमन गिल के सिक्सर के बाद ब्रजेश ने अगली ही बॉल में उनका विकेट चटका दिया। ब्रजेश की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी है। वो पेस और स्लोअर्स दोनों बॉल को मिक्स करते हैं।
9: और इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

बहू और बेटिया में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और आइए अब बात करते हैं मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन की, जहां पर 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का समापन 30 मई को हुआ और भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए।
2: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कथित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट कुनिस्टे।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांवों और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना होगा कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाएं कैमरा और बनाएं व्लॉग और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
3: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: पर्यटकों के लिए खुल गई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीकी से करेंगे दीदार, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊंचा। अधिक मास और वीकेंड की छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उड़ा आस्था का सैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में फरीदाबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 9.5 किलो चांदी का मुकुट और छत्र, देश की खुशहाली के लिए मांगा वरदान।

0: कुनमार बने टॉपर लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक वन टॉप तीन रैंक होल्डर्स दिल्ली से पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही अन्नपूर्णा भंडार योजना पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की भी शुरुआत
1: एनईसीसी संडे हो या मंडे रोज खावंडे
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम
0: सज गए हैं खबरों की प्लेट तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू नमस्कार मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल खबरों की रफ्तार वही है बस परिभाषाएं नई हैं हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
0: जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर लड़कियों में दिल्ली के आरोही देश पांडे को मिली रैंक वन दिल्ली से टॉप तीन रैंक होल्डर्स

0: राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लूटी आईपीएल 2026 की लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए वैभव को मिला 10 लाख रुपए का इनाम। कर्नाटक के हुबली में बेंगलुरु की जीत पर मना जश्न, फैंस ने सड़क पर उतरकर जमकर की आतिशबाजी। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक वन, दिल्ली से टॉप 3 रैंक होल्डर्स। सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन पोर्टल आज से शुरू, तो वहीं कॉपियों की रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य में आज से लागू होगी अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। पश्चिम बंगाल की करोड़ों लोगों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा, राज्य में आज से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा मुफ्त।
1: दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली खबर, साल 2020 को छोड़कर जनवरी से मई के बीच में पिछले 8 साल में सबसे कम रहा औसत EQI, लोगों को मिली बेहतर सांस। छत्तीसगढ़ को मिले पहले आईटी और आईओटी पार्क की सौगात, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले आईटी और आईओटी पार्क का किया शुभारंभ, इनोवेशन स्टार्टअप को मिलेगा इससे बढ़ावा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन हुआ, राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश की 250 से ज्यादा आम की किस्मों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के अकोला में मनाई गई अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती, शहर में निकाली गई भव्य रैली। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
0: अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का निर्माण जोरों पर, भगवान राम की 63 पीढ़ियों की डिजिटल वंशावली की जाएगी प्रदर्शित। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने भाई परहत दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन, तो वहीं भगवान का लिया आशीर्वाद। करगिल में एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर छठे पटनी टॉप मैराथन का आयोजन, 800 से ज्यादा धावकों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया निशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की हुई जांच।
1: तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मासूमियत पर फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर, एक्स पर लिखा वैभव अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर ना होते तो फिल्म मासूम में कास्ट करता उनको। इन दिनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम कर रहे हैं निर्देशक शेखर कपूर, साल 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल होगी ये फिल्म। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म करुप्पू ने सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में कमाए 300 करोड़, सफलता से गदगद एक्टर सुरैया ने संगीतकार सिनेमेटोग्राफर को गिफ्ट की कार। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के राम की भूमिका निभाने पर बोले टीवी के राम अरुण गोविल, मेरा निभाया किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, इसीलिए राम के रूप में दूसरे चेहरे जल्द स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग। फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणबीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है ये किरदार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है,
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। आपको
1: लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बने आरसीबी, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया, विराट कोहली बने फाइनल के हीरो।
0: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन।
1: महाकाल के दरबार में एक भक्त ने चढ़ाए 9.5 किलो चांदी के आभूषण, भगवान को किया मुकुट और छत्र अर्पण।
0: जेई एडवांस का रिजल्ट जारी, तो वहीं टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली के।
1: चमोली के मशहूर फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुली, खूबसूरत फूलों ने जीता सैलानियों का दिल। और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और फिल्मी स्टाइल में स्टार्ट करते हैं। देखिए, रजनीकांत की फिल्मों की दीवानगी पर्दे पर आने से पहले ही दिखने लग जाती है। अब उनकी जेलर 2 की बात करते हैं। फिल्म का दर्शकों को बेसब्री के साथ इंतजार है। चर्चा इस फिल्म में आने वाले कैमियो सरप्राइज की भी खूब की जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि फिल्म में शाहरुख का कैमियो हो सकता है, लेकिन अब नाम है ऋतिक रोशन का, जो कि सुर्खियां बटोर रहा है। रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जेलर 2 के मेकर्स इस कैमियो के लिए ऋतिक के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।

सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों को फिल्म में मिल सकता है एक और जबरदस्त सरप्राइज। सिनेमा के गलियारों में इस फिल्म की चर्चा तो काफी समय से है। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के साथ बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक का एक स्पेशल कैमियो हो सकता है। ये खबर सामने आते ही इस फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और बढ़ गया है।

पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि इस खास रोल के लिए शाहरुख खान से बातचीत चल रही है, लेकिन फिर बताया गया कि अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग और बिजी स्केड्यूल की वजह से शाहरुख खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। इसके बाद इस कैमियो के लिए फिल्म मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। खबरों के मुताबिक ऋतिक ने इस

0: कैमियो के कॉन्सेप्ट को सुन लिया है। हालांकि अभी तक फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऋतिक का कैमियो भी आधिकारिक तौर पर भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन इस खबर ने जेलर 2 को इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बना दिया है। फैंस अब रजनीकांत और ऋतिक रोशन को एक साथ स्क्रीन पर देखने की कल्पना कर रहे हैं।
1: बाप रे,
2: शिट।
3: हे माँ।
1: अरे यार,
3: गॉड लव यू।
0: दिलचस्प बात ये है कि ऋतिक रोशन और रजनीकांत का कनेक्शन आज का नहीं है। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म भगवान दादा में ऋतिक बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। अब अगर जेलर 2 में ऋतिक की एंट्री होती है तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स का ऐतिहासिक मोमेंट साबित हो सकता है।

0: टेनेट 2 के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार हैं और इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर मुथुविल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और एसजे सूर्या जैसे बड़े कलाकारों की मौजूदगी इस फिल्म को और खास बना रही है। चर्चा इस बात की भी है कि इस फिल्म में मोहनलाल और शिव राजकुमार अब अपने किरदारों को दोहराने वाले हैं।
1: टाइगर का हुक्म।
0: खबरों की माने तो जेलर 2 सितंबर 2026 में सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल दर्शकों की नजरें जेलर 2 में ऋतिक की एंट्री पर टिकी है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। रिपोर्ट कन्नूज टुडे।
2: तो वहीं जून का महीना भी बड़े पर्दे पर धमाकेदार होने वाला है। इस महीने रामचरण की पैडी सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है और इसके साथ ही बॉबी देओल की बंदर भी 5 जून को रिलीज हो रही है। वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना है फिल्म भी कॉमेडी के बम्पर डोज के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है।
3: पेटी, इस इलाके का कोई भगवान है क्या?
4: हमारा फेवरेट क्रिकेटर पेटी सर।
5: जून के महीने में बचेगा बॉक्स ऑफिस पर धमाल।
6: क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए सर। आई वॉन्ट टू बी अ फादर।
5: दर्शकों को मिलेगा एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर का फुल डोज।
7: नो लड़की बोलती है नो नो मींस नो।
5: मई में बॉक्स ऑफिस की जबरदस्त हलचल के बाद अब जून के महीने में भी सिनेमा के शौकीनों को बड़ी सौगात मिले जा रही है। इस महीने कई बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। इनमें से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। जून के पहले हफ्ते में ही रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पैडी रिलीज होने जा रही है।
8: मैदान का भगवान है।
9: सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं।
5: इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में आंध्र प्रदेश की विजय नगरम शहर की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में रामचरण का क्रॉस ओवर एथलीट अवतार देखने को मिलेगा जिसे कई खेलों में महारत हासिल है।
10: बातों में नहीं, अखाड़े में जीतने की मर्दानगी किसी में है तो उसे भेज।
5: फिल्म में जानवी अच्छी अम्मा का रोल प्ले करती नजर आएंगी। वहीं जानवी कपूर और रामचरण की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। इसमें एक्शन, इमोशन, कॉमेडी का डोज देखने को मिलेगा। पैडी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बनी हुई है। जैसे ही फिल्म के गाने, ट्रेलर, पोस्टर और क्लिप्स सामने आए वैसे ही पैडी को लेकर जबरदस्त बस बन चुका है।
10: हमने खेल खेला है।
11: समीर मेहरा चल थाने चल, बुलाया तेरे को।
5: बॉबी देओल की बंदर भी इसी महीने दर्शकों का दिल जीतने के लिए बड़े पर्दे पर आ रही है। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन वाली इस फिल्म में बॉबी देओल बेहद इंटेंस रोल में दिख रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनके किरदार में

0: शेड्स नजर आए थे। ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फिल्म में किसी फेक डेटिंग ऐप से जुड़ी कहानी दिखाई गई है। इस ऐप के चक्कर में पड़कर बॉबी मुसीबत में फंस जाते हैं। कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि बॉबी जेल में पहुंच जाता है। बॉबी का किरदार खुद को निर्दोष बताता दिखाई देता है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। इसी के साथ कहानी में कई भावनात्मक और गंभीर पहलुओं की झलक भी देखने को मिलती है, जो फिल्म को रहस्य और ड्रामा से भरपूर बनाती है। फिल्म की स्टार कास्ट को देखते हुए फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह और भी बढ़ गया है। बंदर 5 जून को सिनेमाघर में रिलीज होने जा रही है।
1: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हम
0: इस महीने वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे।
1: फिजिकल वायलेंस का मामला है, मारता मारता।
0: फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में मृणाल वरुण की पत्नी का रोल अदा कर रही है। कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आती है जब वरुण की जिंदगी में पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर शुरू हो जाता है कॉमेडी और अनोखी ट्विस्ट का खेल। इस फिल्म में जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और मनीष पॉल भी है, जो अपनी कॉमेडी और डायलॉग से तड़का लगा देते हैं। वरुण धवन की इस फिल्म की टक्कर बॉबी देओल की फिल्म बंदर से होने वाली है, क्योंकि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे।
2: चले फिल्मों की बात हो रही है तो 90 के दशक में देखिए बॉलीवुड पर राज करने वाली करिश्मा कपूर जल्द ही एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ब्राउन में आपको नजर आने वाली है। सीरीज में करिश्मा का एक नया अवतार दर्शकों को दिखाई देगा। वहीं मेकर्स ने सीरीज का शानदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। इस वेब सीरीज में ब्राउन में करिश्मा कपूर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में आपको नजर आएंगी। ट्रेलर में वो हत्या की छानबीन और अतीत के रहस्य से घिरी हुई दिखाई देती है। इसमें करिश्मा कपूर के रोल का नाम रीता ब्राउन है। वो एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के रोल में होंगी, जो अपने आसपास की दुनिया से उब चुकी हैं, लेकिन वो पुलिस के अपने फर्ज को अच्छे से निभा रही हैं।

0: और चलिए यही तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। सभी धामों में भक्तों की अच्छी खासी रौनक है। यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है, जबकि वहां से गंगोत्री की तरफ भक्त बढ़ते जाते हैं। इसी तरह केदारनाथ में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है।
1: तो वहीं आपको बता दें, सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ यात्रा को लेकर ही है। यहां अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं और इस तरह बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। यहां भी आस्था भक्ति का नया रिकॉर्ड बना है और अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। बाबा केदार के द्वार हो या बद्री विशाल का धाम, गंगोत्री की पावन घाटी हो या यमुनोत्री की ऊंची चोटियां, हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आस्था के आगे कोई थकान नहीं, कोई दूरी नहीं। भगवान बद्री विशाल के धाम में श्रद्धालुओं की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह दर्शन के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा है, बारिश हो रही है, रास्तों में घंटों जाम की समस्या से दोचार होना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार अपने पूरे चरम पर चल रही है। जहां सड़कों पर

0: काम है, वहीं हर तरफ यात्रा मार्गों पर इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 7,50,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।
1: वहीं मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करने की सलाह भी दी जा रही है। केदारनाथ धाम में हुई लगातार बारिश के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा

0: को बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करने की सलाह भी दी जा रही है। केदारनाथ धाम में हुई लगातार बारिश के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा रोक दी गई थी।
1: यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहां पर हैं वहां थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो भी वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभाल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
0: बारिश के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ धाम में तैनात अधिकारी कर्मचारियों सहित सुरक्षा जवानों को अलर्ट मोड पर रहने और यात्रियों की हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। प्रतिकूल मौसम के बीच भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों धामों की यात्रा कर रहे हैं। छाता, रेनकोट और गर्म कपड़ों के सहारे श्रद्धालु कठिन मौसम का सामना करते हुए दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। दोनों धामों में अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
2: 42 दिनों में रिकॉर्ड तीर्थयात्री यानी कि 9,05,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए गए हैं। हालांकि अब गंगा दशहरा के बाद जो यात्रियों की संख्या है उसमें गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है।
0: वही सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ को हटाकर यहां यात्रा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। एसडीआरएफ गुरुद्वारा प्रबंधन पुलिस की टीम लगातार यात्रियों की मदद में लगी हुई है, चाहे यात्रियों को पकड़ पकड़ कर रास्तों को पार करवाना हो या रास्तों से बर्फ हटाने का काम हो, क्योंकि हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण यहां कभी जमकर बर्फबारी तो कभी मौसम एकदम सुहाना हो रहा है। इस बीच यात्रा निरंतर जारी है। बारिश और ठंड के बावजूद चारों धामों में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की ये भीड़ साबित कर रही है कि आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चमोली से कमलनंद सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मैदानों में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और इससे बचने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों शिमला, मनाली घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले मई में 7.5 लाख से ज्यादा सैलानी शिमला पहुंच चुके हैं, जबकि जून में और भी ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। लिहाजा ट्रैफिक जाम से पर्यटकों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।
4: मैदानी इलाकों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शहरों की भीड़ और शोर से दूर शिमला भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में सैलानी यहां के खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से यहां पहुंच रहे हैं। शिमला का मॉल रोड तो इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भर चुका है। प्री मॉनसून बारिश के बाद शिमला में सुहाने मौसम के चलते पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग पहाड़ों के मौसम को महसूस कर रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। कोई गुजरात से आया है तो कोई पंजाब से, कोई दोस्तों के साथ आया है तो कोई परिवार के साथ। हर किसी का मन यहाँ की हसीन वादी में आकर मानो खिल सा गया है।
5: मैं बोलना चाहूँगा वेदर बहुत प्रीटी है, इट फील्स क्या बोलते हैं, हम अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी देख पा रहे हैं कि वीकेंड है तो क्राउड भी बहुत बढ़ गया है इधर, सो सब फैमिली के साथ आए, हम भी हमारे फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ आए।
6: यहाँ शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए, बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का और काफी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज्यादा वेदर अभी समर का है 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए।
7: द क्लाइमेट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, लाइक इट्स सो कोल्ड एंड आई एम लविंग इट बिकॉज बैक एट होम इट्स वेरी वेरी हॉट एंड दिस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। हम अभी कल ही आए हैं एंड

0: We've had a really good time. We've had really good food, Himachali food. We are going to try it today as well. And yeah, it's been really good.
1: आमतौर पर हिमाचल में पर्यटन सीजन जून के पहले हफ्ते में चरम पर पहुंचता है, लेकिन इस साल उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की वजह से सैलानी पहले ही पहुंचने लगे हैं। शिमला में सैलानी किस कदर उमड़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई के महीने में 7.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की यहां एंट्री हो चुकी है।
2: ट्रैफिक थोड़ा सा है, जितना नहीं है, जो जितना पिकनिक टाइम है, तो उससे थोड़ा ठीक है।
3: ट्रैफिक था, ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था, जो होना चाहिए था, जो पिकनिक की जगह होता ही है, हम वैसा था।
4: शिमला पहली बार आए?
3: फर्स्ट टाइम
4: के अंदर ट्रैफिक लगा
3: नहीं, ठीक था, कोई ज्यादा नहीं।
4: तो सीजन चल रहा है, थोड़ा मोटा तो ट्रैफिक चले गई।
1: सैलानियों की भारी तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी शहर को ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बेहतर प्रबंध के लिए शिमला शहर को 5 अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन भी लगातार सक्रिय है।
5: कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो हमारे क्विक राइडर्स रहते हैं मोटरसाइकिल पे, वो लगा रखे हैं, जो कि 32 के आसपास डिप्लॉयड हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करें यदि कोई भी ट्रैफिक जैम कहीं पे होता है। एंड हमारे एक्सपीरियंस में दे आर वेरी इफेक्टिव।
1: इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में भी आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किए जाएंगे, जिससे कि सैलानियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो जेएनटी भी आपसे आपके आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके उन वीडियोस को जेएनटी पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार करवाते हैं। यहां तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने आपके लिए भेजा है।
7: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला कापड़ी, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका, आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहां तक पहुंचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहां पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रोन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में दो या तीन बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों ना इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
1: तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
6: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिंद की सेना का दाम।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सास बहू और बेटियां में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
12: You hear it once and remember everything.
13: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
12: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
14: दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा GST कलेक्शन, देश भर में बढ़ते कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है ये इजाफा। पर्यटकों के लिए खुल गई है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीकी से करेंगे दीदार, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा। अधिक मास और वीकेंड छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में फरीदाबाद के एक भक्त ने चढ़ाया 9.5 किलो चांदी का मुकुट और छत्र, देश की खुशहाली के लिए मांगा वरदान। जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली के आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1, टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली से। पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही है अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की भी शुरुआत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। मेघालय के उमरोई में सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का समापन 30 मई को हुआ और भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए।
3: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला, इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और IED का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट कुनिस्टे।
2: भारतीय सेना तेजी के साथ स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुट गई है। पाथु मोनो रेल सिस्टम इसकी ताजा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर्स रेजिमेंट ने तैयार किया है। यह सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में सामान लाने और ले जाने में सक्षम होता है।
4: ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में, हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है। ये पाथू मोनोरेल सिस्टम है जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहाँ ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है, लिहाजा घोड़े खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन, हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। GPS ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है, लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटिया में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
4: जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आरसीबी, आरसीबी इसी की बात करेंगे।

0: यस ऑलवेज ऑल लव फॉर अवर आरसीबी। विराट कोहली को भगवान है हमारे लिए भगवान।
1: हम बहुत खुश है कि आरसीबी दोबारा जीता। विराट कोहली
2: डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया है।
3: और देखिए आरसीबी ने बता दिया कि वो चैंपियन क्यों है। दिस इज अ विनिंग टीम और जिस तरह से ये खेले हैं वो बताता है कि इस टीम ने शुरुआत से अपनी लय को बरकरार रखा। अब गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था जिसे बंगलुरु ने आसानी से हासिल किया। आरसीबी की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका विराट कोहली की रही जिन्होंने टीम को शानदार जीत दिलवाई।

0: नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर अहमदाबाद की सड़कों तक आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से रोशन हो रहा था, तो ढोल नगाड़ों की थाप पर क्रिकेट के फैंस झूम रहे थे। गुजरात टाइटंस पर आरसीबी की विराट विजय का ये वो जश्न है जो सालों साल तक फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका देता रहेगा। आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतिहास रच दिया। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया।
1: सबको सुबह से इस बात का यकीन था कि अगर कोई टीम इस मैदान पर टाइटल जीत सकती है वो है आरसीबी। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर लगभग 130,000 के आसपास के फैंस उमड़े थे इस मैच को देखने के लिए, जिसमें से लगभग 1,00,000 लोग आरसीबी के समर्थक थे। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि आरसीबी का असली मैदान शायद बेंगलुरु नहीं, अब अहमदाबाद के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जब जब अहमदाबाद के अंदर में फाइनल मैच होता है और वहां पर होती है आरसीबी, सामने चाहे कोई भी टीम हो, विजेता आरसीबी होती है। ये जस्ट इस बात की गवाही है और इस मैदान को हमेशा याद रखा जाएगा कि पहली बार एक ऐसी टीम निकल के आई जिसके पास ट्रॉफी का सूखा था, जीत ही नहीं पा रहे थे, और अब लगातार बैक टू बैक 2 ट्रॉफी इस टीम ने अपने नाम कर ली है।
0: आरसीबी की ये लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जीता। चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था, तो आरसीबी ने 2025 और 26 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
2: एक पटिडा के धुरंधर है, सब बंदे धुरंधर है, विराट कोहली देख लो, फिल शॉट देख लो, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सब देख लो, सब धुरंधर है, एक से एक बढ़कर धुरंधर है। और आरसीबी को जिताने में सबका योगदान है, बड़ा योगदान है। गुजरात वाला सब चकली है, चकली चकली कभी बाज ना बना, आ तो आरसीबी बोला बाला मारी जा।
0: रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने टीम की जीत की पटकथा तो शायद तभी लिख दी थी जब गुजरात टाइटंस ने तीसरे ओवर में शुभमन गिल का विकेट खोया, और फिर विकेटों के पतन का सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं, नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और हर विकेट के साथ गुजरात टाइटंस गेम्स में पिछड़ती चली गई। 100 रन से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट होकर पवेलियन लौट चुकी थी। गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाकर 45 ही रन बनाए। जीटी की पारी का पहला सिक्स 13वें ओवर की चौथी गेंद पर आया। जीटी ने 5 विकेट महज 99 रन पर ही गंवा दिए। 15 ओवर के बाद जीटी का स्कोर 5 विकेट गंवाकर 105 रन तक ही पहुंचा। वाशिंगटन सुंदर ने अकेले 37 गेंद में 50 रन की पारी खेली। इस तरह 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक पहुंचा। इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिक सलामडार ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट झटके। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रसिक सलामडार ने 4 ओवर में महज 27 रन देकर 3 विकेट लिए। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 23 रन खर्च कर 1 खिलाड़ी को पवेलियन पहुंचाया। 155 रन का पीछा करने उतरी बेंगलुरु ने धुआंधार शुरुआत की और 5 ओवर पूरे होने से पहले ही 62 रन ठोक डाले। हालांकि इसके बाद आरसीबी के विकेट भी नियमित अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली ने अकेले मोर्चा संभाल रखा था। विराट कोहली ने 42 गेंद पर नाबाद 75 रनों की पारी खेली और छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। आरसीबी ने 12 गेंद शेष रहते गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे।
3: भाई सेलिब्रेशन तो बनता है, तो वहीं गुजरात टाइटंस की बात कर लें तो इनको हराकर आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है 2025 और अब 2026। आरसीबी के इस जीत के हीरो रहे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 42 गेंदों पर धुआंधार पारी खेली है, 75 रन जड़कर टीम को उन्होंने जीत दिलाई और अंत तक नॉट आउट रहे। खास बात देखने वाली ये रही कि विराट के सामने दूसरे छोर पर विकेट एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन विराट ना सिर्फ डटे रहे बल्कि पूरी ताकत के साथ उन्होंने भी कमबैक किया। आरसीबी की जीत के बाद अहमदाबाद की सड़कों पर फैंस का जश्न कैसा था वो दिखाते हैं आपको।

0: किनारा है। भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा, और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी विराट कोहली। आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डीकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: शानदार है विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको ये जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
7: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में 6 मारा है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो 6 मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
7: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेज मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही,
9: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
14: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा GST कलेक्शन, देश भर में बढ़ते कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है ये जान। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मिल्क डे, इस वर्ष की थीम है महिला किसानों का सम्मान, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को नई पहचान देने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही है अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा भी शुरू। पर्यटकों के लिए खुल गई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीक से कर सकेंगे दीदार, पर्यटक व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
14: पर्यटकों के लिए खुल गई फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीक से कर रहे हैं दीदार। पहले दिन वैली ऑफ फ्लावर्स के मुख्य प्रवेश द्वार पर सैलानियों का स्वागत, 45 सैलानियों ने देखी फूलों की घाटी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा। फूलों की घाटी में करीब 500 से ज्यादा देश विदेशी फूल के लिए देखने के लिए पहुंचे पर्यटक। घर बैठे ऑनलाइन भी फूलों की घाटी की कर सकते हैं बुकिंग, जून महीने में 100 सैलानियों ने करा चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया स्वरूप श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और अभिनेता जय भानुशाली, विधि विधान के साथ महाकाल की पूजा अर्चना। फरीदाबाद के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को 9.5 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के आभूषण अर्पित किए। भगवान श्री राम के करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई है गुड न्यूज, राम मंदिर में रोजाना बनने वाले भोग प्रसाद को मिली आधिकारिक मान्यता। खाद्य और औषधि विभाग ने राम मंदिर स्थित सीता रसोई के 5 साल के लिए जारी किया लाइसेंस, रसोई के निरीक्षण और इंतजामों की समीक्षा के बारे में जानकारी दी। आसान लाइसेंस दी, सीता रसोई में बनता है रामलला मंदिर, श्री राम दरबार के 6 देवी देवताओं और ऋषि मुनि के मंदिरों में अर्पित होने वाला भोग। राम मंदिर में रोजाना मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक 6 बार अर्पित किया जाता है भोग। खाद्य और औषधि विभाग ने सीता रसोई के रसोइयों को शुद्धता और गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिया। महाराष्ट्र के अकोला में मनाई गई अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती, शहर में निकाली गई भव्य रैली। अहिल्या देवी की प्रतिमा की स्थापना और पूजन के साथ शुरू हुई रैली, ढोल ताशों के साथ जय मल्हार के जय घोष। पारंपरिक लेजियम की प्रस्तुतियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने प्रस्तुति दी। भजन कीर्तन मंडलियों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। लोगों ने जोश और उल्लास के साथ मनाया जयंती उत्सव। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी रैली, जगह जगह लोगों ने अहिल्या देवी होलकर याद किया। दिल्ली के लोगों के लिए रात वाली खबर, साल 2020 को छोड़कर जनवरी से मई के बीच पिछले 8 सालों में सबसे कम रहा औसतन 1 हुआ है। छत्तीसगढ़ को मिली पहले आईटी और आईओटी पार्क की सौगात। मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले आईटी और आईओटी पार्क का शुभारंभ किया। आईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से शुरू किया गया आईटी और आईओटी पार्क, युवाओं उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन। राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश की 250 से ज्यादा आम की किस्में मौजूद। आम महोत्सव में लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो समेत तमाम वेराइटीज। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण जोरों पर। भगवान राम की 63 पीढ़ियों की डिजिटल वंशावली की जाएगी प्रदर्शित। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाइया परमलथ दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन की, भगवान का आशीर्वाद लिया। करगिल में एमबीसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, कई टीमों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर छठे पटनी टॉप मैराथन का आयोजन किया गया, 800 से ज्यादा धावक शामिल। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ हुआ, 4 नए संदीपनी स्कूल का भी लोकार्पण हुआ। इंदौर की मिली पुलिस मोबाइल वैन की सौगात, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया ट्रैफिक ऐप लॉन्च किया। इंदौर में अहिल्या उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, कार्यक्रम में 150 कलाकारों ने शिरकत। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, अस्पताल में सर्जरी और अत्याधुनिक सुविधाएं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सेनाओं की भागीदारी बढ़ाना मकसद। प्रगति का मतलब है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और बदलाव के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। 72 घंटे लंबे इस वैलिडेशन एक्सरसाइज में भारत समेत 13 देशों के 400 से ज्यादा सैनिक शामिल। अर्ध पहाड़ी घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद रोधी कार्रवाई की तैयारी, अभ्यास का मकसद। सैनिकों को स्लिंथरिंग जंगल, लिंग शूटिंग कमरे और बस में घुसकर कार्रवाई करने की ट्रेनिंग दी गई। अधिक मास और वीकेंड छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए, भक्तों ने राधा कृष्ण के जयकारे लगाए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए आज से फ्री बस सेवा शुरू, दुर्गापुर डिपो में शुभारंभ। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स, राजनाथ सिंह ने भव्य स्वागत। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड पाल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य में आज से अन्नपूर्णा भंडार योजना हो गई लागू, पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000। पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सौगात, राज्य में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू, 5,00,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 35 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, राज्यपाल आरएन रवि सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन पोर्टल आज से हो गया शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से प्रदेश के 223 मेधावी छात्र छात्राओं को करेंगे सम्मानित, क्लास 10वीं और 12वीं में टॉप पोजिशन करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे सम्मान। देश भर में बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। केरल में जल्द मानसून देगा दस्तक, आज कल में केरल में होगी अफ्री। बिहार में 6 जून तक बारिश का अलर्ट। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और बेगूसराय में गरज चमक के साथ बारिश। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर और सीकर में तेज आंधी चलने की आशंका। मुरादाबाद में तेज हवाओं और भारी बारिश से आम की फसल को हुआ नुकसान, किसान परेशान। जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट हो गया जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1, दिल्ली से टॉप 3 रैंक होल्डर्स। सिपाही भर्ती परीक्षा में कलावा, मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्ह पर नहीं रहेगी पाबंदी, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जून में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, 32,689 पदों पर होना है चयन। सिपाही भर्ती परीक्षा में स्मार्ट गैजेट्स ले जाने पर सख्ती रहेगी, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1,183 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा। लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बन गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलुरु ने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हरा दिया। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, शानदार गेंदबाजी से गुजरात को 155 रन पर ढेर कर दिया। 156 रन के लक्ष्य को पीछे करने के लिए उतरी बेंगलुरु ने 2 ओवर रहते ही जीत लिया मैच, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए नाबाद। चेज मास्टर विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए, छक्का मारकर अपनी जीत दिलाई। लगातार 2 बार आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है आरसीबी, इससे पहले मुंबई ने साल 2019-20, चेन्नई ने साल 2010-11 में जीता था खिताब। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लूट ली आईपीएल 2026 की पूरी लाइमलाइट, सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर जीता ऑरेंज कैप। वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल सीजन में 16 पारियों में 48.50 की औसत से बनाए हैं 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन। वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए वैभव को मिला 10 लाख रुपए का। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी अपने नाम कर लिया, इसी के साथ वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड जीता। वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए मिला ऑरेंज कैप, वैभव सूर्यवंशी को कुल 35 लाख टाटा सियेरा गिफ्ट। हुबली में आईपीएल में बेंगलुरु की जीत पर लोगों ने साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, टीम को जीत की बधाई दी। कर्नाटक के हुबली में बेंगलुरु की जीत पर जश्न मना, फैंस ने जमकर आतिशबाजी। बेंगलुरु की जीत के बाद कई इलाकों में जश्न, सुरक्षा चाक चौबंद। 5 जून को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है ब्राउन फिल्म में करिश्मा कपूर का अहम रोल।
15: हर केस में कम से कम 1 मिनट।
14: वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज, 26 जून को सिनेमाघरों में देने जा रही है 10 तक। तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मासूमियत पर फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर, एक्स पर लिखा, वैभव अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर ना होते तो मैं उन्हें मासूम में कास्ट करता। इन दिनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम कर रहे निर्देशक शेखर कपूर, साल 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल होगी। फैंटेसी एक्शन फिल्म करप्पू ने सिर्फ 15 दिनों में दुनिया भर में कमाया 300 करोड़। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर के राम की भूमिका निभाने पर बोले टेलीविजन के राम अरुण गोविल, मेरा निभाए किरदार आज भी लोग भूले नहीं है। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणवीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है कैरेक्टर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
16: सास बहू और बेटिया में आज सीरियल्स की दुनिया में कहीं है डांस तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
17: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
18: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
19: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
10: इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
14: मैदानों पर तपिश से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और तमाम हिल स्टेशंस इन दिनों सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। इस हॉलीडे सीजन में खूबसूरत वादियों में टूरिस्ट की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है।
24: मनाली की इन खूबसूरत वादियों में, इन नजारों में हर नजर मानो गुम हो जाना चाहती है। हर चिंता रंजोगम भूलकर सैलानी इन मनमोहक वादियों की सैर कर रहे हैं। बारिश के बाद यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है और दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं।
25: दिल्ली का अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर। अभी जो हम आए हैं, अभी रूम लिया, चेक इन कर रहे हैं, उसके बाद और एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है।
26: मनाली का वेदर काफी माइंड ब्लोइंग है, इतना मस्त है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जैसा है। रियली बता रहा हूँ, जरूर आना। जिसको भी अगर एक बार घूमना है, अगर स्वर्ग लाइक देखना है, तो मनाली आना जरूरी।
24: अब पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों की बाहर देखिए। यहाँ हर तरफ खूबसूरत मौसम का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का नजारा देख ये लोग मैदानों की तपिश भूल गए हैं।
27: अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
0: यहाँ शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए हैं। बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का और काफी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज्यादा वेदर अभी समर का है 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए और हम ट्रैकिंग में जाने वाले हैं।
24: शिमला में सैलानियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। अकेले मई के महीने में 7,80,000 के करीब वाहन शिमला पहुंचे। बाहर से आ रहे सैलानियों की भारी संख्या को देखते हुए इस बार पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है और शहर को 5 सेक्टर में बांटा है, साथ ही जगह जगह जवान तैनात किए गए हैं। वहीं श्रीनगर की डल झील पर सैलानियों की बहार है। दूर दूर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और शिकारा पर डल झील की सैर का आनंद ले रहे हैं। यहां के खूबसूरत नजारों ने इन सैलानियों का दिल जीत लिया है।
1: इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इधर बर्फ भी मिला हम लोगों को। इधर श्रीनगर में आए तो बहुत अच्छा मौसम था, शिकारा राइड भी किए और हाउस बोट में भी स्टे किए। हाउस बोट जो था वो बहुत मतलब 4 स्टार कैटेगरी में था, बहुत अच्छा था। इधर का वेदर बहुत अच्छा है, सोनमार्ग, गुलमर्ग, जीरो पॉइंट, पहलगाम, ये सब बहुत अच्छे जगह हैं।
24: चाहे होटल व्यवसायी हो या दूसरे स्थानीय कारोबारी, इन हिल स्टेशन पर सैलानियों की बढ़ती तादाद से इनके चेहरे खिल उठे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सैलानियों की बहार बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा GST कलेक्शन, देश भर में बढ़ते कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है ये इजाफा। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मिल्क डे, इस वर्ष की थीम है महिला किसानों का सम्मान, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को नई पहचान देने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में आज से महिलाओं के लिए शुरू हो रही है अन्नपूर्णा भंडार योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत। पर्यटकों के लिए खुल गई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीक से कर रही है दीदार, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा। अधिक मास और वीकेंड छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1, टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली से।
11: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: जिंदगी में दो लोगों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, और माँ जिसे तुमने हर दर्द में पुकारा है। अपने माता पिता का आदर करें, उनका ख्याल रखें। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने शो सास बहू और बेटिया में एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज को। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।

0: सासू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए। फिर शादी के बंधन में बंधेंगे अरमान अभीरा, घर में छाएगा डांस का धमाल। करीब आएंगे अपराजिता और रक्षित, होगी अपराजिता की जीत। और नाहर की वेडिंग एनिवर्सरी में झूम कर नाचेंगे रूही नाहर। फना होगा सूरज, गम में आंसू बहाएगी ईशा।
1: गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा।
0: शुरू होगा गुरु का बंदूक ड्रामा, घर में होगा नया तमाशा।
2: उठ पागल, कहाँ दोस्ते कहाँ रखे हमारे कंपाउंडर को? अगली आवाज आपके जवाब की होगी या हमारी बंदूक के चलने की।
0: होगी राज और नायरा की रोके की रस्म, घर में छाएगी खुशियाँ।

स्टार परिवार के जश्न में डांस के साथ साथ लगेगा खेल का तड़का भी। देखेंगे ये सभी नजारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अब मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप कहीं नहीं मिलते। आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर ऐसा ही कह रही है हमसे हमारी ईशा। ईशा, वैसे बात तो सच है, कुछ भी कर लें वो भी कर देते हैं हमारे माँ बाप माफ। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको ईशा और सूरज के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़। लेट्स चेक इट आउट।
1: ईशा को आई सूरज की याद,
2: वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज नहीं होती।
1: हर तरफ हुआ सूरज का एहसास।

0: देखी प्यार की तड़प।
1: तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकती तेनू, तेरी याद ने उंगला ते रोज नचाना मेनू।
0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में जैसे कि ऑडियंस को पता ही है कि सूरज फना हो चुका है ईशा और आकाश की नजरों में, लेकिन असल में तो वो जिंदा है और छुपकर सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात से अनजान है ईशा कि सूरज जिंदा है। उसे तो लग रहा है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी तो देखिए कैसे सूरज के गम में वो बहा रही है आंसू, उसकी शर्ट पहन रही है, उसे याद कर रही है और चारों तरफ उसे बस सूरज ही सूरज नजर आ रहा है। तभी तो वो पाव भाजी तो खुद बना रही है, लेकिन एहसास हो रहा है कि पाव भाजी सूरज बना रहा है।
2: बड़ा।

और इस पाव भाजी को खाकर वो सूरज की यादों में डूब गई है और साथ ही साथ आंसू भी बहा रही है। वैसे ये सारा नजारा दूर खड़े सूरज देख रहा है और कंफ्यूज है कि आखिरकार ईशा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी शादी तो आकाश से हुई है, लेकिन सूरज को ये नहीं पता कि अभी ईशा उससे बेहद प्यार करती है।

0: बिल्कुल, एक समय था सूरज जब पाव भाजी का ठेला इन शॉर्ट बिजनेस शुरू किया था और ईशा जी ने फुल ऑन सपोर्ट किया था और ईशा जी को स्वाद पसंद था सूरज के हाथों से बने पाव भाजी का।
1: सूरज का की गुंडागर्दी छुड़वाने के लिए ये एक पाव भाजी वाला स्टेप लिया था कि सूरज कोई काम करे और पापा जी को गर्व महसूस करवाए। IAS तो तब बहुत दूर दूर की बात थी, तो ऐसा लगता है कितने टाइम पहले की बात है। अब सूरज IAS बन गया है, ये सारी चीजें चेंज हो गई है, पर वो रहता है ना कि सूरज के हाथ की पाव भाजी बहुत फेमस थी, तो वो बड़े प्यार से ईशा को खिलाता था, सबको खिलाता था, सबको पसंद आती थी, तो इसी वजह से ईशा भी वो याद कर हर चीज सूरज की, सूरज से रिलेटेड वो याद कर रही है, वो महसूस कर रही है कि सूरज ऐसे खिलाता था शर्ट सूरज की, तो वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है ईशा को।
0: शो नॉस्टैल्जिया, एक्चुअली शो में पुराने एपिसोड की याद आ रही है लोगों को, एंड कहीं ना कहीं मतलब ईशा जी को इमेजिन हो रहा, मतलब सूरज जो है इमेजिन हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि सूरज ईशा जी की नज़र में मतलब कि अब नहीं रहा, ये दुनिया छोड़ चुका है, तो बहुत ही अंदर तड़प मच रही है ईशा जी के, तो वही सारी चीज़ें बाहर आ रही है। और सूरज के दिमाग में ये हो रहा है कि अगर ईशा जी ने मुझे एक साल डेढ़ साल पहले ही छोड़ दिया था, आकाश के साथ शादी कर ली थी, उसके बाद ये मेरी शर्ट क्यों रखी है और ये आकाश से झगड़ा क्यों कर रही है, एंड तीसरी बात ये कि पाव भाजी खा के मुझे याद क्यों कर रही है।
2: वहीं दूसरी तरफ आकाश को भी हो रहा है सूरज के आसपास होने का एहसास, तो वहीं भेस बदल कर सूरज आकाश पर नजर रखे हुआ है, क्योंकि उसे जानना है कि आखिरकार आकाश ने सूरज का मर्डर क्यों किया था। हालांकि सूरज तो बच गया, लेकिन सच का पता वो लगा कर ही रहेगा। ऐसे में आकाश सूरज तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है।

0: टीचर लग रहा है। कपड़े कहाँ से है तेरे पास?
1: देखिए कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, सूरज जो है वो मर गया है और ऑफ कोर्स मर्डरर मैं हूँ। तो एक मर्डरर का जो गिल्ट होता है कि पकड़ा ना जाए, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो रहा है, तो कोई उसे बार बार फोन करके मेरे कैरेक्टर को कह रहा है कि यू नो हमें पता है तूने मारा है, मुझे पता है तूने मारा है, सबको बता दूंगा। तो आकाश नहीं चाहता कि ये प्लान जो है सामने आ जाए, उसके बाद IPS का पद तो जाएगा ही जाएगा और जेल में भी जाएगा, तो इसलिए वो इतना वो हो रहा है। और ये सब सूरज ही कर रहा है ये जानने के लिए कि यू नो ये क्यों किया है इसने, इसका मोटिव क्या है। ऑडियंस को पता है कि सूरज नहीं मरा है, बट हमें नहीं पता है कहानी में कि सूरज मरा है। तो ये वो सीन है जहाँ पे वो शक की निगाह में सबको देख रहा है, एक स्पॉटलाइट इफेक्ट आ रहा है।
2: तो भाई जब सूरज सामने आएगा और सच का खुलासा होगा, तब होंगे ढेर सारे तमाशे जो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से चंदन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने की सेवा अपने माँ बाप की। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और यही मैसेज लेकर आई हैं हमारे लिए हमारी रूहानी। लेकिन क्या हो रहा है गुरु और रूहानी की कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर, क्योंकि यहाँ तो है ट्विस्ट का जुनून। कैसे? ऐसे।

0: आ गई है दरार, एक तरफ राध्या के पास है उसकी माँ की कसम, तो दूसरी तरफ प्रथम को लग रहा है कि राध्या ने फिर एक बार उसे धोखा दिया है। ऐसे में जहाँ किचन में काम करते करते राध्या को चोट लग जाती है, तो वही पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा है प्रथम।
1: किसी भी हाल ये बच्चों निभाना ही है।

0: को निभाया, मुझे यकीन दिलाया कि ये तुम्हारे मन में कोई छलकपट नहीं। और अब जब मैंने इस रिश्ते को मान लिया, तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया, तब क्यों किया तुमने ऐसा राधिया? क्यों किया ऐसा राधिया? काश मैं तुम्हारे बारे में पहले ही जानता था, आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही। राधिया क्यों किया ऐसा? क्यों क्यों क्यों? मुकाम कमले सरहद के
1: पार आई थिंक वही है, दोनों का अनसेट कनेक्शन है कि दोनों ही दर्द में हैं पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम को ऐसा लग रहा है कि मे बी इतने टाइम से राध्या का सच में नाटक ही था, उन्हें सच में यही सब चाहिए था, प्रॉपर्टी ही चाहिए थी। राध्या बात नहीं कर पा रही है कि माँ की दीवी कसम के बारे में कैसे बताऊँगी प्रथम को, क्या एक्सप्लेन करूँगी। तो दोनों ही दर्द में हैं और दोनों ही बहुत परेशान हैं, पर एक दूसरे का दर्द ना कम कर पा रहे हैं ना साथ में बांट पा रहे हैं। तुम्हारा मेरा
2: मिलना पहले ही प्रथम और राध्या का रिश्ता बिगड़ा हुआ है और उसमें आग में घी का काम करने पहुंच गई है कामिनी, जो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राध्या की ये साड़ी ले जा रही है जिसे प्रथम ने गिफ्ट किया था। भाई पहले तो राध्या ये साड़ी देने से कर देती है इनकार।

0: जाना है ना।
1: कोई नहीं आसमां पे तुमसे रोशन तारा।
2: लेकिन फिर जब राध्या देखती है कि प्रथम कमरे में आ गया है तो वो ये साड़ी कामिनी को दे देती है। प्रथम को बुरा लगे इसलिए और प्रथम राध्या से नाराज भी हो जाता है।
0: आप नहीं चाहिए सर, अब हमें इसकी जरूरत है।
3: कामिनी जी, आप रखिए इसे भी कुछ गिफ्ट देने लायक
2: लेकिन जब प्रथम वहाँ से चला जाता है तो वो बहाना कर कामिनी से ये साड़ी वापस भी ले लेती है।
0: जब जब हम ये साड़ी पहनते हैं ना तो मेरा दिन बहुत बिगाड़ जाता है। कभी हमें दादी से डांट पड़ती है, कभी प्रथम सर से डांट पड़ती है, पूरा दिन रो रो कर बिताते हैं हम। आज के दिन हम वैसे भी कुछ अशुभ नहीं चाहते।
1: तुमसे प्यारा यारा,
4: अभी वो बस धीरे धीरे और ज्यादा चीजें कर रही हैं कि प्रथम और भी ज्यादा नाराज हो जाएं। तो प्रथम अभी कमरे में भी नहीं रह रहे, राध्या ने उन्हें कमरे से जाने के लिए भी कह दिया है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मैं

0: जल्द से जल्द ये सब खत्म कर दूँ, माँ का वचन पूरा कर दूँ। और उसी बीच उन्हें बहुत तकलीफ पहुँच रही है क्योंकि करना नहीं चाह रही पर करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात रीज़न भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्यों करवा रही है माँ ऐसा। तो बस राध्या वापस से दिल टूटे आशिक की तरह घूम रही है।
1: तो भाई फिलहाल तो प्रथम और राधा की जिंदगी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। अब देखना होगा प्यार के बीच आई ये गलत फहमियाँ कैसे दूर होती हैं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉम और डैड का प्यार, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको स्टार प्लस के इस ग्रैंड फैशन इवेंट की ओर, जहां सारा स्टार परिवार आया है एक साथ और कर रहा है रैंप वॉक। जी हाँ, फैशन के रंग रिश्तों के संग।
1: बढ़ा एंटरटेनमेंट का पारा। फैशन के मंच पर जमी डांस की महफिल। कहीं रोमांस, कहीं मस्ती और कहीं फैशन के रंग। हर जोड़ी चला रही है जादू अपने रिश्तों के संग। गेम्स और ग्लैमर का हुआ महासंगम। स्टार प्लस के स्पेशल शो फैशन के रंग रिश्तों के संग में इस बार एंटरटेनमेंट का लेवल पहुंच गया है एकदम हाई, क्योंकि आज क्या अनुपमा, क्या प्रेम राही, क्या अरमान अभीरा, क्या अंगद वृंदा, क्या सचिन साइली और क्या शिव शालिनी, सभी ना सिर्फ जमकर डांस कर रहे हैं बल्कि खेल खेल में कर रहे हैं अनलिमिटेड मस्ती भी, वो भी साथ साथ। और उनके ये सारे नज़ारे लेकर आया है सास बहू और बेटियां। तो आइए नजर डालते हैं फैशन के इस सेलिब्रेशन पर। रंग नंबर एक, चला अनुपमा का जादू। जहाँ अनुपमा वहाँ डांस, जहाँ डांस वहाँ एंटरटेनमेंट, और जहाँ एंटरटेनमेंट वहाँ ढेर सारी खुशियाँ। तभी तो आज अनुपमा भी अपनी यही खुशी जाहिर कर रही है डांस करके।

0: ये मुझे अनुराग, अंजलि, रिया, ये लोग जो कर रहे हैं, ये पूरा जो इवेंट उन्होंने किया है, उन्होंने बताया कि यू नो वेयर दिस आइडिया केम फ्रॉम, यू पुट दैट मेट गाला पोस्ट. मुझे बहुत मजा आता है ऐसी सारी चीजें होती है, कभी सडनली बैठे बैठे अगर टाइम हो तो मैं डाल देती हूँ. तो ये व्हेन वी सॉ दैट वी रियलाइज व्हाई शुड वी डू अ मेट गाला, या लेट अस डू दिस. So, yeah, thank you so much for giving the credit. But वैसे Star Plus में इतने सारे लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, उसके बावजूद एक एक्टर का आइडिया लेकर उन्होंने उसे यू नो इतना बड़ा बना दिया. थैंक यू.
1: रंग नंबर दो, अनुपमा संग जोड़ियों का डांस स्टेशन. भाई फैशन का ये सेलिब्रेशन केवल अनुपमा ही नहीं बल्कि स्टार प्लस की सारी जोड़ियां कर रही हैं. तभी तो देखिए कैसे अनुपमा के साथ सभी जोड़ियां पहुंच गई हैं डांस का तड़का लगाने और एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाने.

0: We're very excited. You can see how giggly and happy we are.
1: Yeah.
0: हम बहुत खुश हैं इतना तैयार होके और हम आपके लिए एक अच्छा फैशन इवेंट प्रस्तुत
1: करने के लिए हम ऐसे रेडी होके आए हैं.
0: Krass.
1: और इसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि हमने बहुत गर्मी में ऐसे आउटफिट पहन के विदाउट एसी, अभी फिलहाल हम विदाउट एसी में ही है, अंदर जाके करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और
0: मजा आ रहा है. सबसे मिलने का मौका मिल रहा है. मैं सबसे मतलब मैं तो सभी से मतलब नॉट अद्रिजा आई मेट बिफोर बिकॉज यू नो व्हाई बट अदर्स आई मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. सम ओल्ड फ्रेंड्स, सम न्यू. वेरी एक्साइटिंग.
1: एंड स्टार के इवेंट्स मतलब ये होता है कि इट्स लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर. मतलब आई फील लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर कि सारे शोज से सब एक साथ आते हैं और मिलते हैं और इस बार आप हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे.
0: मेरा तो क्या बोलते हैं उसको, व्हेन यू गो टू अ न्यू कॉलेज तो पहला क्या होता है,
1: फर्स्ट डे फ्रेशर्स,
0: मतलब जब मिलते हैं ना नए स्टूडेंट से पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट.
2: रंग नंबर 3, प्रेम राही की डांस जुगलबंदी. भाई फैशन के रंगों के साथ रिश्तों का सेलिब्रेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेम और राही वो दोनों कैसे पीछे रहते. ऐसे में देखिए कैसे फैशनेबल बनकर ना सिर्फ अपना ग्लैमरस अवतार दिखा रहे हैं बल्कि जमकर डांस भी कर रहे हैं.

0: Yes, we are presenting Glorious Gujarati, and I'm in Glorious Gujarat. So, of course, हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गुजराती जब स्पेशली नवरात्रि या फिर कुछ होता है डांडिया खेलने के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा इज अ वेरी स्मॉल थिंग्स जो हर एक चीज़ों को प्रॉपर जगह पे एकदम सेट किया गया है ताकि वो जो लुक चाहिए या फिर जो स्टेट के साथ जो जाता है वैसा एक लुक क्रिएट किया गया है एंड हर्षल जी ही इज़ अमेजिंग हर बार जब स्टार के कोई भी इवेंट होता है चाहे वो स्टार परिवार अवार्ड्स क्यों ना हो या फिर जब भी कुछ भी होता है उनके साइड से ही आते हैं आउटफिट एंड जैसे मैंने कहा कि इज़ अमेजिंग सो सी लुक एट दिस मुझे बहुत पसंद आया है सिर्फ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है बाकी तो एवरीथिंग इज़ फाइन
1: रंग नंबर 4 अरमान अभीरा के प्यार की गाड़ी फैशन रिश्ता और रोमांस इन सब में अरमान अभीरा भले ही स्लो मोशन में आते हैं लेकिन उनकी रफ्तार ऐसी कि वो सबका दिल चुरा ले जाते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां अरमान अभीरा न सिर्फ एक दूसरे का दिल चुरा रहे हैं बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत रहे हैं

0: रंग नंबर 5 अंगद वृंदा का काला जादू। भाई प्यार का जादू तो अंगद वृंदा पर सर चढ़कर बोलता ही है, लेकिन आज इनका काला जादू भी चल रहा है क्योंकि दोनों फैशन के साथ साथ अपने रिश्ते में प्यार की आग भी लगा रहे हैं।
1: तो आग लगेगी।

रंग नंबर 6, सचिन सायली का लवली अंदाज। भाई यूं तो सीरियल में सचिन सायली अपनी पंटरगिरी दिखाते हैं, लेकिन आज फैशन के इस मंच पर न सिर्फ ये अपना ग्लैमरस अवतार दिखा रहे हैं, बल्कि अपने ठुमकों से अपने रिश्ते का जादू भी चला रहे हैं।

रंग नंबर 7 शिव शालिनी लाए फैशन की गुड न्यूज। अब सीरियल में अंदाज दोनों का भले ही कैसा भी हो, लेकिन जब फैशन की बारी आई तो शिव शालिनी भी पीछे नहीं हटे अपना शाही अंदाज दिखाने में, और तो और फैशन के मंच पर अपना रोमांस दिखाने में।

रंग नंबर 8, गोदी उठाओ, प्रॉप्स लाओ और डांस दिखाओ। यूँ तो सभी जोड़ियों ने एक एक कर अपने डांस का जलवा दिखाया, लेकिन अब बारी आई है जीत और हार की। अब फैशन का सेलिब्रेशन है तो यहाँ ग्लैमर होने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, और एंटरटेनमेंट के लिए खेल खेलना तो बनता है। इसीलिए खेल को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षित और अपराजिता, और आज तो रक्षित और अपराजिता ने पहले खेल को सभी के सामने करके दिखाया।

रक्षित और अपराजिता ने गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बता दिए और बुला ली तीन जोड़ियां यानी प्रेम राही, अरमान अभीरा और अंगद वृंदा को, जो ये खेल खेलेंगी। बस फिर क्या, बजर के बजते ही गाने बजे और इन तीनों जोड़ियों का गेम शुरू हो गया, जिसमें ढेर सारी मस्ती दिखाई दी। कोई गिरा, कोई जीता, कोई हारा और किसी ने जमकर डांस किया।

0: तो मी एंड शिवम वी बोथ आर वेरी कॉम्पिटिटिव, तो हम बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि जीतना हमें है. अभी देखते हैं, आज तो एक कपल नहीं, दो कपल नहीं, छह कपल्स है एक साथ. तो हाँ, तो जैसे कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इतने सारे कपल के बीच में, कौन जीतता है और कौन हारता है. टक्कर तो देना ही है, तो बनता है. जीतना हारना बाद में, जो लिखा होगा किस्मत में वही होगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. सो या
1: एक्चुअली काफी डिफरेंट थी लुक, और इवेंट का पूरा थीम भी काफी डिफरेंट था. फैशन के रंग, रिश्तों के संग, और वैसा ही इवेंट हुआ. काफी काफी कुछ हुड़दंग भी किया हमने, और इट वाज मोर अबाउट जस्ट हैविंग फन एज अ कपल. और वही हम लोगों ने शो में किया. टास्क थे, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स थे, बट थोड़ा सा बीच में वायलेंट भी हो गया था गेम. सो वी वर जस्ट एंजॉइंग. और इतने खूबसूरत कपड़े हर्षल ने डिज़ाइन किए हैं हमारे लिए, और हमारा क्या नाम था हमारा, राजस्थान रंगरेज. तो मज़ा आया काफ़ी. इट वॉज अ गुड शो.
2: नहीं, अंदर तो वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा था. वी आर सब लोग सोना में बैठे थे, सबका 4-5 किलो कम हो गया. जोकिंग. सो इट वॉज जस्ट अ वेरी फन एनवायरमेंट टू बी इन. एनर्जी इतनी हाई थी, डांसेस थे, सीक्वेंसेस थे, मस्ती था, मजाक था, गेम्स थे, तो जाहिर सी बात है गर्मी और पसीने तो निकलेंगे ही. बहुत मज़ा, मतलब हमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन सबकी उत्सुकता देखकर गेम्स के प्रति बहुत मज़ा आया. एवरीवन वाज रियली कंपेटिटिव.
3: रंग नंबर 9, दिल घूमे चक्कर खाए. अब बारी आई दूसरे खेल की, जहां पर मंगा लिया गया है कपड़े का पूरा थान, और बुला ली गई है दो जोड़ियां, सचिन सैली और शिव शालिनी की. ऐसे में रक्षित और अपराजिता ने बताया कि इन्हें गेम कैसे खेलना है. बस फिर क्या, बजर के बजते ही गाना शुरू हुआ, और गाना शुरू होते ही शिव और सचिन दोनों ने ही अपने अपने जोड़ीदार को गोदी में उठा लिया, और फिर ऐसे चक्कर खाए कि इनके बीच लपेटा मार प्यार शुरू हो गया.

अब इस खेल में शिव शालिनी गिरे भी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा थान भी कवर कर लिया। ऐसे में विनर वही घोषित हुए और दोनों ने जमकर रोमांटिक डांस किया।

0: बहुत एक्साइटेड हूँ. ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा कुछ ऐसे गेम्स और ऑन स्टेज परफॉर्म करेंगे जो एक एक एक अलग जोन है और किरदार में रहते रहते करने में ये सब करने में मज़ा आता है.
1: इन्होंने कहा काफ़ी टाइम के बाद, बट मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड. मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है.
0: शो के जो इतने धड़ाम धड़ुम हमारा जो थ्रिलर चल रहा है, एक्शन चल रहा है, उसके बीच में ऐसे मस्ती करना इट्स फन. स्पेशली अभी जो मनाली वाला हम लोग जो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है एंड आई जेन्यूनली होप ऑडियंस लाइक्स दैट. तो उसके बीच में आइए,
1: हाँ प्रोमो
0: उसके बीच में ये सब चीज़ें एक अलग ही फ्लेवर देगी.
2: रब्बा ने तुझको
3: वैसे फ्लेवर का अलग रंग तब चढ़ता है जब सचिन सायली भी मंच पर हो. ऐसे में सचिन सायली भी पहुंच गए हैं और देखिए कैसे शिव शालिनी और रक्षित अपराजिता के साथ वो भी प्यार का तड़का लगा रहे हैं.

रंग नंबर 10, घंटी बजाओ और डांस करके दिखाओ। अब बारी है तीसरे खेल की और ये खेल होने वाला है जबरदस्त, क्योंकि सारी की सारी जोड़ियां पहुंच गई हैं मंच पर धमाल मचाने के लिए। और यहाँ तो हर जोड़ी अपने लिए खेलेगी और ये खेल इतना अनोखा कि सामने रख दी गई है हथौड़ी और रक्षित अपराजिता ने शुरू कर दिया है डांस स्टेप दिखाना। इसे देखकर हथौड़ी उठाना है, घंटी बजाना है और डांस करके दिखाना है।

इस खेल में दम तो था लेकिन एंटरटेनमेंट थोड़ा कम था क्योंकि अनुपमा जो नहीं थी, ऐसे में अनुपमा भी पहुंच गई है मंच पर अपना तड़का लगाने के लिए। और देखिए कैसे अनुपमा भी डांस के स्टेप बता रही है और सभी जोड़ियां उसे गेस कर रही है और इसी बीच मच रही है धमा चौकड़ी भी।

रंग नंबर 11, हु इज विजेता। भाई यूं तो यहाँ पर डांस का तड़का लगा, ग्लैमरस बिखरा और खेले गए ढेर सारे खेल और जोड़ियों के बीच मची जीत हार की मस्ती भी। लेकिन जब रिश्तों की बारी आती है तो रिश्तों में कभी जीत हार नहीं होती। ऐसे में आज सभी जोड़ियों को एक एक कर अनुपमा ने जीत का ताज पहनाया और सभी जोड़ियों ने अपने रोमांस का तड़का लगाकर अपने प्यार का जादू भी चलाया।

वैसे इन जोड़ियों के बीच आज एक और नई जोड़ी इंट्रोड्यूस की गई है, ईशान और नयोनिका की। अब स्टार प्लस पर नया सीरियल आ रहा है तो ऐसे में नई जोड़ी को इंट्रोड्यूस करना तो बनता है। खैर, कुल मिलाकर फैशन के रंग रिश्तों के संग में इस बार डांस, ड्रामा, गेम्स और ग्लैमर का ऐसा शानदार संगम देखने को मिला जिसने हर दिल को खुश कर दिया है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज कोरी लगती है, दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी लगती है। ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी अभीरा। अभीरा, कितना प्यारा मैसेज है ये। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अरमान और अभीरा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी कहानी में आज। हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, लेकिन क्या यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहे हैं नए नए ट्विस्ट्स? लेट्स चेक इट आउट।
1: जो करना चाहिए घर वाले

शुरू हुई शादी की तैयारियां। अभीरा की खुशी,

स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर एक बार अरमान और अभीरा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसके लिए अभीरा के साथ साथ सभी घर वाले काफी एक्साइटेड हैं और सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो है मुक्ति और मायरा। ऐसे में शादी की सभी रस्में शुरू हो चुकी है, दुल्हन को सजाया जाएगा और देखिए होने वाली दुल्हनिया के साथ कैसे सभी लोग डांस कर रहे हैं और मना रहे हैं ढेर सारी खुशियां। पर इस डांस में सभी घर वाले लेकर आए हैं अभीरा को भी और यहाँ शुरू हो गया है इनके डांस का धमाल।

0: ऐसे में शगुन की हल्दी भी लग गई है अभीरा को। लेकिन यहाँ अभीरा थोड़ी टेंशन में नजर आ रही है, लेकिन अपने परिवार वालों की खुशियाँ देखकर वो भी इन खुशियों में शामिल है।
1: फाइनली इतनी जंतोजहद, इतनी मेहनत, इतना रोना धोना सब करने के बाद, खून पसीने की मेहनत करने के बाद फाइनली अभीरा अरमान मम्मा पापा की शादी होने जा रही है। एंड हाँ, अब घर में अच्छा माहौल है, थोड़ा भी मायरा के साथ सीन वीन हुआ ऋषभ का, बट उसके बाद उसको थोड़ा सबक सिखा के मायरा इज ऑल्सो हैप्पी। ध्यान मायरा का भी पूरा मम्मा पापा की शादी पे शिफ्ट हो चुका है। एंड सब है, थोड़ा घर में थोड़ा टफ माहौल है, बट फिर भी सब शादी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड या अभी मम्मा का ब्राइडल शार था, तो वही हम लोग डांस कर रहे हैं। हमें तो बस मौका चाहिए नाचने का, तो हम कभी भी नाचना शुरू हो जाते हैं।
0: भाई होने वाली दुल्हन को देखिए कैसे सभी एक एक कर शगुन की चीजें दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, और अभीरा इन सभी गिफ्ट्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रही है।

लेकिन इस सिचुएशन को भी बखूबी संभाल लेती है तान्या, जो अपने रिश्ते अभीरा से सुधार तो रही है, साथ ही साथ उसके लिए लेकर आई है शादी का जोड़ा और गहने, जिसे बड़े ही प्यार से अभीरा ने एक्सेप्ट भी कर लिया है।

0: तो मुक्ति और मायरा बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि यू नो डिवोर्स हो गया अरमान अभीरा का और अब जाके वो शादी करने वाले हैं, तो हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं. 8 साल वो लोग दूर थे, इसके पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप में, बट फाइनली अब दोनों ने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, दोनों रेडी हैं शादी करने के लिए, तो हम सब सुपर एक्साइटेड हैं. मुक्ति और मायरा साड़ी प्रेस करने जाते हैं, बच्चा दिमाग, उनको लगता है कि लेट्स डू समथिंग, तो वो लोग साड़ी प्रेस करते हैं और शादी की साड़ी चला देते हैं. तो मेरा इसके पहले अभीरा के साथ इतना कुछ झगड़ा हुआ है, इतनी कुछ चीज़ें हुई हैं, कभी मैंने ऐसे हार्टफुली उनको सॉरी नहीं बोला या कभी मैंने एक्सेप्ट नहीं की चीज़ें, या हमारा रिश्ता जो इतना फ्रेंडशिप है, जो इतना बॉन्ड है जो बिल्ड हुआ है, तो मैं फाइनली उनको एक न्यू साड़ी और ज्वेलरी देती हूँ और मैं अपने तरफ से कहती हूँ कि जो भी मुझसे गलती हुई या जो भी चीज़ हमारे बीच में हुई, नाउ वी आर सिस्टर्स, अब हम बहनें हैं. और अभीरा भी इमोशनल हो जाती है बिकॉज अभीरा की भी कोई बहन नहीं है, मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं है. तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीन, बहुत अच्छा सीन है और डांस मस्ती भी है, अभीरा की एंट्री है, डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, तो यहाँ बहुत कुछ है, बहुत फन है.
1: वैसे इस शादी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि बिगड़ जाएगी अरमान की तबीयत और वो अभीरा को ही भूल जाएगा, तो अभीरा इस मुश्किल घड़ी से कैसे अरमान को बाहर निकालेगी ये देखना होगा.
2: क्या हुआ अरमान, क्या सोच रहे?
3: I'm sorry, मैं आपको जानता हूँ, आपको जानता हूँ.
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: जिस अंधेरे में किस्मत तुम्हें धकेल रही है, मैं वहां से तुम्हें निकाल के रहूंगी.
5: अपने माँ बाप को अपने घर पर ऐसे रखना जैसे तुम रहते हो अपने माँ बाप के घर पर. आज ऐसा ही कह रही हैं हमसे हमारी अपराजिता. ओ माय गॉड अपराजिता, ये सेंटेंस कितना ब्यूटीफुल और इसमें कितनी डेप्थ है और कितना मीनिंग है. वैसे बात तो सच है, देखिए मैं तो हमेशा ही चाहूंगी अपने मॉम डैड के साथ रहना. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अपराजिता और रक्षित के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि इनकी कहानी में भी आ रहे हैं हम सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जो लेकर आ रहे हैं कहानी में सुपर ड्रामा.
1: अपराजिता के नाम हुई ट्रॉफी. पूरा हुआ अपराजिता का सपना. रक्षित को मिली अपने ख्वाबों की मालिका. प्लस की सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में भाई आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब ताना बाना कंपटीशन 2026 का विजेता अनाउंस होगा. और देखिए कैसे सभी कॉम्पिटिटर्स मंच पर आ गए हैं जहां की जा रही है सभी बुनकारों की तारीफ. लेकिन सबसे खास तारीफ हुई अपराजिता की, क्योंकि भाई उसकी साड़ी इतनी कमाल थी कि उसने सभी का दिल जीत लिया. भाई दिल क्या, अपराजिता ने तो अपने नाम कर ली ताना बाना कंपटीशन 2026 की ट्रॉफी.
6: अब समय आ गया है, आप लोग जानना चाहते होंगे कि ताना बाना 2026 के विजेता के बारे में.
7: ताना बाना 2026
6: का विजेता वो होगा जिसकी साड़ी में इस वर्ष नर्मदा मैया के श्रृंगार में अर्पित करूंगा. और वो महान कलाकार है

0: अपराजिता शर्मा।
1: भाई जैसे ही अपराजिता का नाम अनाउंस हुआ, देखिए कैसे उसके तो होश ही उड़ गए। भाई पूरे परिवार वाले, यहाँ तक कि रक्षित के परिवार वाले भी बेहद खुश हुए। लेकिन उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो इस कंपटीशन की विजेता है। उसकी आंखों से बहने लगे आंसू और खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा।
2: बहुत दिनों से हम मेहनत में लगे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उन सारे प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे। सब फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया था और 25 लाख इस कंपटीशन की प्राइस मनी है, जो जीतना बहुत ज़रूरी है। एक तो दीदी के लिए खुद भी कि वो अपने आप को एज अ स्टार बुनकर वो आपको लॉन्च करेंगी, और दूसरा हमारी शादी के लिए भी, जहाँ पे हमारी डिमांड की गई है 15 लाख की। तो हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये अगर हम जीत जाते हैं तो उससे हमारे पास 15 लाख आएंगे, उससे हमारी शादी भी हो जाएगी।
3: अगर हो तुम तो मैं खुद को भुला दूं।
1: भाई अपराजिता के अलावा यहाँ और कोई खुश है तो वो है रक्षित, क्योंकि अब रक्षित अपराजिता से प्यार जो करने लगा है, और उसकी यही कोशिश थी कि अपराजिता ही इस कंपटीशन की विनर बने। ऐसे में देखे कैसे, भाई मौका मिलते ही रक्षित ने थाम लिया अपराजिता का हाथ।

0: देखिए कैसे ट्रॉफी मिलते ही अपराजिता का पूरा परिवार मंच पर आ गया और उसकी तारीफें करने लगा। यहाँ तक कि माँ और भाई जो उसे आज तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वही आज वो भी उसके साथ आ गए और उससे माफी मांगने लगे।
1: मैंने कहा था ना, आज से सब लोग मुझे अपराजिता के बाद ऐसे अच्छे जाने देख रहे हैं। अपराजिता का बाप आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है।
2: मैं जानती हूँ कि तुझे लाख शिकायतें होंगी तेरे पापा की तरह मैंने तेरा साथ दिया, क्योंकि शायद मुझे तेरी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं।
0: ऐसे में अब आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर रक्षित कैसे अपराजिता से करेगा अपने प्यार का इजहार। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: जिस घर में माँ बाप रहते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और यही मैसेज लेकर आए हैं हमारे लिए हमारे नाहर और रूही। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है कहानी में आज, क्योंकि यहाँ भी कहानी रोजाना लेती है इंटरेस्टिंग मोड़, आती है नई नई सिचुएशन, नई नई कन्फ्यूजन और हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। लेट्स चेक इट आउट।
0: एक दूसरे में खोए रूही और नाहर।
4: जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू।
0: लगा रोमांटिक डांस का तड़का।
4: तू कित

0: बावरे रूही और नाहर की वेडिंग एनिवर्सरी
1: कटे तेरे संगे आ संगे आरे के राता लंबे आ लंबे आरे कटे तेरे संगे आ संगे आरे।
0: दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर में आज आ गया है खुशियों का मौसम। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि रूही और नाहर की वेडिंग एनिवर्सरी जो है जिसे धूमधाम से घर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाई आज तो रूही को मिला है ये प्यारा सा सरप्राइज, और इस खुशी के मौके पर रूही और नाहर का डांस देख लीजिए, कैसे ये दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। वैसे इनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं बाकी के घर वाले भी। भाई बात करें एनिवर्सरी की तो रोमांटिक मौसम है, तो ऐसे में ये दोनों का करीब आना तो बनता ही है, तो डांस ने दे दिया इन्हें करीब आने का बहाना।

0: रूही और नाहर काफी खुश हैं, लेकिन इनके डांस और इनके एनिवर्सरी से दादी नाराज हैं।
1: एनिवर्सरी पार्टी की खुशी दादी को नेवर, क्योंकि दादी को नहीं चाहिए एनिवर्सरी। वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें वो मर जाती तो अच्छा था, ये दादी बोल रही है। ऑफ कोर्स खैर अब बच गई है तो पार्टी कर रहे हैं, नाहर तो बावला है ही, पार्टी में शामिल भी होना पड़ेगा। करने दो पार्टी, करने दो, देखते बाद में दादी क्या करती है। सोचती तो बहुत कुछ है, मन तो करता है कि डांस करिए तो ऊपर से झूमर गिरा दूँ, अगर स्टेज बना है तो स्टेज में गड्ढा कर दूँ, किसी भी तरह बस रूही से छुटकारा पा लूँ।
0: भाई आज रूही सजी धजी है इस खास मौके के लिए, और ऐसे में रूही और नाहर मिलकर केक काट रहे हैं और बांट रहे हैं खुशियाँ। खैर आज तो रूही और नाहर खुश है, लेकिन देखना होगा कि इनकी खुशियों पर कब और कैसे ट्विस्ट का ब्रेक लगता है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: माँ की दुआ मुझे हर मुसीबत से बचाती है और पिता की सलाह मुझे हमेशा तरक्की दिलाती है। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। यहाँ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज लेकर हाजिर है हमारी सास बहू अर्पिता की एयरलाइन। खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड और बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की पेटी।

कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में हो रही है रोके की रस्म। जी हाँ, जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले हैं राज और नायरा। भाई राज नायरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में राज की मम्मी के साथ साथ सभी घर वाले काफी खुश हैं। रोके की रस्म हो रही है सारे रीति रिवाजों के साथ। होने वाली दुल्हन को शगुन वाली चुनरी उड़ाई जा रही है और सभी लोग काफी खुश हैं। ऐसे में इस शादी में मौजूद है ध्रुव भी, जो दुल्हन की तस्वीरें और वीडियोस निकाल रहा है। अब इसके पीछे ध्रुव का क्या मकसद है ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल घर में खुशियों का मौसम है क्योंकि राज शादी के लिए जो मान चुका है।

आज मैं जो तैयार होकर आई हूँ, इतनी सुंदर साड़ी और इतने गहने मैंने पहन के, मतलब मेरी खुशी फूले नहीं समा रही है, बिकॉज आज राज का रोका है। वो राज जो घर छोड़ के चला गया था, जिसने झगड़ा किया था डिम्पल के साथ में कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, और वो कह देता है कि हाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ।

0: तो ये खुश है और आज राज का रोका है नायरा के साथ में। ओहो, मेरी तो सारी लुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली मेरी साड़ीज, बिकॉज स्पेशली हैंड पिक्ड होती हैं और डिज़ाइंड होती हैं। आई लव माई डिज़ाइनर्स। आई पूरा लुक जो है शो का वो इतना सुंदर है क्योंकि हर कैरेक्टर का अगर आप देखें तो सबके कपड़े अलग अलग हैं और सबके कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े हैं। ये ऐसे नहीं है कि रन ऑफ द मिल हैं या आपको कहीं पर दिखाई दे जाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही कमाल की बात है, बिकॉज जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमें एक एक्टर की के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप एनहांस हो जाता है। कॉस्ट्यूम्स मीन अ लॉट।
1: वैसे इस सभी जश्न से आरंभ ही नदारद है, अब क्या है इस शादी में आने वाला ट्विस्ट, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

0: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहां राजू ने रचा ली है शादी और लेकर आया है वो अपनी पत्नी को घर पर। यहां सभी घर वाले काफी शौक है, क्योंकि किसी को बिना बताए राजू ने इतना बड़ा कदम जो उठा लिया है। असल में ये लड़की मुसीबत में थी और ऐसे में राजू ने इससे शादी करने का फैसला ले लिया, जिस बात से पहले तो घर वाले नाराज हुए, लेकिन फिर इन्होंने बात को समझा और इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया।
1: राजू रात भर घर नहीं आया है,
2: नहीं।
1: और ना ही उसका कोई मैसेज आया है। मुझे अंदेशा है जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है।
3: आसपास पूछा पर किसी को कुछ पता नहीं है। चंपा की दुकान भी बंद है, ये दोनों साथ तो नहीं गए होंगे।
2: हे भगवान,
4: राजू जी,

0: पूरी रात तो गायब रहा किसको बिना बताए, और सुबह वापस आ गया है तो शादी करके वापस आ गया। कान और मुंह के साथ साथ दिमाग चलना भी बंद हो गया क्या तुम्हारा?
1: तो होता ऐसा है कि राजू इस घर का सबसे ओबीडियंट लड़का है, अपने माँ बाप की बातों को सर आँखों पर रखता है। होता क्या है कि इसको कुछ गुंडे उठा के लेके चले जाते हैं और फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि ये सुसाइड करने लगती है, क्योंकि ऐसा पैनिक सिचुएशन बनता है।
2: वो मुझे किडनैप करते हैं और मेरे साथ कुछ गलत होता नहीं है, बट ऐसा दिखाते हैं कि कपड़े फाड़ दिया और सबकी अब बदनाम हो जाएगी, अब तो कोई से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे बोलता था कि ठीक है तुम्हारा कर्जा है तो मैं माफ़ कर दूंगा, मुझसे शादी कर लो। तो उसने इस चक्कर में किडनैप किया, कपड़े वपड़े फाड़े, बट मैं लोगों को बताऊंगी तो कोई नहीं मानेगा कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई मानेगा ही नहीं। तो मैं सोचा मेरी वजह से मेरी माँ की बदनामी होगी, तो मैं फांसी लगानी चाहती हूँ। फिर तभी राजू आकर बचा लेता है।
1: सो फिर सिचुएशन ऐसा होता है कि मैं इनको सेव करता हूँ और फिर मैं शादी कर लेता हूँ इनसे। अब फिर जब मैं घर में एंट्री लेता हूँ तो मैं बहुत असमंजस में हूँ कि मैंने पहली बार कोई ऐसा डिसीजन लिया जो फैमिली के अगेंस्ट है। मुझे पता नहीं है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। उन्होंने मेरे ऊपर वैसे ही बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैं अनाथ था, मेरे जीवन में कोई भी नहीं था, तो मेरे लिए मेरे माँ बाप भगवान जैसे हैं। तो उनके अगेंस्ट जाने का सिचुएशन ये था, प्लस विवेक को तो पॉइंट चाहिए होता है मेरे बारे में बोलने के लिए, तो उसको एक और पॉइंट मिल गया। उसको चिंता है कि ये एक और मेंबर बढ़ जाएगा तो उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, तो इस टेंशन में है वो। लेकिन फाइनली ऐसा होता है कि फैमिली वाले मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे।
3: तभी तो यहाँ पर रीति रिवाजों के साथ हो रहा है नए जोड़े का गृह प्रवेश। तो भाई अब ये नया ट्विस्ट घर में क्या तमाशे लाएगा ये देखना होगा।
4: हमारे माता पिता हैं हमारी जिंदगी में हम सब के लिए सबसे स्पेशल, और उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम सब पर, जो है बहुत ही रॉकिंग। लेकिन जब पड़ती है ना उनकी डांट या वो रूठ जाते हैं हमसे, तो ये डेफिनेटली होता है हम सब के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें, जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये अगला सेगमेंट, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज़।

पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं रूपाली गांगुली की। फिलहाल ही में उन्होंने लाइट के इशू के चलते सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, अब उसका बवाल मच गया है। जी हाँ, दर्शकों का कहना है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीएम देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर रही हैं, जिस पर अब रूपाली ने फिर एक बार अपना क्लेरिफिकेशन दिया है।

0: देख लीजिए लव टू शेफ्स का ये प्रोमो, जहां इन कलाकारों को मिल गया है मैंगो आइसक्रीम बनाने का चैलेंज।
1: ये देखिए मैंगो आइसक्रीम,
2: आम के अंदर डंडी डाल दी और क्या,
3: ये काटना नहीं था, आपने कवर खराब कर दिया।
4: और निकालो, इसमें भरना, अंदर डाल के प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर द कवर।
2: ये मेरी मदद तूने अपने कवर के लिए की।
5: मैंने काट दिया।
2: नहीं रुक जा, अभी ये गलत काट दिया
4: छिलके में।
6: अरे वही अभी काट दिया हम लोगों ने।
4: हमने तो काट दिया है।
7: दे दे गांबर।
2: ये लो जा, एक घंटे बाद आना।
7: अरे इधर ही हूँ, एक घंटे बाद आ जाऊंगी इधर।
2: अरे यार मेरा आ गया यार।
5: अरे भारती दी सबके आम खा रही हैं यार।
8: अरे ये मेरा भी आम खा के गई
7: है। आम खाया, क्या कर रहा है?
2: नहीं वो वाला नहीं, आपको कसम है।
5: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
0: भाई इन दिनों जोरों शोरों से चल रहे हैं है जवानी तो इश्क होना है के प्रमोशन, ऐसे में ये टीम यानी कि वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े पहुंच गए हैं अहमदाबाद, जहां वो एंजॉय कर रहे हैं मॉल में ये डिलिशियस थाली।

0: वही इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने धमाल मस्ती तो की है, साथ ही पहुँचे IPL के फिनाले मैच को देखने के लिए।
1: इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो अपने माता पिता की, जन्नत भी मिलेगी। आज इसी बात पर करते हैं अपने इस एपिसोड का अंत। मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते हैं कि 24/7 एंटरटेनमेंट के अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
11: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर ड्रोन ने 500 किलोमीटर रेंज और 5 घंटे उड़ान क्षमता के साथ अपनी बैटलफील्ड तैयारी की साबित। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, देश भर में बढ़ते कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है ये इजाफा। आज मनाया जा रहा वर्ल्ड मिल्क डे, इस वर्ष की थीम है महिला किसानों का सम्मान, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को नई पहचान देने की कोशिश। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पिंडदान के लिए आ रहे हैं लोग। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1, टॉप 3 रैंक होल्डर्स दिल्ली से ही। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, उत्तर भारत में अगले 1 हफ्ते यूं ही बना रहेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकते हैं हल्की बारिश।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: पर्यटकों के लिए खुल गई फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का नजदीकी से कर रहे दीदार। पहले दिन वैली ऑफ फ्लावर्स के मुख्य प्रवेश द्वार पर सैलानियों का स्वागत, 45 सैलानियों ने देखी फूलों की घाटी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगी नई ऊर्जा। फूलों की घाटी में करीब 500 से ज्यादा देसी विदेशी फूल खिले देखने के लिए पहुंच रहे लोग। घर बैठे ऑनलाइन भी फूलों की घाटी की कर सकते हैं बुकिंग, जून महीने में 100 सैलानियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप का श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लगी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, अभिनेता जय भानुशाली विधि विधान के साथ की बाबा महाकाल की पूजा। फरीदाबाद के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को 9.5 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के आभूषण अर्पित किए। भगवान श्री राम के करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई गुड न्यूज, राम मंदिर में रोजाना बनने वाले भोग प्रसाद को मिली आधिकारिक मान्यता। खाद्य और औषधि विभाग ने राम मंदिर स्थित सीता रसोई को 5 साल के लिए जारी किया लाइसेंस, रसोई के निरीक्षण इंतजामों की समीक्षा के बाद जारी किया लाइसेंस। सीता रसोई में बनता है रामलला मंदिर, श्री राम दरबार के 6 देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के मंदिरों में अर्पित होने वाला भोग। राम मंदिर में रोजाना मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक 6 बार अर्पित किया जाता है ये भोग। खाद्य और औषधि विभाग ने सीता रसोई के रसोइयों को शुद्धता और गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिया। महाराष्ट्र के अकोला में मनाई गई अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती, शहर में निकाली गई भव्य रैली। अहिल्या देवी की प्रतिमा की स्थापना और पूजन के साथ शुरू हुई रैली, ढोल ताशों के साथ जय मल्हार के जय घोष के साथ गूंजा पूरा शहर। पारंपरिक लेजियम की प्रस्तुतियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने दी प्रस्तुति, भजन कीर्तन मंडलियों ने माहौल को बनाया भक्तिमय, लोगों ने जोश और उल्लास के साथ जयंती उत्सव मनाया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी रैली, जगह जगह लोगों ने अहिल्या देवी होलकर को याद किया। दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, साल 2020 को छोड़कर जनवरी से मई के बीच में पिछले 8 साल में सबसे कम रहा औसत AQI। छत्तीसगढ़ को मिली पहले आईटी और आईओटी पार्क की सौगात, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में प्रदेश के पहले आईटी और आईओटी पार्क का शुभारंभ किया। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों के साथ शुरू किया गया आईटी और आईओटी पार्क, युवाओं उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, राष्ट्रीय आम महोत्सव में देश विदेश की 250 से ज्यादा आम की किस्मों को शामिल किया गया। आम महोत्सव में लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो, केसर समेत विदेशी मियाज़ाकी आम की भी यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई, तकनीकी सत्र का आयोजन हुआ। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण जोरों पर, भगवान राम की 63 पीढ़ियों की डिजिटल वंशावली की जाएगी यहां पर प्रदर्शित। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने भाई दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन, भगवान का लिया आशीर्वाद। कारगिल में एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, कई टीमों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर छठे पटनी टॉप मैराथन का आयोजन किया गया, 800 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया निशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की जांच की गई। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ, 4 नए संदीपनी स्कूलों का लोकार्पण हुआ, मुख्यमंत्री पहुंचे। इंदौर को मिली पुलिस मोबाइल वैन की सौगात, सीएम मोहन यादव ने नया ट्रैफिक ऐप लॉन्च किया। इंदौर में अहिल्या उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, कार्यक्रम में 150 कलाकारों ने वंदे मातरम की भव्य प्रस्तुति दी। पुणे में गोवा के मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, अस्पताल में सर्जरी, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। मेघालय में उमरोई सैन्य स्टेशन में सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सेनाओं की भागीदारी को बढ़ाना इसका मकसद। प्रगति का मतलब है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और बदलाव के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। 72 घंटे लंबे इस वैलिडेशन एक्सरसाइज में भारत समेत 13 देशों के 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। अर्धपहाड़ी घने जंगलों वाले इलाके में आतंकवादी रोधी कार्रवाई की तैयारी, अभ्यास का मकसद सैनिकों को रॉक क्राफ्ट, घात लगाकर हमला करने जैसी तमाम ट्रेनिंग्स दी गई। सैनिकों को स्लिथरिंग, जंगल लेन शूटिंग, कमरे और बस में घुसकर कार्रवाई करने जैसी ट्रेनिंग दी गई। अधिक मास और वीकेंड छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, भक्तों ने राधा कृष्ण के जयकारे लगाए। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आज से फ्री बस सेवा की शुरुआत, दुर्गापुर डिपो से हुआ शुभारंभ। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स, राजनाथ सिंह ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप की, कई मुद्दों पर चर्चा की।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Good news today is really good. It's in this, right? It's the news of the murder and the chilli. It's not the news of the people.
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो। नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में, गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल चित्रक छव्य सूरनकंद अपामार्ग अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर विटामिन प्रोटीन जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स बेंजोइक एसिड गैलिक एसिड ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन बिना किसी साइड इफेक्ट सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा, अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: Ki bhagya kahin door nahi. अविश्वास में विश्वास बसता है जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
5: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं अविश्वास में विश्वास बसता है जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
5: गुड न्यूज टुडे
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस विजिट SRMUP.in
11: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर ड्रोन ने 500 किलोमीटर रेंज और 5 घंटे उड़ान क्षमता के साथ अपनी बैटलफील्ड तैयारी की साबित आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज मई में 3.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन देश भर में बढ़ते कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है ये इजाफा आज मनाया जा रहा वर्ल्ड मिल्क डे इस वर्ष की थीम है महिला किसानों का सम्मान डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को नई पहचान देने की कोशिश पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़ देश के कोने कोने से पिंडदान के लिए आ रहे हैं लोग जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी. दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर. लड़कियों में दिल्ली के आरोही देश पांडे को मिली रैंक वन. टॉप थ्री रैंक होल्डर्स दिल्ली से ही. केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून. उत्तर भारत में अगले एक हफ्ते यूं ही बना रहेगा मौसम का मिजाज. दिल्ली और एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की फुल्की बारिश.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को.
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार. तो देखिए, मौली या कलावा ये सिर्फ साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये देवों द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र है. कोई भी मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा रही है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधा जाता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी ऐसी ही खास बातें.

0: सनातन संस्कृति का संस्कार है कलावा, त्रिदेवों का वरदान है कलावा, त्रिशक्तियों का दिया हुआ सुरक्षा कवच है कलावा। बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला है कलावा। आपने देखा भी होगा, कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। माना जाता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान से अभिमंत्रित ये ऐसी ढाल है जो सदैव आप पर ईश्वर की कृपा बनाए रखती है।
1: यह जो कलावा मौली रक्षा सूत्र, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। भगवान के पूजा पद्धति में सर्वप्रथम यह जो 16 उपचार हैं, खोडशोपचार, उसी के अंतर्गत भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए नारे का प्रयोग किया जाता है। यह नारा जो देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर उसको 3 राउंड घुमा करके ब्रह्म ग्रंथि से युक्त गांठ उसमें दे करके रखते हैं।
0: रक्षा सूत्र कहिए या मौली, जिसके साथ जुड़ी है हमारी सनातनी आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि कलावा बांधना हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है कलावा। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रिशक्तियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था।
1: जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तिनत्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार राजा बलि को माता लक्ष्मी ने जाकर के यही रक्षा सूत्र बांधा था। क्यों बांधा था? बामना अवतार के समय भगवान विष्णु जब आए, आकर के 3 पग में पूरी पृथ्वी को, लोगों को, 3 लोग को भगवान ने दान में ले लिया। नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके माता लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा था। और उसी दिन ब्राह्मणों के उपाकर्म श्रावणी का दिन था, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्राप्त थी, इसलिए हमारे यहाँ माताएं बहनें भी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा बंधन के नाम से त्योहार प्रचलित हुआ।
0: सनातनी परंपराओं में मंगल कार्यों की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए, मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि कलावा बांधने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि कलावा बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां बांधते हैं मौली।
1: वैवाहिक समारोह में जो मंडपा छादन होता है तो उस मंडप में भी हम लोग नारा बांधते हैं और उसमें कुछ विषय सामग्रियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि लोहे के छल्ला है, हल्दी की गांठ है इत्यादि। पीढ़े पर भी बांधते हैं, चौकी पर भी बांधते हैं, और जो वर और कन्या होती हैं, वर और कन्या के दाहिने हाथ में बांधा जाता है उसमें यह नारा रक्षा सूत्र।
0: मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने के कई लाभ भी बताए गए हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह की कलावा बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। माना जाता है कि इसका ना सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी हुई होती है। कलावा धारण करने के लाभ क्या है?
1: कलावा धारण करने से हमारे हाथ के पास यहाँ देखेंगे कि वहाँ तीन नाड़ी होती है, नाड़ी तीन प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। यहाँ बांधे रहने से यहाँ से धड़कन भी हाथ के पास जो है धड़कन भी नापने के लिए यहीं से हम लोग देखा, डॉक्टर लोग देखा करते हैं। उसी जगह के उसी पॉइंट को नारा बांध करके उसको दबाए रहते हैं जिसके कारण से वह अनियंत्रित न होने पावे।
0: कलावा कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मन्नतों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करती है। हर तरह के कलावा के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ किसी भी जगह पर रख देना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। इसलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावा का है उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। वो नियम क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि कलावा बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये माना जाता है कि कलावा बांधने से वात पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है।

0: मन को शांति प्रदान करता है कलावा। इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाता है कलावा। कलावा से होती है आध्यात्मिक उन्नति। कलावा से आते हैं संस्कार और सन्मति। तो देखा आपने कितना कारगर है आपके जीवन से जुड़ा ये कलावा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जिसका पालन आज तक किया जा रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा या रक्षा सूत्र कल्याणकारी है। कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और जीवन के मूल्यों से जुड़ा है।
1: सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उसके बाद चढ़ा हुआ नारा, भगवान की पूजा में सम्मिलित नारा लेकर के ब्राह्मण के द्वारा या किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ में धारण किया जाता है। यजुर्वेद कहता है कि ये नारा धारण करने से देवता प्रत्यक्ष रूप से आ करके आपकी रक्षा करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष की विधि को अपना करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। और इसी नारा प्रतीकात्मक रूप में हम लोग हाथ में बांध करके भगवान की उस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
0: माना जाता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधना चाहिए। पर्व त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संस्कृति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधी जाती है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। माना जाता है कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ी हर वस्तु का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। कलावा के उपयोग के साथ भी जुड़े हैं नियम और सावधानियां। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मन्नतों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। लाल और पीला रंग मिलकर बहुत शुभ फल देते हैं। लाल रंग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि पीला रंग धन और सौभाग्य से जुड़ा होता है। सफेद रंग का कलावा पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जीवन में सुरक्षा और समृद्धि दोनों लेकर आता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावा पतला होना चाहिए। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके अलावा काले और हरे रंग का भी कलावा लोग बांधते हैं। कलावा देखने में साधारण सा धागा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। अगर आप इसे सही तरीके से पहनते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन अगर इसमें उपयोग में लापरवाही कर दी जाए तो ये जीवन में दिक्कतें बढ़ा भी सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कहते हैं अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कलावा बांधने से ग्रहों की कृपा भी पाई जा सकती है। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं।

मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। माना जाता है कि कलावा धारण करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इसे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कलाई के हिस्सों में कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। कलावे के बंधे रहने से इन बिंदुओं पर दबाव बना रहता है, जो दिल, दिमाग और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखा आपने, कलावा चिकित्सीय गुणों से भी भरपूर है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अलग अलग कलावा धारण कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान किस तरह कर सकता है कलावा।

0: चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल पीले सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पहले भगवान को अर्पित कर दें। तो आप भी चमत्कारी कहे जा रहे इस कलावे को धारण करें, जिससे आपके जीवन के संकटों का नाश हो सके और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What you got for me, Jack?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: भारतीय सेना तेजी के साथ स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुट गई है। पाथू मोनो रेल सिस्टम इसकी ताजा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। यह सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी तरह के मौसम में सामान को ले जाने और लाने में सक्षम है।
11: ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है,

यह पाथू मोनोरेल सिस्टम है जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहां ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है, लिहाजा घोड़े खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन, हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है, लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
1: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। यह सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उपप्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
0: तो जीएनटी की मुहिम लगातार जारी है। आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उसे जीएनटी पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
7: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधियों के साथ कारोबार में इजाफे के संकेत। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मिल्क डे, इस साल महिला किसानों का सम्मान थीम से कार्यक्रम, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को नमन। पुरुषोत्तम आश्रम बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकाल कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भक्त। जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली फर्स्ट रैंक। अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती हल्की बारिश।

पहाड़ों पर महाजाम, क्या है समाधान? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा जिसी को लेके हम करेंगे, क्योंकि हर तरफ अगर देखा जाए तो लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से जाम की जो तस्वीरें इन दिनों आ रही हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही हैं। पहाड़ों पर मीलों जाम देखने को मिल रहा है और इससे टूरिस्ट भी परेशान है, स्थानीय निवासी भी परेशान है। अब चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इलाका हो या उत्तराखंड का, हाल हर जगह ऐसा ही है। एक ही तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो कैसे हो वेकेशन की कूल प्लानिंग? हिल स्टेशंस पर क्या सावधानी जरूरी? पहाड़ों पर महाजाम का क्या है समाधान? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पर्यावरणविद और साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों के जानकार भी मौजूद रहेंगे।

तो सैलानियों का पहाड़ इन दिनों वादियों में भरा हुआ है। श्रीनगर से लेकर शिमला और मंडी से मसूरी तक देखा जाए तो हाल बिल्कुल एक जैसा ही है। पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कश्मीर हो, बड़ी संख्या में सैलानी जुट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त समर वेकेशन भी शुरू हो गए तो नॉर्मली लोग पहाड़ों का ही रुख करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ में लंबे जाम का एक वीडियो भी सामने आया है। मैदानों में गर्मी के बाद सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मसूरी से हरिद्वार तक महाजाम की स्थिति बनी हुई है। हेमकुंड साहिब औलीनीतीमाणा घाटी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चारधाम में अब तक करीब 28 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाके जिसका

0: यहाँ पर कर दे, चाहे वो धर्मशाला का इलाका हो, शिमला हो या फिर मनाली हो, हर जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मई में करीब 8 लाख वाहन शिमला पहुंचे हैं अभी तक जो आंकड़ा मिला है, और जून में भी सैलानियों की संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन इस बीच समर वेकेशन में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, हो सके तो वीकेंड पर पहाड़ जाने से थोड़ा सा बचे। मशहूर जगहों के बजाय आप छोटी छोटी जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, और किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए सबसे पहले उस इलाके की रिसर्च जरूर कर लें, वहां के हालात कैसे हैं उसके बारे में जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें। बारिश के अनुमान की जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अगर आप पहाड़ की तरफ जा रहे हो, ताकि रास्ते में आपको कहीं पर भी फंसना ना पड़े। तो मैदानों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर पहाड़ों का रुख करते हैं, लिहाजा हिल स्टेशंस पर टूरिस्ट का जमावड़ा लगा हुआ है। खासकर अगर हम वीकेंड की बात करें तो बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, अकेले मई के महीने में शिमला में 7,80,000 के करीब वाहन पहुंचे हैं। लिहाजा पहाड़ों की रानी को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया है, शहर को 5 सेक्टर्स में बांट दिया गया है, जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है, कोशिश की जा रही है कि लंबा जाम न लगे।
1: ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो हमारे क्विक राइडर्स रहते हैं मोटरसाइकिल पे, वो लगा रखे हैं, जो कि 32 के आसपास डिप्लॉयड हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करें यदि कोई भी ट्रैफिक जैम कहीं पे होता है। एंड हमारे एक्सपीरियंस में दे आर वेरी इफेक्टिव। उसके बावजूद जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट इंटरसेप्टर व्हीकल्स आर आल्सो मूविंग डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि ट्रैफिक नियमों की अनुपालना करवा रहे हैं। इसके बाद सुपरविजन की बात की जाए तो शिमला सिटी को हमने 5 भागों में बांटा है, 5 सेक्टर्स में, और हर एक सेक्टर एक एनजीओ ग्रेड 1 अधिकारी देख रहा है, जो कि अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सेक्टर में जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने में वो पूरी देखेगा उसको। उसके अलावा मैं यदि डाइवर्जन्स की बात करूं तो टूरिस्ट से हम अपील भी करते हैं आपके माध्यम से, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो नारकंडा, कुफरी, ठियोग इस साइड वाले टूरिस्ट हैं, किन्नौर साइड जाने वाले टूरिस्ट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शोगी मैली बाईपास है आप उसका उपयोग करें, ताकि आप मेन सिटी के ट्रैफिक में ना आए, जो है वो मेन सिटी का ट्रैफिक उससे डीकंजेस्ट होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं हमारे, उन्होंने शोगी मैली बाईपास को पिछले जो महीने से हम हर एक दिन ट्राई कर रहे हैं कि 800-900 के आसपास इतने व्हीकल्स उससे जाएं, और वो लोग जो है मिनिमम टाइम में पहुंच रहे हैं। दे हैव ऑल्सो गिवन दिस फीडबैक टू अस कि वो बाईपास लेने से उनका टाइम काफी ज्यादा बच रहा है।
0: चलिए इसी वीकेंड आपको हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें आई हैं वो भी दिखाते हैं। भीषण जाम की स्थिति वहां पर भी थी। एक तो हॉलीडे सीजन है, ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा और वीकेंड, और इसके चलते बड़ी तादाद में लोगों ने तीर्थ नगरी हरिद्वार का रुख किया, लिहाजा जगह जगह पर जाम के हालात बन गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन के लिए मुश्किल हालात पैदा हो गए, तमाम इंतजाम बौने साबित हुए। ऋषिकेश में भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें सामने आई जैसी हरिद्वार में। तो पहाड़ों पर है महाजाम, इसका समाधान क्या, इसको लेकर चर्चा करें। उससे पहले जरा एक बार अभी की जो स्थिति है वो जान लेते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल नैन सिलोड़ी इस वक्त चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हैं मेरे साथ विकास शर्मा शिमला से। लेकिन कमल आपके पास आना चाहूंगी। देखिए चाहे वो हरिद्वार हो ऋषिकेश हो, दो तरह, पहली बात तो ये है कि मैदानों में गर्मी है, लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, और उसके भी दो कारण है। पहली बात टूरिस्ट भी है, भक्त भी है, दोनों वहां पर पहुंच रहे हैं। स्थिति इस वक्त पूरे रास्ते कैसी है, चाहे हम चारों तीर्थों की बात करें, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, यानी पांचों तीर्थों पर इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं।
2: जी नवजोत, बताओ कि आज से फूलों की घाटी भी खुल गई है और पर्यटक भी अब एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। पहाड़ों में इस समय बहुत ज्यादा रश है। सबसे बड़ी बात है मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हो चुका है, मई और जून अब शुरू हो चुका है। ठंड ऐसी लग रही है मानो फरवरी और मार्च की जो ठंड होती है, ऐसा यहाँ पे मौसम है। बद्रीनाथ धाम में सैलाब है, हालांकि कल से जब केदारनाथ धाम की यात्रा को जो रोका गया था वो 4 से 5 घंटों का जो गैप मिला उससे थोड़ा सा यात्रा में यहाँ पे फर्क है, क्योंकि लोग केदारनाथ जाने के बाद बद्रीनाथ के लिए आते हैं। लेकिन जो निरंतर यात्रा है वो लगातार जारी है, गाड़ियों की कतार जारी है। आज थोड़ी सा जाम जो केदारनाथ यात्रा रुकी थी उससे थोड़ा जाम इतना नहीं है, लेकिन कहीं आज शाम से फिर से एक बार यहाँ पे जाम जो भीड़ होगी, जाम नहीं कह सकते हैं, जो मतलब गेट सिस्टम शुरू किया गया है, यहीं पे वो गेट लगाया जाता है, आईटीबीपी आर्मी और पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे गेट लगाते हैं। अब गेट लग चुका है, इसके बाद अब गाड़ियां जो है वो बद्रीनाथ नहीं जाएंगी, अब फिर इनको रोका जाएगा 2 घंटा 2.5 घंटा, 2 घंटे में इतनी लंबी ये कतार हो जाती है कि 7 से 8 किलोमीटर तक ये पहुंच जाती है। जो जाम की तस्वीर देखने को मिलती है वो यही तस्वीर होती है, एक साइड की गाड़ियां गेट में रुकती है और वो इतनी लंबी हो जाती है
0: जी। हाँ, कमल अगर आपको याद हो तो जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं वो ये है कि हरिद्वार या ऋषिकेश वहां पर उतने ही परमिट दिए जाते हैं जितने लोग ऊपर जाएं ताकि पहाड़ पर ज्यादा बोझ ना पड़े। क्या वहां पर लोगों को नहीं रोका जाता है? और यहाँ जहां आप खड़े इसके बाद कौन सा एरिया है जहां पर लोगों को रोका जाता है, क्योंकि परेशानी लोगों को हो रही है? अगर हम बात करें 3 घंटे का अगर रास्ता है तो 6 से 7 घंटे में लोग उसको पूरा कर रहे हैं
2: जी। यहाँ पे जोशीमठ का पेट्रोल पंप है, यहाँ से जो बद्रीनाथ जाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें रोका जाता है, और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मारवाड़ी है, मारवाड़ी पे बद्रीनाथ से आने वाली गाड़ियों को रोका जाता है। ये दोनों वन वे किया गया है क्योंकि ये 7 किलोमीटर का जो मार्ग है इसे चौड़ीकरण नहीं किया गया, पिछले 3 वर्षों से इस पे काम चल रहा है, दूसरा बाईपास का काम चल रहा है, हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो मारवाड़ी में निकलेगा, अगर वो बन जाता है तो बद्रीनाथ यात्रा 35 किलोमीटर कम यात्रियों के लिए हो जाएगी, हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। लेकिन इस बीच चौड़ीकरण नहीं होने से इस रास्ते में जब जाम शुरू में जब जाम लगा तो 6 से 7 घंटे तक यात्री यहां पे फंस रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने इसको संज्ञान लिया और गेट सिस्टम क्या, चाहे वो लाइन 9 किलोमीटर की हो या 10 किलोमीटर की हो, ऐसे में यहां पे पुलिस मौजूद रहती है, रास्तों में पुलिस मौजूद रहती है, हर तरफ पुलिस और आईटीबीपी के जो जवान है वो यहां पे तैनात है ताकि गाड़ियों को रोकने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो यात्री आते हैं वो अपनी मन की चलाते हैं, कोई लड़ जाता है, कोई झगड़ जाता है,
0: लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्री अपने मन की चलाते हैं। कमल जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे, आप रहिए हमारे साथ, जो पीछे मैं देख पा रही हूँ आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं, जो पीछे वहां पर भी एक लंबी कतार नजर आ रही वाहनों की, वो कौन सी कतार है, क्या उन लोग को वहां पर रोका गया है? और अमूमन एक और साथ में जोड़ते जाऊं कि कितने किलोमीटर का जाम खबर आ रही की है अभी?
2: ये अभी जस्ट गेट को छोड़ा गया था, जैसे ही अभी हमारे सामने ही यहाँ पे गेट को लगाया गया है, ये बद्रीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी माणा और जो ट्रेकिंग के शौकीन है बद्रीनाथ में या भागवत कथा वाले तमाम लोग इसी रास्ते से आते हैं, ये जोशीमठ से वन वे का सिस्टम है, एक सड़क से जाते हैं एक से आते हैं, यहाँ से आगे सिंगल रोड है जो पतली है, इसलिए यहाँ पे गेट लगा दिया गया है। अब ये गाड़ियां जब नीचे जो बद्रीनाथ से लौटने वाली हेमकुंड से लौटने वाली गाड़ियां हैं जब वो इसको क्रॉस कर लेंगी जोशीमठ का पेट्रोल पंप, फिर इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। इस बीच यहाँ पे पुलिस है, आईटीबीपी है, सभी निगरानी बनाए हुए हैं।
0: ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना लंबा जाम लग रहा है, कुछ खबर है
2: जी? कभी कभी ये गाड़ियां 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर एक साइड की पहुंच रही हैं और दूसरी साइड भी यही हाल है।
0: ठीक है,
2: वो अभी आपका गोविंद घाट
0: कमल रही है हमारे साथ। एक बार विकास अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए शिमला की स्थिति तो तकरीबन हर साल ऐसी होती है, चंडीगढ़ से कसौली एक नॉर्मल लोकल टाइप का टूरिज्म होता है। अभी पिछले दिनों खबर यही आई थी कि कसौली जाने वाले रास्ते में लोग कितना लंबा फंसे, स्पेशली अगर पंजाब के लोगों की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो उनके लिए वीकेंड डेस्टिनेशन कसौली रहती, लेकिन इस वक्त हालात शिमला में भी बिल्कुल वैसे ही है। वीकेंड कैसा रहा शिमला के लिए?
3: देखिए वीकेंड पर भी भारी भीड़ जो है, चाहे ऑफ सीजन हो नवजोत या फिर ऑन सीजन, इस बार क्योंकि सीजन की शुरुआत हो चुकी है, भारी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं बाहरी राज्यों से, और टूरिस्ट खास तौर पर इसलिए पहाड़ों को पसंद करता है। आप मौसम देखिए जरा, मेरे पीछे ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, ये मौसम यहाँ का किस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बादल किस तरह से अब जमीन पर उतर चुके हैं, किस तरह से आ चुके हैं, और मौसम में भी हल्की जो ठंडा हवा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको ट्रैफिक की तस्वीरें अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, देखिए ये ट्रैफिक का हाल है यहाँ पर। हालांकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक से परेशानी तो नहीं है, क्योंकि इस बार के इंतजाम जो पिछले कुछ सालों में लगातार पुलिस देख रही थी कि किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, किस तरह से लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर शांति की तलाश में आता है, यहाँ की आबोहवा प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आकर उसे क्या मिलता है, 1 किलोमीटर तक लंबा जाम, यानी कि सबसे पहले बहुत लंबा जाम उसे मिलता है। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं नवजोत, उनके लिए भी एक मुसीबत है ये ट्रैफिक जाम। और ऐसे में अब इससे निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और शिमला पुलिस की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ट्रैफिक राइडर्स लगाए गए हैं, मोटरसाइकिल लेकर वो निकलते हैं, जहां कहीं गलत तरीके से वाहनों को पार्क किया जाता है, वहां पर तुरंत ये राइडर्स पहुंच जाते हैं। कुछ एक जगहों पर ड्रोन से भी नजर जो है वो इसी ट्रैफिक के ऊपर रखी जा रही है। इसके अलावा जो ऐसे जो ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी नकेल यहां पर कसी जा रही है। तो कुल मिलाकर नवजोत, अगर मैं कहूं तो हिमाचल में लगभग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो पूरी तरह इसी तरह ही उनके हालात हैं। और खास तौर पर ये जो मेरे पीछे आप ये टनल देख रहे हैं, वेस्ट पोर्टल है, संजौली धली टनल को ये जोड़ता है, और यहीं से लोग कुफरी जाते हैं, मशोबरा जाते हैं, नालदेरा, नारकंडा, तमाम जो बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पर लोग यहीं से रुक करते हैं, और यहीं पर सबसे लंबा जाम यहीं पर रहता है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है नवजोत की हिमाचल में जो टूरिस्ट आता है वो लगभग हर साल 1.6 करोड़ यानी कि 1.60 करोड़ के आसपास लोग जो है वो हर साल यहाँ पर आते हैं, और इसी तरह की तस्वीर हर साल बनती है, खास तौर पर टूरिस्ट सीजन जो कि सर्दियों के मौसम की अगर खास तौर पर बात करें या फिर गर्मियों में, इसी तरह के हालात यहाँ पर बने रहते हैं।
0: बिल्कुल,
3: स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। स्कूली बच्चे जो स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन समय रहते जो है वो घर पर अपने नहीं पहुंच पाते,
0: क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत। हाँ विकास, शुक्रिया आपका, और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपने दिखाई, स्थिति वहां पर इस वक्त कैसी वो भी आपने बताई, लेकिन देखिए कि सिर्फ ये नहीं है कि जो टूरिस्ट वहां पहुंच रहे वो परेशान है, स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो इन दोनों चारधाम यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहब की यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड भी पहुंच रहे, लेकिन उस बीच ये मनाली की तस्वीरें, शिमला से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें वहां से लाइव दिखा रहे थे, लेकिन हिमाचल के अलग अलग डेस्टिनेशन जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सबका हाल ऐसा ही है। ये मनाली की तस्वीरें आप देखिए कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम वहां पर लगा है। इसके अलावा धर्मशाला से वैसी तस्वीरें आ रही, क्योंकि सीधी सी बात है कि गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है और लोग इस वक्त पहाड़ों का ही रुख कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो इसी को लेकर अब चर्चा करेंगे। सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि किस तरीके से पहाड़ों का लोड कम होगा, लोगों को अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहाड़ों पर है महाजाम, समाधान क्या है उसी को समझने जानने की कोशिश करते हैं। मैं परिचय करा देती हूं, आलोक बीलाल फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाष गोयल जी हैं, मेंबर हैं एनटीएसी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से हमारे साथ इस वक्त, पवन कोटियाल जी को फाउंडर है, ट्रेवल चिली एंड उत्तराखंड टूरिज्म एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ चंदन एयाल जी भी एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूं आलोक जी, मेरे दोनों सहयोगियों ने जो चर्चा बातचीत की वहां की लाइव तस्वीरें दिखाई वो आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा। सर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि पहाड़ का एक अपना रूल, एक अपना नियम कायदे होते हैं, स्थानीय प्रशासन गवर्नमेंट की तरफ से रूल रेगुलेशन बना दिए जाते हैं, लेकिन लोग जो यहां से जाते हैं मैदानों से वो पहाड़ को भी मैदानों की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं।
4: आपने हमारी दुखती राग पकड़ ली, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी समस्या ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है उससे बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, और ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि हमारे आगंतुक जो हमारे सम्मानित मेहमान हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि हम जो मेज़बान लोग हैं उनके सामने कुछ मजबूरियां होती हैं, जो सड़क की चौड़ाई है वही चौड़ाई है, उससे ज़्यादा किया नहीं जा सकता। पहाड़ में ये सारी समस्याएँ होती हैं, हमारी होल्डिंग कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मसूरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर इस समय जो कैपेसिटी है उससे 4 to 5 times ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी और वहाँ पहुँचने का रास्ता कैसे बनेगा। एक और बात हुई है कि जो रास्ता NCR को देहरादून से जोड़ता है वह बहुत अच्छा हो गया है, तो जो आने वाले लोग हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। तो इस साल हम देख रहे हैं कि आने वालों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियाँ बहुत अधिक आ रही हैं, तथाकथित जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति VIPs हैं वो एक गाड़ी लेकर नहीं आते, उनके साथ उनका एस्कॉर्ट भी होता है, उनका पायलट भी होता है और ऐसी चीज़ें भी और साथ में चलती हैं। तो गाड़ियों की संख्या अगर हम कम कर सकें, आने वाले इस बात का ध्यान रखें, हमारे साथ सहयोग करें, तो शायद उनकी यात्रा भी अधिक सुखद बन सकेगी।
0: सहयोग की बात होती है, सुभाष गोयल जी मैं आपके पास आती हूँ। सर देखिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर की भी हम बात कर लें, पहाड़ों पर लोग जाते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात सर ने भी यहाँ पर कही, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, पहाड़ तक पहुंचना अब आसान हो गया। वो दौर नहीं है कि पहाड़ तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल लोगों को करना पड़ता था, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन उस पहाड़ की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं लोग भूल गए। सिर्फ दो तरह के, एक तो भक्त लोग वहां पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल मैदानों की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। आप जो सामान मैदान से लेकर जाते हैं वहां पर उसी तरीके की चीजें फैला देते हैं। अभी हाल फिलहाल में सर एक और वीडियो भी वायरल हुआ था कि कैसे पहाड़ पर लोग चढ़ रहे थे और पीछे एक शख्स ने वीडियो बनाया कि उन्होंने कचरा फेंक दिया नीचे, और दूसरे शख्स ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि आपने कचरा फेंका यहाँ पर, इसका ख्याल रखिए। इन तमाम ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल कैसे रखा जाएगा?
5: देखिए, सबसे पहले तो हमें एक असेसमेंट करनी पड़ेगी एज अ कंट्री के हर हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। अब देखिए, भूटान ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कुछ टैक्सेस भी इतने ज़बरदस्त करे हुए हैं कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेटेड टूरिज्म जाता है। हमारे यहाँ टूरिज्म अनरेगुलेटेड है। अभी मैं पीछे खुद गया था अपनी वाइफ के साथ सिलीगुड़ी, वहाँ से हमारा प्रोग्राम था दार्जिलिंग जाने का। अब हमें पता लगा वहाँ से ट्रैवल एजेंट से कि वहाँ 6-6 घंटे, जो 1.5 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे लग रहे हैं। तो हमने बजाय दार्जिलिंग के, हम ताज का एक होटल है ये, इसमें दार्जिलिंग और इसके सिलीगुड़ी के बीच में कटोर वो है कोई अपना टी गार्डन्स, उसके बीच में होटल है, हम वहाँ चले गए। तो वहाँ बहुत अच्छा शांति मिली, सब कुछ हुआ, और दार्जिलिंग का प्रोग्राम हमने बंद कर दिया। फिर हमें किसी ने कहा कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप जाओगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, और संडे वाले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग हम चले गए, दार्जिलिंग पहुंच गए। पर वहाँ पहुंच के जो ट्रैफिक जैम देखा, तो हम सारी चीज़ें देखे बगैर ही आधी चीज़ें देख कर ही वापस आ गए, क्योंकि एम्बुलेंस भी, जो लोकल लोग हैं उनके लिए एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी हुई है।
0: बिल्कुल।
5: और किसी को अगर मजबूरी में हॉस्पिटल ना पहुंच सके और डेथ हो जाए तो उसका कौन जुम्मेवार होगा? तो ये हमारी सबकी जुम्मेवारी है, क्योंकि ये जितने हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये सब अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। हमने कोई नए हिल स्टेशंस बनाए नहीं, तो हमें कम से कम इन सारे रूट्स पे अल्टरनेटिव हिल स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। और जैसे शिमला से पहले कसौली है, तो वहाँ काफ़ी लोग चले जाते हैं, चंडीगढ़ से इतना टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से हमें कम से कम रिमोट एरियाज में बनाने पड़ेंगे।
0: ठीक है।
5: दूसरा, ये जो पुलिस की चौक बैरियर लगते हैं, ये हिल स्टेशन में लगाने की बजाय आप जहाँ से लोग शुरू होते हैं, जहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड रास्ता है, वहां पर ही बैरियर लग जाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि भाई इतना टाइम लग रहा है तो आप ये दूसरी रूट से चले जाओ, या कोई छोटा रूट है, या कोई मतलब अल्टरनेटिव प्लेस पे चले जाओ। तो अगर आप एक बार हिल स्टेशन के रास्ते पे चले गए, ना तो आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ खाई है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, और हर स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे वो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे वो यूपी है, तो हमें अपने और नए हिल स्टेशन तैयार करने पड़ेंगे जहां पर प्रॉपर प्लानिंग हो, रोड्स की प्रॉपर प्लानिंग हो।
0: अब सर मैं लौटूंगी यहीं से, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पवन जी आपके पास आती हूँ, फिर आखिर में हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, अच्छी बात सर कह रहे हैं कि नए हिल स्टेशन डेवलप करने होंगे। वैसे अगर आज की तारीख में देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों ने ऑफ बीट जगहों पर जाना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि आपका तो पूरा डिपार्टमेंट है ट्रेवल एंड टूरिज्म का। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑफ बीट जगहों पर पहुंचने के लिए भी तो उसी रास्ते का इस्तेमाल करना है सर, रास्ता तो एक ही है।
6: थैंक यू नवजोत, ये बहुत ही एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, और जो हमारे आईटी के चीफ भी रहे हैं सुभाष गोयल जी, इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे। एक बात इन्होंने बोली है कि जो कैरिंग कैपेसिटी, यस जरूर मैं कैरिंग कैपेसिटी पर बात करूँ, मैं तीन बातों पर बात करूंगा। एक तो कैरिंग कैपेसिटी, एक क्लास टूरिज्म, मास टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म में।
0: हाँ।
6: अगर बात करते हैं जो कैरिंग कैपेसिटी, जो लेसर नोन डेस्टिनेशन है, जो सर ने बोला कि नए डेस्टिनेशन को डेवलप करें, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया है जिसमें उन्होंने विंटर टूरिज्म किया, उसमें भी वो विंटर के चार धाम करते हैं। तो वो जैसे गंगोत्री है, वो मुखवा विलेज है 18 किलोमीटर हरसिल के पास में, तो वो राउंड द ईयर चलता है। तो लोग विंटर में भी प्लान करें, क्योंकि जब सीजन होता है गर्मियों का तो लोग सब पहाड़ की तरफ भागते हैं। तो गवर्नमेंट के हमने उत्तराखंड टूरिज्म प्रोफेशनल एसोसिएशन की वजह से कुछ हमने गवर्नमेंट को कुछ इनपुट्स भी दिए थे कि यात्रा को आप दो तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब चारों धाम करते हैं एज पर हिंदू मैथोलॉजी तो गंगोत्री यमुनोत्री केदार बद्री होता है, रूट सेम फॉलो करते हैं, एक तो वो है। दूसरा क्या है कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया जाए, जैसे कि जो नैनीताल वाला, यहाँ से जैसे नैनीताल है, नैनीताल से आप चौखटिया जाते हैं, वहाँ से आप रानीखेत जाते हैं, फिर आपको जो राजधानी है गैरसैंण, वहाँ से फिर आप ग्वालदम से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, तो इस रूट को भी डेवलप किया जाए। ये सरकार ने इसे बहुत इग्नोर किया है, एक तो ये है। दूसरा जो रूट है जो बहुत अच्छा बन सकता है, सहारनपुर से होते हुए आप नजियाबाद और यहाँ से होते हुए पौड़ी और पौड़ी से होते हुए श्रीनगर, और एक रूट अल्टरनेट रूट ये भी निकाला जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि लोगों थोड़ा अपना ट्रांसपोर्ट और जो डिविजन्स हैं, जो वहाँ के लोकल्स जो लाइवलीहुड है, जो होटलियर से स्टेक होल्डर, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। और राउंड देयर जो चीजें जहाँ स्टैग हो रही, जैसे जाम लगा है, जो देवप्रयाग के पास अभी रोका उन्होंने, जाम लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली लगाना है, रोकना भी चाहिए। और जो मैं जो तीसरी बात है कि लेसन नोन डेस्टिनेशन में से पंचबद्री है, पंच केदार है, तो वहां भी कुछ ऐसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन में अगर आपको चार धाम जाना है तो आपको एक लेसन नोन डेस्टिनेशन उसमें ऐड किया जाए। तो ऐसा इनपुट मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट तक जाए, तो एक डेस्टिनेशन ऐड होगा तो उससे क्या होगा, थोड़ा डाइवर्जन मिलेगा और गैप मिलेगा चार धाम में। तो एक तो वो तरीका है। तो इसको कुमाऊं डिवीजन से भी शुरू किया जा सकता है, गढ़वाल डिवीजन से शुरू किया जा सकता है, जो छोटे डेस्टिनेशन उन्हें भी हम चार धाम यात्रा में इंक्लूड करें कि अगर जाना चाहते
0: हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे एक एक रिएक्शन आगे आपका आलोक जी आपका भी लूंगी और सुभाष जी आपका भी, लेकिन पहले चंदन जी को इंक्लूड कर लेते हैं। एक और पॉइंट सुभाष जी ने बहुत अच्छा बताया था, देखिए सर चंदन जी, पहाड़ों पर जब भी जाना, चाहे हम हिमाचल में एंट्री करते हैं या फिर हम उत्तराखंड एंट्री करते हैं या जम्मू कश्मीर करते हैं, टैक्सेस ऑलरेडी वहां पर हैं। और जहां तक आप मेरे ख्याल से उत्तराखंड का अच्छे से बता पाएंगे, और अगर हिमाचल एंट्री शिमला की साइड से की जाती है तो वहां पर ठीक ठाक टैक्स लोग दे के जाते हैं, लेकिन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी टैक्स बढ़ा लीजिए, इजी रूट है, जाना है, आसान है। ऐसे में कैसे बचाया जाएगा पहाड़ को, कैसे वो लोड कम किया जाए वहां से?
7: देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि पिछले एक दशक में 3 गुना पर्यटक जो है, 3 गुने से भी ज्यादा पर्यटक हमारे उत्तराखंड के अंदर बढ़ा है, और कहीं ना कहीं संसाधन हमारे पास वही है और सड़कें हमारी वही हैं, जैसा अभी सर ने भी कहा कि हमारी सड़कें वही हैं और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उतना ही है, लेकिन हमारा पर्यटक जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, और इस बार मुझे लगता है कि और भी ज्यादा भारी संख्या में बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले साल हम लोग देखते थे जो बीच के एरिया है, जैसे श्रीनगर है या आपका देवप्रयाग है, इन जगहों पर जाम नहीं लगता था, लेकिन पिछले दिनों श्रीनगर है, देवप्रयाग है, इन जगहों पर भी बहुत ज्यादा जाम देखने को मिला है, लगभग 3-3 घंटे 4-4 घंटे का जाम जो है इन जगहों पर लगा है। रुद्रप्रयाग है आपका, कर्णप्रयाग है, इन जगहों पर भी जाम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखने सीधा जो है देखा जा रहा है कि इस बार पर्यटक और ज्यादा संख्या में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले ये तय करना होगा कि भाई जो पर्यटक आ रहे हैं क्या वो ऐसा, उनको ये समझना होगा कि हमें जो है यहाँ से टैक्सी करके या शटल सेवा करके जो है हम लोग जा सकते हैं, ताकि जो है हम अपनी इतनी, क्योंकि होता क्या है कई कई गाड़ियों में दो दो लोग होते हैं और वो गाड़ी लेके चले जाते हैं, जैसा अभी सर ने भी कहा कि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ी जो है 4-4, 5-5 गाड़ियां, जिस एक एक दो दो लोग उनमें बैठे हुए हैं और वो 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां जा रही है, तो उन्हीं के कारण जो है सबसे ज्यादा जाम लग रहा है। अभी जो है जोशीमठ का एक वीडियो अभी बीच में आया था, उसके बाद अब धीरे धीरे पर्यटक, अभी बीच में केदारनाथ का 2 दिन पहले का केदारनाथ का वीडियो आ रहा था जिसमें आने जाने का लोगों का रास्ता नहीं था बिल्कुल, ऐसा जो है जाम हो चुका, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यटकों को भी सोचना होगा कि हम मैं देखता हूँ सितंबर के महीने भीड़ नहीं होती है, सितंबर चलो बरसात हम लोग मानते हैं कि जुलाई और अगस्त में थोड़ा बरसात होती है तो बरसात के टाइम पे थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन सितंबर के महीने बहुत अच्छा रहता है जिस समय जो है हम चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होता है, उस वक्त बहुत बहुत कम जो है पर्यटक हमारे क्षेत्र में आता है, जैसे पिछली बार अगर हम देखें तो पिछले साल जो है लगभग 2 महीने पर्यटक रहा और उसके बाद पर्यटक जो हमारे लोग थे उनको रोजगार ही नहीं मिल पाया, वो कई सारे दुकानों में, क्योंकि हमारा तो लगातार जाना होता है, तो लोगों ने कहा कि भाई इस बार तो पर्यटक ही नहीं है हमारे, तो ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा देखना होगा कि जो मई और जून में जो हमारा सबसे पर्यटक आता है इसमें जो है
0: उसको लोड, वो लोड कम करने के लिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सही कहा कि जो पर्यटक हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सिर्फ अगर चारधाम की यात्रा की बात की जाए तो पिछले साल का आंकड़ा है 51,06,000 लोगों ने दर्शन किए। ये सिर्फ और सिर्फ भक्त हैं जो वहां पर चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे। इसके अलावा कितनी संख्या में टूरिस्ट वहां पर गए हैं वो आंकड़ा अलग होगा। लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहां पर रखे गए, चंदन जी ने भी रखा है और साथ ही साथ हम पवन जी ने भी रखा है, इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या वैकल्पिक रूटों पर विचार होना चाहिए, दूसरे रूट भी बनने चाहिए और क्या शटल सर्विस की भी बात हो सकती है ताकि पहाड़ों पर लोड थोड़ा कम किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: पहाड़ों पर महाजाम क्या है समाधान? ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने खास मेहमानों से चर्चा कर रहे थे आलोक जी, यही सवाल आपसे, क्योंकि दो सुझाव चंदन जी की तरफ से भी दिए गए हैं, पवन जी की तरफ से भी। एक तो ये, सबसे पहला इसी पर सर चर्चा कर लेते हैं कि वैकल्पिक रूटों को और जगहों को भी डेवलप करना पड़ेगा, खासतौर पर अगर हम कुमाऊं रीजन की बात करते हैं।
1: जी हाँ, कुमाऊं में नहीं, हमारे इस तरफ भी गढ़वाल में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जो कि बहुत रमणीक है, बहुत सुंदर है। वहां तक पहुंचने की और वहां पर फैसिलिटीज होने की बात है। मुझे लगता है अब जैसे टेहरी में लेक बन गई है, टेहरी की लेक इतनी खूबसूरत है कि वो किसी भी लेक से ज्यादा सुंदर हो सकती है, और उसका अगर डेवलपमेंट जैसा चल रहा है उससे पूरा विश्वास है कि एक बहुत सुंदर, बहुत ही रमणीक स्थान बनने जा रहा है। वहां पर टूरिस्ट आते हैं, वहां पर फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज कहीं कहीं थोड़ी सी मशरूमिंग वाली फैसिलिटीज हो रही हैं। मुझे लगता है थोड़ी और प्लानिंग की जरूरत है। इसी तरह अन्य स्थान भी हमारे पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। आपने कुमाऊं की बात की है, कुमाऊं में भी हैं और गढ़वाल में भी हैं। मुझे लगता है कि अगर इस चीज को ध्यान से डेवलप किया जाए, हम अभी तक मेनली जो अंग्रेजों के जमाने में टूरिस्ट सेंटर्स बने थे, वो चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, रानीखेत हो, इन जगहों पर अभी तक कंसंट्रेट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नई जगहों पर बनाएं, और वहां तक जाने के रास्ते भी ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। अगर उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर और जगह जाने की बात है, तो ट्रैफिक बढ़ता ही जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए नए रोड्स, नई फैसिलिटीज, नए स्टेशंस, और साथ ही साथ चूंकि बार बार पुलिस की, ITBP वगैरह की आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस दिशा में सरकार को सोचना होगा कि पुलिस को किस हद तक स्ट्रेच किया जा सकता है। बहुत ज्यादा भार पड़ता है पुलिस पर। क्या हम लोग पुलिस के लिए एक स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स इस काम के लिए बना सकते हैं जो टूरिज्म को पुलिस देके, टूरिस्ट पुलिस, और वो लोग यही काम करें साल भर? क्योंकि अब साल का कोई भी महीना ऐसा नहीं है जबकि टूरिस्ट नहीं आते। पहले था कि गर्मियों में ही आते थे, अब साल भर आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस पर ध्यान देना पड़ेगा मुझे ऐसा।
0: बिल्कुल सुभाजी, आपके पास आना चाहूंगी। चंदन जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है शटल सर्विस का। पिछले साल हमने इस पर बहुत चर्चा की थी जब बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर मौजूद थे, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम था। इस बार भी स्थिति बिल्कुल वैसी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखिए साल 2024 की 45 लाख के आसपास टूरिस्ट पहुंचे थे, और अगर 2025 की बात करें तो 51,06,000 टूरिस्ट वहां पर पहुंचे। ये टूरिस्ट नहीं मैं कहूंगी, ये भक्त कहूंगी जो चारधाम यात्रा के लिए गए थे, टूरिस्ट इससे अलग है। क्या शटल सर्विस पर भी विचार हो सकता है, वो कितना फीजिबल होगा?
2: बिल्कुल हो सकता है, और कई कंट्रीज में शटल सर्विस है। ऐसी जो डेलिकेट और फ्रेजाइल एरियाज हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि कई गाड़ियों में एक या दो या तीन बंदे होते हैं, तो अगर पर शटल वहां से शुरू होनी चाहिए जहां पर पार्किंग स्पेस हो, कि लोग अपनी गाड़ियां वहां तक ला के पार्किंग कर सकें। जैसे शिमला में अगर लोगों ने जाना है तो यहाँ से ये रोड शुरू होती है चंडीगढ़ से, वहाँ पे काफ़ी शटल सर्विस शुरू हो, और शटल सर्विस बड़ी लग्जरी टाइप की हो, एयर कंडीशन हो, कंफर्टेबल हो, तो पीपल विल पे, लोग पैसे देंगे। पर आप वही छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं अगर उस टाइप की गाड़ियों में डालेंगे तो कई लोग कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। पर जो दूसरा सुझाव है कि अल्टरनेटिव रूट एंड अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस,
0: जी
2: उसके लिए आपको बिल्कुल जितनी स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स हैं उनको सर्वे करके आइडेंटिफाई करने चाहिए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं, कहीं पे छोटे छोटे लेक्स हैं, छोटी छोटी झरनाएं हैं, तो उन एरियाज में जो कि मेन जो स्पॉट्स पे जाने की बजाय बेस जहाँ से ये पहाड़ शुरू होते हैं वहीं पे एक तो पार्किंग एरिया, और वहीं से रोड्स निकले टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये दो काम बहुत जरूरी है, शटल सर्विस भी है, पर अगर ये बाकी गाड़ियों को नहीं रोका गया तो फिर शटल सर्विस भी फंस जाएगी बीच में ट्रैफिक के।
0: जाहिर सी बात है, बिल्कुल पवन जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल सर, लौटती हूँ। पवन जी अभी तो देखिए आज 1 जून है जब हम चर्चा कर रहे हैं, और हम एक आंकड़ा हम यहाँ पर शिमला का भी बता रहे थे कि मई के महीने भी कितनी संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंचे। अभी तो जून का महीना है, छुट्टियों की शुरुआत अभी हुई है, समर वेकेशन की शुरुआत अभी हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जून के महीने में, और यहाँ भी मॉनसून आने का दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। केरल के तट पर नॉर्मली 31 या 1 तारीख को मॉनसून पहुंचता है, अभी फिलहाल नहीं आए, मतलब उत्तर भारत में पहुंचने में समय लगेगा, तो सीधी सी बात है कि लोग पहाड़ों का रुख करेंगे ही।
3: यस, जो बेसिकली आपका जो कंसर्न ये है कि ज्यादा लोग जा रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए,
0: वो मैनेज कैसे होगा,
3: मैनेज कैसे होगा, क्योंकि किसी एरिया का क्षेत्रफल जो उसका एरिया है, अगर गाड़ी रहती है आज जाती है, जैसे आप बद्रीनाथ की बात की कि जोशीमठ में गेट सिस्टम है, ऑब्वियसली ये गेट सिस्टम पहले भी लगता था, लेकिन रोड चौड़ी होने की वजह से लोगों ने गेट सिस्टम को ब्रेक कर दिया था। बीइंग अ नेटिव ऑफ बद्रीनाथ, मैं वहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और चीज़ को समझता हूँ, बचपन से मैंने देखा है कि वहाँ एक सिस्टम होता है 6 बजे मॉर्निंग में, फिर 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, पहले भी था, लेकिन बीच में कुछ व्यवस्था ऐसी बनी कि वो लोगों ने फिर उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उसी पे पहुंचे हैं। तो वो जाम नहीं है, वो एक प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो जाने वाली जब कार वहां से स्पेस खाली होगा तभी तो जो दोबारा आने वाले उस जगह पर रिफिल करेंगे, तो वो रिफिल सिस्टम है, तो वो जाम नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो माइंड सेट है लोगों का, और वहां पर अगर 6-7 किलोमीटर तक लग रहा है ऑब्वियसली ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसका जो दूसरा जो मेरा है कि कैरिंग कैपेसिटी के साथ में लेसर नोन डेस्टिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे पंच बद्री है, पंच केदार है, भविष्य बद्री है, आदि बद्री है, और जो हमारे वृद्ध बद्री है, उनको भी डेवलप किया जाए जिससे लोग वहां पे जाएं, और हम ऐसा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बनाएं कि जो अगर बद्री केदार जा रहा है तो एक वो लेसर नोन डेस्टिनेशन कवर करेगा, उससे क्या होगा कि चीजें बढ़ जाएंगी, टाइम ब्रीच आउट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे जो मेन जो धाम है वहां तक लोग धीरे से पहुंचेंगे, ब्रेक में पहुंचेंगे, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, सेचुरेशन की कैपेसिटी से हम लोग बच पाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा मैं बात करूंगा जो अल्टरनेट रूट्स है, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और उस पर फोकस भी करना चाहिए, न कि जो पुराने रूट है उसी पे हर साल पैसा खर्च होता है और वहाँ भी उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं। अभी आप देखेंगे जो गुप्तकाशी से केदारनाथ वाला, मैं पर्सनली 2-3 साल लगातार गया, मैंने देखा जो सिचुएशन वहाँ पे थी बहुत पैथेटिक थी, जबकि सबसे ज्यादा ओवरफ्लो ट्रैफिक जो है उसी रूट पे होता है, तो वहाँ कोई अल्टरनेट देखना चाहिए। और ट्रैकिंग रूट को तो खैर जो है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई इशू नहीं, वहाँ तो डबल रूट बन गया है। तो ये
0: तो चलिए, अगर आप अपनी पहाड़ की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल चंदन जी आपसे। हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ तो लोकल वार्मिंग की बात हो रही है। इतनी संख्या में अगर गाड़ियां वहां पहुंचेंगी, जाहिर सी बात है कि पहाड़ का हाल क्या होगा?
4: देखिए, बिल्कुल इतनी संख्या में जो लोकल हमारा जो माइक्रो क्लाइमेट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और इतनी गाड़ियों का धुआं, अभी वाडिया संस्थान ने पिछले वर्ष जो है कहा भी था कि जो हमारा गोमुख ग्लेशियर है वो उसका जो है ग्लेशियर पिघल रहा है ब्लैक कार्बन की वजह से, तो ऐसे ही हमारे जितने ग्लेशियर हैं उन पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों के हैं, जितने भी 4 धाम हैं हमारे क्षेत्र के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के एरिया हैं, और हिमालय पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसा पिछले कई वर्षों से लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार मैं ट्रैकिंग करते रहता हूं और उच्च हिमालयी क्षेत्रों को देखते रहता हूं, तो वहां ग्लेशियरों की स्थिति भी बड़ी दयनीय होती है, और ये सबसे ज्यादा इतनी संख्या में जो है गाड़ियों को वहां पर लाना, और अगर किसी एरिया में इतनी गाड़ियां आ रही हैं तो उसका कितना कार्बन उत्सर्जित होगा, इस पर भी जो है हम लोग को सोचना होगा और हमारे नीति निर्माताओं को सोचना होगा कि कहीं ना कहीं इस पर भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, फिर हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं उनमें जितने भी पेड़ काट रहे हैं, जितना भी कुछ हम कर रहे हैं, क्या उसके बदले हम कहीं कुछ कर रहे हैं क्या, या फिर कहीं कर रहे हैं तो वो हम जो है साझा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं भाई हमारे जो है ऑल वेदर रोड बन गई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, लेकिन हम उनके बदले हमने कहां पर उनको जो है उस एरिया का जो वो था
0: ग्रीनरी,
4: वो कहां पर डेवलप किया है,
0: बिल्कुल
4: ग्रीनरी कहां पर डेवलप किया है, तो धीरे धीरे जिस प्रकार से अब हम बद्रीनाथ में देख रहे हैं पूरा जो है कंक्रीट के मकान हो चुके हैं, कंक्रीट के घर हो चुके हैं, बाय चांस देखिए अभी आपदाओं का जो मार है ना वो लोकल लोगों को झेलना होता है, वो वहां के लोकल व्यक्ति को झेलना होता है। अगर बीच में कभी आप देखते होंगे कि बद्रीनाथ में अगर बीच जो पागल नाला है वो अगर बंद हो जाए तो वहां के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अस्पताल आने तक या फिर जो है कहीं भी अपने मार्केट जाने तक या जोशीमठ आने तक का वो पूरी समस्या जो है उन लोग को हो जाती है। तो इस प्रकार से जो लोकल लोगों के लिए वो बड़ी दिक्कत होगी। पर्यटक जो है या तो जो जो आते हैं पर्यटक लोग वो तो चले जाएंगे, वो तो नहीं आएंगे उस सीजन में, चाहे बरसात हो या चाहे आपदा आई हो, वो लोग कुछ टाइम अवॉइड कर देंगे।
0: उसका खामियाजा आम लोग जो लोकलाइट्स हैं उनको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, चलो लौटूंगी आपके पास एक बार। चलिए जल्दी से एक एक सलाह आपकी तरफ से आलोक जी, आप ही से शुरू करूंगी। अभी 1 जून है, आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, समर वेकेशन की शुरुआत हुई है, लोग अगर प्लान कर रहे हैं पहाड़ पर जाने का तो किस तरीके से उनको प्लान करना चाहिए?
1: सबसे जरूरी बात यह है कि जहां वो जा रहे हैं वहां पर अगर उन्होंने अपने रुकने का इंतजाम करा रखा है तो वहां तक जाने का रास्ता क्या है उसको समझ लें, पार्किंग क्या है उसको समझ लें। कई बार गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। देहरादून में एक वो बन रहा है रोप वे जो देहरादून से मसूरी को जोड़ देगा और 15 मिनट में वो रोप वे देहरादून से मसूरी पहुंचा देगा। तो जहां से रोप वे शुरू हो रहा है उसके आसपास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सुनते हैं इस सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो भी योजना लाती है सरकार उसके साथ साथ ये क्या और कुछ होना चाहिए ये समझना चाहिए। तो आने वाला टूरिस्ट अगर इस बात को समझ के आएगा कि मैं गाड़ी अपनी देहरादून में छोड़ सकता हूँ और रोप वे से जा सकता हूँ। इसी तरह के और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं कि जिस जगह जाना है उसका रास्ता समझ लें, पार्किंग की जगह समझ लें। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि कम से कम लोग आए, ज्यादा लोग, जैसे कई बार होता है कोई नौकर भी ला रहा है, ड्राइवर भी ला रहा है, ड्राइवर और नौकर आ रहे हैं वो भी तो उसी जगह जाएंगे जहाँ पर वो जा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से पहल की जा सकती है। सर एक सजेशन सुभाष जी आपकी तरफ से, अगर पहाड़ पर जाने की प्लानिंग हो रही है तो?
2: नहीं, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रैफिक को रेगुलेट करें। जैसे इन्होंने गेट्स की बात करी थी, टाइमिंग्स की बात करी थी, रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। एक कितने लोग आपने छोड़ने चाहिए और बाकी जहां पर भी आप लोगों को रोकते हैं, गेट बंद करते हैं, वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां पर थोड़े होटल होने चाहिए, कुछ लोग वहां पर रेस्ट कर लें और अर्ली इन द मॉर्निंग फिर निकल जाएं, तो ताकि यू नो एकदम एक ही टाइम पे वो ना हो,
0: वो कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। बिल्कुल पवन जी, एक सजेशन
2: करेंगे।
0: सर, हाँ, पवन जी।
3: यस, बेसिकली जो सुभाष जी ने बोला कि कैरिंग कैपेसिटी तो बेसिक है सर।
0: अभी जो को क्या
3: आम जनता को, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो बेस से, अगर बेस को क्लियर करेंगे तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म करें। स्पिरिचुअल टूरिज्म कौन जाता है, आपको मास टूरिज्म चाहिए या क्लास टूरिज्म चाहिए? चार धाम इज रियली मीन स्पिरिचुअल वेरी क्लास टूरिज्म, वहां चार धाम वाला ही जाए। आपने देखा होगा अभी बहुत सारी वीडियोज मार्केट में वायरल हो रही है कि आप हरियाणा से हैं, उत्तराखंड बड़ा क्लैश चल रहा है, बड़ा नॉइस मार्केट में है। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं कता भी ऐसा ना करें। अगर कोई ड्राइवर या सॉफर अगर हरियाणा नंबर गाड़ी चला रहा है तो ये मतलब नहीं कि वो हरियाणा से है, वो किसी लोकल उत्तराखंड बंदे की अभी कंपनी हो सकती है।
0: ठीक है,
3: तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, इसको गलत तरीके से इनपुट ना दें, रूमर ना फैलाएं मार्केट में, जिससे कि किसी पर्टिकुलर के इमोशंस या सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं।
0: चंदन जी, तो चंदन जी आपके पास आते हुए जल्दी से बताइए, अगर लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं पहाड़ की तो किस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए?
4: मैं तो बस यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो अगर आप आते हैं तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय लेके आए, कम से कम 5 से 7 दिन का समय लेके आए, और जो लोकल गांव है उन गांव में होम स्टे आप जो है अपने बुक कराएं, ताकि उससे क्या होगा कि जो हमारा जो ट्रैफिक होगा वो डाइवर्ट होगा, गांव की ओर डाइवर्ट होगा, तो उससे जो मेन जो हाईवेज है उसमें हमारा ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और होम स्टे में आप स्टे करेंगे, वहां पर आप गांव की संस्कृति को पहचानेंगे, वहां के लोगों से आप परिचित होंगे। तो आप थोड़ा टाइम लेके आए, जितने भी हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो टाइम लेके आए और गाँव में रुके जितने भी, क्योंकि गाँव बहुत सारे गाँव है हमारे रास्ते में। हम लोग सोचते हैं कि भाई ऋषिकेश से निकले तो सीधे केदारनाथ पहुंच जाए, ऐसा अगर हम लोग नहीं करेंगे बीच में
0: समय लेकर आप चले बिल्कुल चलिए आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ी और खास बात इसका भी ख्याल रखें कि वीकेंड पर ट्रेवल करने से थोड़ा सा बचें क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वीकेंड्स पर ही होता है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप रहिए हमारे साथ।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो जेएनटी भी आपसे अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है ताकि आपके उन वीडियोस को हम गुड न्यूज टुडे पर दिखा सके। तो चलिए आज हम आपको पिथौरागढ़ की एक खूबसूरत जगह का दीदार करवाते हैं। यहाँ तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं और इस वीडियो को हमारे दर्शक ने भेजा है।
2: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला कापड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली।
3: अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली।
2: आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल

0: ट्रैक है जहाँ तक पहुँचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहाँ पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियाँ और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रोन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में दो या तीन बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों न इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
1: आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, संकल्प की भागीदार बनना चाहते हैं, तो बस करना सिर्फ इतना है कि आप अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत जगह, अपने शहर या फिर शहर में आने की किसी खास वजह अगर कोई हो तो वीडियो उठाइए, वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए 7303409922 पर। हम इसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज सही मायने में ना चाय और समोसे का मजा आने वाला है, क्योंकि चाय समोसे का मजा ही तब आता है जब मौसम कूल बना हुआ हो। तो मौसम बिल्कुल ऐसा ही है और आने वाले 5 जून तक ऐसा ही रहने वाला है। पूरा अपडेट आज आपको आगे देंगे।
4: देखिए, जैसा कि आपको बता चुकी है नवजोत, मैंने पहले ही समोसा ले लिया अपने पेट में। बिल्कुल, आपको बता दें हमारा वीकेंड ना बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा गुजरा है और आने वाला समय भी कुछ वैसा रहने वाला है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे बैकग्राउंड में बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन वैसा ही होने वाला भी है मौसम आगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मेहरबानी है, लेकिन इसके अलावा जो बात होगी, क्योंकि वीकेंड में जो जबरदस्त हमें देखने को मिला है मैच आईपीएल का, उसकी बात हम कैसे ना करें। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आईपीएल में जीत के साथ आरसीबी जश्न के साथ में आसमान पर है। विराट नाच रहे हैं और उनके फैंस झूम रहे हैं, लेकिन इस जीत के बीच अगर टूर्नामेंट में किसी ने लोगों का दिल जीता है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। तो कैसे इस सीजन के स्टार बनकर उभरे हैं वैभव, इसकी भी हम आगे बात करेंगे।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आगे बात होगी ओपन एआई के उस प्लान की भी, जिससे आने वाले वक्त में हम सब की जिंदगी बदल सकती है। कंपनी अब आपके लिए पर्सनल रोबोट्स बनाने जा रही है। जी हाँ, तो कैसे आपके काम आसान करेगा ये रोबोट, ये भी जानेंगे, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं अभी की हेडलाइंस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधियों के साथ कारोबार में इजाफे के संकेत। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मिल्क डे, इस साल महिला किसानों का सम्मान थीम से कार्यक्रम, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को नमन। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1। केरला में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में 1 हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनो।

0: तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और चाय पर चर्चा की शुरुआत गुड न्यूज के साथ, राहत की बारिश के साथ, जो इस वक्त आपको बता दे कि तपते हुए उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में जिस तरह से इस वक्त मौसम है, आगे भी आंधी और बारिश का जो ये कॉम्बो हमें देखने को मिला है उसने काफी राहत पहुंचाई है। और उसके बाद मौसम विभाग ने ये संकेत भी दिए हैं कि आने वाले कुछ दिन गर्मी से राहत यूं ही हमें मिलती रहेगी। फिलहाल अगर आप लोगों के वीकेंड की बात करें तो किस तरह का वीकेंड रहा भाई?
1: आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दीपाली। मेरा बहुत शानदार वीकेंड रहा, जो मेरे काम थे वो मैंने सारे निपटा लिए, क्योंकि जिस तरह से नौतपा चल रहा था, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, बाहर जाने लायक था ही नहीं मौसम। तो मैंने इस बार अपने वीकेंड पे सारे काम कर लिए,
2: शॉपिंग कर ली है
1: जितने भी बाहर आउटडोर काम थे,
2: मैं बस प्लान बनाती रह गई। लेकिन मौसम मैंने फुली एंजॉय किया है। दोनों दिन बहुत अच्छा मौसम था और यकीन मानिए जो 42 से 44 डिग्री चल रहा था ना, आज बहुत अच्छा लगा। टेम्परेचर काफी कम हुआ है और बड़ी बात यह है कि भले ही धूप खिली हुई है लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो आपको वाकई सुकून दे रही हैं। तो मौसम विभाग का यही कहना है कि फिलहाल 5 तारीख तक यूं ही मौसम बना रह सकता है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ बादल छाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दूसरी तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि जब जहां हम दिल्ली एनसीआर के लोग बारिश का मजा ले रहे थे, वहीं ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक बवंडर, रेत का बवंडर ये आया है। ये गंगानगर के आसपास की तस्वीरें हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश भी हुई है। राजस्थान की तस्वीरें भी, धूल भरी आंधी की तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं और मौसम विभाग का यही कहना है कि फिलहाल भले ही केरल के तट पर मॉनसून 2 से 3 दिन की देरी से आ रहा है, लेकिन जो हल्की बारिश वहां पर हो रही है उसको प्री मॉनसून शावर्स ही माना जाएगा।

तो जैसा हम बता ही रहे थे कि साउथ में अगर देखा जाए तो प्री मानसून बौछारों की बीच मॉनसून अब खबर ही आ रही है कि केरल के तट पर 2 से 3 दिन में एंट्री ले सकता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो कब तक हीट वेव से राहत मिलेगी और मॉनसून में हुई देरी का असर मैदानों पर कितना हो सकता है, आइए समझते हैं।

0: शुक्रिया कीजिए इन बादलों का जो आए और भीषण गर्मी का पारा डाउन करके चले गए। अभी तो उत्तर भारत में आंधी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें ब्रेक लगा है और हाल में आया वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी अब करीब करीब गुजर चुका है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल अब यही है कि क्या हीट वेव के दिन लौटने वाले हैं और क्या मॉनसून में हुई देरी मैदानों पर भारी पड़ने वाली है। हाल फिलहाल बरसे बादलों ने गर्मी के चंगुल से जिंदगी को जिस तरीके से आजाद किया है उसके बाद से लगातार राहत बनी हुई है। मैदानों में पारा करीब 6 से 10 डिग्री तक लुढ़का हुआ है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 27 मई को तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया था, वही आज यानी कि 1 जून 35 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम की बात की जाए तो कल से लेकर 5 जून तक तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। यही नहीं, मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान हल्की से बहुत हल्की बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस भले ही गुजर चुका हो लेकिन बारिश का छोटा मोटा दौर अभी उत्तर भारत के कुछ इलाकों में दिख सकता है। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 दिन और बारिश का अनुमान है। ऐसे में साफ है कि गर्मी से राहत फिलहाल बनी रहने वाली है। दरअसल 1 जून के बाद होने वाली बारिश इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि जून की पहली तारीख से भारत में मॉनसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है। मॉनसून भले ही केरल न पहुंचा हो लेकिन आज से होने वाली हर बारिश को प्री मॉनसून बारिश में ही काउंट किया जाएगा। उत्तर भारत फिलहाल कूल बना हुआ है और उम्मीद यही है कि आगे भी पारा 42 डिग्री वाली हदें नहीं लांघेगा। जहां तक हीट वेव का सवाल है तो मान के चले कि गर्म दिनों का गुब्बार अब गुजर चुका है और जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा उमस बढ़ेगी लेकिन 47 डिग्री वाली गर्मी से अब सामना नहीं होगा। वैसे शुक्र इस बार बार बार आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी कीजिए क्योंकि गर्मी के बीच बार बार आए इस मौसमी बदलाव ने जिंदगी की जलन से बचाया है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो वहीं आने वाले वक्त में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है इसको समझा रहे हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, सुनिए।
2: जून के महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोगों को पहले हफ्ते में ही राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में ये राहत कब तक होगी, ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे क्योंकि मौसम इस वक्त अच्छा है, हालांकि बारिश नहीं देखी जा रही लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है वो थोड़े कम देखे जा रहे हैं।
3: जी, अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर्स हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में हो ही सकता है।
2: किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टरबेंस इस वक्त एक्टिवेट है?
3: हाँ, अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, उसका प्रभाव थोड़ा जहाँ एनसीआर में भी रह सकता है। उसके अलावा एक राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है जिसका प्रभाव रहने का अनुमान है। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो राइज होंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से कम है, लेकिन फिर भी एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले एक वीक में नहीं हुई।
2: अच्छा, अगर मैं बात राजस्थान की करूँ तो लगातार कुछ दिनों से वहाँ पे तेज धूल भरी आंधी जो है वो देखी जा रही है, तो वहाँ पर अभी क्या स्थिति है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले?
3: देखिए, आज के लिए भी अगर हम कहें तो वहाँ डस्ट स्टॉर्म आ सकते हैं। आज भी कंडीशंस फेवरेबल है, वहाँ सर्कुलेशन पैटर्न बने हुए हैं जिसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट बिल्डअप होना हो जाएगा और उसके कारण डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी आज भी हो सकती है जिसके लिए हमने आज के लिए भी वहाँ वार्निंग दे रखा है।
2: अगर हम पूरे सेंट्रल इंडिया की भी बात करें तो हम जगह जगह इस मैप में देख रहे हैं बारिश की जो है अलर्ट जो है दिया गया है।
3: अगर आप पूरा देखेंगे इस समय हमारा ऑलमोस्ट ज्यादातर हिस्सों में आप ऑरेंज अलर्ट देखेंगे जहाँ पे हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है और हमारा अनुमान है जो हवाओं की गति है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रह सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जहां आने वाले 2-3 दिनों के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है।
2: साथ ही साथ मॉनसून की अगर बात करें, 1 तारीख को तो वैसे ही मॉनसून दस्तक दे देता है लेकिन इस बार 26 की प्रेडिक्शन थी लेकिन अब 1 भी आज आ गया है, तो क्या स्थिति है, कब तक मॉनसून?
3: देखिए, अभी तक यह था कि हमने बताया था लेकिन कंडीशन इतना फेवरेबल नहीं बना और अब हमारा अनुमान है आने वाले 2-3 दिन में कंडीशंस फेवरेबल हो सकता है कि कुछ ये लक्षद्वीप के ये कुछ हिस्से कवर कर सकता है, केरला का कुछ हिस्से कवर, मानसून कवर कर सकता है, सौ तमिलनाडु के हिस्से कवर कर सकता है, और हमारा बे ऑफ बंगाल का काफी हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा आने वाले 2 से 3 दिन मानसून कवर कर सकता है।
4: चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजस्थान की और बात रेत के बवंडर की। जी हाँ, राजस्थान के लोगों ने हाल के दिनों में धूल भरी आंधियों और रेत के बवंडर का सामना किया।
5: बिल्कुल, और हम आपको बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, और इस बार कहां कैसा बवंडर आया, स्थिति वहां पर कैसी आई, बताते हैं आपको।
6: राजस्थान के कई इलाकों में 30 और 31 मई के दरमियान उठे रेत के बवंडर की ये तस्वीरें यहां अचानक बदले मौसम की तस्दीक कर रही हैं। एक तरफ रेत का ये बवंडर मौसम के बदले मिजाज की ओर इशारा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह के बवंडर को लेकर कई सवाल भी लोगों के जहन में उठते हैं। सबसे पहले हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस तरह का रेतीला तूफान कहां से आया। दूसरा अहम सवाल ये है कि इस तरह के रेतीले तूफान आखिर कैसे पैदा होते हैं, इनके पीछे विज्ञान क्या है। सवाल ये भी है कि इस तरह के रेतीले तूफान से क्या सिर्फ नुकसान ही होता है या इसका कुछ फायदा भी है। और बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के तूफानों से आखिर इंसान कैसे अपना बचाव करे। तो इन सभी सवालों की हम पड़ताल करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि इन रेतीले तूफानों की हकीकत क्या है। पहले तो सवाल यही उठा कि ये रेत के बवंडर क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या किसी मौसमी बदलाव की वजह से उठते हैं या फिर कहीं और से आते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए ये समझना होगा, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानी इलाकों में अक्सर धूल भरे बवंडर आते रहते हैं। राजस्थान में रेत के बवंडर और धूल भरी आंधियां मुख्य रूप से थार रेगिस्तान से उठती हैं। देश में 60% रेगिस्तान राजस्थान में फैला हुआ है, जिसे थार के नाम से जाना जाता है। वहीं हवा में मौजूद रेत का आधा हिस्सा असल में सहारा रेगिस्तान से आता है। सहारा से मध्य पूर्व से होते हुए मध्य और उत्तर पूर्वी एशिया के रेगिस्तानों तक फैली धूल की पट्टी ऐसे बवंडरों की वजह बनती है। तो सवाल ये भी उठता है कि रेत के बवंडर या तूफान बनते कैसे हैं? क्योंकि जब ऐसे तूफानों का निर्माण होता है तभी उनका असर दूर दूर तक दिखता है। ज्यादातर रेगिस्तान भूमध्य रेखा की इर्द गिर्द हैं। इन इलाकों में ज्यादा वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई पर मौजूद ठंडी शुष्क हवा को जमीन तक लाता है। इस दौरान सूरज की सीधी किरणें हवा की नमी खत्म कर देती हैं। इससे हवा बहुत गर्म हो जाती है, बारिश नहीं हो पाती है और जमीन गर्म हो जाती है। जमीन गर्म होने के कारण नमी के अभाव में धूल के कणों की आपस में पकड़ नहीं रह पाती। ऐसे में ये धूल कण हवा के साथ बहुत आसानी से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। रेगिस्तानों में चलने वाली हवा की गति जब रफ्तार पकड़ती है तो ये अपने साथ साथ जमीन की सतह से ढीली धूल कणों को उड़ाना शुरू कर देती है। हवा की गति 40 किलोमीटर से ज्यादा होने पर ये धूल कण एक बवंडर का रूप धारण कर लेते हैं। ये बवंडर जिस तरफ से होकर गुजरते हैं वहाँ पर सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। धूल के छोटे कण हवा के साथ हजारों किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं। हवा की रफ्तार तेज रहने पर धूल कणों की ये बवंडर जिस तरफ से होकर गुजरते हैं वहाँ पर सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। धूल के छोटे कण हवा के साथ हजारों किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं। हवा की रफ्तार तेज रहने पर धूल कणों की मात्रा बढ़ती जाती है और ये धूल आसमान में छा जाती है। तेज हवा के साथ आगे बढ़ती ये धूल एक बवंडर का रूप धारण कर लेती है। रेगिस्तान में जमीन पर मिट्टी की पकड़ मजबूत नहीं होने के कारण धूल भरी आंधियों का दौर चलता रहता है। बवंडर के रूप में धूल भरे ये तूफान इतने सघन होते हैं कि इनके कारण कुछ भी देख पाना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि सांसों के साथ ये धूल फेफड़ों तक पहुंचकर सेहत को नुकसान भी पहुंचाती है। हालांकि एक दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह के बवंडर को पर्यावरण और प्रकृति के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। इसका कारण ये माना जाता है कि रेगिस्तान की रेत में कई तरह के पोषक तत्व और खनिज भी होते हैं। बवंडर के जरिए रेगिस्तान की धूल उड़कर वर्षावनों और दूसरे इलाकों तक पहुंचती है। ये धूल पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी के लिए खाद का काम करती है। माना जाता है कि रेगिस्तान की धूल समुद्र के लिए भी एक बहुत जरूरी खाद है, जिससे फूड चेन में मदद मिलती है। हालांकि राजस्थान सहित मैदानी इलाकों में जब बवंडर आते हैं तो बहुत ज्यादा रेत और धूल नुकसानदेह हो सकती है। इनके कारण आंखों और त्वचा में जलन पैदा हो सकती है, क्योंकि धूल में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकते हैं। रेत के तूफान से अक्सर आवागमन और खेती पर भी असर पड़ता है, ऐसे में इनसे बचाव भी जरूरी है। आपको बताते हैं बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखें, एसी और कूलर बंद कर दें, क्योंकि ये बाहर की रेतीली हवा को अंदर खींच सकते हैं। अगर आप सड़क पर हों या गाड़ी चला रहे हैं तो सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। किसी पक्के मकान या सुरक्षित शेड के नीचे शरण लें। गाड़ी पार्क करने के बाद पार्किंग लाइट्स चालू रखें ताकि दूसरी गाड़ियों को अपनी स्थिति का पता रहे। गाड़ी के शीशे बंद रखें, एयर वेंटिलेशन को रिसर्क्यूलेट मोड पर डाल दें। सांस के जरिए फेफड़ों में रेत जाने से रोकने के लिए मास्क, रुमाल या कोई गीला कपड़ा इस्तेमाल करें। धूल से आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने। पेड़ों, होर्डिंग्स, बिजली के खंभों या कच्ची दीवारों के पास खड़े होने से बचें, क्योंकि आंधी में इनके गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जलवायु में आ रहे बदलाव के कारण रेत के बवंडर आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर से जंगलों की कटाई, औद्योगिक गतिविधियों और सूखे की स्थिति से इनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रकृति की रक्षा और मिट्टी की बेहतर देखभाल ही रेतीले बवंडर के खतरों से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: देखिए, गर्मी की तो बात हो ही रही है, लेकिन हाँ, फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं जरा घूमने फिरने की, क्योंकि ऐसे भी हमें घूमने फिरने का बड़ा शौक है। दीपाली हम में से नहीं है, तो दीपाली आपसे जानने को बहुत कुछ है। ये बताइए, फेवरेट स्पॉट कहाँ होगा अगर हम वेकेशन की बात करें तो, गर्मियों में कहाँ जाना पसंद करेंगे?
8: वो तो विदाउट एनी डाउट आई थिंक शिमला ही होगा, लेकिन अभी मैं कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ, वो अलग बात है। बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग पहुंच रहे हैं हिल स्टेशन पे, और तापमान का जो अंतर है शहर में और पहाड़ों में वो देखकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं।
5: अभी सोचना भी नहीं, क्योंकि जो शिमला की हालत इस वीकेंड हुई है ना, उसके बाद तो आपको हिल स्टेशन का रुख करने से पहले कम से कम सोच लेना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए।
7: बिल्कुल, इनफैक्ट आप हिमाचल वगैरह की भी तस्वीरें अगर आप इंस्टा पे देख रहे होंगे, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन मन है यानी कि दिल है कि मानता नहीं। तो चलिए आपको बता दें कि हिल स्टेशन पर अच्छी खासी रौनक हालांकि इन दिनों देखने को मिल रही है। यहां पहुंचे लोगों को शहर और पहाड़ के तापमान का अंतर काफी हैरान कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जून के महीने में पहाड़ों पर घूमने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

0: जून की शुरुआत में भी तपते मैदान इंसानों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जब जब गर्मी सताती है तब तब दिल पहाड़ों को याद करने लगता है। और इस बार पहाड़ सचमुच बुला रहे हैं, तभी तो पर्यटकों की मौजूदगी से ज्यादातर हिल स्टेशन चहक रहे हैं। नैनीताल, शिमला और धर्मशाला इस समय कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा बनकर सामने आए हैं। यहाँ हवा में ठंडक के साथ सुकून जो घुला हुआ है।
1: यहाँ पे मैं ट्रिप पे आई हूँ, सो मेरा 7-8 डेज का ट्रिप है। एंड मुंबई में अभी टेम्परेचर कुछ 35 डिग्री था एंड वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, सो वी प्लान टू विजिट नैनीताल, उत्तराखंड स्पेशली, सो वी आर हियर टू एंजॉय आवर ट्रिप।
0: ये वो लकी लोग हैं जो मैदानों को पीछे छोड़

0: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट आप कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो अपना कैमरा उठाएं और बनाएं व्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
1: वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी से करवाएंगे जो जल्द OTT पर एक साथ नजर आने वाली है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारे साथ चाय पर चर्चा। और इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल हुआ, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा GST कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधियों के साथ कारोबार में इजाफे के संकेत। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मापाल में तर्पण और

0: दान के लिए उमड़ी भारी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भक्त।
1: चलिए अब बात वीकेंड धमाल की कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी ने आईपीएल देखा होगा और आईपीएल ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीती। आप सभी को पता है 5 विकेट से रौंदते हुए लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया है गुजरात टाइटंस। देखिए गुजरात की धरती अहमदाबाद में मैच हो रहा था और वहीं पर गुजरात की टीम को हराकर आरसीबी ने कब्जा जमा लिया। मैच आपने देखा?
0: मैच मैंने बिल्कुल देखा है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा पूरी टीम का, स्पेशली विराट कोहली का। 75 रन उन्होंने बनाए हैं और इस बार उन्होंने साबित कर दिया है कि विराट कोहली आखिर हैं कौन, उनकी लेगेसी क्या है। एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके हैं। आरसीबी के ऊपर जो एक स्टैंप लग गया था, टैबू लग गया था कि जीत नहीं पाती है, उसे तोड़ दिया है, दूसरी बार लगातार टाइटल को जीत।
2: मुझे लग रहा है कि विराट का जो लकी चार्म, क्योंकि अनुष्का वहां बैठी थी और लास्ट मोमेंट पे वो विराट का छक्का काम आ गया और एक बड़ा इमोशनल पल, काफी वायरल भी हो रहा है कि जीत के बाद विराट की आंखों में आंसू आते हैं और कैसे अनुष्का उनको पोंछती हुई, उनको हग करती हुई नजर आ रही है। तो ये मोमेंट बहुत खास था सबके लिए।
1: लेकिन आपको बता दें, जब पूरे मैच को आप देखेंगे, हालांकि जब स्कोर ही आया था गुजरात टाइटन्स ने जो दिया था, जितना वो अचीवेबल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सामने जहां विराट कोहली जैसे मतलब खेलने वाले हो, तो ये बहुत ही कम स्कोर था। मतलब हम सोच रहे थे कि लगभग पहुंचे 200 के आसपास, तो फिर कुछ देखा जाए, फिर कोई बात बनती है। लेकिन यहां देखिए जो 3 तस्वीरें हैं जो देखने लायक थी, एक तो ऑफ कोर्स ट्रॉफी उठाते हुए, दूसरी तस्वीर आप वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अपने आप इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो फ्राइडे को भी जो मैच हुआ था उसमें वैभव ने एक के बाद एक जो रिकॉर्ड बनाए थे वो अपने आप में कमाल के थे। और उसके बाद विराट का ये दिल जीत लेने वाला डांस, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार हम विराट पर इस बीच बात भी करते रहे नवजोत, कि इनका जो डेली का शेड्यूल रहता है जिस तरह से वो अपने वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, जितने वो फोकस्ड रहते हैं थ्रू आउट, कोई कुछ भी कहे, ट्रोलर्स कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दरअसल इनका मैच जब ये मैदान पे उतरते हैं तो ये एक्चुअली बताते हैं कि हु इज विराट कोहली।
2: बिल्कुल, तो तस्वीरें देखिए, असली पंजाबी रंग नजर आ रहा है, यहाँ विराट का डांस निकल के बाहर आ ही गया है, जिसको लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, विराट कोहली की बात तो हो रही है, इसके अलावा जो स्टार प्लेयर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी,
1: पूरी सीरीज में वैभव का बल्ला भी चला है। और कल एक और तस्वीर हमने देखी, वैभव को गले लगा, उनके कंधे पर हाथ दिया हुआ था विराट ने, और वो तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है, कुछ खास मोमेंट थे वो।
2: तो आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट का डांस शेयर किया है, वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, डांस फ्लोर पर धमाल मचाते दिख रहे हैं।

0: भले इस बार आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी के नाम रही हो, लेकिन पूरे सीजन में अगर किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वो था सिर्फ 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल क्रिकेट खेलते हैं, उस उम्र में वैभव ने आईपीएल के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की किताब में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है।
1: बिल्कुल, आपको बता दे क्या कुछ धमाल और कमाल क्या है, ये तो हम पूरे सीरीज देखते रहे हैं। 5 रिकॉर्ड शायद उन्होंने अपने नाम किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल सफर की वो शानदार झलकियां जिसने उन्हें रातों रात करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का चहेता बना दिया है। जानेंगे कैसे इस छोटे सितारे ने गेंदबाजों की नींद उड़ाई, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई और साथ ही बताएंगे कि सचिन, विराट और धोनी जैसे दिग्गजों के दौर में आखिर कौन है वैभव सूर्यवंशी का सबसे पसंदीदा क्रिकेटर।

0: इस बार की आईपीएल ट्रॉफी भले ही आरसीबी ने अपनी झोली में डाली, इस बार आईपीएल चैंपियन बनी, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक 15 साल का युवा खुद के दम पर हीरो बना। नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये मास्टर बल्लेबाज महज 15 साल के हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स का ऊंचा पहाड़ खड़ा करने वाले वैभव ने T20 बल्लेबाजी के उन दायरों को भी तोड़ दिया जिन्हें अब तक कोई छू नहीं सका था। 2025 में डेब्यू करने वाले वैभव ने उस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अगले साल भी अच्छा प्रदर्शन बरकरार रहने पर सवाल हुए तो इस बार उन सभी आशंकाओं को दरकिनार कर वैभव ने धमाकेदार अंदाज में जवाब दिया। 2026 के आईपीएल में राजस्थान की शुरुआती 4 जीतों में सूर्यवंशी की अहम भूमिका इस बात की साफ तस्दीक कर रही है। 2026 के आईपीएल में सूर्यवंशी ने ऐसे आंकड़े खड़े किए जो आईपीएल इतिहास में पहले कभी देखे नहीं गए। 776 रन, 237.3 का स्ट्राइक रेट और 72 छक्के। अभिषेक शर्मा, आंद्रे रसेल और एलेक्स हेल्स जैसे नामों वाले एलीट क्लब में सूर्यवंशी टॉप पर रहे। वहीं 16 गेंद की 50, 36 गेंद का शतक और 29 गेंदों पर 97 रन, उनकी हर बड़ी पारी रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई। 1000 आईपीएल रन तक 440 गेंदों और 23 पारियों में मुकाम हासिल कर सूर्यवंशी ने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। 521 रन और 46 छक्के पहले 6 ओवर मानो वैभव के लिए रन बरसाने का मंच बन गए। पावर प्ले में सूर्यवंशी ने अकेले CSK, RCB, KKR, GT और दिल्ली कैपिटल से ज्यादा छक्के लगाए। हर 4 ओवर 5 गेंद पर एक छक्का लगाकर सूर्यवंशी ने T20 हिटिंग के नए मानक तय किए। बुमराह, स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड जैसे दिग्गज भी उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी से बच नहीं सके। मोहसिन खान और सुनील नरेन उन चुनिंदा नामों में रहे जिनके खिलाफ वो खुलकर खेल नहीं पाए। प्रफुल्ल हिंगे की पहली गेंद पर आउट होने के बाद सूर्यवंशी ने अगली भिड़ंत में लगातार 4 छक्के जड़कर हिसाब बराबर किया। तो वैभव के लिए ये आंकड़े महज एक आगाज हैं आने वाले दिनों का। भले ही राजस्थान आईपीएल फाइनल में जा नहीं सकी, मगर टीम ने वैभव के जरिए आईपीएल में कई खिताब कमाए। वहीं अपने दमदार और यादगार प्रदर्शन के जरिए पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में गहरी छाप छोड़ने वाले वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन समेत कई व्यक्तिगत पुरस्कार हासिल हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कमाल के क्रिकेटर के लिए फेवरेट न सचिन, न विराट और न कोई और क्रिकेटर है, बल्कि सुनील गावस्कर हैं। दरअसल आईपीएल फाइनल के बाद गावस्कर से मुलाकात के दौरान वैभव ने बताया कि वो बचपन में जब बाउंसर गेंदों से खूब परेशान होते थे तो उनके पिता ने ही सुनील गावस्कर की प्रेरक कहानियों के जरिए उनको बाउंसर गेंदों को बखूबी फेस करना सिखाया। उसी सीख से इस बार के आईपीएल में न केवल वैभव ने अटैकिंग बल्लेबाजी निखारी, बल्कि मैच में हालात के मुताबिक खुद को पिच पर खड़ा रखने की क्षमता भी बढ़ाई। अब वैभव टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई सीरीज खेलें, क्योंकि बल्लेबाजी की एक नई परिभाषा लिखने वाले 15 साल के वैभव का उनके करियर में बेस्ट आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आ रही है जिसका टाइटल है माँ बहन। वैसे इसका प्रोमो और टीजर तो आपने देखा होगा।
2: हाँ, प्रोमो टीजर मैंने देखा है और उस देख करके तो बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे। माधुरी है, तृप्ति है, रवि किशन भी होंगे। तो
1: नाम को लेके क्या कहेंगे?
2: मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, वो घर घर की कहानी होगी और उसके बाद ऑब्वियसली फीमेल डोमिनेटेड ये फिल्म होने वाली है क्योंकि माँ भी है, बहन भी है, तो ऑब्वियसली बेटियां भी होंगी।
1: लेकिन बात वही आती है ना, जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बियोल्डर।
2: एग्जैक्टली,
1: तो ये वही है कि आप उसको किस अंदाज में देख रहे हैं। फिलहाल तो आपको इसकी स्टारकास्ट से मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ है माँ बहन की टीम। और मैं अभी शुरुआत से पहले हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि फास्ट न्यूज में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक खबर आ गई कि नेटफ्लिक्स पर माँ बहन आ रही। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिटरली ऐसे पढ़ा और अब बहुत ही जल्द आप नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं माँ बहन। और मैंने प्रोड्यूसर को बोला कि आप ये क्या लिखते रहे, तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये एक्चुअली फिल्म का नाम है, तो फिल्म का नाम यही है। स्टारकास्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, माधुरी जी, तृप्ति जी, हमारे साथ है रेखा, जया, सुषमा, राइट, तीन, और हमारे साथ धारणा भी मौजूद है और सुरेश त्रिवेणी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उसी पे आऊंगी जिस पे मैं फंस गई थी पढ़ते पढ़ते। ये नाम कहाँ से आया?
3: नाम कहानी से आया, क्योंकि कहानी एक माँ है जिनका नाम रेखा है। हाँ। और उनकी दो पुत्रियां हैं एक जय और एक सुषमा, तो आप सोच सकते हैं कि, और फिर एक कांड हो जाता है
1: अच्छा
3: घर के अंदर। तो इससे ऐप टाइटल जो कहानी के बारे में भी, मूड के बारे में भी पता है, और प्रोटैगनिस्ट कौन है मेरे माँ और बहन, तो आके बैठ गया पूरा अच्छी तरह से।
1: हाँ।
3: और हमने अब फिल्म देखी समझ में आएगा कि हाँ। क्यों है टाइटल माँ बहन।
1: नहीं, ट्रेलर्स में तो हमने देखा है बहुत ही अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटमेंट हमारी बढ़ी हुई है। तो माधुरी जी, माँ बहन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीजें इसमें है। हम देख, वही है कि देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। तो इस टाइटल को लेकर, ये जब टाइटल आपके सामने आया तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आए?
4: बिल्कुल आए, क्योंकि मुझे पहले जब इन्होंने कहा टाइटल, मैंने कहा टाइटल क्या है, बोले माँ बहन, तो एक मिनट के लिए मैं मजाक कर रहे ऐसे हुआ कि ये तो टाइटल नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तो फिर मुझे ऐसे लगा नहीं, दिस इज अ वेरी एप्ट टाइटल, यही चाहिए था टाइटल।
1: मतलब मेरा, मेरे प्रोड्यूसर और राइटर ने जो लिखा था, हमारी एंकर लिंक लिखा था, उसमें मेरा चौकना गलत नहीं था।
4: नहीं, गलत
1: बिल्कुल गलत नहीं।
4: जैसे हम लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैं कहती हूँ कि मेरी नई फिल्म आ रही है, देखना जरूर, क्या टाइटल क्या है, माँ बहन, ऐसे लोग हो जाता है तो मैंने कहा नहीं नहीं, रियली टाइटल इज माँ बहन, लेकिन कहानी ऐसी है, सो दे आर लाइक, बट दे आर ऑल वेरी थ्रिल्ड एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
1: एक बहुत अच्छा आपका डायलॉग, बार बार मैंने तो उसी में ट्रेलर और प्रोमोज वगैरह में देखा है कि मम्मी तुम फिर स्लीवलेस ब्लाउज पहन के मम्मी स्लीवलेस ब्लाउज क्यों नहीं पहन सकती?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल पहन सकती हैं, पहनना चाहिए।
1: अच्छा, ये स्लीवलेस ब्लाउज के पीछे वाली कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत हिट हो रही है लाइन पूरी।
3: ये कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और इसका क्रेडिट जाता है इसकी राइटर पूजा तुलानी को, क्योंकि हम जब जैम कर रहे थे तो उनके तरफ से आया था और वहीं से शुरू हुआ, बिकॉज आई थिंक माय सोसाइटी में अननेसेसरी टैबूज हैं फॉर सम रीजन, कुछ कुछ किसी एक रीजन के लिए, और इनको तो गर्मी लगता है।
4: गर्मी लगता है हमको।
0: और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है आपके लिए पर्सनल रोबोट्स बनाने की तैयारी।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
7: Swing and a foul out of play off to the left.
6: Big 12 Radio.
8: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
6: Talk Sport.
9: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
6: And more. Search sports to find the stations covering your team.
10: समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
15: जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलते ही कोई चाय तैयार कर दे, घर की सफाई कर दे, जरूरी सामान ले आए और आपके कहने भर से रोजमर्रा के तमाम काम निपटा दे। और सबसे दिलचस्प बात, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट रोबोट हो जो आपके घर का हिस्सा बन चुका हो।
2: बिल्कुल, आपको बता दें सुनने में ये सब कुछ किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य आपको लग सकता है, लेकिन तकनीक की दुनिया तेजी से इसी दिशा में बढ़ रही है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां इसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की होड़ में हैं, जो आने वाले समय में घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ काम करते नजर आ सकते हैं। यानी कि वो भविष्य जिसकी कल्पना अब तक फिल्मों में होती थी, अब धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रहा है।

0: जरा सोचिए, अगर आपके घर में एक ऐसा रोबोट हो जो सुबह की चाय बनाने से लेकर घर की सफाई, सामान लाने और आपकी रोजमर्रा के कामों तक सब कुछ संभाल ले। ये सुनने में भले साइंस फिक्शन जैसा लग रहा हो, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां पर्सनल रोबोट्स को हकीकत बनाने की दौड़ में जुट गई है। पर्सनल रोबोट्स की रेस में फिलहाल तो ओपन एआई आगे निकलती दिख रही है। कंपनी ने अपने रोबोटिक्स डिवीजन का विस्तार करने का ऐलान किया है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि कंपनी ऐसे इंजीनियर्स की तलाश कर रही है जो इंसानों की मदद करने वाले रोबोट विकसित कर सके। ऑल्टमैन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि एआई को वास्तविक दुनिया में भी अब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऑल्टमैन का इशारा साफ है कि भविष्य में एआई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके आसपास चलती फिरती मशीनों के रूप में भी नजर आने वाला है। फिलहाल एआई पर्सनल रोबोट्स की दुनिया आबाद होने जा रही है। ओपन एआई की इस नई पहल की जिम्मेदारी भारतीय मूल के इंजीनियर आदित्य रमेश को दी गई है। आदित्य पहले ओपन एआई के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और अब उनकी टीम ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है जो रोबोट्स को इंसान की तरह दुनिया को समझने और उसमें काम करने में सक्षम बनाए। सैम ऑल्टमैन ने रोबोटिक्स को लेकर कंपनी के दो बड़े टारगेट सेट किए हैं। पहला, ऐसे रोबोट तैयार करना जो फैक्ट्री में मदद कर सके और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा रोल निभा सके। वहीं ऑल्टमैन का दूसरा रोड मैप जरा लंबा है, जिसमें वो ऐसे रोबोट्स बनाने जा रहे हैं जो लोगों के निजी काम कर सके, उनका ख्याल रख सके और जरूरत पड़ने पर हर काम को संभाल भी सके। हालांकि ओपन एआई इस दौड़ में अकेली नहीं है। एलन मस्क की टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट लगातार चर्चा में है। मस्क पहले भी कह चुके हैं कि भविष्य में रोबोट ज्यादातर नौकरियां संभाल सकते हैं। वहीं चीन की कई कंपनियां भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यूनिट्री जैसे रोबोट्स दौड़ लगाने से लेकर फैशन शो में रैंप वॉक तक कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What about me, Jack? What about me?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Well played, Jack. Well played.
3: Jack FM, playing what we want.
1: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में
7: विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अस्पताल का नाम सुनते ही दिमाग में सफेद दीवारें, मशीनों की बीप और बंद कमरों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आईसीयू का मरीज खुले आसमान के नीचे ताजी हवा में सांस ले सके, फूल पौधों के बीच कुछ पल बिता सके तो कैसा होगा?
2: देखिए, ब्रिटेन के एक अस्पताल ने इसी सोच को हकीकत में बदल दिया है। लंदन के किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल ने देश का पहला रूफटॉप गार्डन वार्ड शुरू किया है, जहां गंभीर मरीज भी इलाज के साथ साथ प्रकृति का सुकून महसूस कर सकेंगे।
3: खुला आसमान, ताजी हवा और कुदरत के करीब होने का एहसास। लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में ये रूफटॉप गार्डन मरीजों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसे खास तौर से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बनाया गया है। 29 साल की हॉली एलन अस्पताल की वो पहली मरीज हैं जिन्होंने इस आउटडोर वार्ड का इस्तेमाल किया। हॉली को अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स की देखरेख में इस रूफटॉप गार्डन में लाया गया। इस आउटडोर गार्डन को अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट के ऊपर ही बनाया गया है, ताकि मरीजों को यहाँ आसानी से लाया जा सके। इस ओपन वार्ड को खूबसूरत फूल पत्तियों से सजाया गया है। रूफटॉप वार्ड में इतनी जगह है कि यहाँ 6 बेड लगाए जा सकते हैं। यहाँ मरीज खुली हवा, नीले आसमान और खूबसूरत पौधों के बीच पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ रह सकते हैं। इस ओपन एयर वार्ड को किंग्स कॉलेज अस्पताल को मिली चैरिटी से तैयार किया गया है। इसे बनाने में करीब 20 लाख पाउंड की लागत आई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मरीजों को अस्पताल के कैंपस में कुदरत के करीब रखते हुए बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता।

0: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्ज को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन कर फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भारी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भक्त। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी। दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1। केरल में अगले 3 से 4 दिनों तक दस्तक देगा मॉनसून। उत्तर भारत में 1 हफ्ते तक ऐसे ही बने रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात आईपीएल 2026 के नए चैंपियंस की। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने आईपीएल 2026 का किताब कल शाम अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था आरसीबी को। दरअसल इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक ही पहुंच पाया। 156 के टारगेट को बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं आपको बता दें ये शानदार जीत दर्ज की है विराट कोहली की टीम ने।
2: Journeyed long, soldiered long, and now you have 2-time champions of the Tata IPL.
3: And Royal Challengers Bengaluru are champions of Tata IPL 20.
0: वहीं आईपीएल 2026 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं, वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार की शानदार कप्तानी ने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसके बाद ही देवदत्त पडिक्कल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है और अनुभव और रिकॉर्ड्स के मामले में अगर बात करें तो सबके सीनियर और दोनों ही मामलों में सबसे छोटे खिलाड़ी की। जहां क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया, उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है ये उन्होंने साबित कर दिया। तो वहीं 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। उनकी आत्मविश्वास भरी इस पारी की बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

0: वो क्रिकेट का किंग, और ये क्रिकेट का नया प्रिंस, मैदान पर वो गेंदबाजों की शामत है।
1: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए।
0: ये पिच पर बॉलर्स के लिए कयामत है।
2: दिस यंग मैन इज समथिंग एल्स, यू नो, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd.
0: Uske jaisa koi ho nahi sakta.
1: Unke paas wo kaabiliyat hai, wo aatmavishwas hai aur wo ek zid hai ki dikhane ke liye ki jab koi chase karna ho, koi bhi score chase karna ho to unke balle se sare run ban sakte.
0: Aur iske jaisa ab tak koi hua hi nahi.
2: Sixes are generally into the crowd. Sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: ये इंडियन क्रिकेट का विराट वैभव है, जिसकी तस्वीर IPL 2026 में सारी दुनिया ने देखी, क्रिकेट के हर दीवाने ने देखी। एक अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ा, तो दूसरे ने अपनी टीम को लगातार दूसरे साल IPL चैंपियन का खिताब दिला दिया। एक ने तो चैंपियन की ट्रॉफी उठाई और दूसरे को लोगों ने फाइनल से पहले ही चैंपियन मान लिया था। एक प्लेयर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा टॉप स्कोरर ऑफ टूर्नामेंट। यूं तो रविवार की शाम अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की भरमार थी, लेकिन IPL 2026 के ग्रैंड फिनाले में इन दो सितारों की चमक के आगे हर चमक फीकी पड़ गई।
3: तो वहीं बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की शानदार पारी ने बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत दिला दी। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। विराट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है।

0: लेकिन आ रहा है भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी विराट कोहली आरसीबी जिंदाबाद। विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डीकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
8: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है, आए है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो सिक्स मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
8: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेस मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: विराट कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर जैसे ही बेंगलुरु की इस जीत को लॉक किया, आरसीबी कैंप में जोरदार जश्न की शुरुआत हो गई। आज टीम आरसीबी के शानदार जश्न की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट जश्न की तस्वीर दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी जोरदार जीत के बाद पार्टी ना हो? आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट जश्न का वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जीत का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जाहिर है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा। जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने देर रात तक जश्न मनाया। देखिए कैसे ट्रॉफी के साथ कुणाल पांड्या झूमते हुए नजर आए।

और इस तरह कैप्टन रजत पाटीदार भी खेल के मैदान की तरह ही जश्न की पिच पर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर धमाल किया।

तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था। तो वहीं आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद मिली डबल जीत की खुशी में आरसीबी के फैंस ने देर रात तक स्टेडियम के बाहर जमकर धमाल मचाया था।

0: यस, ऑलवेज ऑल लव फॉर अ मैसे भी विराट कोहली को भगवान है हमारे लिए भगवान।
1: हम बहुत खुश है कि आरसीबी दोबारा जीता विराट कोहली।
2: कड़ी रे गोमना कड़ेला घड़ावू तमा पेरी जानो रे मारा दिल मावागे मारा दिल मावागे से आरसीबी नो रेडियो रे। तू बहु गमे से तू बहु गमे से आरसीबी आरसीबी आरसीबी
3: फूल छे गुलाब मने बहु गमे छे
2: बमरो बनी मन मारू आरसीबी अगर भमे छे
3: मारा दिल मो वागे
2: मारा दिल मो वागे
3: मारा दिल मो वागे रे आरसीबी नो रेडियो रे
2: मारा दिल मो वागे छे आरसीबी नो रेडियो रे।
4: विराट कोहली आ आ वकीलों को क्रेज पसंद है और विराट कोहली को जेट पसंद है।
5: आरसीबी विराट कोहली
6: जीटी के चक्लो नहीं आ सकते आरसीबी के पास जीटी के चक्लो नहीं आ सकते।
7: विराट कोहली जिंदाबाद आरसीबी जिंदाबाद
2: जिंदाबाद था जिंदाबाद है
5: किंग सिर्फ एक ही है विराट कोहली सिर्फ एक ही किंग है विराट कोहली।
8: बहुत मस्त विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है आए है बहुत मस्त खेला है।
9: लास्ट में जो सिक्स मारा है ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया
8: बहुत आइकॉनिक।
10: बेंगलुरु तो चर्चा में थी अपनी जीत के लिए लेकिन जीत के इसी माहौल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में था वो खिलाड़ी जिसकी टीम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की बल्कि सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। फाइनल की शाम 15 साल के वैभव पर अवार्ड्स की बारिश हो गई।

0: IPL 2026 का खिताब भले ही बेंगलोर ने जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस का दिल जीता है उस एक खिलाड़ी ने, जिसे आज सारी दुनिया क्रिकेट का बेबी बॉस बुला रही है। केवल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस IPL में क्रिकेट के नए मास्टर ब्लास्टर बनकर उभरे हैं। क्रिकेट का एक ऐसा वैभवशाली सूर्य जिसकी चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने अपने बल्ले से मैदान पर वो जौहर दिखाया जो फाइनल की शाम प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक कायम रहा। IPL पुरस्कारों में राजस्थान के स्टार बल्लेबाज का दबदबा रहा। रविवार की शाम वैभव ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। इनमें से पहला है ऑरेंज कैप। IPL 2026 के सबसे छोटे बल्लेबाज ने रनों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 16 मैच में 776 रन बनाए। इसके अलावा वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, तो वहीं 237.3 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सीजन में 72 छक्के मारकर वैभव ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जीता, तो वहीं उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया। रविवार की शाम वैभव पर अवार्ड के साथ साथ पैसों की भी बारिश हुई। उन्हें 5 अवार्ड के लिए कुल 40 लाख रुपए और एक शानदार कार बतौर पुरस्कार दी गई। ये टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ। वैसे तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शानदार पारियां खेली, लेकिन 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। उस एक पारी में वैभव ने 29 गेंदों पर धुआंधार 97 रन जड़े थे। इस एक पारी के सामने IPL के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड जमींदोज हो गए। वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया, अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे IPL के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई। वैभव ने इस पारी में 12 छक्के लगाए और उन्होंने IPL के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ ही वैभव ने IPL 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए थे। इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गेल ने IPL 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों में 65 छक्के अपने नाम कर लिए। 280 गेंदों पर 65 सिक्सर का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है, लेकिन ये सपना और भी डरावना कब हो गया जब दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की पारी के दौरान वैभव ने 7 और छक्के जड़कर कुल छक्कों की संख्या को 72 तक पहुँचा दिया।
1: He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जैसी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगा कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने SRH के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। IPL के नॉकआउट हिस्ट्री में ये संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों में ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। इसके अलावा इसी सीजन में T20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक से 623 रन बनाए थे। वैभव की एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इसी वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पे 93 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरण पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, फिर आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान में टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर है, इसलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं महाकहर बन रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
4: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: महादेव की नगरी काशी से शुभ समाचार, विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, 4 साल में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार लगाई हाजिरी, काशी में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार बढ़ा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था हुई बेहतर, मंदिर प्रशासन के मुताबिक चढ़ावे में भी हुआ इजाफा। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी, मंत्री सुदिव्य सोनू ने देवघर और दुमका के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, सुरक्षा यातायात, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पलायन की मार झेल रहे मंदारा गांव में लौटी रौनक, धार्मिक आयोजनों से गांव हुआ गुलजार। आज से दांडिया धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, 10 जून से 3 दिवसीय ग्रामोत्सव भी होगा आयोजित। दांडिया धाम के घंटाकर्ण, हुनेश्वर और भैरव देवता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का पुराण का शुभारंभ, बड़ी संख्या में कथा सुनने उमड़े श्रद्धालु। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गांव में नई ऊर्जा का संचार, रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में गए लोग लौट रहे गांव। 10 जून से त्रिदेवों का धार्मिक अनुष्ठान और ग्रामोत्सव का आयोजन, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे गांव के लोग होंगे शामिल। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा मौसम, तापमान सामान्य से आसपास रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इससे इसका असर सभी मैदानी राज्यों में दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली NCR में हो सकती है हल्की बारिश, मानसून में अभी देरी, 2 से 3 दिनों में केरल में मानसून देगा दस्तक। बिहार के स्कूलों में आज से गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी को लेकर छात्रों को गाने के जरिए एक शिक्षक का दिया संदेश हुआ वायरल, टीचर गाना गाकर बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने की टिप्स दे रहे हैं, वीडियो समस्तीपुर के मालदा प्राथमिक कन्या विद्यालय का।

0: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। दिव्यास्त्र MK1 को मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया गया लॉन्च, ड्रोन ने अपनी बैटलफील्ड मोबिलिटी और परिचालन तैयारी को किया साबित। बिहार का जरदालू आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, मनेर में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने आम के पैकेजिंग को लेकर किया निरीक्षण। यूपी के बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों, पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र बांटे गए, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों के नशा मुक्ति अभियान के तहत LG मनोज सिन्हा ने कुलगाम में पदयात्रा का नेतृत्व किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पर्यटकों के लिए खुल गई फूलों की घाटी, सैलानी रंग बिरंगे फूलों का कर रहे हैं दीदार। पहले दिन वैली ऑफ फ्लावर्स के मुख्य प्रवेश द्वार पर सैलानियों का स्वागत, 45 सैलानियों ने देखी फूलों की घाटी। इक्कीस अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, उत्तराखंड में पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। फूलों की घाटी में करीब 500 से अधिक देशी विदेशी फूल खिले, देखने के लिए चमोली पहुंचने लगे पर्यटक। घर बैठे ऑनलाइन भी फूलों की घाटी कर सकते हैं बुकिंग, जून महीने में 100 सैलानी करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पिंडदान के लिए आ रहे लोग। जामनगर पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रंप, हुआ भव्य स्वागत। अंबानी परिवार की मेहमान बनी ट्रंप की बेटी वंतारा का करेंगी दौरा। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा GST कलेक्शन, कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है बढ़ोतरी। आज वर्ल्ड मिल्क डे, थीम है महिला किसानों का सम्मान, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को नई पहचान देने की कोशिश। अधिक मास और वीकेंड छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। श्रीमा के बिहारी मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन, भक्तों ने राधा कृष्ण के जयकारे लगाए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए आज से फ्री बस सेवा शुरू, दुर्गापुर डिपो से हुआ शुभारंभ। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी PM और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स, राजनाथ सिंह ने किया भव्य स्वागत। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, कई मुद्दों पर की चर्चा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण, जोरों पर भगवान राम के 63 पीढ़ियों की डिजिटल वंशावली की जाएगी प्रदर्शित। रामेश्वरम में PM मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन, भगवान का लिया आशीर्वाद। कारगिल में MVC रूट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर मैराथन का आयोजन, 800 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की हुई जांच। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ, 4 नए स्तनपानी स्कूलों का भी लोकार्पण, CM मोहन यादव समारोह में रहे मौजूद। इंदौर को मिली पुलिस मोबाइल वैन की सौगात, CM मोहन यादव ने नया ट्रैफिक ऐप भी किया लॉन्च। इंदौर में अहिल्या उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, कार्यक्रम में 150 कलाकारों ने वंदे मातरम की दी प्रस्तुति। पुणे में गोवा के मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, अस्पताल में सर्जरी और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध। लखनऊ में CM योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, मामलों का निपटारा करने का दिया निर्देश। JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1, दिल्ली से टॉप 3 रैंक होल्डर्स। सिपाही भर्ती परीक्षा में कलावा मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्ह पर नहीं लगेगी पाबंदी, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जून के बीच होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, 32,679 पदों पर होना है चयन, 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा में स्मार्ट गैजेट्स ले जाने पर सख्ती रहेगी, यूपी के 75 जिलों के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। उज्जैन और महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन की लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म अभिनेता निर्माता मधुर भंडारकर और अभिनेता जय भानुशाली, विधि विधान से की पूजा। फरीदाबाद के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को 9.5 किलो से अधिक चांदी के आभूषण अर्पित किए। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में सैन्य अभ्यास प्रगति, 2026 का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सेनाओं की भागीदारी बढ़ाना मकसद। प्रगति का मतलब है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और बदलाव के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। 72 घंटे तक चले वैलिडेशन एक्सरसाइज में भारत समेत 13 देशों के 400 से अधिक सैनिकों ने लिया हिस्सा। अर्ध पहाड़ी घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद रोधी कार्रवाई की तैयारी का अभ्यास का मकसद, सैनिकों को रॉक क्राफ्ट घात लगाकर हमला करने, जवाबी हमले की दी गई ट्रेनिंग। सैनिकों को जंगल लेन शूटिंग, कमरे और बस में घुसकर कार्रवाई करने, आईडी का पता लगाने और घायलों को सुरक्षित निकालने की तकनीक भी दी गई ट्रेनिंग। भगवान श्री राम के करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी गुड न्यूज, राम मंदिर बनने वाले भोग प्रसाद को मिली आधिकारिक मान्यता। खाद्य और औषधि विभाग ने सीता रसोई को 5 साल के लिए जारी किया लाइसेंस, रसोई के निरीक्षण और इंतजामों की समीक्षा के बाद जारी किया लाइसेंस। सीता रसोई में बनता है रामदला मंदिर, श्री राम दरबार के 6 देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के मंदिरों में अर्पित होने वाला भोग। राम मंदिर में रोजाना मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक 6 बार अर्पित किया जाता है भोग। खाद्य और औषधि विभाग ने सीता रसोई के रसोइयों को शुद्धता और गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिए। महाराष्ट्र के अकोला मनाई गई अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती, शहर में निकाली गई भव्य रैली। अहिल्या देवी की प्रतिमा की स्थापना और पूजन के साथ शुरू हुई रैली, ढोल ताशों के साथ जय मल्हार के जयघोष से गूंजा शहर। पारंपरिक लेजियम की प्रस्तुतियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने दी प्रस्तुति, भजन कीर्तन मंडलियों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी रैली, जगह जगह लोगों ने अहिल्या देवी होलकर को किया याद। दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, साल 2020 को छोड़कर जनवरी से मई के बीच पिछले 8 साल में सबसे कम रहा औसत ईपीआई, लोगों को मिली बेहतर सांसें। छत्तीसगढ़ को मिली पहले आईटी और एलओटी पार्क की स्वागत, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में देश के पहले आईटी और एलओटी पार्क का किया शुभारंभ। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से शुरू किया गया आईटी और आईओटी पार्क, युवाओं उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम महोत्सव का आयोजन, देश विदेश के 250 से अधिक आम की किस्मों को किया गया शामिल। आम महोत्सव में लंगला दशहरी अल्फांसो केसर समेत विदेशी मियाजा की आम की प्रदर्शनी, किसान उद्यमियों के लिए तकनीकी सत्र का भी आयोजन। तूफानी बल्लेबाज सूर्यवंशी की मासूम फिदा हुए निर्देशक शेखर कपूर एक्स पर लिखा हुआ, अगर इतने जबरदस्त क्रिकेटर ना होते तो फिल्म मासूम में कास्ट करता। दोनों फिल्म मासूम द न्यू जनरेशन पर काम करे निर्देशक शेखर कपूर, साल 1983 में आई क्लासिक फिल्म मासूम का सीक्वल न होगी नई फिल्म। तमिल फैंटेसी एक्शन फिल्म में करप्पू ने सिर्फ 15 दिन में दुनिया भर में कमाए 300 करोड़, सफलता से गदगद एक्टर सूर्या ने संगीतकार सिनेमेटोग्राफर को गिफ्ट की कार। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर के राम की भूमिका निभाने पर बोले टीवी के राम अरुण गोविल, मेरा निभाया किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा, इसलिए राम के रूप में दूसरे चेहरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर बोले निर्देशक इम्तियाज अली, रणवीर कपूर की जिंदगी बदल सकता है ये किरदार। अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट का शानदार कॉन्सर्ट, 1,00,000 से ज्यादा दर्शकों ने देखा शो। साल 2014 के बाद कान्ये वेस्ट ने पहली बार यूरोप में दिवस सूती, 2 घंटे के शो में कई देशों के प्रशंसक हुए शामिल। यहूदी विरोधी बयानों को लेकर कान्ये वेस्ट का कई देशों में हुआ था विरोध, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड में उनके कई कार्यक्रम हो चुके हैं रद्द। कान्ये वेस्ट ने अपने पुराने बयानों पर जताया था खेद, अपने व्यवहार के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को बताया था जिम्मेदार। नीदरलैंड में होगा कान्ये वेस्ट का अगला शो, 6 और 8 जून को होगा कॉन्सर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शंघाई में चीनी रोबोट कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने खोला अपना पहला एशिया रोबोटिक्स अनुभव केंद्र, ग्राहकों को नए रोबोटिक्स उत्पादों की देगा जानकारी। रोबोटिक सेंटर में ह्यूमैनॉइड रोबोट और रोबोट डॉग की प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। भविष्य में रोबोट करेंगे ग्राहकों का स्वागत, लोगों को रोबोट्स को करीब से जानने का मिलेगा मौका। कमांड से ग्राहक रोबोट से करवा रहे काम, सेंटर में लोगों को भविष्य की स्मार्ट रोबोटिक दुनिया से जुड़ने का मिल रहा मौका। शंघाई का रोबोटिक्स सेंटर आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन का बना बड़ा उदाहरण, चीन में कंज्यूमर रोबोटिक्स के लिए खुला बड़ा बाजार। चीन के आसमान में दिखा रेत का समंदर, दिन में ही छाया राज्य अंधेरा। हर दिन शहर में रेत के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों के रोजमर्रा के काम हुए प्रभावित। मंगोलिया से आए शक्तिशाली चक्रवात की वजह आया तृतीया तूफान, कई इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तरी चीन में तेज गर्मी के बीच आए इस मौसम बदलाव ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, मौसम वैज्ञानिकों की हालात पर कड़ी नजर। इटली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील जारी की। ग्रीस के कैप्स यूनियन में दिखा दुर्लभ खगोलीय नजारा, पोसाइडाइन मंदिर के ऊपर दिखा ब्लू मून। लहरों के ऊपर बेहद ही खूबसूरत नजर आया चांद, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। नासा ने ब्लू मून को दिया माइक्रोमून, नया माइक्रोमून साल के सबसे छोटे दिखने वाले पूर्ण चंद्रमाओं में शामिल। जापान के ओकिनावा में टाइफून जांगमी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जापान के ओकिनावा द्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा टाइफून, तेज बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पीएम मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो जीएनटी भी आपसे अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है ताकि हम आपके उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हैं, यहां तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने भेजा है।
3: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में, मैं शीला कापड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहां तक पहुंचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहां पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी, गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रोन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों ना इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम उससे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: जोधपुर में ड्रोन रिव्या का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
6: शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस परीक्षा में एआईआर रैंकिंग में पहला और दूसरा स्थान कोटा के स्टूडेंट्स को प्राप्त हुआ है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। जेईई एडवांस परीक्षा में गया के शुभम टॉपर। आपको बता दें कि जेईई एडवांस में इस बार सफलता की सबसे बड़ी कहानी कोटा से निकलकर सामने आई है। कोटा में रहकर तैयारी करने वाले 2 दोस्तों ने देश भर में टॉप 2 रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। बिहार के गया निवासी शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की, जबकि गुरुग्राम के कबीर छिल्लर महज 1 अंक से पीछे रहकर एआईआर 2 बने। खास बात यह है कि दोनों दोस्त एक ही हॉस्टल में रहते थे, साथ पढ़ते थे और शाम को साथ खेलकर तनाव दूर करते थे। बिहार के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। वहीं गुरुग्राम निवासी कवि छिल्लर 329 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं एआईआर 3 रैंकिंग सीकर के छात्र जतिन चाहर ने हासिल किया है। जतिन चाहर को 360 में से 319 अंक मिले हैं। तीनों छात्र कोटा के एलन इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं। इस साल जेईई एडवांस के दोनों पेपर्स में करीब 1,87,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 56,880 छात्रों ने सफलता हासिल की। अब परीक्षा में सफल विद्यार्थी 2 जून यानी कि कल से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेकर आईआईटी में दाखिले की तैयारी करेंगे।
7: अभी बेस्ट है, अगर मेरे को अपने लिमिट्स को पुश करना है और अपना बेस्ट देते रहना है उसमें भी, उसके लिए कोटा मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा इसलिए मैंने कोटाना चूज किया। कोटा आने वक्त तो मुझे टॉप रैंक की उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस इतना पता था कि मैं जो भी करूंगा अपना बेस्ट ही परफॉर्म करूंगा। बट धीरे धीरे जब टेस्ट वगैरह होने लगे और हमें अपना बैच में रैंक्स पता चलने लग गया तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, कोटा ने मेरे को पढ़ाई में तो इवॉल्व किया ही, बट उसके साथ साथ लोगों से घुलना मिलना सिखाया और दोस्त बनाने सिखाया एंड वही सब, बहुत सारे अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए।
8: मेरे जो साथ में रहते हैं वो पापा रहते हैं, मम्मी रहती हैं और मेरा भाई रहता है। पापा IIT से ही हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड थोड़े ट्रेडिंग भी करते हैं, एंड मम्मी टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, और मेरा भाई वही 10th क्लास में। अभी कोटा आने से पहले मेरा टारगेट टॉप 100 था, और लाइक जैसे अभी मैं सोचता हूँ कि क्या नहीं, जो ऐसा तो नहीं कुछ सपना जो सोचते हो कि मजा आ जाएगा ये हो गया, पर होप नहीं होती कि होगा, तब वैसा सपना था कि टॉप 10 में आ जाए, कि होप तो थी कि यार मज़ा ही आ जाएगा अगर ऐसा हो गया। पर फिर कोटा आके धीरे धीरे इम्प्रूव किया एंड लास्ट डे पे तो कॉन्फिडेंस तो था कि अच्छी खासी रैंक आ जाएगी।
6: पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए आज से बस में मुफ्त सफर की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य की सभी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा निःशुल्क कर दी गई है। सरकार के इस नए फैसले से महिलाएं बेहद खुश हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं को फ्री बस सेवा का तोहफा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देना, उनकी आवाजाही को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे रोज बस से सफर करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
9: पश्चिम बंगाल में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। यहां 1 जून से महिलाओं को फ्री बस राइड की सुविधा दी गई है, यानी कि अब राज्य की महिलाओं को सरकारी बसेस में यात्रा के लिए किराया नहीं देना पड़ेगा। सरकार के इस कदम से बस स्टैंड से लेकर बसों के अंदर तक महिलाओं में खुशी का माहौल है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देना, उनकी आवाजाही को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। खास बात ये कि इस योजना में छोटी और लंबी दूरी दोनों तरह के सरकारी बस रूट को शामिल किया गया है।
10: ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग हर दिन आते हैं, हर दिन अलग सिटी का पैसा, इसका पैसा स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग का हिसाब नहीं मिलता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।
9: रोजाना बस से सफर करने वाली महिलाओं का कहना है कि इससे उनके मासिक खर्च में कमी आएगी और यात्रा करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। इस योजना के शुरू होने से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उनका रोज का सफर आसान और किफायती बनेगा।
10: मेरा हस्बैंड जा रहे लड़के को लेने के लिए कलकत्ता, वहाँ पे मेरा हस्बैंड से लगा लेकिन मेरा नहीं लगा।
11: या आपका क्या लगा?
10: आप पैसा नहीं लगा।
11: कैसे मिला टिकट आपको?
10: आधार कार्ड दिखाएं।
9: इस योजना के तहत राज्य की योग्य महिलाएं सरकारी बसेस में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। इसमें इस योजना का लाभ सिर्फ पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों या बांग्लादेश से आई महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। बस में मुफ्त सफर करने के लिए आपके पास एक वैलिड पहचान पत्र होना जरूरी है। बिना आईडी प्रूफ के आपको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। महिलाओं को यात्रा के दौरान 0 टिकट दिया जा रहा है। इसके लिए टिकट मशीन में विशेष विकल्प जोड़ा गया है। इसके जरिए महिलाओं के लिए 0 किराए का टिकट जनरेट किया जा रहा है। ये टिकट यात्रा का रिकॉर्ड रखने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई किराया दिया नहीं जाएगा।
12: आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सचित्र परिचय पत्र होगा तो फ्री में यात्रा कर सकता है लेडीज लोग।
9: ये फ्री सर्विस राज्य की सभी प्रमुख सरकारी बसेस में लागू की गई है। महिलाएं इन सरकारी बसेस में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। WBTC यानी वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, NBSTC यानी नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और SBSTC यानी साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मुफ्त सफर कर सकती हैं।
13: खुशी का वातावरण है चारों तरफ, महिलाएं खुश है कि जो सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा शुरू हुई थी। तो ये बहुत दिन से BJP के संकल्प पत्र में हम लोगों ने बोलने के लिए, पिछले 21 के चुनाव में भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी और 26 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर है, केंद्र सरकार हो जिन राज्यों में सरकार है, उन सब जगह में महिलाओं के लिए काम करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है और उसी क्रम में आज से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू हुई है।
9: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और केवल सही महिलाओं तक फायदा पहुंचाने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त बस यात्रा का लाभ लिया जा सकता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाला पेंशन डॉक्यूमेंट, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज द्वारा जारी किया गया फोटो ID कार्ड। इस योजना से पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी और उनका हर महीने यात्रा पर होने वाला खर्च भी बचेगा। दुर्गापुर से अनिल गिरी और कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्स टुडे।
6: आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के करीब बसे उत्तराखंड के चमोली जिले में रोमांच, साहस और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। नीति घाटी की ऊंची चोटियों और दुर्गम रास्तों के बीच नीति अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसी से जुड़ी है हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज, और वो है चमोली के पहाड़ों में 75 किलोमीटर की दौड़। आपको बताते हैं कि चमोली में करीब 1000 एथलीटों ने हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक पर अपनी क्षमता को परखा, तो वहीं इस आयोजन ने सीमांत क्षेत्र की संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान दिलाई।
11: समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और कठिन परिस्थितियों के बीच दौड़ते एथलीट। ये तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी की, जहां नीति अल्ट्रा रन का आयोजन हुआ और करीब 1000 एथलीटों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने 75 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण हाई एल्टीट्यूड रेस में अपनी फिटनेस, धैर्य और जज्बे का प्रदर्शन किया।
14: अत्यधिक ऊंचाई पर है भारत चीन सीमा, बाड़ाहोती के समीप है। भारतीय सेना की ये चेक पोस्ट है, चौकी है यहाँ पे, वहां से शुरू हुई है यहाँ, और अब मलारी ये लोग पहुंचेंगे। वहीं जो दूसरी रेस है वो 42 किलोमीटर की, यहाँ से मलारी से नीति तक और नीति से वापसी की जो रेस है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इस समय बड़ी संख्या में, ये खासकर वाइब्रेंट विलेज, इस समय हम सीमांत क्षेत्र में हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। देश भर के जो 900 एथलीट हैं वो यहाँ पे।
11: चमोली में पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस योजना का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना तथा युवाओं के फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
15: लोग एक बार धीरे धीरे आना यहाँ पे शुरू होंगे, देखेंगे कितनी खूबसूरत यहाँ पे घाटियाँ हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज्म का भी विकास होगा। और उन्होंने इसके लिए पर्यटन विभाग को निर्देश दिए थे, तो पर्यटन विभाग और ITBP और आर्मी के और हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज ये अल्ट्रा मैराथन यहाँ पे आयोजित की जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 1000 के आसपास एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 23 राज्यों से इसमें एथलीट्स आए हैं।
11: नीति अल्ट्रा रन के पहले दिन नीति मलारी के बीच 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं मलारी नीति मलारी 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 118 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में यहां 5, 10 और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही समापन के अवसर पर गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर MTV चैनल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।
16: इस पूरी नीति वैली में जितने भी गांव पड़ रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में, और साथ ही साथ जब पूरे 27 स्टेट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे इस अल्ट्रा मैराथन और मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी साथ आ रहे हैं, और उनमें भी जो उत्साह देख रहे हैं आप, वाकई में एक अमेजिंग है। और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो सारे के सारे जितने भी घर हैं जहाँ पे होमस्टे की सुविधा उपलब्ध है, सब पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं।
11: इस भव्य आयोजन में खेल और पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। प्रतियोगियों और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों से सजे कलाकारों ने लोकगीतों और लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी, और दूर दराज से आए लोगों ने पहाड़ की संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य का भरपूर आनंद लिया।

0: मैं अभी एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि घाटी में जितने भी गाँव में होम स्टे बने हुए हैं और सब भरे भरे हैं, सब लोग खुश हैं कि भाई आने वाले समय में इस तरह के इवेंट यहाँ पर हर साल होगा तो ज़रूर यहाँ पर पर्यटक बढ़ेंगे और गाँव वालों के लिए जो आजीविका का साधन है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: हिमालय वादियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम और अल्ट्रा रन पर्यटन संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सशक्त जरिया बन रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
2: छत्तीसगढ़ में सरकार ने स्टार्टअप के नए अवसर पैदा करने की पहल की है। इसके तहत सरकार ने दपर्ग में पहला आईटी और आईओटी पार्क का उद्घाटन किया है। इस आईटी पार्क के जरिए यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई और रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों के लिए एक ही जगह पर मंच प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से लगभग 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है दुर्ग में आईटी पार्क से 10,000 लोगों को रोजगार। आपको बता दें कि दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य के पहले आईटी एंड आईटीओ पार्क का शुभारंभ हुआ है। ये परियोजना आईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है। ये पार्क राज्य के युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस आईटी पार्क में 40 से अधिक ऑफिस स्पेस और लगभग 8 बड़े हॉल उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर स्टार्टअप्स अपने उत्पादों के विकास, मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप और इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर सकेंगे। इस पार्क का प्रमुख उद्देश्य उद्यमियों को एक ऐसा सहज इकोसिस्टम उपलब्ध कराना है जहां उन्हें फंडिंग, तकनीकी मार्गदर्शन, नॉलेज पार्टनर के रूप में आईटी भिलाई का सहयोग और संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मदद मिलेगी। अक्सर स्टार्टअप्स जिस चरण में आकर अटक जाते हैं उस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये पार्क विकसित किया गया है।
3: इस आईटी पार्क में या हमारे इस राज्य के जो युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो इनक्यूबेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए कई तरह के परियोजनाएं हैं, कई तरह का लाभ है। यहाँ पे 40 से ज़्यादा ऑफिस स्पेस हैं, 8 करीब बड़े हॉल हैं जहाँ पर इनको मेक इन या स्टार्टअप करने की सुविधा है, मैन्युफैक्चरिंग या वर्कशॉप जैसी चीज़ों को ये यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आईटी पार्क का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पर राज्य में हम लोग लेकर के आए, आईआईटी ने कोशिश की, वो ये थी कि हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ईजी प्लेटफॉर्म दें। कैसे ये फंडिंग्स ला पाएंगे, कैसे हम ये फंडिंग ले करके नॉलेज पार्टनर आईआईटी को बनाएं और उसके बाद कैसे कस्टमर्स तक जा सकते हैं। तो इस पूरे चेन में जहां पर कि अक्सर स्टार्टअप फंस जाते हैं पर यहां पर उनको सुविधा आसानी से दी जा सके, इस उद्देश्य के साथ ये पहला आईटी एंड आईओटी पार्क राज्य के साथ मिलकर बना है।
2: होली के रंग तो आपने कई देखे होंगे लेकिन क्या आपने ऐसी होली देखी है जहां जीत हासिल करने के लिए 50 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ना पड़े और ऊपर पहुंचने से पहले महिलाओं की लाठियों की मार भी सहनी पड़े। जी हां, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक गांव में 40 साल बाद फिर एक ऐसी अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई है जो साहस, धैर्य और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है फिर जिंदा हुई झिराई फाग की ऐतिहासिक परंपरा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन में 4 दशक बाद एक बार फिर से झिराई फाग परंपरा की शुरुआत हुई है। गांव के लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस ऐतिहासिक लोक परंपरा को पुनर्जीवित किया। गांव के बड़े मैदान के बीचों बीच 50 से 60 फीट ऊंची विशाल लकड़ी गाड़ी गई, इस खंभे को रंगा गया और तेल लगाया गया जिससे यह पूरी तरह चिकना हो गया। खंभे के शीर्ष पर धर्म ध्वजा और प्रसाद की पोटली बांधी गई जिसे हासिल करना ही प्रतियोगिता का लक्ष्य है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आज से सैलानियों के लिए खुल गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये घाटी हर साल लाखों प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकिंग के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। रंग बिरंगे फूलों से सजी ये घाटी आने वाले महीनों में एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर नजर आएगी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। चमोली में खिल गए फूल, खुल गई घाटी। आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में फूलों की घाटी खुलने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को और रफ्तार मिलेगी। होटल, होमस्टे, ट्रेकिंग गाइड, पॉटर और स्थानीय उत्पादों से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आने वाले महीनों में हजारों पर्यटकों के यहां पहुंचने की उम्मीद है और अगले 5 महीने तक यहां पर प्रकृति महोत्सव बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

0: हिमालय की गोद में बसी फूलों की घाटी एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। आज से यानी 1 जून को आधिकारिक तौर पर खुलते ही सुबह से ही पर्यटकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन गेट खुलने के साथ 60 से ज्यादा पर्यटक इस प्राकृतिक स्वर्ग के दीदार के लिए घाटी की ओर रवाना हुए।
1: विश्व धरोहर फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आज से पर्यटकों के लिए खुल गई है। आज सुबह 8 बजे के करीब घाटी का जो गेट है वो पर्यटकों के लिए खुल गया है। यहाँ पे अब हर पर्यटक जो भी फूलों की घाटी का दीदार करना चाहता है वो यहाँ पे रसीद कटवाने के बाद देसी विदेशी सारे टूरिस्ट अब फूलों की घाटी का दीदार कर सकते हैं। बता चले लगभग 13 किलोमीटर जो घांगरिया तक पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद 3 किलोमीटर जो फूलों की घाटी के अंदर प्रवेश करना होता है यहाँ जाया जाता है। जून 1 से और 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली होती है। लगभग 500 से अधिक प्रजाति के फूल यहाँ पे खिलते हैं। अभी भी 23 प्रकार की प्रजाति जो है वो इस समय खिली हुई है घाटी में।
0: चमोली जिले में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ जून से अक्टूबर तक 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो पूरी घाटी को रंगों की चादर से ढक देते हैं। हर मौसम के साथ घाटी का स्वरूप बदलता है और प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये फूलों की घाटी न केवल प्रकृति प्रेमियों बल्कि शोधकर्ताओं और फोटोग्राफरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होती है। दुर्लभ वनस्पतियाँ, हिमालयी जैव विविधता और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य इसे दुनिया के सबसे खास प्राकृतिक स्थलों में शामिल करते हैं।
2: जैसे कि हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स है, सेम वैसा ही स्लोवेनिया यूरोप में ट्रिग्लाव नेशनल पार्क है। तो वैली का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ ट्रिग्लाव नेशनल पार्क के साथ और वैली ऑफ फ्लावर्स और ट्रिग्लाव नेशनल पार्क को सिस्टर पार्क बना दिया गया दोनों को। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का सिस्टर पार्क यूरोप में स्लोवेनिया में ट्रिग्लाव नेशनल पार्क को बना दिया गया। अभी आप जाएंगे क्योंकि अभी अर्ली मतलब मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्लावरिंग बहुत कम है, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ फूल है क्योंकि एकदम से पूरे कार्पेट फ्लावर्स के नहीं मिलेंगे, बहुत ही स्कैटर्ड कहीं कहीं पे फ्लावरिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो लैंडस्केप है उसको एंजॉय करें।
0: वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी उम्मीद है कि इस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वैसे देवभूमि में ये घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति का जीवंत संग्रहालय है। करीब 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के दुर्लभ और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। जुलाई और अगस्त आते आते पूरी घाटी लाल, पीले, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंग जाती है। और खास बात यह है कि यहाँ खिलने वाले फूल हर सप्ताह अपना रंग और रूप बदलते हैं। यही वजह है कि जो पर्यटक यहाँ एक बार आता है वह बार बार इस खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि फूलों की घाटी तक पहुँचना भी किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। गोविंद घाट से घांगरिया तक 13 किलोमीटर का ट्रैक और ट्रैक के बाद घांगरिया बेस कैंप पहुंचते हैं। वहां से फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। घाटी के अंदर केवल दिन के समय ही प्रवेश की अनुमति है और सूर्यास्त से पहले वापस लौटना जरूरी है, लेकिन इस बीच घने जंगलों, झरनों, पहाड़ी नालों और बादलों के बीच से गुजरता रास्ता पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। बर्फीले पहाड़ों के बीच प्रकृति का यह रंगीन उत्सव अगले 5 महीनों तक खूबसूरत रंग बिखेरने वाला है। और अगर आप भी हिमालय की गोद में बसे फूलों के इस स्वर्ग को देखना चाहते हैं तो फूलों की घाटी आपके स्वागत के लिए तैयार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
3: जून का महीना है और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। मैदानी इलाकों में तपती गर्मी में राहत पाने के लिए पर्यटक हिल स्टेशन की तरफ रुक कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, मैदानों में बढ़ी गर्मी, पहाड़ों की ओर चले सैलानी। आपको बता दें कि दिल्ली वालों का नैनीताल, मसूरी फेवरेट है क्योंकि कम वक्त में यहां पहुंचा जा सकता है, जबकि चंडीगढ़, अंबाला वालों को शिमला रास आ रहा है। इनके अलावा बाकी हिल स्टेशन पर भी अच्छी खासी रौनक इन दिनों देखने को मिल रही है। यहां पहुंचे लोगों को शहर और पहाड़ के तापमान का अंतर काफी हैरान कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जून के महीने में पहाड़ों पर घूमने वालों की संख्या और बढ़ेगी।

0: जून की शुरुआत में भी तपते मैदान इंसानों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जब जब गर्मी सताती है तब तब दिल पहाड़ों को याद करने लगता है। और इस बार पहाड़ सचमुच बुला रहे हैं, तभी तो पर्यटकों की मौजूदगी से ज्यादातर हिल स्टेशन चहक रहे हैं। नैनीताल, शिमला और धर्मशाला इस समय कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा बनकर सामने आए हैं। यहाँ हवा में ठंडक के साथ सुकून जो घुला हुआ है।
1: यहाँ पे मैं ट्रिप पे आई हूँ, सो मेरा 7-8 डेज का ट्रिप है। एंड मुंबई में अभी टेम्परेचर कुछ 35 डिग्री था एंड वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, सो वी प्लान टू विजिट नैनीताल, उत्तराखंड स्पेशली, सो वी आर हियर टू एंजॉय आवर ट्रिप।
0: ये वो लकी लोग हैं जो मैदानों को पीछे छोड़कर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे हैं। यहाँ बादलों से घिरा आसमान है, ठंडी हवा का शोर है और सुकून देने वाली शांति है।
2: सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे उत्तराखंड में ये लगी, यहाँ का वेदर जो पूरे इंडिया में कोई बीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक पल में ऊपर जाओ तो मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि आदमी सीधा खड़ा ना हो पाए, और नीचे आओ तो आदमी नॉर्मल भी हो सकता, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जो यहाँ पे आएगा घूमेगा उसी को वो फील होगा।
0: गर्मी में जब पूरा शहर थकान और बेचैनी से भरा हो, तब ये पहाड़ शांति और खुशी का खजाना बन जाते हैं। मैक्लोडगंज की संकरी गलियों में तिब्बती प्रार्थना झंडियां लहराती हैं। बौद्ध मठों से आती घंटियों की आवाज मन को सुकून देती है, क्योंकि यहाँ हवा में सिर्फ ठंडक नहीं आध्यात्मिक सुकून भी खुला हुआ है। इस भीषण गर्मी से बचने का सबसे खूबसूरत और स्मार्ट तरीका और क्या ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे साथ गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
5: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
6: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: खबरों की मार गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
2: टुडे बनाता है
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का

0: चीन सीमा के पास मैराथन, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले। बाबूफोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली फर्स्ट रैंकिंग। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसी बना रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे से सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वीडियो में 2 क्लिप्स हैं। पहली क्लिप में किसी चैनल से बात करते हुए एक महिला कहती है कि उसे पीएम मोदी पर भरोसा है, दीदी पर नहीं।
5: दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया।
6: तो किससे भरोसा है?
5: मोदी जी के पे भरोसा है। वही

0: इसी क्लिप में एक महिला रोते बिलखते हुए केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाती सुनी जा रही है।
1: परेशान कर दिया मोदी ने,
2: परेशान कर
1: दिया। और क्या कर ही रहे हैं, कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना।
0: दोनों महिलाओं को एक ही बताकर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी पर विश्वास जताने वाली महिला चुनाव के बाद खुद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी को कोस रही है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये अंधभक्त दीदी कह रही थी कि दीदी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला दिया तो इस अंधभक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है कि बीजेपी को नहीं जिताना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किए जा रहे हैं।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला बीजेपी की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में एक महिला रोती हुई भी दिख रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ करने वाली इस महिला के घर पर जब चुनाव के बाद बुलडोजर चला तो वो बीजेपी को कोसने लगी। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान एक बात तो साफ हो गई कि दो अलग अलग क्लिप्स को जोड़कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाओं की पहचान अलग अलग है। हाँ, काफी हद तक फेस जरूर मिलता है, लेकिन वीडियो में एक महिला की बोलचाल में हिंदी बांग्ला का मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो में जो दूसरी महिला है वो हिंदी बोल रही है, इसमें कहीं भी बांग्ला का मिश्रण नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि दो अलग अलग घटना से संबंधित मामले को एक नया एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की तो पहली क्लिप में महिला जिस माइक पर बोल रही है उस पर प्यारा हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आता है। हमें इस नाम का YouTube चैनल मिल गया और यहाँ इस वीडियो को 19 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहाँ वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताया गया है।
1: उठ गया
4: तो किससे भरोसा है?
1: मोदी जी का भरोसा है।
0: बीजेपी की आलोचना करती रोती हुई महिला का वीडियो एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर 4 मार्च को अपलोड किया गया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले का है, क्योंकि बंगाल में चुनाव दो चरणों 23 और 29 अप्रैल को हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित राम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बातचीत का ये वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 मार्च से पहले भाई राम कैंप खाली करने को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों को एक नोटिस जारी किया था और तभी से वो लोग काफी डरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल में स्थित DID कैंप, भाई राम कैंप और मस्जिद कैंप की झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO विभाग ने नोटिस जारी कर 6 मार्च 2026 तक जमीन खाली करने को कहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। पहली क्लिप पश्चिम बंगाल की तो दूसरी दिल्ली की है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: 16 मई 2026 से सोशल मीडिया पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोगों को सरकारी वाहनों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
0: देश भर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, सब बराबर है। कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की शुरुआत की जिसमें 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्यंग करना शुरू हुआ था। हालांकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वीडियो कहां का है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर यूपी नंबर प्लेट देखने को मिल रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो यूपी का हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और यूपी के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक की टीम वायरल हो रही इस वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से 22 और 23 मार्च को अपलोड किया गया मिला। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में एक बाबा की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी पर उपद्रवियों के पथराव किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा वायरल क्लिप वाले दृश्य 21 मार्च 2026 को एक न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में भी मिले। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पुलिस पर हुए पथराव का बताया गया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह की 21 मार्च को ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस जब भीड़ को शांत कराने पहुंची, तो पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मथुरा पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज किए थे। पहली FIR में पुलिस ने 23 नामजद सहित 300 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं दूसरी FIR में हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल हो रही ये वीडियो असल में CJP बनने से 2 महीने पहले मथुरा में हुई एक घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब आ रहे हैं।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: प्रगति, एक्शन से भरपूर तस्वीरें। मेघालय के जंगलों में उतरी 12 देशों की फौज। कुछ दिन की छुट्टी पर है हीट वेव। चीन सीमा के पास मैराथन, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे और ये खूब वायरल है।
3: इन दिनों इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी अनोखी समझ देखने को मिलती है, जिसे देखकर लोग हंसने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से A to Z लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया। उसने अपनी कॉपी में A to Z को जैसा देखा ठीक वैसा ही कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर A to Z ही लिख डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी को देखा तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वही काम किया जो उसे सही लगा। यही बात लोगों का दिल जीत रही है। लोगों को ये छोटा सा दिल छू लेने वाला पल बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल वीडियो में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा होता है। रास्ते से उसे सेना के जवानों से भरी एक ट्रक दिखाई देती है। जवानों को देखकर वो सम्मान में उन्हें सल्यूट करता है। खास बात ये रहती है कि ट्रक में बैठे जवान भी उसी सम्मान के साथ उसे जवाब देते हुए सल्यूट करते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर बाइक सवार को सेना की एक जीप दिखाई देती है और वहाँ मौजूद जवान भी उसके अभिवादन का जवाब सलामी देकर देते हैं। ये छोटा सा पल उस युवक को बेहद खास महसूस होता है।
4: We do not speak Punjabi, but we have been asked to perform this song at a wedding. So what do? We step up.
3: आजकल सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में वो एक मशहूर पंजाबी गाना इतने गजब के उच्चारण के साथ गा रही है कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।

दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला यूके की मशहूर सिंगर तानिया वेल्स है। तानिया सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन आवाज और हिंदी उर्दू के एकदम सटीक और साफ उच्चारण के लिए पहले से ही काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में उनके साथ ब्राजील के उस्ताद गिटार वादक पाउलो विंसियस भी हैं, जो अपने क्लासिकल गिटार ट्यून से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट से इंटरनेट पर धूम मची हुई है।

भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहा है। वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा नजर आता है जिसमें पीछे की तरफ एसी यूनिट लगी हुई दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रही एक और खास बात ने लोगों का ध्यान खींचा। ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी ये ऑटो न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने की बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात ये थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वो कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को ये पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अक्सर गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर ही घुसकर छिप जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया जिससे एक छोटी सी बिल्ली की जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर कैसे छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर चल देता तो उसकी भी जान जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई। महिला की यही इंसानियत लोगों के दिलों को भा गई है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
4: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज युद्धाभ्यास प्रगति दिखाएंगे, एक्शन से भरपूर तस्वीरें, मेघालय के जंगलों में उतरी 12 देशों की फौज। कुछ दिन की छुट्टी पर है हीट वेव, कम हुआ उत्तर भारत में लू का प्रकोप। चीन सीमा के पास 72 किलोमीटर की मैराथन, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्ट्रा मैराथन देखिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Sage University, transforming your passion into profession.
11: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। श्रद्धालु के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिला फर्स्ट रैंक। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात युद्धाभ्यास प्रगति की, जिसका आयोजन मेघालय के अमरोई में 20 मई से 31 मई के बीच किया गया। एसामी एक्सरसाइज में भारत समेत 13 देशों ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उग्रवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच आपसी विश्वास को और मजबूत करना था। अभ्यास की खास बात यह रही कि इसमें सभी सहभागी देशों के सैनिकों को मिलकर संयुक्त टीमें, उनको मिलाकर संयुक्त टीमें बनाई गई, जिन्होंने साझा मिशन के तहत एक साथ ट्रेनिंग की और अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया।

0: ऊंचे पहाड़, घना जंगल, हाथों में हथियार, ट्रिगर पर उंगली और टारगेट पर सटीक निशाना। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें युद्धाभ्यास प्रगति की है, जिसका आयोजन 20 से 31 मई तक मेघालय के उमरोई में किया गया। इस आर्मी एक्सरसाइज में भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम की सेनाएं शामिल हुई। दो हफ्ते चले अभ्यास में 20 महिला सैनिक समेत 400 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया।
1: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में आईईडी बिछाई गई है। वो कैसे उससे बच के निकलेंगे, या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक आईईडी पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहां ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब आईईडी जहां पर रखी थी वहां पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगाकर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहां से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है।
0: समानता, मित्रता और पारंपरिक सम्मान की भावना के साथ आयोजित इस अभ्यास ने विभिन्न देशों की सेनाओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराया, जहां उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण, सामरिक अनुभवों के आदान प्रदान और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर लगातार काम किया। अपने इसी मकसद के लिए इन 400 से अधिक जवानों ने बाधाओं को पार करने, रूम इंटरवेंशन, फायर एंड मूव ड्रिल्स, जंगल ऑपरेशंस, हेलीबॉर्न ड्रिल्स और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन जैसी ट्रेनिंग की, जिसके जरिए इन सेनाओं ने अपनी दक्षता तैयारियों को हर कसौटी पर परखा।
1: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त आप देखिए हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिटरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिदरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है।
0: इस अभ्यास के दौरान एक खास बात ये भी रही कि भारतीय सेना के K9 योद्धाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक्सरसाइज के दौरान एलन, विक्टर और डियो नाम के कुत्तों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। चाहे विस्फोटक का पता लगाना हो, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना हो या फिर ऑपरेशन के दौरान टीमों की सहायता करना हो, इन K9 योद्धाओं ने अपनी गति, साहस और वफादारी का बेजोड़ प्रदर्शन करके दिखाया। इतना ही नहीं, अभ्यास में इन K9 योद्धाओं के साथ हाईटेक रोबोटिक डॉग भी इस्तेमाल किए गए। अभ्यास के समापन समारोह में 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में न सिर्फ अभ्यास की समीक्षा हुई बल्कि भविष्य में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई।
2: The focus of the exercise was on counter insurgency operations based in semi-mountainous and jungle terrain. During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
3: First of all, I would like to express my sincere thanks to the Indian Army for the organizers, the facilitators, the support staff for inviting us here. In here, we have gained enough knowledge. We have gained a lot of ideas, learnings wherein we can bring it home in our community. Thank you again, Indian Army, for everything for the very warm hospitality here in India.
0: इसके अलावा एक्सरसाइज प्रगति के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की, जिसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी एक खुशखबरी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून का ये पहला हफ्ता लोगों के लिए राहत भरा रहने वाला है और इस दौरान लोगों को हीटवेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईएमडी के मुताबिक मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बावजूद इसके बड़ी संख्या में मैदानी राज्यों में लोग इन दिनों घूमने फिरने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते नैनीताल और शिमला जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है।

0: मई का महीना झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच गुजरा तो जून की शुरुआत सुहानी हुई है। समूचे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम का ये सुहाना मिजाज देखा जा रहा है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, आंधी और बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से फौरी राहत पहुंचाई है। मौसम का ये राहत भरा मिजाज आने वाले कुछ दिनों तक और बना रह सकता है, क्योंकि अनुमान है कि दो दिन बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका प्रभाव समूचे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा।
1: दो दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर्स हैं थोड़े तो राइज होंगे, क्योंकि अभी काफी ज्यादा सामान्य से कम है, लेकिन फिर भी एज सच कोई हीट वेव सिनेरियो आने वाले एक वीक में नहीं हुई। अगर आप पूरा देखेंगे इस समय हमारा ऑलमोस्ट ज्यादातर हिस्सों में आप ऑरेंज अलर्ट देखेंगे, जहां पे हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है और हमारा अनुमान है जो हवाओं की गति है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा रह सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जहां आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है।
0: मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस वजह से तापमान 40 डिग्री के नीचे बना रहेगा और लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात अगर दिल्ली NCR की करें तो यहां भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आगे भी बादलों के बरसने का सिलसिला जारी रह सकता है।
1: अगर आप NCR दिल्ली की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही जो टेम्परेचर्स हैं वो प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है, कि हमारा अनुमान है कि आने वाले 6 से 7 दिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन इट विल बी लेस देन 40 डिग्री ओनली। लेकिन हाँ, उसके साथ ही आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं NCR दिल्ली में हो ही सकता है।
2: किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त एक्टिवेट है?
1: हाँ, अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, उसका प्रभाव थोड़ा जहाँ NCR में भी रह सकता है। उसके अलावा एक राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है, जिसका प्रभाव रहने का अनुमान है।
0: मौसम के मिजाज में आई इस तब्दीली के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मैदानी राज्यों से घूमने फिरने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख इन दिनों कर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में कई लोग परिवार संग घूमने के लिए कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मनाली से लेकर शिमला तक और धर्मशाला से लेकर नैनीताल तक ज्यादातर पर्यटन स्थल सैलानियों से भरे पड़े हैं। खासकर वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों पर मौसम ज्यादा खुशनुमा है, इसलिए वो घूमने फिरने आए हैं।
3: अभी देखा जाए तो गुजरात में 40-45 वेदर रह रहा है और हम कल शाम से इधर है, सो वी हैव सीन रेन, वी हैव सीन क्लाउडी वेदर। तो मैं बोलना चाहूंगा वेदर बहुत प्रीटी है, इट फील्स क्या बोलते हैं हम, अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
4: क्राउड बहुत है और टूरिस्ट भी ज्यादा है, बट वी आर एंजॉइंग अ लॉट एंड स्पेशली यहाँ के जो व्यूज है, सीनरीज है, वो हमको बहुत ही प्रीटी लगे और वो बहुत अच्छा है।
5: यहाँ पे मैं ट्रिप पे आई हूँ, सो मेरा 7-8 डेज का ट्रिप है एंड मुंबई में अभी टेम्परेचर कुछ 35 डिग्री था एंड वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, सो वी प्लान टू विजिट नैनीताल, उत्तराखंड स्पेशली, सो वी आर हियर टू एंजॉय आवर ट्रिप एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर हियर।
6: हमारे वहाँ पे बहुत ही गर्मियाँ पड़ रही है तो यहाँ का वेदर भी अच्छा है, बच्चों के साथ नेचुरल जगह पे हम समय बिता सकते हैं और यहाँ धर्मशाला का जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है तो वो भी हमारे बच्चों को दिखाना था।
0: पहाड़ों पर सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखने के लिए प्रशासन को कई जरूरी कदम उठाने पड़े हैं, खासकर ट्रैफिक को लेकर, ताकि गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। दिल्ली से मनीषा लड्डा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: आगे बढ़ते हैं बात पर्यटन के मैराथन की, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति वैली में आयोजित हो रहा है। चीन सीमा के पास 72 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में 28 राज्यों के 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का मकसद सीमा से सटे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये प्रतियोगिता खेल आयोजन मात्र नहीं बल्कि एथलीट्स को नीति घाटी की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर भी है। उत्तराखंड की चमोली घाटी, फूलों की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ वनस्पतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि अगले दो दिन चमोली जिले में मौजूद नीति घाटी देश भर से आए करीब 1000 धावकों के हौसले की गवाह बनेगी। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद नीति घाटी भारत चीन सीमा के पास का अंतिम छोर है। यहाँ नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन हो रहा है, जिसके बैनर तले हाई ऑल्टीट्यूड पर दौड़ लगा रहे 933 प्रतिभागियों की शारीरिक क्षमता, अदम्य इच्छा शक्ति, मानसिक मजबूती और कभी हार न मानने के जज्बे की परीक्षा हो रही है।
8: चमोली में आज से भारत चीन सीमा रिमखिम से मलारी और मलारी से नीति तक पूरी घाटी में इस समय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन की शुरुआत हो चुकी है। एक 75 किलोमीटर की रेस है जिसमें इस समय जो धावक हैं, जो रेसर हैं, वो दौड़ रहे हैं। ये रिमखिम से तड़के सुबह शुरू हो गई है। रिमखिम अत्यधिक ऊंचाई पर है, भारत चीन सीमा बाड़ाहोती के समीप है। भारतीय सेना की ये चेक पोस्ट है, चौकी है यहाँ पे, वहाँ से शुरू हुई है यहाँ और अब मलारी ये लोग पहुँचेंगे। वहीं जो दूसरी रेस है वो 42 किलोमीटर की यहाँ से मलारी से नीति तक और नीति से वापसी की जो रेस है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इस समय बड़ी संख्या में ये खासकर वाइब्रेंट विलेज, इस समय हम सीमांत क्षेत्र में हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। देश भर के जो 900 एथलीट हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, ऐसे में 27 प्रदेशों के जो लोग हैं वो इसके लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। काफ़ी एडवेंचर रोमांचक भरा ये जो नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन, यहाँ पे भारतीय सेना, आईटीबीपी, प्रशासन, पर्यटन विभाग, तमाम जितने भी विभाग हैं इन सब की जो एक संयुक्त वाइब्रेंट विलेज के तहत ये कार्यक्रम किया करवाया जा रहा है।
7: उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन, भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से ये मुश्किल दौड़ आयोजित की जा रही है। रिमखिल से मलारी तक दो कैटेगरीज में इस रेस का आयोजन होगा। सबसे मुश्किल स्ट्रेच अल्ट्रा रन का है, जो रिमखिम से नीति और नीति से मलारी तक है। इसकी दूरी 75 किलोमीटर है, जबकि दूसरी कैटेगरी 42 किलोमीटर की है, जिसे फुल मैराथन का नाम दिया गया है। इसका रूट मलारी से नीति और फिर मलारी तक है।
9: रिमखिम से अल्ट्रा मैराथन जो 75 किलोमीटर की दूरी जिसमें पार्टिसिपेंट्स आपकी तय कर रहे हैं, उसमें लगभग 150 के करीब हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो रिमखिम से चले हैं। दूसरा इवेंट यहाँ 42 किलोमीटर का स्टार्ट हुआ है मलारी से, और इसमें भी लगभग 150 से 200 के करीब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
7: 3 दिन तक चलने वाले साहसिक खेल का मुख्य उद्देश्य सीमा से सटे गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना भी सरकार का उद्देश्य है, ताकि अतिथि देवो भवा के संदेश के जरिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों का ध्यान उत्तराखंड की तरफ खींचा जा सके, जिससे नीति वैली के अलावा पूरे पहाड़ी क्षेत्र में होम स्टे कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों में बसे प्रवासियों को गाँव वापस लाने की पहल में तेजी आ सकेगी।
9: यहाँ के ग्रामीणों में जो होम स्टे के प्रति अब जब रुझान बढ़ने लगा है, इसी 6 महीनों में लगभग 8 से 10 होम स्टे करीब हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं और ट्रैकिंग ट्रैक्शन में भी हम लोगों ने स्वीकृति दी है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा संख्या में अब नंबरों की आवश्यकता होगी। और जो शासन की मंशा है कि एक तो रिवर्स माइग्रेशन की ओर लोगों को प्रेरित करना है और यहाँ पे होम स्टेज को बढ़ाना है, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो वाइब्रेंट विलेजेस में जो एक्टिविटीज़ हम लोग को शुरू करनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संदेश है, वो हमें गांव-गांव से लेकर देश विदेश तक पहुंचाना है। वाकई में बड़ा अच्छा संदेश है।
7: सरकार की कोशिश है कि इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज के जरिए पहाड़ों के लोगों को रोजी रोटी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने से रोका जा सकता है। ताकि सूने पड़े पहाड़ एक बार फिर से आबाद हो सकें, जिससे आम लोगों के लिए स्वरोजगार से जुड़े दूसरे अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
10: ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि इस तरह की गतिविधियां हम लोग हर साल करें, ताकि एक रेगुलरिटी आती है तो उसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, प्रचार प्रसार और होगा तो और अधिक लोग यहाँ पे आएंगे, और धीरे धीरे लोगों के आने से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका का में भी संवर्धन होगा। लोग अपने होमस्टेज यहाँ पे खोल सकते हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग से सहयोग ले सकते हैं, और अपनी छोटी छोटी गतिविधियाँ जैसे आपका जो कपड़े हैं, जो लोकल यहाँ का परिधान है, उसको भी बना सकते हैं, उसको भी बेच सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही सबके लिए एक फायदे की चीज़ है और रोजगार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण ये गतिविधि है।
7: पहाड़ों को फिर से बसाने और सवारने के लिए सरकार के गंभीर प्रयास से स्थानीय लोग भी काफी खुश दिख रहे हैं।
11: अभी एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि घाटी में जितने भी गांवों में होम स्टे बने हुए हैं और सब भरे बड़े हैं, सब लोग खुश हैं कि भाई आने वाले समय में इस तरह की इवेंट यहाँ पे हर साल होगा तो जरूर यहाँ पे पर्यटक बढ़ेंगे और गांव वालों के लिए जो आजीविका का साधन है उसमें बढ़ोतरी होगी।
7: साफ है कि सरकार की तरफ से इस तरह की खेल गतिविधियाँ स्थानीय लोगों में विश्वास और उत्साह का नया संचार पैदा करती हैं, जो अपने गाँव को छोड़कर शहरों का रुख नहीं करना चाहते। यही वजह है कि पर्यटन उनके लिए स्वरोजगार और आजीविका का अत्यंत सशक्त और विशाल माध्यम बन सकता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: रजनीकांत की फिल्मों की दीवानगी पर्दे पर आने से पहले ही दिखने लगती है। अब उनकी जेलर 2 फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। चर्चा इस फिल्म में आने वाले कैमियो सरप्राइज की भी हो रही है। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो हो सकता है, लेकिन अब नाम ऋतिक रोशन का सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलर 2 के मेकर्स इस कैमियो के लिए ऋतिक से बात कर रहे हैं।

सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों को फिल्म में मिल सकता है एक और जबरदस्त सरप्राइज। सिनेमा के गलियारों में इस फिल्म की चर्चा तो काफी समय से है। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के साथ बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक का एक स्पेशल कैमियो हो सकता है। ये खबर सामने आते ही इस फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और बढ़ गया है।

0: सी खबरें आ रही थी कि इस खास रोल के लिए शाहरुख खान से बातचीत चल रही है, लेकिन फिर बताया गया कि अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग और बिजी स्केड्यूल की वजह से शाहरुख खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। इसके बाद इस कैमियो के लिए फिल्म मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। खबरों के मुताबिक ऋतिक ने इस कैमियो के कॉन्सेप्ट को सुन लिया है, हालांकि अभी तक फिल्म की टीम की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऋतिक का कैमियो भी आधिकारिक तौर पर भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन इस खबर ने जेलर 2 को इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बना दिया है। फैंस अब रजनीकांत और ऋतिक रोशन को एक साथ स्क्रीन पर देखने की कल्पना कर रहे हैं।
1: बाप रे,
2: शिट,
3: हे माँ,
1: अरे यार,
3: गॉड लव यू।
0: दिलचस्प बात ये है कि ऋतिक रोशन और रजनीकांत का कनेक्शन आज का नहीं है। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म भगवान दादा में ऋतिक बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। अब अगर जेलर 2 में ऋतिक की एंट्री होती है तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स का ऐतिहासिक मोमेंट साबित हो सकता है।

0: चेले टू के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार हैं और इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर मुथुविल पांडियन के किरदार में नजर आ रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और एस जे सूर्य जैसे बड़े कलाकारों की मौजूदगी इस फिल्म को और खास बना रही है। चर्चा इस बात की भी है कि इस फिल्म में मोहनलाल और शिव राजकुमार अब अपने किरदारों को दोहराने वाले हैं।
1: टाइगर का हुक्म।
0: खबरों की माने तो जेलर 2 सितंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल दर्शकों की नजरें जेलर 2 में ऋतिक की एंट्री पर टिकी है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक कैमियो नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। रिपोर्ट कन्नूज टुडे।
2: जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलते ही कोई चाय तैयार करके दे दे, घर की साफ सफाई कर दे, जरूरी सामान ले आए और आपके कहने भर से रोजमर्रा के तमाम काम निपटा दे। और सबसे दिलचस्प बात ये कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट रोबोट हो जो आपके घर का हिस्सा बन चुका हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लग सकता है, लेकिन तकनीक की दुनिया में तेजी से इसी दिशा की ओर काम हो रहा है। दुनिया के दिग्गज टेक कंपनियां ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने में लगी हैं जो आने वाले समय में घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ काम करते नजर आ सकते हैं। यानी वो भविष्य जिसकी कल्पना अब तक केवल फिल्मों में ही हुआ करती थी अब धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रही है।

0: जरा सोचिए, अगर आपके घर में एक ऐसा रोबोट हो जो सुबह की चाय बनाने से लेकर घर की सफाई, सामान लाने और आपकी रोजमर्रा के कामों तक सब कुछ संभाल ले। ये सुनने में भले साइंस फिक्शन जैसा लग रहा हो, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां पर्सनल रोबोट्स को हकीकत बनाने की दौड़ में जुट गई है। पर्सनल रोबोट्स की रेस में फिलहाल तो ओपन एआई आगे निकलती दिख रही है। कंपनी ने अपने रोबोटिक्स डिवीजन का विस्तार करने का ऐलान किया है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि कंपनी ऐसे इंजीनियर्स की तलाश कर रही है जो इंसानों की मदद करने वाले रोबोट विकसित कर सके। ऑल्टमैन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि एआई को वास्तविक दुनिया में भी अब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऑल्टमैन का इशारा साफ है कि भविष्य में एआई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके आसपास चलती फिरती मशीनों के रूप में भी नजर आने वाला है। फिलहाल एआई पर्सनल रोबोट्स की दुनिया आबाद होने जा रही है। ओपन एआई की इस नई पहल की जिम्मेदारी भारतीय मूल के इंजीनियर आदित्य रमेश को दी गई है। आदित्य पहले ओपन एआई के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और अब उनकी टीम ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है जो रोबोट्स को इंसान की तरह दुनिया को समझने और उसमें काम करने में सक्षम बनाए। सैम ऑल्टमैन ने रोबोटिक्स को लेकर कंपनी के दो बड़े टारगेट सेट किए हैं। पहला, ऐसे रोबोट तैयार करना जो फैक्ट्री में मदद कर सके और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा रोल निभा सके। वहीं ऑल्टमैन का दूसरा रोड मैप जरा लंबा है, जिसमें वो ऐसे रोबोट्स बनाने जा रहे हैं जो लोगों के निजी काम कर सके, उनका ख्याल रख सके और जरूरत पड़ने पर हर काम को संभाल भी सके। हालांकि ओपन एआई इस दौड़ में अकेली नहीं है। एलन मस्क की टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट लगातार चर्चा में है। मस्क पहले भी कह चुके हैं कि भविष्य में रोबोट ज्यादातर नौकरियां संभाल सकते हैं। वहीं चीन की कई कंपनियां भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यूनिट्री जैसे रोबोट्स दौड़ लगाने से लेकर फैशन शो में रैंप वॉक तक कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: चंद्रमा का कौन सा राजयोग बहुत सारी यात्राएं करवाता है? चंद्रमा का कौन सा राजयोग व्यवहार कुशल बना देता है? और चंद्रमा का कौन सा राजयोग जीवन के संघर्ष कम कर देता है? कौन से हैं चंद्रमा के विशेष शुभ योग?

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। चंद्रमा के मुख्य शुभ योग कौन से हैं और इनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 10:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में,

अशीमे और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो चंद्रमा से मुख्यतः तीन तरीके के योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। पहले जानते हैं अनफा योग क्या होता है। देखिए, जब चंद्रमा से पिछले भाव में कोई ग्रह हो, जिस खाने में चंद्रमा बैठे हैं उसके पिछले खाने में कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा योग बनता है। लेकिन चंद्रमा से पिछले भाव में सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए, नहीं तो अनफा योग नहीं बनेगा, अनफा योग भंग हो जाएगा। अगर कुंडली में अनफा योग है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है, व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और अत्यंत व्यवहार कुशल होता है, लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। अनफा योग अगर कुंडली में है तो ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति राजनीति में सफलता पा जाता है। अगर कुंडली में अनफा योग है तो आपको अपने भरसक लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपने व्यवहार को मीठा और मधुर बनाए रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में यशस्वी होंगे और अनफा योग का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। चंद्रमा के दूसरे शुभ योग सुनफा की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो चंद्रमा के पहले शुभ योग अनफा के बारे में जान लिया। दूसरा शुभ योग है सुनफा। सुनफा योग क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं, जब उसके दूसरे खाने में, उसके बाद वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग होता है। लेकिन ये ग्रह सूर्य, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के दूसरे भाव में अगर सूर्य, राहु, केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर कुंडली में सुनफा योग बने, चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को शिक्षा में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोग जीवन में अत्यंत धनवान बनते हैं और अपनी वाणी से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों के मामले में देखा गया है कि छोटी जगह पर, साधारण जगह पर भी अगर जन्म लें तो जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। चंद्रमा के तीसरे राजयोग दुर्धरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, काफी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अनफा और सुनफा योग के बारे में आपने जान लिया, अब जान लेते हैं दुर्धरा योग के बारे में। कैसे बनता है? चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके दूसरे भाव में या उससे पिछले द्वादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है, लेकिन जो आगे बैठे हैं उसमें भी और जो पीछे बैठे हैं उसमें भी सूर्य, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह चंद्रमा के दूसरे या बारहवें दोनों भाव में बैठा हो तो दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग होने पर व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है। सामान्यतः जिनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग होता है ऐसे लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये योग कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है और व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश पाते हैं। अगर राजनीति में जाएं या अगर धर्म कार्यों में जाएं तो दुनिया को दिशा दिखाते हैं, इनके बताए गए मार्ग पर लोग चलते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा।

प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए चंद्रमा से अनफा सुनफा दुर्धरा नाम के मुख्य योग तो बनते हैं, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा से और भी राजयोग बनते हैं। जैसे चंद्रमा बृहस्पति का गज केसरी योग, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या कुंडली में लग्न से दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो अमला नामक राजयोग बनता है। तो बहुत सारे और भी राजयोग कुंडली में चंद्रमा से बनते हैं। और अगर चंद्र बृहस्पति का गजकेसरी योग है, आपको जीवन में जबरदस्त उन्नति देगा। अगर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, जीवन में पर्याप्त धन देगा। अगर चंद्रमा का अमला योग है तो जीवन में नाम यश और कीर्ति आप प्राप्त करेंगे। तो आज हमने आपको बताया चंद्रमा के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हों तो हर सोमवार को शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: का नाम सुनते ही दिमाग में सफेद दीवारें, मशीनों की बीपी और बंद कमरों की तस्वीरें जहन में आती हैं। लेकिन सोचिए अगर आईसीयू मरीज खुले आसमान के नीचे ताजी हवा में सांस ले सके, फूल पौधों के बीच में कुछ पल बिता सके, तो कैसा होगा। ब्रिटेन के एक अस्पताल में इसी सोच को हकीकत में बदल दिया है। लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल ने देश का पहला रूफटॉप गार्डन वार्ड शुरू किया है, जहां गंभीर मरीज भी इलाज के साथ साथ प्रकृति का सुकून महसूस कर पाएंगे। खुला आसमान, ताजी हवा और कुदरत के करीब होने का एहसास। लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में ये रूफटॉप गार्डन मरीजों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसे खास तौर से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बनाया गया है। 29 साल की हॉली एलन अस्पताल की वो पहली मरीज हैं जिन्होंने इस आउटडोर वार्ड का इस्तेमाल किया। हॉली को अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स की देखरेख में इस रूफटॉप गार्डन में लाया गया। इस आउटडोर गार्डन को अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट के ऊपर ही बनाया गया है, ताकि मरीजों को यहां आसानी से लाया जा सके। इस ओपन वार्ड को खूबसूरत फूल पत्तियों से सजाया गया है। रूफटॉप वार्ड में इतनी जगह है कि यहां 6 बेड लगाए जा सकते हैं। यहां मरीज खुली हवा, नीले आसमान और खूबसूरत पौधों के बीच पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ रह सकते हैं। इस ओपन एयर वार्ड को किंग्स कॉलेज अस्पताल को मिली चैरिटी से तैयार किया गया है। इसे बनाने में करीब 20 लाख पाउंड की लागत आई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मरीजों को अस्पताल के कैंपस में कुदरत के करीब रखते हुए बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। जे एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून, उत्तर भारत में 1 हफ्ते तक ऐसी ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल बाद फिर शुरू हुए एक लोक उत्सव की भी है।
10: ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के चांदबड़ इलाके की, जहां 40 साल बाद एक बार फिर से झेराई फाग परंपरा के दिव्य रंग बिखरे। आयोजन में मृदंग, ढोलक, टिमकी, झांझर और रामतूला जैसे देशी वाद्य यंत्रों की धुन पर चल रहे लोक गीतों से वातावरण गूंजता रहा। इन सब के बीच कीर्ति ध्वजा का विधि विधान से पूजन कर प्रतियोगिता शुरू कराई गई, जिसमें एक एक करके कई टोलियों में शामिल लोग महिलाओं की लाठियों के वार से खुद को बचाते हुए टी आकार की लकड़ी पर लगाए गए झंडे तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। एक साहसी युवक महिलाओं की लाठी की मार को झेलते हुए भी आखिरकार 50 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर चढ़ने में सफल होकर ध्वज के साथ बांधी पोटली समेत ध्वज को तोड़ने में सफल रहा। निखिल रैकवार नाम के इस विजेता युवक का तिलक लगाकर सम्मान करते हुए पुष्पमाला से स्वागत कर 21,000 का नकद पुरस्कार दिया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में पुरुषोत्तम मास उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे। अधिक मास में आयोजित इस उत्सव को बनमास उत्सव कहा जाता है। इस सूर्य मंदिर में कश्मीरी पंडितों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहां पिंडदान भी किया। इस विशेष अवसर के लिए प्रशासन के साथ ही मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे श्रद्धालु बहुत ही संतुष्ट दिखे। पुरुषोत्तम मास के दौरान यहां पूरे महीने चलने वाले इस बनमास उत्सव में विशेषकर रविवार के दिन श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखी जाती है। लेकिन दुरुस्त व्यवस्थाओं की वजह से हर श्रद्धालु बहुत ही आराम से दर्शन पूजन का लाभ उठाते हैं। पुरुषोत्तम मास में यूपी के मथुरा में वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। घंटों लाइन में खड़े होकर श्रद्धालु जब ठाकुर जी के दर्शन करने में सफल होते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलकती है। वृंदावन की गलियां इन दिनों देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं से भरी नजर आ रही हैं। जगह जगह से श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस प्रशासन को रस्सी के सहारे श्रद्धालुओं को रोक रोक कर मंदिर भेजा जा रहा है, जहां लंबी प्रतीक्षा के बाद बांके बिहारी के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर दिखते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी का दीदार करने का पर्यटकों का इंतजार खत्म हुआ। चमोली जिला स्थित इस विश्व धरोहर के 1 जून से खुलने को लेकर यहां गेट पर भीड़ जुटने लगी। इस हेरिटेज का गेट खुलने के बाद पर्यटकों की यहां एंट्री शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले गेट के पास ही पर्यटकों को वन क्षेत्र अधिकारी की ओर से उन्हें फूलों की घाटी और अंदर जाकर सैर करने को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी गई। फूलों की इस घाटी में 500 से ज्यादा किस्म के रंग बिरंगे फूल जून से अक्टूबर तक खिलते हैं, जो पूरे इलाके को अनुपम सौंदर्य प्रदान करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 1 जून को पर्यटकों के लिए इस खूबसूरत घाटी को खोल दिया गया है, जहां आम तौर पर पर्यटक 31 अक्टूबर तक यहां की छटा का दीदार कर पाते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी की हैं, जहां बद्री विशाल और भारत माता की जयकारों के साथ नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य रूप से आयोजन किया गया। ये फिट इंडिया और सीमांत पर्यटन को नई उड़ान देने की पहल है, जिसमें देश भर के 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से आयोजित इस आयोजन के पहले दिन 75 किलोमीटर और 42 किलोमीटर दूरी की हाई ऑल्टीट्यूड रेस आयोजित की गई। इस रेस के आयोजन से पहले मलारी गांव में पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोक गायक किशन महिपाल ने अपनी गायकी से समा बांधा।
7: और अब बात करते हैं पहाड़ों पर महाजाम की। जी हाँ, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग से लेकर उत्तराखंड के नैनीताल, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ तक इस समय पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ देखने को यहां मिल रही है। इसकी वजह से कई जगह लंबे जाम लग रहे हैं, लिहाजा ट्रैफिक और भीड़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

0: जून की शुरुआत में तपते मैदान इंसानों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जब जब गर्मी सताती है तब तब दिल पहाड़ों को याद करने लगता है। तभी तो पर्यटकों की मौजूदगी से ज्यादातर हिल स्टेशन गुलजार है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, मनाली या कुल्लू हो, या फिर देवभूमि उत्तराखंड का चमोली, रुद्रप्रयाग, मसूरी या नैनीताल हो, इस वक्त यहाँ हवा में ठंडक के साथ सुकून घुला हुआ है। शिमला का कार्ट रोड तो इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भर चुका है। प्री मॉनसून बारिश के बाद शिमला में सुहाने मौसम के चलते पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग पहाड़ों की ठंडक को महसूस कर रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। यहाँ देश के कोने कोने से पर्यटक पहुँचे हैं, कोई दोस्तों के साथ आया है तो कोई परिवार के साथ। हर किसी का मन यहाँ की हसीन वादी में आकर मानो खिल सा गया है।
1: मैं बोलना चाहूंगा, वेदर बहुत प्रीटी है। इट फील्स क्या बोलते हैं, हम अंदर से सुकून मिलता है इधर आके, क्योंकि 45 डिग्री में गुजरात की गर्मी से आके इधर हिल स्टेशन में बादलों के बीच में जैकेट के साथ डायरेक्ट एक बड़ा चेंज है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी देख पा रहे हैं कि वीकेंड है तो क्राउड भी बहुत बढ़ गया है इधर। सो सब फैमिली के साथ आए, हम भी हमारे फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ आए, और इधर से हम ट्रैक पे जाने वाले। सो ट्रैक के पहले एक बहुत ही बड़ा रिफ्रेशमेंट रहा है हमारे लिए, एंड वी आर एंजॉयिंग इट हियर अ लॉट।
2: यहाँ शिमला हम हमारे फ्रेंड्स के साथ घूमने आए। बहुत प्रीटी वेदर है यहाँ का, और काफी ठंडी भी है। गुजरात में जो ज्यादा वेदर अभी समर का है, 45 डिग्रीज, स्पेशली जूनागढ़ में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सारे फ्रेंड्स इधर आए।
0: आमतौर पर हिमाचल में पर्यटन सीजन जून के पहले हफ्ते में चरम पर पहुँचता है, लेकिन इस साल उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की वजह से सैलानी पहले ही पहुंचने लगे हैं। शिमला में सैलानी किस कदर उमड़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई महीने में 7.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की यहां एंट्री हो चुकी है।
3: ट्रैफिक थोड़ा सा जितना नहीं है, जो जितना पिकनिक का टाइम है उससे थोड़ा सा ठीक है। मान लो पहले होटल अवेलेबल कराना पड़ता है, इसके बाद फिर पार्किंग मिलती है, इसके पहले ऐसे नहीं पार्किंग मिलती, समस्या है पार्किंग थोड़ी सी।
0: सैलानियों की भारी तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी शहर को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए शिमला शहर को 5 अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन भी सक्रिय कर दिए गए हैं।
4: कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है, ट्रैफिक इज गोइंग वेरी स्मूथली। जो टूरिस्ट हैं और आम लोग भी हैं शिमला के, उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और इतने ह्यूमंगस ह्यूज ट्रैफिक को जो मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो हमारे क्विक राइडर्स रहते हैं मोटरसाइकिल पे, वो लगा रखे हैं, जो कि 32 के आसपास डिप्लॉयड हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करें यदि कोई भी ट्रैफिक जैम कहीं पे होता है।
0: इसके अलावा ट्रैफिक नियंत्रण के लिए रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में भी जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शिमला ही नहीं, पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों से गुलजार है। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग का नजारा इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर, पहाड़ों पर पसरी हल्की धुंध, चेहरे को छूती सर्द हवाएं और बादलों के बीच झांकती धूप पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है, और पर्यटक यहां जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।
5: मैदानी इलाकों में जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे पर्यटकों ने पहाड़ी राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। मैं इस समय मनाली के पर्यटन स्थल रोहतांग में हूं। आप 13,000 फीट की ऊंचाई पर आप यहां का एक नजारा देख सकते हैं, किस तरह से मई का महीना चल रहा है, तो ऐसे में अभी भी पूरे इलाके में अच्छी खासी बर्फ जो जम चुकी है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जो है वो यहाँ उमड़ पड़े हैं।
6: मेरी फर्स्ट स्नो है ये, मैं पहली बार स्नो देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और तो सुबह से इतना ट्रैफिक था कि हम थोड़े से परेशान शुरू में हो रहे थे, बट हम जब से मस्ती करते हुए आ रहे हैं तब से हमें बहुत मजा आ रहा है।
0: हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड भी ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ साथ देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीति, माना घाटी समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर इस समय भारी भीड़ उमड़ रही है।
7: में इस बार मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। मई का महीना बीतने को है, अभी तक पहाड़ों में मौसम लगातार बरस रहा है, जिससे पहाड़ों में गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। पहाड़ों में इस समय लगातार बारिश और बर्फबारी मई और आने वाला जो जून है उसमें भी अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देख सकते हैं गाड़ियों की जो लंबी कतार है, अलग अलग देश के कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं इस समय जोशीमठ में। आप देख सकते हैं ये बद्रीनाथ धाम जो जाने वाली सड़क है, इस पे 2 घंटों से यात्रियों को रोका हुआ है, गेट सिस्टम है। ये लाइन कम से कम 6 से 7 और 8 किलोमीटर तक पहुंच रही है, चाहे इस तरफ की बात करें। वहीं इधर नीचे देख सकते हैं लगभग 9 किलोमीटर की ये दूरी है और वहां पे गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मारवाड़ी पुल से लेकर बल्दूरा तक, जो पिनौला है, गोविंद घाट के पास है, वहां तक गाड़ियों की इस समय लंबी कतार लगी हुई है। लगभग ये जाम आपका 15 से 20 किलोमीटर को कवर कर रहा है रोजाना।
0: ऐसे में जोशीमठ में रेंगती गाड़ियों में पर्यटक और तीर्थयात्री घंटों फंस रहे हैं। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वीकेंड और सुहावने मौसम के चलते शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे कई स्थानों पर लंबा जाम लग रहा है। देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ते पर जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। हालांकि जाम के बावजूद पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ है।
8: इस वक्त हम मसूरी में मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइब्रेरी चौक का ये एरिया है जहां पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहा है, क्योंकि शनिवार और रविवार वीकेंड जो है उसमें जो है वो भारी संख्या टूरिस्ट की देखी जा रही है। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम खुशनुमा है, जिसके चलते मसूरी में जो है वो भारी संख्या में जो है वो पर्यटक पहुँच रहा है। और ये वो कतारें हैं जो नीचे से पहुँच रही हैं, दिल्ली नंबर की गाड़ी हो, हरियाणा नंबर की गाड़ी हो, खासतौर से हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ भी आज यहाँ पे देखी जा रही हैं और लोग जो है वो मौसम का लुत्फ लेने पहुँच रहे हैं।
0: सरोवर नगरी नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। यहाँ मॉल रोड पर दिन भर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा, जहाँ वाहनों की कतारें रेंगती नजर आई। हालात ऐसे रहे कि कुछ 100 मीटर का सफर तय करने में लोगों को घंटों का समय लग गया। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पार्किंग और मॉल रोड पर लगातार बढ़ते दबाव ने ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोल दी। चार धाम यात्रा का असर तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में जगह जगह जाम के हालात, यहाँ भीड़ बढ़ने के साथ ट्रैफिक प्लान ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कों पर ऊपर से देखने पर सिर्फ लोगों का सिर ही दिखाई देता है, वहीं हर की पौड़ी पर तो जैसे आस्था का जनसैलाब ही उमड़ पड़ा है। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं के बढ़ते दबाव ने प्रशासन के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पर्यटकों और यात्रियों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में स्थायी पार्किंग, बेहतर ट्रैफिक प्लानिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत और अधिक महसूस होगी। रोहतांग से मनविंदर अरोड़ा और मसूरी से सागर शर्मा के साथ चमोली से कमल नयन सिरोही, गुड न्यूज जुड़े।
9: और जे एडवांस के नतीजों में दो दोस्तों ने बाजी मारी। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
10: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस 2026 के नतीजे आ चुके हैं। इस बार सफलता की सबसे बड़ी कहानी कोटा से निकलकर सामने आई। कोटा में रहकर तैयारी करने वाले दो दोस्तों ने देश भर में टॉप 2 रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। बिहार के गया निवासी शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की, जबकि गुरुग्राम के कबीर छिल्लर महज 1 अंक से पीछे रहकर दूसरे पायदान पर रहे। खास बात ये कि दोनों दोस्त एक ही हॉस्टल में रहते थे, साथ पढ़ते थे और शाम को साथ खेलकर तनाव दूर करते थे। वहीं पूरे देश में तीसरी रैंक सीकर के छात्र जतिन चाहर को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप आज गुजरात दौरे के तहत जामनगर पहुंची। निजी भारत यात्रा पर आई टिफनी ट्रंप का आगमन जामनगर एयरपोर्ट पर हुआ, जहां उनके स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। जानकारी के अनुसार टिफनी ट्रंप अंबानी फैमिली की विशेष मेहमान हैं और वो जामनगर में बंतारा का भी दौरा करेंगे। ये यात्रा पूरी तरह निजी बताई जा रही है और इसका किसी आधिकारिक या राजनयिक कार्यक्रम से संबंध नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में राज्य के पहले आईटी एंड आईओटी पार्क का शुभारंभ किया। ये परियोजना आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में विकास और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से लगभग 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने बताया ये पार्क राज्य के युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार के एक प्रमुख चुनावी वादे को सोमवार से अमल में लाया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से सरकार गठन के पहले दिन की गई घोषणा के अनुसार 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसेज में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू हो गई। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर सरकारी बस डिपो में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार किसी भी सरकारी फोटो पहचान पत्र को दिखाकर महिलाएं सरकारी बसेज में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। आईडी वेरिफिकेशन के बाद महिलाओं को बिना किराया लिए टिकट जारी किया जा रहा है।
9: और अब बात चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई है। गंगोत्री से यमुनोत्री तक और बद्रीनाथ से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर यात्रा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है।

0: देवभूमि उत्तराखंड के चार धामों में इन दिनों आस्था का ऐसा रेला उमड़ा है कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबा केदारनाथ का द्वार हो या बद्री विशाल का धाम, गंगोत्री की पावन घाटी हो या यमुनोत्री की ऊंची चोटियां, हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही है कि आस्था के आगे इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। भगवान बद्री विशाल के धाम में श्रद्धालुओं की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह दर्शन के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। भले ही मौसम लगातार करवट बदल रहा है, बारिश हो रही है, रास्ते में घंटों जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार अपने पूरे चरम पर चल रही है। जहां सड़कों पर जाम है, वहीं हर तरफ यात्रा मार्गों पर इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 7,50,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाला जून का महीना है, ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बद्रीनाथ धाम का रुख कर रही है। ऐसे में बद्री विशाल के दर पर इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। जहां मई के महीने में इस बार 7.5 लाख का आंकड़ा पार हो रहा है, वहीं आने वाला जो जून का महीना है, जब सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, जब अमूमन मुख्य सीजन ही जून का माना जाता है, ऐसे में अब जून के महीने में और भी अधिक जो यात्रियों की भीड़ है वो बद्रीनाथ धाम में बढ़ेगी और एक नए रिकॉर्ड इस बार, क्योंकि पिछले वर्षों के जो सारे रिकॉर्ड हैं, इस बार जून पे सबसे मुख्य नज़र होगी कि किस तरह से जो यात्रा है वो रिकॉर्ड तोड़ती है, कैसी स्थिति होती है, ये सब देखना होगा। वहीं उत्साह जो है श्रद्धालुओं का वो लगातार बना हुआ है। हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहा है।
0: वही मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को बीच बीच में रुक रुक कर यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। केदार धाम में हुई लगातार बारिश के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी।
2: अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो भी वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभाल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें।
0: बारिश के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ धाम में तैनात अधिकारी कर्मचारियों सहित सुरक्षा जवानों को अलर्ट मोड पर रहने और यात्रियों की हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं।
3: इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश जारी है। इसी तरह केदारनाथ धाम में भी बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में बारिश के कारण ठंड भी बढ़ गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है और पैदल यात्रा मार्ग सहित धाम में जो सुरक्षा जवान व सेक्टर अधिकारी हैं उन्हें सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ एवं केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन हैं, वहां भी जेसीबी मशीन सहित जो सुरक्षा जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है।
0: श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक 30 मई तक दोनों धामों में कुल 17,51,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम तथा 7,51,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है, जिससे चार धाम यात्रियों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं।
3: आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ों का मौसम है वो काफी सुहावना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरों में गर्मी अत्यधिक पड़ने के बाद जो शहरों के लोग हैं उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर दिया है।
4: वहाँ पे तो तापमान 47 चालू है,
3: वहाँ अत्यधिक गर्मी है, तो यहाँ का मौसम कैसा लगा आपको?
4: यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है और ठंड भी काफ़ी अच्छी है।
3: तो किस तरीके से आपने अपना टूर प्लान किया है?
4: हम हरिद्वार आए, हरिद्वार से ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से होते हुए हम केदारनाथ बद्रीनाथ दो धाम करने वाले हैं।
3: आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ का मौसम?
5: यहाँ का मौसम सबसे ठंडा और अच्छा है अभी। यहाँ का मौसम अभी अभी बारिश हुई है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम।
0: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं का जोश हाई है। खराब मौसम के बीच भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों धामों की यात्रा कर रहे हैं। छाता, रेनकोट और गर्म कपड़ों के सहारे श्रद्धालु कठिन मौसम का सामना करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों धामों में अब तक 9 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
6: यात्रियों की संख्या की यदि बात की जाए तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 42 दिनों में रिकॉर्ड तीर्थयात्री यानी कि 9,05,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए गए हैं। हालांकि अब गंगा दशहरा के बाद जो यात्रियों की संख्या है उसमें गिरावट जरूर देखी जा रही है, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है।
0: वहीं सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब में बर्फ को हटाकर यहां यात्रा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। SDRF की टीम यात्रियों की मदद में जुटी हुई है, चाहे यात्रियों को पकड़ पकड़ कर रास्तों को पार करवाना हो या रास्तों से बर्फ हटाना, क्योंकि हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर अभी भी देखने को मिल रहा है। बारिश और ठंड के बावजूद चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ ये बता रही है कि आस्था के आगे मौसम की चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेनवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।
7: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
8: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 508 अंक लुढ़क कर 74,267 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला NSE निफ्टी 165 अंक गिर कर 23,382 पर बंद हुआ। सोमवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 2,500 रुपए गिरकर 1,60,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए घटकर 2,69,700 रुपए पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बड़े तनाव को देखते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 94 के स्तर पर बंद हुआ।
7: और न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
7: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला, बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन द्रव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। चले न्यूज पथ पे खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में दबाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको सोचने पर मजबूर।
10: एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास करते, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगता। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

0: बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से ए टू जेड लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझा। उसने अपनी कॉपी में ए टू जेड को जैसा देखा ठीक वैसा ही पूरा कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर ए टू जेड ही लिख डाला। जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी देखी तो वो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। एक छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी, जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर देता तो उसकी जान भी जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई, जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया, जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईपीएल और T20 क्रिकेट को बेहतर बनाने वाले सुझावों की। ये बड़े अहम सुझाव दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की ओर से आए हैं। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल और T20 क्रिकेट में संतुलन लाने के लिए 3 नए नियम सुझाव के तौर पर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि T20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का दबदबा ज्यादा रहता है, ऐसे में अगर ये नए नियम लागू किए जाएं

0: के दो ओवर के पावर प्ले में एक अतिरिक्त फील्डर 30 गज के घेरे के बाहर होना चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान ने अपने तीसरे महत्वपूर्ण सुझाव में कहा कि T20 क्रिकेट में गेंदबाज को अधिकतम 4 के बजाय 5 ओवर फेंकने की अनुमति दी जानी चाहिए। तेंदुलकर ने तर्क दिया कि किसी टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आमतौर पर सबसे प्रभावी होता है। जब शीर्ष बल्लेबाज पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी कर सकते हैं तो फिर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को 5 ओवर गेंदबाजी करने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के ये सुझाव ऐसे समय में आए हैं जब IPL में 200 के पार लगातार बड़े स्कोर बन रहे हैं और कई क्रिकेट एक्सपर्ट T20 क्रिकेट में गेंदबाजों की घटती भूमिका को लेकर चिंता जता रहे हैं। अगर इन सुझावों पर विचार किया जाता है तो IPL के नियमों और मैच रणनीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तेंदुलकर के सुझावों को लेकर हमने क्रिकेट फैंस से बात की और उनकी राय जानी।
1: क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर ने IPL में 3 नियमों में बदलाव करने को कहा है कि अगर ये 3 नियम बदल दिए जाते हैं, इनको लागू कर दिया जाता है तो आने वाले IPL मैचेस की बात हो या T20 की बात हो, उनमें और भी ज़्यादा रोमांच जो है वो बढ़ जाएगा। हमारे साथ कोच सर भी इस वक्त मौजूद है, प्लेयर्स भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपसे ही शुरुआत करते हैं, इम्पैक्ट रूल को, जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है उसको हटाने की मांग की गई है, अगर उसको हटाते हैं वाकई में रोमांच बढ़ेगा या फिर दिक्कत आने वाली है?
2: देखिए, तेंदुलकर जी ने क्या कहा वो अलग बात है। क्रिकेट एक्चुअली बड़ी तपस्या का गेम है। पहले 5-5 दिन का क्रिकेट हुआ करता था तो बहुत लोग एंजॉय करते थे। क्रिकेट में सीधा खेलना बहुत बड़ी बात थी। ये IPL तक टूर्नामेंट है जो कुछ लोगों ने मिलके टीमें तैयार की हैं पूरे वर्ल्ड के। ये एक लोकल टूर्नामेंट है, जैसे हम अपने टाइम में गली मोहल्ले में खेला करते थे। IPL एक्चुअली वो टूर्नामेंट है। IPL से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना है तो हमें 5 दिन के मैचेस खेलने होंगे, IPL से ध्यान हटाना होगा, क्योंकि तेंदुलकर जी जिस टाइम खेला करते थे वो टेस्ट मैच भी खेलते थे, उनका एवरेज भी बड़ा अच्छा रहा, वो 50 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते थे। आज ये

0: एक्चुअली वो भी हमारे जूनियर रहे हैं, इसलिए हम इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं। हमारे साथ थे महेंद्र रनाथ जी थे, गावस्कर थे, सलीम दुर्रानी जी थे, हम इन सब लोगों के साथ खेले हैं। हो सकता है किसी गड़बड़ से हम नीचे रह गए हों, लेकिन क्रिकेट अगर हमें खेलनी है तो क्रिकेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन से, डिसिप्लिन से और क्रिकेट के तरीके से ही खेलनी होगी।
1: आप बताइए, बैट्समैन है या फिर बॉलर है?
2: बैट्समैन।
1: इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या होता है पहले तो बताइए।
2: इम्पैक्ट प्लेयर होता है कि जैसे पहले एक टीम ने 11 प्लेयर का चयन कर लिया, फिर उसके बाद एक इनिंग बीतने के बाद या कभी भी पॉइंट ऑफ मैच के टाइम जब लगते है दूसरी टीम को कि आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर का जरूरत है, या तो बॉलर या तो बैट्समैन, तब वो किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर जिनका काम रोल खत्म हो चुका है उसको हटा के फिर इम्पैक्ट प्लेयर का चयन करते हैं।
1: अगर सचिन ने तो बोला है कि इस रूल को जो है हटा दो, अब से इम्पैक्ट प्लेयर रूल होना ही नहीं चाहिए, तो ये बाकी में मैच को इंटरेस्टिंग बनाएगा या गलत है?
2: ये मैच को इंटरेस्टिंग बनाएगा, बताऊं क्यों? इसलिए क्योंकि ये खेल के अदर जो पॉइंट होते जैसे फील्डिंग हो गया और बैटिंग भी, कुछ लोग जैसे बॉलिंग युजवेंद्र चहल करते हैं उसके बाद वे बैटिंग छोड़ देते हैं। बैटिंग का बॉलर के लिए बैटिंग का भी महत्व है, बैट्समैन के लिए फील्डिंग का भी महत्व है। इसलिए ये एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर हटाने का ये फ़ायदा होगा, और दूसरा ये कि जनरली ये मैच का इंटरेस्ट बढ़ाएगा।
1: अच्छा, टू पार्ट पावर प्ले की अगर मैं बात करूं, उसके बारे में पूरा अच्छे से पता है क्या होता है क्या नहीं है? टू पार्ट पावर प्ले
3: मैम ज्यादा तो पता नहीं है, पहले होता है 4 ओवर का पावर प्ले, फिर उसके बाद जो बैटिंग वाली फील्डिंग, बैटिंग वाले जो जब भी लेना चाहे वो होता है, जो दो पावर प्ले जब भी आप 2 ओवर का लेना चाहे।
1: लेकिन इसको भी हटाने की बात हो रही है कि अभी हटा देना चाहिए?
3: हाँ ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो पावर प्ले होता है वो सही होता है, बाद में सही नहीं है, जो बात तो ठीक है
1: ये वाली बात ही है। अच्छा, और भी प्लेयर्स हैं उनसे जानेंगे। आप बताइए टू इसकी बात जो हो रही है पावर प्ले की बात, इसमें आपको क्या लगता है ये कितना इंटरेस्टिंग मैच को बनाएगा? ये
4: इंटरेस्टिंग तो बैट्समैन के लिए क्या कहते हैं काफ़ी फेवर होगा, वो कभी भी भाग के 2 ओवर ले सकते हैं, जैसे डेथ ओवर में ले लें अगर वो 2 ओवर आखिरी के, तो

0: को थोड़ा नुकसान होगा उसकी वजह से। और क्या कहते हैं, अगर बॉलर्स को थोड़ा हेल्प करने का देखे तो स्टार्टिंग के 6 ओवर पाव अप लेके वहीं पे निकल जाएंगे तो बेटर रहता है।
1: अच्छा, वो चीज़ बेटर रहती है। अच्छा, 5 ओवर बॉलिंग की भी बात की गई है इसके अंदर, कि ये वाला कोटा भी जो हटा देना 5 की जगह, आई थिंक 6 उन्होंने इस वक्त बोला है, आई थिंक 4 की जगह 5 बोला है।
2: 4 है ना अभी एग्जिस्टिंग में, 4 है, 5 हो जाएगा,
1: ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नियम भी लाता है तो इससे कितना फायदा, मतलब अच्छा होगा, बेटर होगा?
2: इससे अच्छा है, बॉलर के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि 4 ओवर्स में ओनली 24 बॉल्स होती है हमारे पास विकेट लेने के लिए। और उसमें T20 में क्या है कि बहुत चांसेस हैं कि मतलब आपको हिट ही करेगा, क्योंकि बैट्समैन आएगा आपको हिट करने ही जाएगा। तो इट्स गुड फॉर बॉलर्स, कि बॉलर्स के लिए अच्छा है ना।
3: फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
4: वेलकम टू द जंगल का नया गाना ऊंचा लंबा कद फॉर एवर रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी ने जमकर ठुमके लगाए हैं।

0: ये गाना अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम के ऊंचा लंबा कद का एक नया वर्जन है। उस फिल्म में इस गाने पर अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ ने डांस किया था और अब गाने के नए वर्जन में कैटरीना की जगह दिशा पाटनी है। छब्बीस जून को रिलीज होने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल में सितारों की लंबी चौड़ी फौज है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता और राजपाल यादव भी नजर आएंगे। प्राइम वीडियो ने अपनी अपकमिंग ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर सीरीज राख का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर की शुरुआत एक सवाल से होती है, बच्चे कब से गायब हैं?
1: बच्चे कब से गायब हैं?
0: इस सीरीज में 1970 के दशक के आखिरी साल की दिल्ली की कहानी है। ट्रेलर में खौफनाक जुर्म की झलक दिखाई गई है। वेब सीरीज राख में अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, राकेश बेदी, आकाश मखीजा समेत कई दूसरे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये वेब सीरीज 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
1: पिता आर्मी में हाई पोस्ट पे और माँ स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, जहाँ बच्चे हैं।
0: रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर 2 में दर्शकों को एक बेहद जबरदस्त सरप्राइज मिल सकता है। सिनेमा के गलियारों में इस फिल्म की चर्चा के बीच ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के साथ बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन का नाम भी जुड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ऋतिक का एक सोशल कैमियो हो सकता है। ऋतिक पहले भी रजनीकांत के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन बतौर बाल कलाकार। 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में उन्होंने रजनीकांत के दत्तक पुत्र का किरदार निभाया था।
2: और आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति की राह पर बढ़ते हुए भारत ने सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का सफल आयोजन किया, जिसमें भारत के अलावा 12 और देशों की सेना के जवान शामिल हुए। मेघालय के उमरोई में आयोजित इस एक्सरसाइज में सैनिकों ने अपनी जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया।

0: जमीन हो चाहे पानी या फिर आसमान, इन जवानों की जाबाजी का जवाब नहीं। दुश्मनों के किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है, ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तनाबूद करना है, ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है, और यही वजह है कि भारतीय सेना की अगुवाई में 12 देशों की सेनाएं जाबाजी का अभ्यास करती नजर आई। जवानों के फुल एक्शन वाली ये तस्वीरें उस सैन्य अभ्यास प्रगति की है, जिसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। प्रगति यानी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। 2 हफ्ते की इस एक्सरसाइज में भारत समेत 13 देशों की सेना शामिल हुई। भारत के अलावा भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और लाओस के 400 से ज्यादा सैनिकों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। प्रगति 2026 में इन सभी देशों के सैनिकों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।
1: आप सिर्फ नतीजे सुनते हैं, किससे कहानियां सुनते हैं सेना के पराक्रम के, उनके शौर्य के, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सेना बेहद सजग, बेहद सतर्क होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। इस एक्सरसाइज में आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सेना के कुछ जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में IED बिछाई गई है। वो कैसे उससे बच के निकलेंगे, या अगर वो उसमें फंसते भी हैं तो फिर कैसे आगे रेस्क्यू का काम होगा। अब देखिए किस तरह से जो सैनिक हैं वो लगातार एक रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। ये पतला रास्ता देखिए, अब एक IED पर पैर पड़ा, वो एक्टिवेट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी एक्सरसाइज इस बात की है कि जब IED जहाँ पर रखी थी वहाँ पर उनका पैर पड़ा है, इसका मतलब है कि दुश्मन आस पास ही है, इसका मतलब है कि दुश्मन घात लगा कर बैठा है, उनका इंतजार पहले से कर रहा था। यहाँ से सेना किस तरह से आगे इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को टेक ओवर करती है, उससे निकलने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है, और साथ साथ दुश्मन पर बराबर घात लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, ये इस पूरी एक्सरसाइज में आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है।
0: इस अभ्यास का मुख्य फोकस अर्ध पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर रहा, जिसमें सैनिकों को रॉक क्राफ्ट, एम्बुश और काउंटर एम्बुश ड्रिल, स्लिदरिंग, जंगल लेन शूटिंग, रूम और बस इंटरवेंशन, IID डिटेक्शन और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जैसी विशेष सैन्य तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। इन जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी गजब की क्षमता का प्रदर्शन किया और इसके जरिए अपनी तैयारियों को परखा।
1: प्रगति 2026 में आपको हम मिलिट्री एक्सरसाइज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपने कई बार देखी होगी। इस वक्त आप देखिए हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारा जा रहा है, स्लिथरिंग कहते हैं इसे, और लगातार इसकी प्रैक्टिस की गई थी अलग अलग देशों के जवानों के साथ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है जहां पर सैनिकों को जल्दी पहुंचना होता है, और ऐसी जगह जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह पर सैनिकों को इस तरह से स्लिथरिंग करके हेलीकॉप्टर से उतरना होता है।
0: भारतीय सेना के K9 योद्धाओं ने प्रगति 2026 एक्सरसाइज में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एलन विक्टर और डीओ नाम के डॉग्स ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस सैन्य अभ्यास में K9 योद्धाओं के साथ हाईटेक रोबोटिक डॉग भी इस्तेमाल किए गए। कठिन हालातों में एक साथ की ट्रेनिंग से अलग अलग देशों के सैनिकों के बीच आपसी समझ, विश्वास और पेशेवर तालमेल भी मजबूत हुआ। प्रगति 2026 के समापन समारोह में 6 देशों के सेना उप प्रमुखों सहित 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
2: The focus of the exercise was on counter-insurgency operations based in semi-mountainous and jungle terrain. During this time, it was a great opportunity for all of us to share the best practices.
0: सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 के समापन के अवसर पर आयोजित स्वदेशी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग की विकसित नई तकनीकों और भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सेना के उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने दूसरे देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा भी की। प्रगति 2026 के पहले संस्करण के सफल आयोजन को लेकर भारतीय सेना का मानना है कि ये सैन्य अभ्यास भविष्य में होने वाले प्रगति अभ्यासों की मजबूत नींव साबित होगा। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
4: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
0: टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल को लेकर आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के ट्रायल को दी अपनी मंजूरी। अहमदाबाद में बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक टेस्ट मैच में अगर खराब रोशनी से खेल रुकता है तो दोनों ही कप्तानों की सहमति से लाल की जगह पिंक गेंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुलाबी गेंद फ्लड लाइट्स में देखी जा सकती है, जबकि लाल गेंद से फ्लड लाइट्स में खेल नहीं हो पाता है। ट्रायल के अच्छे नतीजे मिलने पर इसे सभी टेस्ट मैचों पर लागू किया जा सकेगा। आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर कई सिफारिशों को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक हेड कोच या उनके जरिए नामित कोई प्रतिनिधि तय ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान टीमों से सलाह मशविरा कर सकेंगे। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 15 मिनट का ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही लेग साइड वाइड बॉलिंग एक्शन पर संदेह, लाइटिंग रिसर्च को लेकर सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता के लेक टाउन से अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति को हटा दिया गया है। हाल में ही आए आंधी तूफान की वजह से मूर्ति हिलने लगी थी, जिसके बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए PWD ने क्रेन की मदद से मूर्ति को हटवा दिया। दिसंबर 2024 में ये मूर्ति तब लगाई गई थी जब मेसी कोलकाता आए थे, उस वक्त उन्होंने खुद रिमोट कंट्रोल से इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट आप कीजिए। स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाएं अपना कैमरा और बनाएं ब्लॉग, फिर हमें 7303-409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
9: बदल रही है देव गुरु बृहस्पति की चाल, कुछ राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें और कुछ राशि के लोग होंगे माला माल। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या है पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
11: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
4: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
6: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
8: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: बदल रही है देवगुरु बृहस्पति की चाल, कुछ राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें और कुछ राशि के लोग होंगे मालामाल। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या है पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Die Hard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: विश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से दो सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। JEE एडवांस का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कभी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और मॉडर्न हथियारों का निर्यात कर रहा है। भारतीय हथियारों की ताकत और तकनीकी कुछ ऐसी है कि लोग मेड इन इंडिया वेपन के मुरीद हो रहे हैं। जंग के मैदान में भारतीय हथियारों का होना यह भरोसा दिलाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, ये धोखा नहीं देंगे। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों की ताकत और तकनीक के मुरीद हो रहे हैं। खबर है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम ने भी ब्रह्मोस मिसाइल डील पर साइन कर दिया है, यानी चीन के खतरे से निपटने के लिए एक और देश के पास भारतीय ब्रह्मास्त्र पहुंचने वाला है।

0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम की दस्तक को आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तभी तो हथियार आयात करने वाला देश आज दुनिया के हथियार सप्लाई करने वाले देशों में गिना जा रहा है। भारत के हथियारों के साथ ताकत और तकनीक ही नहीं बल्कि वो भरोसा भी जुड़ा है जो जीत की गारंटी देता है। हाल ही में संपन्न हुए शांग्री-ला डायलॉग में भारत ने पुष्टि की है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लगभग पूरी हो चुकी है।
1: With both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. So yes, obviously you are in the category of friendly foreign countries with whom we would be happy to share this kind of advanced technology.

0: फिलीपींस और वियतनाम जिस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीद रहे हैं वो तकनीकी रूप से इसका शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट यानी तटीय रक्षा संस्करण है। हालांकि ये नेवल श्रेणी का ही हिस्सा है लेकिन इसे युद्धपोतों के बजाय समुद्र के किनारे पर मोबाइल लॉन्चर ट्रकों पर तैनात किया जाता है ताकि समंदर से आ रहे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सके। भारत जो मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। हालांकि भारत के पास इससे लगभग दोगुनी रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल किसी भी देश को नहीं बेच सकता।
1: वियतनाम और फिलीपींस दोनों ही भारत से जमीन पर बेस्ड एंटी शिप ब्रह्मोस का वर्तन खरीद रहे हैं क्योंकि वो चाइना का जिस प्रकार से विस्तारवादी नीति है समुद्र को डोमिनेट करते हैं। कार्बोरो आइलैंड पास में है वहाँ पर से आकर और उस इलाके को डोमिनेट करना, ऐसे में ये मिसाइल काफ़ी कामयाब रहेगी कि जमीन पर रहते हुए ही वो तकरीबन 290 किलोमीटर दूर तक शिप्स को हमला करने में सक्षम रहेंगे जिससे कि एक डेटरेंस रहेगा उनकी नेवी पास आने में हिचकेगी। अब ये भी खबर है कि भारत ने फिलीपींस को 400 किलोमीटर वाला एडवांस ब्रह्मोस भी ऑफर किया है जिससे उनकी रेंज और बढ़ जाएगी और उनको मिसाइल को समुद्र के किनारे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा पीछे ही सुरक्षित इलाके से भी फिर वो फायर करने में सफल रहेंगे और सी को तकरीबन काफ़ी डीप डोमिनेट करेंगे।
0: ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीन की अरबों डॉलर की सैन्य रणनीति नेवल सुप्रीमेसी और एयर डिफेंस नेटवर्क को अकेले दम पर पूरी तरह फेल करने की ताकत रखती है। दरअसल चीन भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था। भारत ने इसका जवाब चीन के पड़ोसियों को ब्रह्मोस देकर दिया है।
1: ये रणनीतिक संतुलन वहाँ बनाता है भारत का ब्रह्मोस बेचना। देखिए इससे कई फायदे हैं, एक तो एशियन देशों के साथ हमारी दोस्ती मजबूत हो रही है, हम वियतनाम फिलीपींस इंडोनेशिया इनको ब्रह्मोस जैसा आधुनिक वेपन सिस्टम जिसने सिंदूर में अपना झंडा गाड़ा, जिसने दिखा दिया कि कितना मजबूत कितना एक्यूरेट और किस प्रकार से दुश्मन के इलाके में जो नुकसान पहुंचाता है, ये है लाइव एग्जाम्पल है। तो इन सभी देशों ने इंटरेस्ट दिखाया तो इसके कई फायदे हैं कि एक तो भारत की दोस्ती बढ़ती है, हमारे डिफेंस निर्यात की तरफ हम आगे कदम बढ़ते हैं और साथ साथ में चीन का काउंटर भी होता है। कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे यहाँ पर, देखिए अमेरिका को क्या ये पसंद आएगा, क्या वो काटसा लगाएगा, फिर ये ब्रह्मोस जो है वो रूस के साथ जॉइंट वेंचर में बनता है तो उनकी सहमति भी इसमें ज़रूरी होगी और चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है, ये चैलेंज रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन का जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली नीति है उसको काउंटर करना, जैसे चीन चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अभूतपूर्व कदम है।
0: भारत उन्हीं देशों को अपनी उन्नत हथियार तकनीक देता है जिन पर भरोसा हो और भारत आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना दोस्त मानता है और उनके साथ उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। आसियान में 11 देश है जिनने ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं। भारत का लक्ष्य कोई अलग थलग गुट बनाना नहीं है बल्कि ऐसी साझेदारियां बनानी है जो सबके लिए मजबूत हो और दुनिया की सुरक्षा को बेहतर बनाए।
1: देखा जाए तो एशियन देश में 11 देश हैं तकरीबन, भारत के इनके बड़े पुराने अच्छे संबंध रहे हैं। 65 करोड़ की आबादी, 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और भारत का तकरीबन इनके साथ 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार, जो भारत के व्यापार का 11% हिस्सा, यानी कि ये इम्पोर्टेंस है इन देशों की, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये भारत की इकॉनमी, भारत की डिप्लोमेसी और भारत को चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत बड़ी ताकत बनते हैं अगर हमारे इनके साथ संबंध अच्छे रहते हैं, दोस्ती और बढ़ती है। और देखा जाए तो ये देश भी चाइना से प्रताड़ित हैं, वो भी चाहते हैं कि एक मिलकर इकट्ठे रहें और ये एक डेफिनेटली भारत की रणनीतिक कूटनीतिक और जिसको कहते हैं कि आपस में मेल भाव का और इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा एक सेगमेंट है जिनके साथ हम आगे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।
0: भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात कर रहा है, जिससे चीन की समुद्री ताकत को सीमित किया जा सके। दक्षिण चीन सागर एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। फिलीपींस, वियतनाम और कई दूसरे आसियान देशों का चीन के साथ इस समुद्री इलाके को लेकर विवाद है। चीन इस पर अपना दावा करता है, जबकि ये देश इसे नहीं मानते। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस होने का मतलब है कि चीन की नौसेना अब दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इन देशों के तटों पर तैनात ब्रह्मोस चीन के युद्धपोतों को उनकी सीमा में ही दफन करने की क्षमता रखती है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को भारत का ब्रह्मोस मिसाइल बेचना सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश भी है।
1: 2014 में ये नीति शुरू की गई थी, मेरे हिसाब से अगर हम स्ट्रेटेजिकली सोचें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 11 देश हैं, तकरीबन 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है उनकी, उनके साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, उनके साथ हमारे बौद्ध धर्म के जरिए एक कल्चरल रिलेशन बहुत अच्छा, बहुत पुराना रिश्ता इन देशों के साथ जो और आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उनको भी व्यापार का एक अच्छा मौका मिल रहा है। एक और बड़ा एडवांटेज है इसका, वो है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स वाली नीति है, उसका बहुत अच्छा काउंटर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा एशियन देश, क्वाड और समुद्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हम एक्सरसाइज करके इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वियतनाम को और देशों को, इंडोनेशिया, फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई किए जा रहे हैं, नेवी को ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि इनके साथ ना केवल इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तीनों के संबंध हैं, और जो कि एक चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
0: ब्रह्मोस को ब्रह्मास्त्र कहे तो कोई दो राय नहीं, इसकी ताकत और मारक क्षमता ही कुछ ऐसी है कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश इस मिसाइल के सामने आने की हिमाकत नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी बेजोड़ मारक क्षमता को दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया था, और यही वजह है कि आज ब्रह्मोस खरीदने में कई देश दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश फिलीपींस था। फिलीपींस ने साल 2022 में करीब 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। ब्रह्मोस की डील काफी बड़ी थी और इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल भारत पिछले एक दशक में अपने रक्षा उत्पादन में बड़ा बदलाव लाया है, प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया गया है, छोटे मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरे देशों के साथ मिलकर हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। भारत के सरकारी रक्षा कंपनियों की हिस्सेदारी कुल रक्षा उत्पादन में करीब 72% है, बाकी 28% प्राइवेट सेक्टर का है। भारत की 3 सरकारी रक्षा कंपनियां दुनिया की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। आज भारत मिसाइल्स, फाइटर जेट और मेन बैटल टैंक्स जैसे बड़े हथियारों में अपनी क्षमता बना चुका है। आगे जमीन, हवा और समुद्र तीनों क्षेत्रों में इंजन यानी प्रोपल्शन तकनीक को और मजबूत करने की कोशिश जारी है। विद रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे तेज और एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में होती है। ये एक प्रभावी, सटीक और विश्वसनीय हथियार है, जिसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यानी आपको किसी दूर के टारगेट पर एकदम सटीकता से निशाना लगाना है तो आप ब्रह्मोस मिसाइल को मैदान में उतार सकते हैं। इसे हर मौसम की स्थितियों में दिन रात में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यही ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए चुनौती बनी हुई है। ब्रह्मोस 2.8 से 3.0 मैक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, जिससे इसे ट्रैक कर पाना चीन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद मुश्किल है। ब्रह्मोस टर्मिनल फेज यानी हमले के आखिरी वक्त में जमीन या समंदर की सतह से महज 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती है, जिससे उसे ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक मैन्यूवरेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो उड़ान के दौरान अपनी दिशा और ऊंचाई बदलने में पूरी तरह सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करने वाली ये मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचने पर जिगजैग तरीके से अपना रास्ता बदलती है और इसके अप्रत्याशित मूवमेंट के कारण एयर डिफेंस कंप्यूटर मिसाइल के सटीक पाथ का अनुमान भी नहीं लगा पाते। ब्रह्मोस ट्राइड ताकत से लैस है, यानी इसे जमीन, हवा, समंदर और पनडुब्बी कहीं से भी दागा जा सकता है, जो चीन के नौसेना को हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में कड़ी चुनौती देती है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड यानी कि विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। टकराते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि बिना विस्फोट के भी भारी युद्धपोतों में छेद कर सकती है। हिंदुस्तान की संप्रभुता के खिलाफ जिसने भी हिमाकत की कोशिश की उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अब भारत घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, भारत दुश्मन को सरेंडर करके ही दम लेता है। आज चुनौतियां बदल रही हैं, लिहाजा भारत भी खुद को बदल रहा है। सेना की तैयारियां भी उसी हिसाब से हो रही है। सेना प्रमुख ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अस्थायी युद्ध विराम है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
3: महीने गुजर गए, साल गुजर गए, दशक गुजर गए, पाकिस्तान अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा होता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर ही इतना घातक था कि इसका असर आज भी पाकिस्तान में रह रहकर सुनाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है। भारत ने अगर असली पिक्चर दिखा दी तो पाकिस्तान का वजूद इतिहास में दफन हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अस्थायी युद्ध विराम है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।
4: टुडेज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट डिमांड्स दैट दोज हु सर्व मस्ट थिंक शार्पली एज दे एक्ट। ऑपरेशन सिंदूर डेमोंस्ट्रेटेड दैट and set the benchmark where national will was expressed with precision and resolve, defining how Bharat responds to provocation.
3: भारत की नई सैन्य नीति और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर निर्णायक कार्रवाई की रणनीति को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक कदम भी उठाने में सक्षम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के ऐलान के बाद जरूर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई होगी। सेना प्रमुख ने साफ साफ कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में अपनाई गई सैन्य रणनीति अभी भी वैसे ही चल रही है। सेना प्रमुख ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान या कोई दूसरी ताकत भारत को उकसाएगी या आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगी तो भारतीय सशस्त्र बल और भी मजबूत होगा, एकीकृत होगा और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार होगा। भारत को भी पता है कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ी जाएगी बल्कि ये कई मोर्चों पर होंगी। इनमें जमीन, हवा, समंदर, अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ड्रोन तकनीक पर आधारित होगा। लिहाजा सेना में ईगल ऑन द आर्म कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जा रहा है।
5: मतलब हर जवान के हाथ में ईगल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ईगल पक्षी नहीं, ईगल मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हर जवान को एक ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानकारी हर को होनी जरूरी है क्योंकि जब कैडेट यहाँ से जैसे ही लड़ाई के मैदान में जाएगा वहाँ पे ड्रोन्स की ऐसी ज़्यादा होगी कार्रवाई, मतलब इतनी ज़्यादा ड्रोन्स होंगे कि आप लोगों को उसको समझना, कंट्रोल करना, इसके समझने में मुश्किल आएगी अगर उनको ड्रोन का पहले से वाकफियत नहीं होगी। इसलिए ड्रोन्स के बारे में हम हर कैडेट को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके लाइव ड्रोन्स भी हैं और सिमुलेटर्स हैं, दोनों के साथ मिलीजुली कार्रवाई हो रही है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को अपनाती जा रही है। इस दिशा में सेना ने अपनी कई इकाइयों को सक्रिय किया है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल, और चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी ड्रोन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस पहल का लक्ष्य सेना की सभी शाखाओं के सैनिकों के लिए ड्रोन संचालन को मानक और अनिवार्य बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही उन हथियारों को तैयार किया जा रहा है जो सेना को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हरियाणा के पंचकुला में स्थित डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में हाई कैलिबर बम का ट्रायल किया गया। इस दमदार परीक्षण ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाई कैलिबर बम के परीक्षण का धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई और परीक्षण स्थल से बम के मलबे व टुकड़े हवा में करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछले, जबकि जमीन पर स्तर पर इसका असर 2 किलोमीटर के दायरे में देखा गया। हाई कैलिबर बम का इस्तेमाल फाइटर जेट जैसे सुखोई 30 MKI, राफेल या तेजस से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉप मिशनस या फिर लंबी दूरी के मिसाइलों के वॉरहेड में किया जाएगा। अब ये दुश्मन के लिए कैसे और कितना खतरनाक होगा इसे भी जान लीजिए। हाई कैलिबर बम दुश्मन के बंकरों के लिए काल बनेगा। आधुनिक युद्धों में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने सीमा पर क्रंकिट के मजबूत अंडरग्राउंड बंकर और कमांड सेंटर बनाए हैं। पारंपरिक बम इन्हें भेद नहीं पाते। भारत का ये हाई कैलिबर बम अपनी उच्च शॉक वेब तकनीक के कारण जमीन के अंदर गहरे धंसे बंकरों को तबाह करने की क्षमता रखता है। हाई कैलिबर बम की एक और ताकत है इसका शॉक वेब और फ्रेगमेंटेशन तकनीक पर पकड़, यानी बम के फटने के बाद उसके मलबे को एक नियंत्रित और अत्यधिक घातक दायरे करीब 2 किलोमीटर में फैलाने की उन्नत तकनीक आ चुकी है, जिससे दुश्मन की पूरी सैन्य टुकड़ी एक ही ब्लास्ट में साफ हो सकती है। इससे हवाई युद्ध में बढ़त भी मिलेगी और जब भारतीय वायुसेना के पास इस तरह के स्वदेशी हाई कैलिबर म्यूनिशंस होंगे तो युद्ध की स्थिति में विदेशी देशों से महंगे बम आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे भारत की युद्ध क्षमता लंबे समय तक मजबूत बनी रहेगी।
1: पंचकुला में टर्मिनल बैलिस्टिक लेबोरेटरी में हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया गया जो सफल माना जा रहा है। बड़ा जरूरी है ये आत्मनिर्भरता की तरफ कि हम 1000 kg के यानी कि हैवी बम तकरीबन 2000 pounds जिसको कहते हैं उसका परीक्षण किया गया, क्योंकि आज जिस प्रकार से लेयर्स के अंदर डिफेंस जो होते हैं या कमांड हेडक्वार्टर है वो तहखानों के अंदर डीप है या फिर बहुत मजबूत छत दी जाती है बंकरों को, उसके लिए ये हैवी बॉम्ब्स काफ़ी कामयाब होते हैं। इनकी ज़रूरत है और देश में बनना एक बहुत बड़ी सफलता रहेगी। मेरा मानना है कि एयरफोर्स के लिए काफ़ी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा जब एक ही बम कई बमों का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि इसको अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी भी कुछ हदें पार करनी है, अलग अलग जहाज़ों पर ट्रायल्स होंगे चाहे वो रशिया के बने हों या बाकी देशों के हों या हमारे अपने बने जहाज हों, उन जहाज़ों के ऊपर मिलकर ट्रायल करना है और इनकी क्षमता को देखना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के ज़माने में जिस प्रकार से हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ या इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ जो हैवी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे तहखानों में उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने।
2: भारतीय सेना तेजी से स्वदेशी तकनीक विकसित करने में जुटी है। पाथू मोनोरेल सिस्टम इसकी ताज़ा मिसाल है, जिसे 10 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। ये सिस्टम दुर्गम हालात में लॉजिस्टिक्स मूवमेंट का स्वदेशी समाधान है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी मौसम में सामान लाने और ले जाने में सक्षम है।
6: ऊंचे पहाड़ हो, घने जंगल हो, बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तान का रेतीला जंगल, भारतीय सेना हर हालात में हर स्थिति में आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानती है। ये मिशन भारतीय सेना के उसी जज्बे की एक नजीर है। ये पाथू मोनोरेल सिस्टम है जिसे सेना की 10 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने सफलतापूर्वक चालू किया है। खास बात यह है कि इन जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही संभव नहीं, वहाँ ये मोनोरेल सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। इस मोनोरेल के जरिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद खराब मौसम में भी सहजता और सुगमता के साथ सामान की ढुलाई हो सकेगी। इस मोनोरेल के जरिए एक बार में 300 किलो तक सामान की ढुलाई संभव है। दावा किया जा रहा है कि ये 60 डिग्री के ढलान पर भी आसानी से सामान मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। लिहाजा घोड़े खच्चरों के मुकाबले ये सिस्टम 10 गुना ज्यादा कारगर है। इसके जरिए गोले बारूद, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि सिस्टम रात हो या दिन, हर मौसम में सामान की ढुलाई का काम कर सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग सेंसर से लैस ये सिस्टम रिमोट से ऑपरेट होता है, लिहाजा भारतीय सेना का ये मिशन खोज मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: Shack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: जो बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

बदल रही है देवगुरु बृहस्पति की चाल, कुछ राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें और कुछ राशि के लोग होंगे मालामाल। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या है पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी का दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में दिल्ली की आरोही देशपांडे को मिली रैंक 1। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: मौसम के मोर्चे पर रात की खबर, IMD के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही रहेगा मौसम, तापमान सामान्य से आसपास रहने की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इसका असर सभी मैदानी राज्यों में दिखेगा। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली पर मौसम रहेगा मेहरबान, 6 जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान। मानसून के लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार, 2 से 3 दिनों में केरल में दस्तक देने का अनुमान। उज्जैन में लोगों को गर्मी से मिली राहत, तेज हवा के साथ आई बारिश से गिरा तापमान। राजस्थान के नागौर में बदला मौसम, बारिश के साथ ओले भी पड़े, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई झमाझम बारिश, लोगों को 45 डिग्री की तपिश से मिली राहत। तेज हवा और गरज के साथ एक घंटे तक हुई जोरदार बारिश, लोग बारिश में भीगते नजर आए। जालना में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का जताया अनुमान। महादेव की नगरी काशी से शुभ समाचार, विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। 4 साल में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दौरान लगाई हाजिरी, काशी में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार बढ़ा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से वाराणसी की अर्थव्यवस्था हुई बेहतर, मंदिर प्रशासन के मुताबिक चढ़ाव में हुआ इजाफा। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी, मंत्री सुदीव्य सोनू ने देवघर और दुमका के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, सुरक्षा एहतियात, पेयजल स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे सहारनपुर, शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना, माता से लिया आशीर्वाद। मिथिलांचल के

यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रक्सौल से तिरुपति के लिए नई ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत। तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीधी ट्रेन सेवा, नई ट्रेन रक्सौल से हर गुरुवार और तिरुपति से हर सोमवार को चलेगी। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। लखनऊ से चलने वाली स्पेशल ट्रेन से नासिक शिरडी और छत्रपति संभाजी नगर का भ्रमण करेंगे श्रद्धालु, शनि शिंगणापुर मंदिर के भी होंगे दर्शन। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पलायन की मार झेल चुके मानदारा गांव में लौटी रौनक, धार्मिक आयोजनों से गांव हुआ गुलजार। आज से दांडिया धाम में 7 दिवसीय शिव धर्मकथा का शुभारंभ, 10 जून से 3 दिवसीय ग्रामोत्सव भी होगा आयोजित। दानिया धाम के घंटा कर्ण हुनेश्वर और भैरव देवता मंदिर में श्रीमद भागवत कथा पुराण का शुभारंभ, बड़ी संख्या में कथा सुनने उमड़े श्रद्धालु। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गांव में नई ऊर्जा का संचार, रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में गए लोग लौट रहे गांव। 10 जून से त्रिदेवों का धार्मिक अनुष्ठान और ग्रामोत्सव का आयोजन, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे गांव के लोग होंगे शामिल। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती, कर्नाटक के बेलगाम में बनेंगे गोला बारूद। मुंबई में शुरू की गई पिंक ई रिक्शा सहायता पहल, इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी रही मौजूद। मथुरा स्टेशन पर RPF की महिला कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, मुसाफिर चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रहा था कोशिश। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, समस्तीपुर में 7 दिवसीय ब्यूटिशियन वर्कशॉप का किया गया आयोजन। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। दिव्यास्त्र MK1 को मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया गया लॉन्च, ड्रोन ने अपनी बैटल फील्ड मोबिलिटी और फलचरण तैयारी को साबित किया। बिहार का जर्दालू आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, मनेर में उद्योग मंत्री शशि सिंह ने आम के पैकेजिंग को लेकर किया निरीक्षण। यूपी के बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों, पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र बांटे गए, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों के नशा मुक्ति अभियान के तहत LG अनुसंधान ने कुलगाम में पदयात्रा का नेतृत्व किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुंबई की मेट्रो की यात्रा, सिद्धिविनायक से T2 एयरपोर्ट तक मुंबई मेट्रो में किया सफर। चमोली में चल रहे नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में अनुराग रावत ने पेश की मिसाल, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने के बावजूद 1 घंटे 45 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। बिहार में गया के पटवा टोली के छात्र छात्राओं ने किया कमाल, 10 छात्र छात्राओं ने JEE एडवांस में लहराया कामयाबी का परचम। पंजाब के संगरूर में मजदूर महिला सन्नो बनी नगर परिषद सदस्य लांगोवाल के वार्ड नंबर 15 से दर्ज की जीत। बंगाल के पूर्व वर्धमान में मेड के रूप में काम करने वाली कलिता माजी मंत्री बनने के बाद अपने इलाके के विकास कार्य में जुटी, अस्पताल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम, सरकार के निर्देश के बाद प्रार्थना सभा में शुरू हुआ राष्ट्रगीत का गायन। कोलकाता के लेक टाउन से अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची मूर्ति हटाई गई, हाल ही में आई आंधी तूफान की वजह से मूर्ति हिलने लगी थी।
सुरक्षा का हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी ने क्रेन की मदद से मूर्ति को हटाया। दिसंबर 2024 में जब मेसी कोलकाता आए थे तब लगाई गई थी मूर्ति। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के ट्रायल को दी मंजूरी। अगर खराब रोशनी से खेल रुकता है तो कप्तानों की सहमति से लाल की जगह पिंक गेंद का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेलकम टू द जंगल का नया गाना ऊंचा लंबा कद फॉर एवर रिलीज। गाने में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी लगाए ठुमके। बैठकों के लिए खुल गई फूलों की घाटी। सैलानी रंग बिरंगे फूलों का कर रहे हैं दीदार।

0: पहले दिन वैली ऑफ फ्लावर्स के मुख्य प्रवेश द्वार पर सैलानियों का स्वागत, 45 सैलानियों ने देखी फूलों की घाटी। 21 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, उत्तराखंड में पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। फूलों की घाटी में करीब 500 से अधिक देशी विदेशी फूल खिले, देखने के लिए चमोली पहुंचने लगे पर्यटक। घर बैठे ऑनलाइन भी फूलों की घाटी की कर सकते हैं बुकिंग, जून महीने में 100 सैलानी करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पिंडदान के लिए आ रहे हैं लोग। जामनगर पहुंची अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी ट्रफनी ट्रंप, हुआ भव्य स्वागत। अंबानी परिवार की मेहमान बनी ट्रंप की बेटी वंतारा का करेंगी दौरा। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 3.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, कारोबार और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है बढ़ोतरी। आज वर्ल्ड मिल्क डे, थीम है महिला किसानों का सम्मान, डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को नई पहचान देने की कोशिश। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण जोरों पर, भगवान राम की 63 पीढ़ियों की डिजिटल वंशावली की जाएगी प्रदर्शित। रामेश्वरम में पीएम मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन, भगवान का दिया आशीर्वाद। कारगिल में एमवीसी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पर मैराथन का आयोजन, 800 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की हुई जांच। अधिक मास और वीकेंड छुट्टी पर धर्मनगरी वृंदावन में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों की संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। श्री वाके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन, भक्तों ने राधा कृष्ण के लगाए जयकारे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए आज से फ्री बस सेवा शुरू, दुर्गापुर डिपो से हुआ शुभारंभ। दिल्ली पहुंचने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड वाल्स, राजनाथ सिंह ने किया भव्य स्वागत। दिल्ली में केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड वाल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, कई मुद्दों पर की चर्चा। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी, दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर। लड़कियों में दिल्ली के आरोही देश पांडे को मिली रैंक 1, दिल्ली से टॉप 3 रैंक होल्डर्स। सिपाही भर्ती परीक्षा में कलावा मंगलसूत्र जैसे धार्मिक चिन्ह पर नहीं रहेगी पाबंदी, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जून के बीच होगी सिपाही भर्ती परीक्षा, 32,679 पदों पर होना है चयन, 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा में स्मार्ट गैजेट्स ले जाने पर सख्ती रहेगी जारी, यूपी के 75 जिलों के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ, 4 नए सांदीपनी स्कूल का भी लोकार्पण, मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे समारोह में मौजूद। इंदौर को मिली मोबाइल पुलिस वैन की सौगात, सीएम मोहन यादव ने नया ट्रैफिक ऐप भी किया लॉन्च। इंदौर में हिल्ला उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, कार्यक्रम में 150 कलाकारों ने प्रस्तुत किया वंदे मातरम। पुणे में गोवा के मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का किया उद्घाटन, अस्पताल में सर्जरी और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, मामलों का निपटारा करने का दिया निर्देश। उज्जैन में महाकाल की तारीखी भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा रूप स्वरूप श्रृंगार। बाबा महाकाल के दर्शन के लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाई हर हर महादेव के जयकारे। महाकाल के दरबार में पहुंचे फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और अभिनेता जय भानुशाली, विधि विधान से की पूजा। फरीदाबाद के श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को 9.5 किलो से अधिक चांदी के आभूषण अर्पित किए। इस्तांबुल में अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट का शानदार कॉन्सर्ट, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा शो। साल 2014 के बाद कान्ये वेस्ट ने पहली बार यूरोप में दी प्रस्तुति, 2 घंटे के शो में कई देशों के प्रशंसक हुए शामिल। यहूदी विरोधी बयानों को लेकर कान्ये वेस्ट का कई देशों में हुआ था विरोध, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड में कार्यक्रम हो चुके हैं रद्द। कान्ये वेस्ट ने अपने पुराने बयानों पर जताया था खेद, अपने व्यवहार के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को बताया था जिम्मेदार। नीदरलैंड में होगा कान्ये वेस्ट का अगला शो, 6 और 8 जून को होगा कॉन्सर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शंघाई में चीनी रोबोट कंपनी न्यूट्री रोबोटिक्स ने खोला अपना पहला एशिया रोबोटिक्स का अनुभव केंद्र, ग्राहकों को नए रोबोटिक्स उत्पादों को देगी जानकारी। रोबोटिक्स सेंटर में ह्यूमनॉइड रोबोट और रोबोट डॉग की प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। भविष्य में रोबोट करेंगे ग्राहकों का स्वागत, लोगों को रोबोट्स को करीब से जानने का मिलेगा मौका। वॉइस कमांड से ग्राहक रोबोट से करवा रहे काम, सेंटर में लोगों को भविष्य के स्मार्ट रोबोटिक दुनिया से जोड़ने का मिल रहा मौका। शंघाई का रोबोटिक्स सेंटर आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन का बना बड़ा उदाहरण, चीन में कंज्यूमर रोबोटिक्स के लिए खुला बड़ा बाजार। चीन के आसमान में दिखा रेत का समंदर, दिन में ही छाया रात जैसा अंधेरा। हार्बिन शहर में रेत के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों के रोजमर्रा के काम हुए प्रभावित। मंगोलिया से आए शक्तिशाली चक्रवात की वजह से आया रेतीला तूफान, कई इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तरी चीन में तेज गर्मी के बीच आए इस मौसम में बदलाव ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, मौसम वैज्ञानिकों की हालात पर कड़ी नजर। इटली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरों से बाहर नहीं निकलने की जारी की चेतावनी। ग्रीस के कैप सोनियन में दिखा दुर्लभ खगोलीय नजारा, पोसाइडन मंदिर के ऊपर दिखा ब्लू मून। समंदर की लहरों के ऊपर बेहद ही खूबसूरत दिखा नजारा, ड्रोन कैमरे में दी गई तस्वीरें। नासा की ब्लू मून को दिया माइक्रोमून नाम, माइक्रोमून साल के सबसे छोटे दिखने वाले पूर्ण चंद्रमा में शामिल। जापान के ओकानवा में टाइफून जंगमी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जापान के ओकिनावा द्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा टाइफून, तेज बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: बदल रही है देवगुरु बृहस्पति की चाल, कुछ राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें और कुछ राशि के लोग होंगे माला माल। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या है पूरा हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
7: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से चलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए, तो आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज का चर्चा का विषय रहने वाला है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर किस तरह का असर होगा, क्या प्रभाव हम सबको देखने को मिलेंगे, उन प्रभावों की वजह से जीवन में कैसी हलचल होगी, उसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। उपायों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ये सब कुछ पंडित जी से जानेंगे, सवाल जवाब भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने के पहले थोड़ा सा धन, 11 रुपए, 21 रुपए, 100 रुपए पूजा स्थान पर रख दें और जब यात्रा से सकुशल वापस लौट आएं तो उस धन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अगर आप ऐसा हर यात्रा के पहले करें तो यात्रा में समस्याएं नहीं होंगी, यात्रा सुखद होगी और बेहतर होगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 2 जून 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र रात के 10:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको शुरुआत में हमने जानकारी दी, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो बृहस्पति के इस परिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है, क्या रीजंस है पंडित जी इसके?
1: जी देखिए, बृहस्पति का बदलाव या शनि का बदलाव दुनिया भर में सबसे बड़े बदलाव का, परिवर्तन का कारण बनता है। और आज हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा है, इसकी स्थिति क्या है? बृहस्पति देव अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, अभी तक मिथुन राशि में मौजूद थे। अब बृहस्पति देव 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में बृहस्पति सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए बृहस्पति का ये परिवर्तन उनकी सबसे मजबूत स्थिति है। कर्क राशि में बृहस्पति 2 जून से लेकर के लगभग 31 अक्टूबर तक रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का फाइनेंशियल मार्केट पर और प्रकृति पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति में आपदाएं आना, आग लगने जैसी घटना होना, भूकंप की स्थिति, इस तरह की तमाम प्राकृतिक घटनाएं होंगी। बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएगा और बाजार की स्थितियां अलग तरीके से दिखाई देंगी। इसीलिए इस समय इन्वेस्टर्स को सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी।
0: और चलिए इस चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। राशिफल पर आते हैं और पहली तीन राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं बृहस्पति का राशि परिवर्तन, तो इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर किस तरह का असर होगा, क्या प्रभाव ये डालेगा, वो जानते हैं पंडित जी से।
1: देखिए, बृहस्पति और शनि का परिवर्तन राशियों पर तो असर डालेगा ही, लेकिन इसका असर देश दुनिया पर भी बहुत जबरदस्त पड़ेगा। बृहस्पति की चाल 2 जून से बदल रही है। अब बृहस्पति अभी भी अतिचारी स्थिति में है, यानी बहुत तेज गति से अभी भी चल रहे हैं। दुनिया भर में अशांति के हालात और उपद्रव की स्थिति बनेगी। दुनिया भर में अशांति होगी और उपद्रव होगा। जलवायु के मामले में, क्लाइमेट के मामले में और मौसम के मामले में बड़े परिवर्तन होंगे। और चूंकि बृहस्पति वित्त का, कोष का, धन का अधिपति है, इसीलिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव भी होंगे। जो फाइनेंशियल मार्केट है, आर्थिक बाजार है, वहां पर बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वहां पर बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। महंगाई एकदम से काफी ज्यादा बढ़ सकती है और लोगों के जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। बृहस्पति धर्म के स्वामी हैं, इसीलिए धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे और इनको लेकर के बेवजह का विवाद होगा, बेवजह की समस्या होगी, झगड़े झंझट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, बाजार में उतार चढ़ाव होंगे और धर्म के मामलों को लेकर के बेवजह के विवाद और बेवजह के उपद्रव बढ़ सकते हैं।
0: और चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नौकरी में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी दिक्कत है, उसका आप समाधान चाहते हैं तो इस शो में अपने तमाम सवाल आप ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न दीपिका शर्मा ने हमें लिखा है और दीपिका हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1994, जन्म का समय रात में 10:40, जन्म का स्थान है फर्रुखाबाद। मेल लिखती हैं आगरा से। दीपिका कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने की संभावना साल 2027 के आरंभिक समय में बनती है। साल 2027 के शुरुआत में विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विवाह का निर्णय जब भी लिया जाए कुंडली एक बार मिला ली जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिएगा। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का, और पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन सा है दूसरा प्रश्न और कौन से दर्शक ने अपनी समस्या पंडित जी तक पहुंचाई है।
1: जी अगला प्रश्न अरुण श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, और अरुण हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1982, शाम के 6:45, जन्म स्थान है भोपाल। अरुण कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अरुण, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं। फरवरी 2027 के बाद अगर आप व्यापार की तरफ जाएं तो आपको सफलता मिलने की संभावना बेहतर है, लेकिन व्यापार अकेले करिएगा, पार्टनरशिप में व्यापार में मत जाइएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं, और वो ये है पंडित जी कि बृहस्पति किस राशि पर कैसा असर डालेंगे, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए।
1: तो देव गुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे और बड़ी मजबूत स्थिति में विद्यमान रहेंगे। तो अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, अगर मेष राशि की बात करें तो बेवजह की सेहत की समस्या हो सकती है, बेवजह का अपयश आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य की समस्या और अपयश से आपको बचाव करना चाहिए। हालांकि इस समय आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा, स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी और करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और करियर दोनों में परिवर्तन होगा, लेकिन इस समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, पारिवारिक सुख दिखाई दे रहा है और मान सम्मान यश की ख्याति की प्राप्ति होगी आपको, आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि, आर्थिक स्थिरता रहेगी, करियर में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर अपने ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सिंह राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पारिवारिक मामले बिगड़ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है और इस समय संपत्ति का फायदा हो सकता है आपको, हालांकि फैमिली लाइफ को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से इस समय संतान की उन्नति और आर्थिक सुधार होंगे, धन का लाभ होगा, आपके तमाम रुके हुए काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: और चलिए राशिफल के ऊपर वापस आते हैं और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की, जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्यफल में आज का लिखा है।
1: तुला राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि पहली छह राशियों के लिए बृहस्पति का असर किस तरह का रहेगा, अब बाकी बची छह राशियों पर बृहस्पति किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे वो जान लेते हैं।
1: तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। अब जो बाकी छह राशियां हैं, तुला राशि से लेकर मीन राशि तक, इनके ऊपर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है, धन का लाभ होता दिख रहा है,

0: राशि वालों को हो सकता है। वृश्चिक राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपके पारिवारिक मामले लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। धनु राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वजह से आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा, करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और इस समय परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार से दूर जाना ही पड़ेगा, उसको स्वीकार कर लेना ठीक है। मकर राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी, ऑफिस की मुश्किलें भी आपकी अब दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, सेहत को लेकर के 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना होगा। पेट की, लिवर की, गैस्ट्रिक समस्याएं आपको परेशान ना करें। मीन राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके करियर में बड़ा परिवर्तन करा सकता है। जो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा और इस समय आपका धार्मिक झुकाव भी बढ़ सकता है।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियों का वक्त भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों के। जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्यफल में क्या लिखा है।
0: मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिख रही है। करियर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: तो होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और शलेश के साथ वक्त आ गया है आपका अगला प्रश्न लेने का। पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का अगला सवाल पंडित जी तक आया है।
0: जी अगला प्रश्न सारिका ने हमें लिखा है और सारिका हमें जयपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 जनवरी 2008, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान है जयपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसको किस तरह के करियर में जाना चाहिए और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए सारिका जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं, तो उसमें सफलता पाने की संभावना ज्यादा है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे किसी क्षेत्र में अगर जाएं तो सफलता इनको ज्यादा मिलेगी। आपके बेटे की कुंडली में थोड़ा भटकाव भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपके बेटे की रक्षा करनी चाहिए। आप ऐसा करें, एक मोती बनवा लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने बेटे के गले में पहना दें और अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का वक्त हो चला है। और इससे पहले कि आपका अंतिम प्रश्न मैं पंडित जी से जानूं, एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, तो आप ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करते हैं, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी। आज का अंतिम प्रश्न अंकिता ने हमें लिखा है और अंकिता हमें मेल लिखती हैं पटना बिहार से। अंकिता की जन्म की तारीख है 20 जून 1994, जन्म का समय सुबह के 10:45, जन्म का स्थान है बाढ़, पटना बिहार। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए लगी हुई हूं, क्या मुझे एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी। अंकिता, आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की संभावना कमजोर है, लेकिन आप शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी पा सकती हैं और उसकी संभावना अगले 6 महीने में बन रही है, तो शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी का प्रयत्न करें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। आपका करियर बेहतर हो, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके धारण करें, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह के समय 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी सवाल ये तो आपने बता दिया कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या असर होगा, लेकिन हमारे लिए अगर हमें सावधानी बरतनी है तो किन बातों का हमें इस वक्त में ख्याल रखना होगा और कितने वक्त के लिए रखना होगा?
0: जी देखिए, बृहस्पति देव जो हैं वो सात्विकता के, शुभता के, पवित्रता के प्लेनेट माने जाते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अपनी सबसे मजबूत स्थिति में रहेंगे, महत्वपूर्ण रूप से ताकतवर रहेंगे, पवित्रता पैदा करेंगे। तो सामान्यतः मैं लोगों से कहूंगा कि एक तो इस समय में आजकल अब नॉनवेज यानी मांसाहार और अल्कोहल, मदिरा और मांस का प्रयोग बंद रखें तो अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर आपको इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर्टी में, मार्केट में, तो बड़ी सावधानी से, बड़े सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि इस समय में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। जरा सा भी मामला गड़बड़ हुआ तो पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही या जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, ऐसे लोगों के लिए ये 2 जून से 31 अक्टूबर का समय बड़ा ही शुभ फलदायी है। इस समय में अगर संतान के लिए प्रयास किया जाए या इस समय में अगर विवाह के लिए प्रयास किया जाए तो इसके परिणाम बहुत शुभ रहेंगे।
1: और चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 2 जून को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 2 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन के मामले उत्तम बने रहेंगे, करियर में स्थिरता आती जाएगी, लेकिन अभी विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: लोगों का ऐसा कहना और मानना है कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसी बात है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि मंगलवार को अगर आप कर्ज लें तो उसे वापस चुका पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मंगलवार को कर्ज लेने से हर स्थिति में बचना चाहिए। मंगलवार को कर्ज चुकाना अच्छा होता है, लेकिन मंगलवार को कर्ज लेना अच्छा नहीं होता।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 2 जून 2026 मंगलवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 2 जून 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 2 जून मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए शो के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो पंडित जी आपको बताएंगे आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको

0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन में बेहतरी लाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है धनु। जीवन की बेहतरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव की उपासना करें और रोज सवेरे सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अंत की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम बात करते हैं महा उपाय के बारे में, तो आज का खास उपाय क्या है वो भी पंडित जी से ही जान लेते हैं।
0: जी, हमने आज बात की है बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल 31 अक्टूबर तक सूर्य देव को अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। नियमित रूप से किसी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें, मंदिर जाएं जब समय मिले और वहां जाकर के प्रार्थना करें, और सात्विकता और पवित्रता बनाए रखें।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय को बताने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।
2: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आईपीएल 2026 के नए चैंपियंस की। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने आईपीएल 2026 का किताब कल शाम अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था आरसीबी को। दरअसल इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक ही पहुंच पाया। 156 के टारगेट को बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं आपको बता दें ये शानदार जीत दर्ज की है विराट कोहली की टीम ने।
1: Journeyed long, soldiered long, and now you have 2-time champions of the Tata IPL.
2: Aid Royal Challengers Bengaluru are champions of Tata IPL 20.
0: तो वहीं आईपीएल 2026 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार की शानदार कप्तान ने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसके बाद ही देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है और अनुभव और रिकॉर्ड्स के मामले में अगर बात करें तो सबके सीनियर और दोनों ही मामलों में सबसे छोटे खिलाड़ी की। जहां क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया, उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है ये उन्होंने साबित कर दिया। तो वहीं 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। उनकी आत्मविश्वास भरी इस पारी की बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

0: वो क्रिकेट का किंग। और ये क्रिकेट का नया प्रिंस। मैदान पर वो गेंदबाजों की शामत है।
1: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी एक सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए।
0: ये पिच पर बॉलर्स के लिए कयामत है।
2: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd.
0: उसके जैसा कोई हो नहीं सकता।
1: उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है कि दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते।
0: और इसके जैसा अब तक कोई हुआ ही नहीं।
2: Sixes are generally into the crowd. Sixes are not those that just pop over that boundary rope, and he just makes it look so ridiculously easy.
0: ये इंडियन क्रिकेट का विराट वैभव है, जिसकी तस्वीर IPL 2026 में सारी दुनिया ने देखी, क्रिकेट के हर दीवाने ने देखी। एक अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ा, तो दूसरे ने अपनी टीम को लगातार दूसरे साल IPL चैंपियन का खिताब दिला दिया। एक ने तो चैंपियन की ट्रॉफी उठाई और दूसरे को लोगों ने फाइनल से पहले ही चैंपियन मान लिया था। एक प्लेयर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा टॉप स्कोरर ऑफ टूर्नामेंट। यूं तो रविवार की शाम अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की भरमार थी, लेकिन IPL 2026 के ग्रैंड फिनाले में इन दो सितारों की चमक के आगे हर चमक फीकी पड़ गई।
3: तो वहीं बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की शानदार पारी ने बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत दिला दी। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। विराट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है।

0: किनारा है। भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा, और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी विराट कोहली। आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डीकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: शानदार विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको ये जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
7: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो सिक्स मारा है, ऑफ कोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
7: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेस मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: विराट कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर जैसे ही बेंगलुरु की इस जीत को लॉक किया, आरसीबी कैंप में जोरदार जश्न की शुरुआत हो गई। आज टीम आरसीबी के शानदार जश्न की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट जश्न की तस्वीर दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी जोरदार जीत के बाद पार्टी ना हो? आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट जश्न का वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जीत का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जाहिर है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा। जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने देर रात तक जश्न मनाया। देखिए कैसे ट्रॉफी के साथ कुणाल पांड्या झूमते हुए नजर आए।

और इस तरह कैप्टन रजत पाटीदार भी खेल के मैदान की तरह ही जश्न की पिच पर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर धमाल किया।

तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही 18 सालों तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई जिसने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था। तो वहीं आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद मिली डबल जीत की खुशी में आरसीबी के फैंस ने देर रात तक स्टेडियम के बाहर जमकर धमाल मचाया था।

0: आईपीएल 2026 का खिताब भले ही बैंगलोर ने जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस का दिल जीता है उस एक खिलाड़ी ने, जिसे आज सारी दुनिया क्रिकेट का बेबी बॉस बुला रही है। केवल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में क्रिकेट के नए मास्टर ब्लास्टर बनकर उभरे हैं। क्रिकेट का एक ऐसा वैभवशाली सूर्य जिसकी चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने अपने बल्ले से मैदान पर वो जौहर दिखाया जो फाइनल की शाम प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक कायम रहा। आईपीएल पुरस्कारों में राजस्थान के स्टार बल्लेबाज का दबदबा रहा। रविवार की शाम वैभव ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। इनमें से पहला है ऑरेंज कैप। आईपीएल 2026 के सबसे छोटे बल्लेबाज ने रनों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 16 मैच में 776 रन बनाए। इसके अलावा वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, तो वही 237.3 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सीजन में 72 छक्के मारकर वैभव ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जीता, तो वहीं उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया। रविवार की शाम वैभव पर अवार्ड्स के साथ साथ पैसों की भी बारिश हुई। उन्हें 5 अवार्ड्स के लिए कुल 40 लाख रुपए और एक शानदार कार बतौर पुरस्कार दी गई। ये टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ। वैसे तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शानदार पारियां खेली, लेकिन 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। उस एक पारी में वैभव ने 29 गेंदों पर धुआंधार 97 रन जड़े थे। इस एक पारी के सामने आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड्स जमींदोज हो गए। वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई। वैभव ने इस पारी में 12 छक्के लगाए और उन्होंने आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ ही वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए थे। इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों में 65 छक्के अपने नाम कर लिए। 280 गेंदों पर 65 सिक्सर का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है, लेकिन ये सपना और भी डरावना तब हो गया जब दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की पारी के दौरान वैभव ने 7 और छक्के जड़कर कुल छक्कों की संख्या को 72 तक पहुँचा दिया।
1: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जैसी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगा कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एसआरएच के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में यह संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों में ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पूरे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। इसके अलावा इसी सीजन में T20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक से 623 रन बनाए थे। वैभव की एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इसी वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरण पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, फिर आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान में टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर है, इसलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं महाकहर बन रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
3: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
2: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे से सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, अब सब बराबर हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वीडियो में दो क्लिप्स हैं। पहली क्लिप में किसी चैनल से बात करते हुए एक महिला कहती है कि उसे पीएम मोदी पर भरोसा है, दीदी पर नहीं।
8: दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया।
9: तो किससे भरोसा है?
8: मोदी जी के पे भरोसा है।
7: वहीं दूसरी क्लिप में एक महिला रोते बिलखते हुए केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाती सुनी जा रही है।
8: परेशान कर दिया मोदी ने,
9: परेशान कर
8: दिया। और क्या कर ही रहे हैं, कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना।
7: दोनों महिलाओं को एक ही बताकर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी पर विश्वास जताने वाली महिला चुनाव के बाद खुद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी को कोस रही है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा,

0: दावे के साथ लगातार शेयर किए जा रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला बीजेपी की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में एक महिला रोती हुई भी दिख रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ करने वाली इस महिला के घर पर जब चुनाव के बाद बुलडोजर चला तो वो बीजेपी को कोसने लगी। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान एक बात तो साफ हो गई कि दो अलग अलग क्लिप्स को जोड़कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाओं की पहचान अलग अलग है। हाँ, काफी हद तक फेस जरूर मिलता है, लेकिन वीडियो में एक महिला की बोलचाल में हिंदी बांग्ला का मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो में जो दूसरी महिला है वो हिंदी बोल रही है, इसमें कहीं भी बांग्ला का मिश्रण नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि दो अलग अलग घटना से संबंधित मामले को एक नया एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की तो पहली क्लिप में महिला जिस माइक पर बोल रही है उस पर प्यारा हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आता है। हमें इस नाम का यूट्यूब चैनल मिल गया और यहाँ इस वीडियो को 19 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहाँ वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताया गया है।
2: उठ गया
3: तो किस पे भरोसा है?
2: मोदी जी के पे भरोसा है।
0: बीजेपी की आलोचना करती रोती हुई महिला का वीडियो एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर 4 मार्च को अपलोड किया गया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले का है, क्योंकि बंगाल में चुनाव 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल को हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित राम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बातचीत का ये वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 मार्च से पहले भाई राम कैंप खाली करने को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों को एक नोटिस जारी किया था और तभी से वो लोग काफी डरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल में स्थित DID कैंप, भाई राम कैंप और मस्जिद कैंप की झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO विभाग ने नोटिस जारी कर 6 मार्च 2026 तक जमीन खाली करने को कहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। पहली क्लिप पश्चिम बंगाल की तो दूसरी दिल्ली की है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: 16 मई 2026 से सोशल मीडिया पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोगों को सरकारी वाहनों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
0: देश भर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, सब बराबर हैं।

0: कांग्रेस जनता पार्टी अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की शुरुआत की, जिसमें 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्यंग करना शुरू हुआ था। हालांकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वीडियो कहां का है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर यूपी नंबर प्लेट देखने को मिल रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो यूपी का हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और यूपी के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम वायरल हो रही इस वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से 22 और 23 मार्च को अपलोड किया गया मिला। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में एक बाबा की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी पर उपद्रवियों के पथराव किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा वायरल क्लिप वाले दृश्य 21 मार्च 2026 को एक न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में भी मिले। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पुलिस पर हुए पथराव का बताया गया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह की 21 मार्च को ट्रक से कुचल कर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस जब भीड़ को शांत कराने पहुंची, तो पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मथुरा पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए थे। पहली एफआईआर में पुलिस ने 23 नामजद सहित 300 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं दूसरी एफआईआर में हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल हो रही ये वीडियो असल में सीजेपी बनने से 2 महीने पहले मथुरा में हुई एक घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब आ रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits. You're listening to MSNBC. No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं और ये खूब वायरल है।
1: इन दिनों इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी अनोखी समझ देखने को मिलती है, जिसे देखकर लोग हंसने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से A to Z लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया। उसने अपनी कॉपी में A to Z को जैसा देखा ठीक वैसा ही कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर A to Z ही लिख डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी को देखा तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वही काम किया जो उसे सही लगा। यही बात लोगों का दिल जीत रही है। लोगों को ये छोटा सा दिल छू लेने वाला पल बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल वीडियो में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा होता है। रास्ते से उसे सेना के जवानों से भरी एक ट्रक दिखाई देती है। जवानों को देखकर वो सम्मान में उन्हें सल्यूट करता है। खास बात ये रहती है कि ट्रक में बैठे जवान भी उसी सम्मान के साथ उसे जवाब देते हुए सल्यूट करते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर बाइक सवार को सेना की एक जीप दिखाई देती है और वहाँ मौजूद जवान भी उसके अभिवादन का जवाब सलामी देकर देते हैं। ये छोटा सा पल उस युवक को बेहद खास महसूस होता है।
5: We do not speak Punjabi, but we have been asked to perform this song at a wedding. So what do? We step up.
1: आजकल सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में वो एक मशहूर पंजाबी गाना इतने गजब के उच्चारण के साथ गा रही है कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।

दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला यूके की मशहूर सिंगर तानिया वेल्स है। तानिया सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन आवाज और हिंदी उर्दू के एकदम सटीक और साफ उच्चारण के लिए पहले से ही काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में उनके साथ ब्राजील के उस्ताद गिटार वादक पाउलो विंसियास भी हैं, जो अपने क्लासिकल गिटार ट्यून से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रही हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट से इंटरनेट पर धूम मची हुई है।

0: भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहा है। वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा नजर आता है जिसमें पीछे की तरफ एसी यूनिट लगी हुई दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रही एक और खास बात ने लोगों का ध्यान खींचा। ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी ये ऑटो न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने की बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात ये थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वो कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को ये पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अक्सर गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर ही घुसकर छिप जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया जिससे एक छोटी सी बिल्ली की जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर कैसे छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर चल देता तो उसकी भी जान जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई। महिला की यही इंसानियत लोगों के दिलों को भा गई है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती। अगर एसी बंद हो जाए तो वो ना सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वो सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह से लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वो नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बाप भरेगा तेरा।
0: आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है। तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वो थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह को देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
2: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उपप्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट कुनिस्टे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आईपीएल 2026 के नए चैंपियंस की। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने आईपीएल 2026 का किताब कल शाम अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था आरसीबी को। दरअसल इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक ही पहुंच पाया। 156 के टारगेट को बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं आपको बता दें, ये शानदार जीत दर्ज की है विराट कोहली की टीम ने।
1: Journeyed long, soldiered long, and now you have 2-time champions of the Tata IPL.
2: And Royal Challengers Bengaluru are champions of Tata IPL 20.
0: तो वहीं आईपीएल 2026 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं, वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार की शानदार कप्तान ने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसके बाद ही देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है और अनुभव और रिकॉर्ड्स के मामले में अगर बात करें तो सबके सीनियर और दोनों ही मामलों में सबसे छोटे खिलाड़ी की। जहां क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया, उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। तो वहीं 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। उनकी आत्मविश्वास भरी इस पारी की बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

0: वो क्रिकेट का किंग। और ये क्रिकेट का नया प्रिंस। मैदान पर वो गेंदबाजों की शामत है।
1: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए।
0: ये पिच पर बॉलर्स के लिए कयामत है।
2: दिस यंग मैन इज समथिंग एल्स, यू नो, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd.
0: Uske jaisa koi ho nahi sakta.
1: Unke paas wo qabiliyat hai, wo aatmavishwas hai aur wo ek zid hai ki dikhane ke liye ki jab koi chase karna ho, koi bhi score chase karna ho to unke balle se sare run ban sakte.
0: Aur iske jaisa ab tak koi hua hi nahi.
2: Sixes are generally into the crowd. Sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: ये इंडियन क्रिकेट का विराट वैभव है, जिसकी तस्वीर IPL 2026 में सारी दुनिया ने देखी, क्रिकेट के हर दीवाने ने देखी। एक अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ा, तो दूसरे ने अपनी टीम को लगातार दूसरे साल IPL चैंपियन का खिताब दिला दिया। एक ने तो चैंपियन की ट्रॉफी उठाई और दूसरे को लोगों ने फाइनल से पहले ही चैंपियन मान लिया था। एक प्लेयर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा टॉप स्कोरर ऑफ टूर्नामेंट। तो रविवार की शाम अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की भरमार थी, लेकिन IPL 2026 के ग्रैंड फिनाले में इन दो सितारों की चमक के आगे हर चमक फीकी पड़ गई।
3: तो वहीं बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की शानदार पारी ने बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत दिला दी। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। विराट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है।

0: बाद में एक ही नारा है, भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा, और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और इस और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी, आरसीबी, विराट कोहली, विराट कोहली, आरसीबी जिंदाबाद। विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डीकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: शानदार विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल, टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको ये जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
8: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में 6 मारा है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो 6 मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
8: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेज मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: विराट कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर जैसे ही बेंगलुरु की इस जीत को लॉक किया, आरसीबी कैंप में जोरदार जश्न की शुरुआत हो गई। आज टीम आरसीबी के शानदार जश्न की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट जश्न की तस्वीर दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी जोरदार जीत के बाद पार्टी ना हो? आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट जश्न का वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जीत का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जाहिर है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा। जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने देर रात तक जश्न मनाया। देखिए कैसे ट्रॉफी के साथ कुणाल पांड्या झूमते हुए नजर आए।

और इस तरह कैप्टन रजत पाटीदार भी खेल के मैदान की तरह ही जश्न की पिच पर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर धमाल किया।

तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था। तो वहीं आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद मिली डबल जीत की खुशी में आरसीबी के फैंस ने देर रात तक स्टेडियम के बाहर जमकर धमाल मचाया था।

0: यस ऑलवेज ऑन लव फॉर अ पास्ते भी विराट कोहली को भगवान है हमारे लिए भगवान।
1: हम बहुत खुश है कि आरसीबी दोबारा जीता। विराट कोहली
2: कड़ी रे गोमना कड़ेला घड़ावू तमा पेरी जानो रे पेरी जानो रे मारा दिल मावागे मारा दिल मावागे से आरसीबी नो रेडियो रे तू बहु गमे से तू बहु गमे से आरसीबी आरसीबी आरसीबी
3: तू फूल छे गुलाब मने बहु गमे छे
2: बमरो बनी मन मारू आरसीबी अगर भमे छे
3: मारा दिल मो वागे
2: मारा दिल मो वागे
3: मारा दिल मो वागे रे आरसीबी नो रेडियो रे
2: मारा दिल मो वागे छे आरसीबी नो रेडियो रे
1: विराट कोहली आ आ वकीलों को क्रेज पसंद है और विराट कोहली को जेल पसंद है
4: आरसीबी विराट कोहली
5: जीटी की चकलियों नहीं आ सकते आरसीबी के पास जीटी की चकलियों नहीं आ सकते
6: विराट कोहली जिंदाबाद आरसीबी जिंदाबाद
2: जिंदाबाद था जिंदाबाद है
4: किंग से बेटी है विराट कोहली सिर्फ एक ही किंग है विराट कोहली
7: बहुत मस्त विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है आए बहुत मस्त खेला
8: लास्ट में जो सिक्स मारा है ऑफकोर्स वो देखिए आइकोनिक हो गया
7: बहुत आइकोनिक।
9: बेंगलुरु तो चर्चा में थी अपनी जीत के लिए लेकिन जीत के इसी माहौल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में था वो खिलाड़ी जिसकी टीम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की बल्कि सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। फाइनल की शाम 15 साल के वैभव पर अवार्ड्स की बारिश हो गई।

0: IPL 2026 का खिताब भले ही बैंगलोर ने जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस का दिल जीता है उस एक खिलाड़ी ने, जिसे आज सारी दुनिया क्रिकेट का बेबी बॉस बुला रही है। केवल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस IPL में क्रिकेट के नए मास्टर ब्लास्टर बनकर उभरे हैं। क्रिकेट का एक ऐसा वैभवशाली सूर्य जिसकी चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने अपने बल्ले से मैदान पर वो जौहर दिखाया जो फाइनल की शाम प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक कायम रहा। IPL पुरस्कारों में राजस्थान के स्टार बल्लेबाज का दबदबा रहा। रविवार की शाम वैभव ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। इनमें से पहला है ऑरेंज कैप। IPL 2026 के सबसे छोटे बल्लेबाज ने रनों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 16 मैच में 776 रन बनाए। इसके अलावा वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, तो वही 237.3 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सीजन में 72 छक्के मारकर वैभव ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जीता, तो वही उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया। रविवार की शाम वैभव पर अवार्ड के साथ साथ पैसों की भी बारिश हुई। उन्हें 5 अवार्ड के लिए कुल 40 लाख रूपए और एक शानदार कार बतौर पुरस्कार दी गयी। ये टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ। वैसे तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शानदार पारियां खेली, लेकिन 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। उस एक पारी में वैभव ने 29 गेंदों पर धुआंधार 97 रन जड़े थे। इस एक पारी के सामने IPL के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड जमींदोज हो गए। वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे IPL के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई। वैभव ने इस पारी में 12 छक्के लगाए और उन्होंने IPL के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ ही वैभव ने IPL 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए थे। इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गेल ने IPL 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों में 65 छक्के अपने नाम कर लिए। 280 गेंदों पर 65 सिक्सर का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है, लेकिन ये सपना और भी डरावना तब हो गया जब दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की पारी के दौरान वैभव ने 7 और छक्के जड़कर कुल छक्कों की संख्या को 72 तक पहुँचा दिया।
1: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जैसी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगा कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने SRH के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। IPL के नॉकआउट हिस्ट्री में यह संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों में ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। इसके अलावा इसी सीजन में T20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक से 623 रन बनाए थे। वैभव की एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इसी वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाले 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए 15 साल का यह बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरण पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, फिर आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान में टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर है, इसलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं महाकहर बन रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: To right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
2: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
5: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। यह सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत में 1 हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे से सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वीडियो में 2 क्लिप्स हैं। पहली क्लिप में किसी चैनल से बात करते हुए एक महिला कहती है कि उसे पीएम मोदी पर भरोसा है, दीदी पर नहीं।
8: दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया।
9: तो किससे भरोसा है?
8: मोदी जी के पे भरोसा है।
7: वहीं दूसरी क्लिप में एक महिला रोते बिलखते हुए केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाती सुनी जा रही है।
8: परेशान कर दिया मोदी ने,
9: परेशान कर
8: दिया। और क्या कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना।
7: दोनों महिलाओं को एक ही बताकर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी पर विश्वास जताने वाली महिला चुनाव के बाद खुद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी को कोस रही है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये अंधभक्त दीदी कह रही थी कि दीदी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीती फिर बुलडोजर चला दिया तो इस अंधभक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है कि बीजेपी को नहीं जिताना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किए जा रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला बीजेपी की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में एक महिला रोती हुई भी दिख रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं

0: को जोड़कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाओं की पहचान अलग अलग है। हाँ, काफी हद तक फेस जरूर मिलता है, लेकिन वीडियो में एक महिला की बोलचाल में हिंदी बांग्ला का मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो में जो दूसरी महिला है वो हिंदी बोल रही है, इसमें कहीं भी बांग्ला का मिश्रण नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि दो अलग अलग घटना से संबंधित मामले को एक नया एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की तो पहली क्लिप में महिला जिस माइक पर बोल रही है उस पर प्यारा हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आता है। हमें इस नाम का YouTube चैनल मिल गया और यहाँ इस वीडियो को 19 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहाँ वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताया गया है। उठ गया
2: तो किससे भरोसा है?
3: मोदी जी का भी भरोसा है।
1: बीजेपी की आलोचना करती रोती हुई महिला का वीडियो एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर 4 मार्च को अपलोड किया गया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले का है, क्योंकि बंगाल में चुनाव 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल को हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित राम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बातचीत का ये वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 मार्च से पहले भाई राम कैंप खाली करने को लेकर यहां रहने वाले लोगों को एक नोटिस जारी किया था और तभी से वो लोग काफी डरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल में स्थित DID कैंप, भाई राम कैंप और मस्जिद कैंप की झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO विभाग ने नोटिस जारी कर 6 मार्च 2026 तक जमीन खाली करने को कहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। पहली क्लिप पश्चिम बंगाल की तो दूसरी दिल्ली की है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: 16 मई 2026 से सोशल मीडिया पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोगों को सरकारी वाहनों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: देश भर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
0: तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, सब बराबर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की शुरुआत की जिसमें 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्यंग करना शुरू हुआ था। हालांकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वीडियो कहां का है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर यूपी नंबर प्लेट देखने को मिल रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो यूपी का हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और यूपी के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन

0: की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम वायरल हो रही इस वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से 22 और 23 मार्च को अपलोड किया गया मिला। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में एक बाबा की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी पर उपद्रवियों के पथराव किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा वायरल क्लिप वाले दृश्य 21 मार्च 2026 को एक न्यूज में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पुलिस पर हुए पथराव का बताया गया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह की 21 मार्च को ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस जब भीड़ को शांत कराने पहुंची, तो पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मथुरा पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए थे। पहली एफआईआर में पुलिस ने 23 नामजद सहित 300 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं दूसरी एफआईआर में हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल हो रही ये वीडियो असल में सीजेपी बनने से 2 महीने पहले मथुरा में हुई एक घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब आ रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
0: चक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे और ये खूब वायरल है।
1: इन दिनों इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी अनोखी समझ देखने को मिलती है, जिसे देखकर लोग हंसने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से A to Z लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया। उसने अपनी कॉपी में A to Z को जैसा देखा ठीक वैसा ही कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर A to Z ही लिख डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी को देखा तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वही काम किया जो उसे सही लगा, यही बात लोगों का दिल जीत रही है। लोगों को ये छोटा सा दिल छू लेने वाला पल बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल वीडियो में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा होता है, रास्ते से उसे सेना के जवानों से भरी एक ट्रक दिखाई देती है। जवानों को देखकर वो सम्मान में उन्हें सल्यूट करता है। खास बात ये रहती है कि ट्रक में बैठे जवान भी उसी सम्मान के साथ उसे जवाब देते हुए सल्यूट करते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर बाइक सवार को सेना की एक जीप दिखाई देती है और वहाँ मौजूद जवान भी उसके अभिवादन का जवाब सलामी देकर देते हैं। ये छोटा सा पल उस युवक को बेहद खास महसूस होता है।
6: We do not speak Punjabi, but we have been asked to perform this song at a wedding. So what do? We step up.
1: आजकल सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में वो एक मशहूर पंजाबी गाना इतने गजब के उच्चारण के साथ गा रही है कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।

दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला यूके की मशहूर सिंगर तानिया वेल्स है। तानिया सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन आवाज और हिंदी उर्दू के एकदम सटीक और साफ उच्चारण के लिए पहले से ही काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में उनके साथ ब्राजील के उस्ताद गिटार वादक पाउलो विंसियास भी हैं, जो अपने क्लासिकल गिटार ट्यून से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट से इंटरनेट पर धूम मची हुई है।

0: भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहा है। वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा नजर आता है जिसमें पीछे की तरफ एसी यूनिट लगी हुई दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रही एक और खास बात ने लोगों का ध्यान खींचा। ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी ये ऑटो न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने की बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात ये थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वो कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को ये पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। बार ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अक्सर गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर ही घुसकर छिप जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया जिससे एक छोटी सी बिल्ली की जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर कैसे छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर चल देता तो उसकी भी जान जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई। महिला की यही इंसानियत लोगों के दिलों को भा गई है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती। अगर एसी बंद हो जाए तो वो ना सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वो सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह से लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वो नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नजारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वो थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह को देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
2: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
5: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। यह सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40,000 इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट
2: गुड न्यूज टुडे। इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आईपीएल 2026 के नए चैंपियंस की। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने आईपीएल 2026 का किताब कल शाम अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था आरसीबी को। दरअसल इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक ही पहुंच पाया। 156 के टारगेट को बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं आपको बता दें, ये शानदार जीत दर्ज की है विराट कोहली की टीम ने।
1: Journeyed long, soldiered long, and now you have two-time champions of the Tata IPL.
2: Royal Challengers Bengaluru are champions of Tata IPL 20.
0: तो वहीं आईपीएल 2026 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं, वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार की शानदार कप्तान ने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसके बाद ही देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है और अनुभव और रिकॉर्ड्स के मामले में अगर बात करें तो सबके सीनियर और दोनों ही मामलों में सबसे छोटे खिलाड़ी की, जहां क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया। उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। तो वहीं 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। उनकी आत्मविश्वास भरी इस पारी की बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

0: वो क्रिकेट का किंग। और ये क्रिकेट का नया प्रिंस। मैदान पर वो गेंदबाजों की शामत है।
1: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए।
0: ये पिच पर बॉलर्स के लिए कयामत है।
2: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd.
0: उसके जैसा कोई हो नहीं सकता।
1: उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है कि दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते।
0: और इसके जैसा अब तक कोई हुआ ही नहीं।
2: Sixes are generally into the crowd. Sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: ये इंडियन क्रिकेट का विराट वैभव है, जिसकी तस्वीर IPL 2026 में सारी दुनिया ने देखी, क्रिकेट के हर दीवाने ने देखी। एक अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ा, तो दूसरे ने अपनी टीम को लगातार दूसरे साल IPL चैंपियन का खिताब दिला दिया। एक ने तो चैंपियन की ट्रॉफी उठाई और दूसरे को लोगों ने फाइनल से पहले ही चैंपियन मान लिया था। एक प्लेयर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा टॉप स्कोरर ऑफ टूर्नामेंट। यूं तो रविवार की शाम अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की भरमार थी, लेकिन IPL 2026 के ग्रैंड फिनाले में इन दो सितारों की चमक के आगे हर चमक फीकी पड़ गई।
3: वहीं बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की शानदार पारी ने बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत दिला दी। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। विराट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है।

0: एक ही नारा है, भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा, और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी, विराट कोहली। आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पर्टिकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल, टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
7: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो सिक्स मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
7: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेस मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: विराट कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर जैसे ही बेंगलुरु की इस जीत को लॉक किया, आरसीबी कैंप में जोरदार जश्न की शुरुआत हो गई। आज टीम आरसीबी के शानदार जश्न की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट जश्न की तस्वीर दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी जोरदार जीत के बाद पार्टी ना हो? आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट जश्न का वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जीत का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जाहिर है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा। जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने देर रात तक जश्न मनाया। देखिए कैसे ट्रॉफी के साथ कुणाल पांड्या झूमते हुए नजर आए।

और इस तरह कैप्टन रजत पाटीदार भी खेल के मैदान की तरह ही जश्न की पिच पर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर धमाल किया।

तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था। तो वहीं आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद मिली डबल जीत की खुशी में आरसीबी के फैंस ने देर रात तक स्टेडियम के बाहर जमकर धमाल मचाया था।

0: IPL 2026 का खिताब भले ही बैंगलोर ने जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस का दिल जीता है उस एक खिलाड़ी ने, जिसे आज सारी दुनिया क्रिकेट का बेबी बॉस बुला रही है। केवल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस IPL में क्रिकेट के नए मास्टर ब्लास्टर बनकर उभरे हैं। क्रिकेट का एक ऐसा वैभवशाली सूर्य जिसकी चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने अपने बल्ले से मैदान पर वो जौहर दिखाया जो फाइनल की शाम प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक कायम रहा। IPL पुरस्कारों में राजस्थान के स्टार बल्लेबाज का दबदबा रहा। रविवार की शाम वैभव ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। इनमें से पहला है ऑरेंज कैप। IPL 2026 के सबसे छोटे बल्लेबाज ने रनों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 16 मैच में 776 रन बनाए। इसके अलावा वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, तो वहीं 237.3 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सीजन में 72 छक्के मारकर वैभव ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जीता, तो वहीं उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया। रविवार की शाम वैभव पर अवार्ड के साथ साथ पैसों की भी बारिश हुई। उन्हें 5 अवार्ड के लिए कुल 40 लाख रुपए और एक शानदार कार बतौर पुरस्कार दी गई। ये टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ। वैसे तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शानदार पारियां खेली, लेकिन 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। उस एक पारी में वैभव ने 29 गेंदों पर धुआंधार 97 रन जड़े थे। इस एक पारी के सामने IPL के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड जमींदोज हो गए। वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे IPL के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई। वैभव ने इस पारी में 12 छक्के लगाए और उन्होंने IPL के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ ही वैभव ने IPL 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए थे। इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गेल ने IPL 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों में 65 छक्के अपने नाम कर लिए। 280 गेंदों पर 65 सिक्सर का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है, लेकिन ये सपना और भी डरावना तब हो गया जब दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की पारी के दौरान वैभव ने 7 और छक्के जड़कर कुल छक्कों की संख्या को 72 तक पहुँचा दिया।
1: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary arrow. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जैसी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगा कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने SRH के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। IPL के नॉकआउट हिस्ट्री में यह संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों में ही आ गए, इस तरह उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। इसके अलावा इसी सीजन में T20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इसी वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाले 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पे 93 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए, 15 साल का यह बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरण पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, फिर आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान में टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर है, इसलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं महाकहर बन रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
2: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। यह सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Right field, and it will...
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता, ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरल में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे से सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, अब सब बराबर हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट। लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वीडियो में दो क्लिप्स हैं। पहली क्लिप में किसी चैनल से बात करते हुए एक महिला कहती है कि उसे पीएम मोदी पर भरोसा है, दीदी पर नहीं।
8: दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया।
9: तो किससे भरोसा है?
8: मोदी जी के पे भरोसा है।
7: वहीं दूसरी क्लिप में एक महिला रोते बिलखते हुए केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाती सुनी जा रही है।
8: परेशान कर दिया मोदी ने,
9: परेशान कर दिया।
8: और क्या कर ही रहा है, मी कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना।
7: दोनों महिलाओं को एक ही बताकर लोग लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी पर विश्वास जताने वाली महिला चुनाव के बाद खुद के घर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी को कोस रही है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये अंधभक्त दीदी कह रही थी कि दीदी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी पर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीती फिर बुलडोजर चला दिया तो इस अंधभक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है कि बीजेपी को नहीं जिताना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किए जा रहे हैं।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला बीजेपी की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में एक महिला रोती हुई भी दिख रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ करने वाली इस महिला के घर पर जब चुनाव के बाद बुलडोजर चला तो वो बीजेपी को कोसने लगी। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ

0: हिंदी बोल रही है। इसमें कहीं भी बांग्ला का मिश्रण नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि दो अलग अलग घटना से संबंधित मामले को एक नया एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की तो पहली क्लिप में महिला जिस माइक पर बोल रही है उस पर प्यारा हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आता है। हमें इस नाम का यूट्यूब चैनल मिल गया और यहाँ इस वीडियो को 19 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहाँ वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताया गया है।
2: तो किससे भरोसा है?
3: मोदी जी का भरोसा है।
1: बीजेपी की आलोचना करती रोती हुई महिला का वीडियो एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर 4 मार्च को अपलोड किया गया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले का है, क्योंकि बंगाल में चुनाव 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल को हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित राम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बातचीत का ये वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 मार्च से पहले भाई राम कैंप खाली करने को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों को एक नोटिस जारी किया था और तभी से वो लोग काफी डरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल में स्थित DID कैंप, भाई राम कैंप और मस्जिद कैंप की झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO विभाग ने नोटिस जारी कर 6 मार्च 2026 तक जमीन खाली करने को कहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। पहली क्लिप पश्चिम बंगाल की तो दूसरी दिल्ली की है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: 16 मई 2026 से सोशल मीडिया पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोगों को सरकारी वाहनों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: देशभर में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP काफी चर्चा में है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में इसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवाओं और समाज के अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, सब बराबर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की शुरुआत की जिसमें 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्यंग करना शुरू हुआ था। हालांकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वीडियो कहां का है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर UP नंबर प्लेट देखने को मिल रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो यूपी का हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और यूपी के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर

0: किसी और घटना से संबंधित वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है।
1: फैक्ट चेक की टीम वायरल हो रही इस वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से 22 और 23 मार्च को अपलोड किया गया मिला। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में एक बाबा की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी पर उपद्रवियों के पथराव किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा वायरल क्लिप वाले दृश्य 21 मार्च 2026 को एक न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में भी मिले। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पुलिस पर हुए पथराव का बताया गया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह की 21 मार्च को ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस जब भीड़ को शांत कराने पहुंची, तो पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मथुरा पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए थे। पहली एफआईआर में पुलिस ने 23 नामजद सहित 300 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं दूसरी एफआईआर में हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल हो रही ये वीडियो असल में सीजेपी बनने से 2 महीने पहले मथुरा में हुई एक घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब आ रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: Good news today is really good. It's good. उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे और ये खूब वायरल है।
1: इन दिनों इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी अनोखी समझ देखने को मिलती है, जिसे देखकर लोग हंसने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से A to Z लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया। उसने अपनी कॉपी में A to Z को जैसा देखा ठीक वैसा ही कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर A to Z ही लिख डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी को देखा तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वही काम किया जो उसे सही लगा। यही बात लोगों का दिल जीत रही है। लोगों को ये छोटा सा दिल छू लेने वाला पल बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल वीडियो में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा होता है। रास्ते से उसे सेना के जवानों से भरी एक ट्रक दिखाई देती है। जवानों को देखकर वो सम्मान में उन्हें सल्यूट करता है। खास बात ये रहती है कि ट्रक में बैठे जवान भी उसी सम्मान के साथ उसे जवाब देते हुए सल्यूट करते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर बाइक सवार को सेना की एक जीप दिखाई देती है और वहां मौजूद जवान भी उसके अभिवादन का जवाब सलामी देकर देते हैं। ये छोटा सा पल उस युवक को बेहद खास महसूस होता है।
4: We do not speak Punjabi, but we have been asked to perform this song at a wedding. So what do? We step up.
1: आजकल सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में वो एक मशहूर पंजाबी गाना इतने गजब के उच्चारण के साथ गा रही है कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।

दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला यूके की मशहूर सिंगर तानिया वेल्स है। तानिया सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन आवाज और हिंदी उर्दू के एकदम सटीक और साफ उच्चारण के लिए पहले से ही काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में उनके साथ ब्राजील के उस्ताद गिटार वादक पाउलो विंसियास भी हैं, जो अपने क्लासिकल गिटार ट्यून से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रही हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट से इंटरनेट पर धूम मची हुई है।

0: भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहा है। वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा नजर आता है जिसमें पीछे की तरफ एसी यूनिट लगी हुई दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रही एक और खास बात ने लोगों का ध्यान खींचा। ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी ये ऑटो न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने की बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात ये थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वो कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को ये पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। बार ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अक्सर गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर ही घुसकर छिप जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया जिससे एक छोटी सी बिल्ली की जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर कैसे छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर चल देता तो उसकी भी जान जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई। महिला की यही इंसानियत लोगों के दिलों को भा गई है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती। अगर एसी बंद हो जाए तो वो ना सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वो सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह से लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वो नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है।

0: आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है। तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वो थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह को देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
3: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला, बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिरडी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता, ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली NCR में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।

0: बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आईपीएल 2026 के नए चैंपियंस की। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने आईपीएल 2026 का किताब कल शाम अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था आरसीबी को। दरअसल इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक ही पहुंच पाया। 156 के टारगेट को बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं आपको बता दें ये शानदार जीत दर्ज की है विराट कोहली की टीम ने।
1: Journeyed long, soldiered long, and now you have two-time champions of the Tata IPL.
2: Royal Challengers Bengaluru are champions of Tata IPL 20.
0: तो वहीं आईपीएल 2026 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार की शानदार कप्तान ने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसके बाद ही देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है और अनुभव और रिकॉर्ड्स के मामले में अगर बात करें तो सबके सीनियर और दोनों ही मामलों में सबसे छोटे खिलाड़ी की। जहां क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया, उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है ये उन्होंने साबित कर दिया। तो वहीं 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। उनकी आत्मविश्वास भरी इस पारी की बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

0: क्रिकेट का किंग और ये क्रिकेट का नया प्रिंस मैदान पर वो गेंदबाजों की शामत है।
1: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए।
0: ये पिच पर बॉलर्स के लिए कयामत है।
2: दिस यंग मैन इज समथिंग एल्स, यू नो, he can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd.
0: Uske jaisa koi ho nahi sakta.
1: Unke paas wo kaabiliyat hai, wo aatmavishwas hai aur wo ek zid hai ki dikhane ke liye ki jab koi chase karna ho, koi bhi score chase karna ho to unke balle se sare run ban sakte.
0: Aur iske jaisa ab tak koi hua hi nahi.
2: Sixes are generally into the crowd. Sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: ये इंडियन क्रिकेट का विराट वैभव है, जिसकी तस्वीर IPL 2026 में सारी दुनिया ने देखी, क्रिकेट के हर दीवाने ने देखी। एक अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ा, तो दूसरे ने अपनी टीम को लगातार दूसरे साल IPL चैंपियन का खिताब दिला दिया। एक ने तो चैंपियन की ट्रॉफी उठाई और दूसरे को लोगों ने फाइनल से पहले ही चैंपियन मान लिया था। एक प्लेयर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा टॉप स्कोरर ऑफ टूर्नामेंट। यूं तो रविवार की शाम अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की भरमार थी, लेकिन IPL 2026 के ग्रैंड फिनाले में इन दो सितारों की चमक के आगे हर चमक फीकी पड़ गई।
3: तो वहीं बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की शानदार पारी ने बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत दिला दी। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। विराट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है।

0: यकीन आ रहा है, भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा, और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी, विराट कोहली।
5: आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डिकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
6: शानदार है विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको जीत मिली है।
7: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
8: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
7: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
8: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में 6 मारा है, बहुत मस्त खेला है।
7: लास्ट में जो 6 मारा है, ऑफकोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
8: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेज मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: विराट कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर जैसे ही बेंगलुरु की इस जीत को लॉक किया, आरसीबी कैंप में जोरदार जश्न की शुरुआत हो गई। आज टीम आरसीबी के शानदार जश्न की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट जश्न की तस्वीर दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी जोरदार जीत के बाद पार्टी ना हो? आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट जश्न का वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जीत का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जाहिर है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा। जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने देर रात तक जश्न मनाया। देखिए कैसे ट्रॉफी के साथ कुणाल पांड्या झूमते हुए नजर आए।

और इस तरह कैप्टन रजत पाटीदार भी खेल के मैदान की तरह ही जश्न की पिच पर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर धमाल किया।

तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था। तो वहीं आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद मिली डबल जीत की खुशी में आरसीबी के फैंस ने देर रात तक स्टेडियम के बाहर जमकर धमाल मचाया था।

0: आईपीएल 2026 का खिताब भले ही बैंगलोर ने जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस का दिल जीता है उस एक खिलाड़ी ने, जिसे आज सारी दुनिया क्रिकेट का बेबी बॉस बुला रही है। केवल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में क्रिकेट के नए मास्टर ब्लास्टर बनकर उभरे हैं। क्रिकेट का एक ऐसा वैभवशाली सूर्य जिसकी चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने अपने बल्ले से मैदान पर वो जौहर दिखाया जो फाइनल की शाम प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक कायम रहा। आईपीएल पुरस्कारों में राजस्थान के स्टार बल्लेबाज का दबदबा रहा। रविवार की शाम वैभव ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। इनमें से पहला है ऑरेंज कैप। आईपीएल 2026 के सबसे छोटे बल्लेबाज ने रनों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 16 मैच में 776 रन बनाए। इसके अलावा वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, तो वहीं 237.3 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सीजन में 72 छक्के मारकर वैभव ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जीता, तो वहीं उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया। रविवार की शाम वैभव पर अवार्ड के साथ साथ पैसों की भी बारिश हुई। उन्हें 5 अवार्ड के लिए कुल 40 लाख रुपए और एक शानदार कार बतौर पुरस्कार दी गई। ये टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ। वैसे तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शानदार पारियां खेली, लेकिन 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। उस एक पारी में वैभव ने 29 गेंदों पर धुआंधार 97 रन जड़े थे। इस एक पारी के सामने आईपीएल के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड जमींदोज हो गए। वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे आईपीएल के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई। वैभव ने इस पारी में 12 छक्के लगाए और उन्होंने आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ ही वैभव ने आईपीएल 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए थे। इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गेल ने आईपीएल 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों में 65 छक्के अपने नाम कर लिए। 280 गेंदों पर 65 सिक्सर का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है, लेकिन ये सपना और भी डरावना कब हो गया जब दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की पारी के दौरान वैभव ने 7 और छक्के जड़कर कुल छक्कों की संख्या को 72 तक पहुँचा दिया।
1: He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जैसी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगा कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने एसआरएच के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। आईपीएल के नॉकआउट हिस्ट्री में यह संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों में ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पूरे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। इसके अलावा इसी सीजन में T20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इसी वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरण पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, फिर आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान में टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर है, इसलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं महाकहर बन रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
3: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उपप्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक सदन में खोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरल में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे से सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, अब सब बराबर हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला बीजेपी की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में एक महिला रोती हुई भी दिख रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को वायरल करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ करने वाली इस महिला के घर पर जब चुनाव के बाद बुलडोजर चला तो वो बीजेपी को कोसने लगी। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान एक बात तो साफ हो गई कि दो अलग अलग क्लिप्स को जोड़कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाओं की पहचान अलग अलग है। हाँ, काफी हद तक फेस जरूर मिलता है लेकिन वीडियो में एक महिला की बोलचाल में हिंदी बांग्ला का मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं वीडियो में जो दूसरी महिला है वो हिंदी बोल रही है, इसमें कहीं भी बांग्ला का मिश्रण नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि दो अलग अलग घटना से संबंधित मामले को एक नया एंगल देकर वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी भी नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
7: फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की तो पहली क्लिप में महिला जिस माइक पर बोल रही है उस पर प्यारा हिंदुस्तान लिखा हुआ नजर आता है। हमें इस नाम का YouTube चैनल मिल गया और यहाँ इस वीडियो को 19 अप्रैल को अपलोड किया गया था। यहाँ वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताया गया है।
8: उठ गया
9: तो किससे भरोसा है?
8: मोदी जी का भरोसा है।
7: बीजेपी की आलोचना करती रोती हुई महिला का वीडियो एक न्यूज आउटलेट के यूट्यूब चैनल पर 4 मार्च को अपलोड किया गया था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले का है, क्योंकि बंगाल में चुनाव 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल को हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित राम कैंप की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से बातचीत का ये वीडियो उस वक्त खूब वायरल हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 मार्च से पहले भाई राम कैंप खाली करने को लेकर यहाँ रहने वाले लोगों को एक नोटिस जारी किया था और तभी से वो लोग काफी डरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल में स्थित DID कैंप, भाई राम कैंप और मस्जिद कैंप की झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी LNDO विभाग ने नोटिस जारी कर 6 मार्च 2026 तक जमीन खाली करने को कहा था। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। पहली क्लिप पश्चिम बंगाल की तो दूसरी दिल्ली की है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: 16 मई 2026 से सोशल मीडिया पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोगों को सरकारी वाहनों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई VIP नहीं, अब सब बराबर। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: से उठाए जाएंगे। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, अब सब बराबर हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, सब बराबर हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। अब इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की शुरुआत की, जिसमें 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से व्यंग करना शुरू हुआ था। हालांकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वीडियो कहां का है। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली, सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर यूपी नंबर प्लेट देखने को मिल रही थी, मतलब ये कि वायरल वीडियो यूपी का हो सकता है। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और यूपी के लोकल मीडिया आउटलेट्स को भी खंगाला, लेकिन दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित वीडियो को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक की टीम वायरल हो रही इस वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से 22 और 23 मार्च को अपलोड किया गया मिला। इन वीडियोस के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में एक बाबा की मौत के बाद पुलिस की गाड़ी पर उपद्रवियों के पथराव किए जाने का बताया गया था। इसके अलावा वायरल क्लिप वाले दृश्य 21 मार्च 2026 को एक न्यूज चैनल के एक्स अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में भी मिले। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद पुलिस पर हुए पथराव का बताया गया था। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर सिंह की 21 मार्च को ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस जब भीड़ को शांत कराने पहुंची, तो पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मथुरा पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए थे। पहली एफआईआर में पुलिस ने 23 नामजद सहित 300 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वहीं दूसरी एफआईआर में हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी सहित दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर वायरल हो रही ये वीडियो असल में सीजेपी बनने से 2 महीने पहले मथुरा में हुई एक घटना का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब आ रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: No ticket, no line, just Showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: चाचा के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं और ये खूब वायरल है।
0: इन दिनों इंटरनेट पर ये प्यारा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी

0: लोगों की समझ देखने को मिलती है, जिसे देखकर लोग हंसने के साथ साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल बच्चे की टीचर ने उसे स्कूल से ए टू जेड लिखने का होमवर्क दिया था। आमतौर पर बच्चे कॉपी में अंग्रेजी के अक्षरों को एक एक करके लिखते हैं, लेकिन इस नन्हे बच्चे ने टीचर की बात को बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया। उसने अपनी कॉपी में ए टू जेड को जैसा देखा ठीक वैसा ही कॉपी कर दिया। बच्चे ने हर पेज पर ए टू जेड ही लिख डाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब घर वालों ने बच्चे की कॉपी को देखा तो वो भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन बाद में उसकी मासूम सोच को देखकर सबकी हंसी छूट गई। बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वही काम किया जो उसे सही लगा। यही बात लोगों का दिल जीत रही है। लोगों को ये छोटा सा दिल छू लेने वाला पल बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल वीडियो में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा होता है। रास्ते से उसे सेना के जवानों से भरी एक ट्रक दिखाई देती है। जवानों को देखकर वो सम्मान में उन्हें सल्यूट करता है। खास बात ये रहती है कि ट्रक में बैठे जवान भी उसी सम्मान के साथ उसे जवाब देते हुए सल्यूट करते हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर बाइक सवार को सेना की एक जीप दिखाई देती है और वहाँ मौजूद जवान भी उसके अभिवादन का जवाब सलामी देकर देते हैं। ये छोटा सा पल उस युवक को बेहद खास महसूस होता है।
1: We do not speak Punjabi, but we have been asked to perform this song at a wedding. So what do? We step up.
0: आजकल सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। इस वीडियो में वो एक मशहूर पंजाबी गाना इतने गजब के उच्चारण के साथ गा रही है कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं।

दरअसल वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला यूके की मशहूर सिंगर तानिया वेल्स है। तानिया सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन आवाज और हिंदी उर्दू के एकदम सटीक और साफ उच्चारण के लिए पहले से ही काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में उनके साथ ब्राजील के उस्ताद गिटार वादक पाउलो विंसियस भी हैं, जो अपने क्लासिकल गिटार ट्यून से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा रही हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अंकल ने चलते चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया। शख्स के सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे। इस देसी कॉन्सर्ट से इंटरनेट पर धूम मची हुई है।

0: भीषण गर्मी के बीच गुरुग्राम का एक एसी वाला ऑटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में लगी एयर कंडीशनिंग सुविधा को देखकर हर कोई हैरान है और इसे गर्मियों के लिए शानदार जुगाड़ बता रहा है। वीडियो में नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा नजर आता है जिसमें पीछे की तरफ एसी यूनिट लगी हुई दिखाई देती है। वीडियो में दिखाई दे रही एक और खास बात ने लोगों का ध्यान खींचा। ऑटो पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी ये ऑटो न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसी सुविधा वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को लोग एक स्मार्ट और उपयोगी प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आम तौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने की बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात ये थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वो कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को ये पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर अक्सर गाड़ियों के नीचे या गाड़ियों के अंदर ही घुसकर छिप जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया जिससे एक छोटी सी बिल्ली की जान बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी सी बिल्ली कार के निचले हिस्से में जाकर कैसे छिप गई थी। वो एकदम पहिए के पास ही बैठी हुई थी जिससे उसकी जान को खतरा था। अगर गाड़ी वाला नहीं जानता और उसे बिना देखे गाड़ी स्टार्ट कर चल देता तो उसकी भी जान जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला की नजर बिल्ली पर पड़ गई जिसके बाद उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई। उसने बिल्ली को खाने का लालच दिया जिससे बिल्ली बाहर निकल कर आ गई। फिर महिला ने उसे खिलाया और उसके बाद उसे अपने घर लेकर चली गई। महिला की यही इंसानियत लोगों के दिलों को भा गई है।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती। अगर एसी बंद हो जाए तो वो ना सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वो सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह से लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वो नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है।

0: आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है। तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वो थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वो नन्हा बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह को देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
5: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कथित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 उप प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
7: down.
2: Talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले, बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला, बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज, लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता, ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरलम में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून, उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आईपीएल 2026 के नए चैंपियंस की। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी ने आईपीएल 2026 का किताब कल शाम अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में खेल के हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और आईपीएल का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रनों का टारगेट दिया था आरसीबी को। दरअसल इस हाई वोल्टेज फाइनल में आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली थी। बेंगलुरु के गेंदबाज एक के बाद एक झटके गुजरात को देते चले गए। 20 ओवर में जीटी का स्कोर 8 विकेट पर 155 रन तक ही पहुंच पाया। 156 के टारगेट को बेंगलुरु ने आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं आपको बता दें, ये शानदार जीत दर्ज की है विराट कोहली की टीम ने।
1: Journeyed long, soldiered long, and now you have 2-time champions of the Tata IPL.
2: And Royal Challengers Bengaluru are champions of Tata IPL 20.
0: वहीं आईपीएल 2026 में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि नए सपनों और पुराने अनुभवों का खूबसूरत संगम है। युवा जहां भविष्य की नींव रख रहे हैं, वहीं अनुभवी खिलाड़ी उस नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार की शानदार कप्तानी ने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। मुश्किल हालात में उनकी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी ने कई मैचेस का रुख बदला है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी ने कमाल का प्रदर्शन किया और इसके बाद ही देवदत्त पड्डीकल ने भी अपनी बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है और अनुभव और रिकॉर्ड्स के मामले में अगर बात करें तो सबके सीनियर और दोनों ही मामलों में सबसे छोटे खिलाड़ी की। जहां क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया, उनके अनुभव और जुनून का कोई विकल्प नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। तो वहीं 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। उनकी आत्मविश्वास भरी इस पारी की बदौलत उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं।

0: वो क्रिकेट का किंग। और ये क्रिकेट का नया प्रिंस। मैदान पर वो गेंदबाजों की शामत है।
1: देखिए वो तो चेस मास्टर है ना, उनको तो ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि हम कितने हमारे पास कितनी काबिलियत है चेस करने के लिए।
0: ये पिच पर बॉलर्स के लिए कयामत है।
2: Young man is something else. He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd.
0: उसके जैसा कोई हो नहीं सकता।
1: उनके पास वो काबिलियत है, वो आत्मविश्वास है और वो एक जिद है कि दिखाने के लिए कि जब कोई चेस करना हो, कोई भी स्कोर चेस करना हो तो उनके बल्ले से सारे रन बन सकते।
0: और इसके जैसा अब तक कोई हुआ ही नहीं।
2: Sixes are generally into the crowd. Sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: ये इंडियन क्रिकेट का विराट वैभव है, जिसकी तस्वीर IPL 2026 में सारी दुनिया ने देखी, क्रिकेट के हर दीवाने ने देखी। एक अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ा, तो दूसरे ने अपनी टीम को लगातार दूसरे साल IPL चैंपियन का खिताब दिला दिया। एक ने तो चैंपियन की ट्रॉफी उठाई और दूसरे को लोगों ने फाइनल से पहले ही चैंपियन मान लिया था। एक प्लेयर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच रहा तो दूसरा टॉप स्कोरर ऑफ टूर्नामेंट। यूं तो रविवार की शाम अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की भरमार थी, लेकिन IPL 2026 के ग्रैंड फिनाले में इन दो सितारों की चमक के आगे हर चमक फीकी पड़ गई।
3: तो वहीं बेंगलुरु की खिताबी जीत में विराट कोहली ने अहम किरदार निभाया। उनके 75 रनों की शानदार पारी ने बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत दिला दी। पूरे सीजन में 675 रन बनाने वाले विराट को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। विराट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है।

0: ही नारा है, भारत का किंग कौन? विराट कोहली।
1: जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग कोहली खड़े होते हैं।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का ये शोर, ये जोश, ये जज्बा, और हर सुबह पर बस एक ही नाम था, विराट कोहली। गुजरात टाइटंस का भले ही ये घरेलू मैदान था, लेकिन मैदान पर नाम सिर्फ एक ही गूंज रहा था, विराट विराट। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, और इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रनों की आतिशी पारी खेली और बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही दम लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिनमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। वहीं सीजन में विराट ने शानदार 675 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो आरसीबी की रीढ़ हैं। विराट आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा, विराट कोहली आपका नाम रहेगा और दिल में आपका मान रहेगा।
4: बहुत टाइम से आरसीबी पिछली बार भी जीता था, इस बार भी लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से नॉकआउट मैच में अंदर आकर और गुजरात टाइटन को यहीं पे हरा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे आरसीबी विराट कोहली। आरसीबी जिंदाबाद, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और लास्ट में जो छक्का मारा है विनिंग से, आरसीबी जिंदाबाद।
2: 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। शुरू के 2 ओवर विराट खामोश रहे और वेंकटेश अय्यर ने प्रहार किया, लेकिन तीसरे ओवर में विराट ने हाथ खोले और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैच 4.3 ओवर में विराट ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर 62 रन बना डाले। 62 रन पर आरसीबी का पहला विकेट वेंकटेश अय्यर के रूप में गिरा। 63 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट देवदत्त पड्डिकल का गिरा। 89 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट रजत पाटीदार के रूप में गिरा। राशिद खान ने कृणाल पांड्या को आउट कर आरसीबी को चौथा झटका दिया। एक तरफ आरसीबी के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे, लेकिन विराट कोहली पर विकेटों के पतझड़ का कोई असर नहीं पड़ा। विराट दूसरे छोर पर डटे रहे और महज 25 गेंदों पर 50 जड़ दी। ये उनकी आईपीएल में सबसे तेज 50 रही। जब आरसीबी की टीम लक्ष्य के करीब थी तो टिम डेविड के रूप में आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। तब आरसीबी का स्कोर 132 रन था, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली अपनी टीम को जीत दिलाकर जब डगआउट में लौटे तो चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी।
5: शानदार विराट कोहली जो खेला, किंग कोहली है, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है। इस वजह से आरसीबी लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का आईपीएल टाटा आईपीएल जीत पाई है। इसमें कोहली का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, बहुत बढ़िया योगदान है। टीम एक यूनिट की तरह खेली है, उसी वजह से इनको ये जीत मिली है।
6: आपको क्या लगता है बच्चे कि विराट कोहली आज वो की प्लेयर थे जिसने मैच जिताया?
7: यस, विराट कोहली एक की प्लेयर थे और उनको चेज मास्टर से भी जाना जाता है।
6: आप ऑफकोर्स आरसीबी फैन है, बट विराट कोहली के लिए मुझे कुछ बता दो, आप क्या कहना चाहोगे?
7: बहुत मस्त, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में 6 मारा है, आए है, बहुत मस्त खेला है।
6: लास्ट में जो 6 मारा है, ऑफ कोर्स वो देखिए आइकॉनिक हो गया,
7: बहुत आइकॉनिक, मस्त।
2: इस पूरे सीजन विराट कोहली आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। जब टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत पड़ी तब कोहली ने रन बनाए, जब दबाव बढ़ा तो पारी को संभाला। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। अब जबकि फाइनल में टीम को फिर विराट के सहारे की जरूरत पड़ी तो कोहली ने अनुभव के साथ आक्रामकता का प्रदर्शन किया। महज 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर विराट ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों किंग कोहली चेज मास्टर कहे जाते हैं। अहमदाबाद से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: विराट कोहली ने अपने अंदाज में छक्का लगाकर जैसे ही बेंगलुरु की इस जीत को लॉक किया, आरसीबी कैंप में जोरदार जश्न की शुरुआत हो गई। आज टीम आरसीबी के शानदार जश्न की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विराट जश्न की तस्वीर दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी जोरदार जीत के बाद पार्टी ना हो? आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विराट जश्न का वीडियो शेयर किया है, जिसमें किंग कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जीत का डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जाहिर है जब जीत इतनी बड़ी है तो फाइनल के इस ट्विन विन के जश्न का धमाल भी जबरदस्त रहा। जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने देर रात तक जश्न मनाया। देखिए कैसे ट्रॉफी के साथ कुणाल पांड्या झूमते हुए नजर आए।

और इस तरह कैप्टन रजत पाटीदार भी खेल के मैदान की तरह ही जश्न की पिच पर भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर धमाल किया।

तो वहीं आरसीबी की लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी रही। 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जीत का स्वाद ऐसा चखा कि बैक टू बैक ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया और इस जीत के साथ आरसीबी मुंबई और चेन्नई के क्लब में शामिल हो गई, जिसने लगातार दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तो वहीं चेन्नई ने 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। मुंबई ने 2019 और 20 में खिताब पर कब्जा जमाया था। तो वहीं आरसीबी ने 2025 और अब 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इतने लंबे इंतजार के बाद मिली डबल जीत की खुशी में आरसीबी के फैंस ने देर रात तक स्टेडियम के बाहर जमकर धमाल मचाया था।

0: यस ऑलवेज ऑन लव फॉर अवर आरसीबी। विराट कोहली को भगवान है हमारे लिए भगवान।
1: हम बहुत खुश है कि आरसीबी दोबारा जीता। विराट कोहली
2: कड़ी रे गोमना कड़ेला घड़ावू तमा पेरी जानो रे पेरी जानो रे मारा दिल मावागे मारा दिल मावागे से आरसीबी नो रेडियो रे। तू बहु गमे से तू बहु गमे से आरसीबी आरसीबी आरसीबी
3: फूल छे गुलाब मने बहु गमे छे
2: बमरो बनी मन मारू आरसीबी अगर भमे छे
3: मारा दिल मो वागे
2: मारा दिल मो वागे
3: मारा दिल मो वागे रे आरसीबी नो रेडियो रे
2: मारा दिल मो वागे छे आरसीबी नो रेडियो रे।
4: विराट कोहली आ आ वकीलों को क्रेज पसंद है और विराट कोहली को जेट पसंद है। ये आरसीबी विराट कोहली
5: जीती की चकलियों नहीं आ सकते आरसीबी के पास जीती की चकलियों नहीं आ सकते।
6: विराट कोहली जिंदाबाद आरसीबी जिंदाबाद
2: जिंदाबाद था जिंदाबाद है
7: किंग सिर्फ एक ही है विराट कोहली सिर्फ एक ही किंग है विराट कोहली।
8: बहुत मस्त विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला और जो लास्ट में सिक्स मारा है आए है बहुत मस्त खेला है
9: लास्ट में जो सिक्स मारा है ऑफकोर्स वो देखिए आइकोनिक हो गया
8: बहुत आइकोनिक।
10: बेंगलुरु तो चर्चा में थी अपनी जीत के लिए लेकिन जीत के इसी माहौल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में था वो खिलाड़ी जिसकी टीम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की बल्कि सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। फाइनल की शाम 15 साल के वैभव पर अवार्ड्स की बारिश हो गई।

0: IPL 2026 का खिताब भले ही बेंगलोर ने जीता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस का दिल जीता है उस एक खिलाड़ी ने, जिसे आज सारी दुनिया क्रिकेट का बेबी बॉस बुला रही है। केवल 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस IPL में क्रिकेट के नए मास्टर ब्लास्टर बनकर उभरे हैं। क्रिकेट का एक ऐसा वैभवशाली सूर्य जिसकी चमक में क्रिकेट के आसमान के बड़े बड़े सितारे गुम हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने अपने बल्ले से मैदान पर वो जौहर दिखाया जो फाइनल की शाम प्रेजेंटेशन सेरेमनी तक कायम रहा। IPL पुरस्कारों में राजस्थान के स्टार बल्लेबाज का दबदबा रहा। रविवार की शाम वैभव ने 5 अवार्ड अपने नाम किए। इनमें से पहला है ऑरेंज कैप। IPL 2026 के सबसे छोटे बल्लेबाज ने रनों का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने 16 मैच में 776 रन बनाए। इसके अलावा वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, तो वहीं 237.3 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला। इसके साथ ही सीजन में 72 छक्के मारकर वैभव ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का अवार्ड जीता, तो वहीं उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के खिताब से भी नवाजा गया। रविवार की शाम वैभव पर अवार्ड के साथ साथ पैसों की भी बारिश हुई। उन्हें 5 अवार्ड के लिए कुल 40 लाख रुपए और एक शानदार कार बतौर पुरस्कार दी गई। ये टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी के लिए यादगार साबित हुआ। वैसे तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शानदार पारियां खेली, लेकिन 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। उस एक पारी में वैभव ने 29 गेंदों पर धुआंधार 97 रन जड़े थे। इस एक पारी के सामने IPL के 18 साल के इतिहास में बल्ले से बने करीब करीब सारे रिकॉर्ड जमींदोज हो गए। वैभव की इस अविस्मरणीय पारी को देखकर ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कहना पड़ गया अभूतपूर्व। बल्ले से वैभव का अतुल्य धमाका पूरी एकाग्रता से देखने के बाद सचिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का स्विंग असाधारण था। इससे भी बड़ी बात यह है कि पैरों पर फेंकी गई गेंद पर उन्होंने बेहद कुशलता के साथ फ्रंट फुट क्लियर कर रूम बना लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जहां चाहा गेंद को वहीं पहुंचा दिया। वैभव की ये पारी चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। यूं तो वैभव ने पूरे IPL के दौरान अतुल्य बल्लेबाजी की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 मई को खेली गई उनकी एक अदद पारी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, रिली रूसो, शुभमन गिल और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों की कई कई पारियों पर भारी पड़ गई। वैभव ने इस पारी में 12 छक्के लगाए और उन्होंने IPL के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ ही वैभव ने IPL 2026 सीजन में 65 छक्के पूरे कर लिए थे। इसके साथ उन्होंने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 सिक्सर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गेल ने IPL 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे। क्रिस गेल ने 59 सिक्सर के लिए 456 गेंदें खेली थी, जबकि वैभव ने सिर्फ 280 गेंदों में 65 छक्के अपने नाम कर लिए। 280 गेंदों पर 65 सिक्सर का मतलब ये हुआ कि कमोबेश हर चौथी गेंद पर सिक्सर। ये रिकॉर्ड तो गेंदबाजों के लिए डरावने सपने की तरह है, लेकिन ये सपना और भी डरावना कब हो गया जब दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात के खिलाफ 96 रनों की पारी के दौरान वैभव ने 7 और छक्के जड़कर कुल छक्कों की संख्या को 72 तक पहुँचा दिया।
1: He can hit the best of fast bowlers, the best of slow bowlers into the crowd. His sixes are generally into the crowd. His sixes are not those that just pop over that boundary rope. And he just makes it look so ridiculously easy.
0: महज 15 साल के वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में जैसी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की, उसे देखकर यही लगा कि भविष्य में बल्लेबाजी के सारे रिकॉर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट में इनके नाम ही दर्ज मिलेंगे। 27 मई को एलिमिनेटर राउंड में वैभव ने SRH के खिलाफ सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। IPL के नॉकआउट हिस्ट्री में यह संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 है। इससे पहले साल 2014 के क्वालिफायर 2 में सुरेश रैना ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी में शुरू के 10 छक्के सिर्फ 24 गेंदों में ही आ गए। इस तरह उन्होंने आईपीएल के सबसे तेज 10 छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गेल के 10 छक्के साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 27 गेंदों में आए थे। इसके अलावा इसी सीजन में T20 के किसी भी टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले साल 2022 में T20 ब्लास्ट में रिली रूसो ने 192 की स्ट्राइक से 623 रन बनाए थे। वैभव की इस एक पारी में बने रिकॉर्ड्स की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के कुल 12 में से 8 छक्के पावर प्ले में ही आ गए थे। दिलचस्प बात तो यह है कि इससे पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा 7 छक्कों का कीर्तिमान भी हिंदुस्तान के इसी वैभवशाली खिलाड़ी के नाम ही दर्ज था। वैभव अब आईपीएल में 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियां खेल चुके हैं। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पर कमाल यह है कि वैभव की 10 या उससे ज्यादा छक्कों वाली 4 पारियों में से 3 आईपीएल के मौजूदा सीजन में ही आई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की अपनी पारी में वैभव ने एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। आईपीएल के इतिहास में 90 प्लस रनों की सभी पारियों में वैभव की पारी सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाली पारी बन गई है। वैभव ने 334.48 की स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड रजत पाटीदार के नाम था, जिन्होंने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 281.81 की स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों पर 93 रन बनाए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं 15 साल के एक टीनेजर के नाम। सोचिए 15 साल का ये बच्चा इसी उम्र में अगर क्रिस गेल, डेविड वार्नर, किरण पोलार्ड और शुभमन गिल जैसे महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, फिर आगे तो वैभव के नाम से ही कीर्तिमान की एक किताब छापनी पड़ जाएगी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान में टिक कर रहने वाले तूफान नहीं बल्कि बवंडर है, इसलिए विरोधियों के लिए कहर नहीं महाकहर बन रहे हैं। इंतजार कीजिए इनके टीम इंडिया में शामिल होने का। इसकी पूरी संभावना है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए ओपनिंग करेंगे और बहुत संभव है कि भारत तब वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में 12 मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का समापन 30 मई को हुआ। भारत के अलावा इस अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सशल्त, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक भी शामिल हुए।
3: भारत की अगुवाई में 12 देशों का सैन्य संगम। मेघालय के उमरोई स्टेशन में 12 देशों के सैनिकों ने किया एक साथ अभ्यास। एक दूसरे को सिखाया आतंकवाद से लड़ने के गुण। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शनिवार को सफल समापन हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करने के मकसद से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 मई तक चला। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिला सैनिक भी शामिल रही। इसमें भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैनिक शामिल हुए थे। मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास का ये पहला संस्करण था। सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में अलग अलग देशों के सेनाओं ने संयुक्त अभियानों के जरिए अपनी क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चट्टानों पर कठित चढ़ाई से लेकर घाट लगाकर हमला करने और जवाबी हमले का अभ्यास सेनाओं ने मिलकर किया। इसके अलावा कमरे और बस में घुसपैठ की स्थितियों से निपटने और आईडी का पता लगाने और विशेष परिस्थितियों से घायलों को निकालने जैसी खास सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के 6 प्रमुखों समेत 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों और अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Schwarber to right field, and it will lead.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
4: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 एमएम आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। रोबोटिक्स तकनीक से निर्मित गोला। बारूद से सुरक्षा बलों को मिलेगी मजबूती। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्चिंग। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पर्यटन का शानदार मौका। IRCTC ने लॉन्च किया 6 दिनों का टूर पैकेज। लखनऊ से जलकर 3 ज्योतिर्लिंग और शिर्डी दर्शन का फुल इंतजाम। पुरुषोत्तम मास के दौरान बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। ब्रह्म कपाल में तर्पण और पिंडदान के लिए उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। केरला में अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत में एक हफ्ते तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है हल्की बारिश।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चले।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना जांचे से सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वायरल दावे की पुष्टि आगे करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कॉकरोच सड़कों पर उतर चुके हैं, अब कोई वीआईपी नहीं, अब सब बराबर हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चले।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी पर भरोसा जताने वाली एक महिला का घर चुनाव के बाद तोड़ दिया गया। वीडियो में दो क्लिप्स हैं। पहली क्लिप में किसी चैनल से बात करते हुए एक महिला कहती है कि उसे पीएम मोदी पर भरोसा है, दीदी पर नहीं।
7: दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया।
8: तो किस पे भरोसा है?
7: मोदी जी के पे भरोसा है।
6: वहीं दूसरी क्लिप में एक महिला रोते बिलखते हुए केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाती सुनी जा रही है।
7: परेशान कर दिया मोदी ने,
8: परेशान कर
7: और क्या कर ही रहे हैं, जैसे तैसे हमें